0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम.
2: वक्त एक अनमोल खजाना है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए. गया वक्त कभी लौट कर नहीं आता. वक्त का एक लम्हा एक तोला सोने से भी ज्यादा कीमती होता है, जबकि आप एक लम्हे को एक तोला सोने की कीमत अदा करके खरीद नहीं सकते. जब से ये दुनिया वजूद में आई है, वक्त एक ही रफ्तार से रवान दवा है. इंसान तमाम चीजों को अपने काबू में कर सकता है, मगर वक्त और मौत को अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकता. इसमें कोई शक नहीं कि मुश्किल वक्त बताए बगैर आ जाता है, लेकिन यह इंसान को बहुत कुछ सिखा कर ही जाता है. याद रखिए कि मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आना बहुत बड़ी नेकी है. दुनिया में रहते हुए मुश्किल वक्त सभी पर आता है, किसी का सब्र देखने के लिए और किसी का ज़र्फ देखने के लिए.
1: पैगाम ऑन FM 107.
3: FM 107 पर रेडियो कतर की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है. समीन, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतालिक पूछे तो मैं तो उनसे करीब ही हूँ. पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब देता हूँ. इसलिए उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं. ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पा लें. सामीन, मौलाना इदरीस अबकर साहब दुआगो हैं अल्लाह ताला के हुजूर. आइए हम भी इन दुआओं में शरीक हो जाएं. ऐ अल्लाह, तू हमारी सब दुआएं कबूल फरमा ले.

من المقبول فنهني ومن المطرود فنعز.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Qatar National Health Strategy. Health for all. Suniye Dr. Fauzia Shafiq ke saath. FM 107. Dil se desi.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Health for all mein khush aamdeed. Breathing exercises. Yani aaj hum baat karenge सांस की सेहत के बारे में. अब सांस की सेहत क्या है, वो वही कि हम किस तरह से हम सांस लेते हैं. साफ और सेहतमंद जो सांस है वो हमारी जिस्मानी तवानाई और मुदाफ़त के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी हमारी इम्यूनिटी के लिए बेहद ज़रूरी है. आपने कभी ये सोचा कि आज बाहर ताज़ा हवा में मैंने कितना वक्त गुजारा? इस पर ज़रूर गौर कीजिए कि कितना वक्त हम बाहर गुजारते हैं और कितना वक्त हमें ये होता है कि हम अंदर ही बैठे रहें. सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और ये कि डिवाइसेस पर या बाकी भी जो काम कर रहे होते हैं तो उस पर भी हमें गौर तो करना है, मगर ये है कि कुछ ज़्यादा ही वक्त हम गुजार देते हैं. तो जो हमारी जो ब्रीथिंग है यानी जो सांस की सेहत है, उसके लिए ताज़ा और साफ हवा बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है. इसी तरह जो धुआँ है और स्मोकिंग है या आलूदगी से बचाव जो है वो बेहद ज़रूरी है. इससे अगर हम इसका ख्याल ना करें तो फिर अस्थमा, फेफड़ों की बीमारियां या फिर जो सांस की कमी है वो वाकई होना शुरू हो जाती है. आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक शख्स जो घर के अंदर ज़्यादा वक्त गुजारता और ये कि ये भी ख्याल नहीं करते कि जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है या नहीं है, फिर उस शख्स में जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी नहीं करनी तो सारी मुश्किलात जो हैं वो आती चली जाएंगी. मगर जब उसने कंसल्ट किया अपने डॉक्टर से और रोज़ाना सुबह पार्क में चलना शुरू किया तो उसकी जो

0: ब्रीदिंग है वो बेहतर हुई और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो तवानाई है वो भी ज्यादा होती चली गई। तो फिर हमें करना ये है कि रोजाना कम से कम 30 मिनट ताज़ा हवा में वक्त गुजारें, इसी तरह स्मोकिंग और जो धुआं है उससे दूर रहें। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, जैसे कि गहरी सांस लीजिए, और योगा जो है वो भी आप कर सकते हैं। घर में हवा साफ रखिए, बच्चों और बड़ों को भी साफ माहौल में रखिए। साफ हवा में सांस लेना हमारे सेहतमंद जिस्म और एनर्जी की जामिन है। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

प्यारे बच्चों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ, जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। दोस्तों, एक दिन एक खूबसूरत जंगल में चार गायें रहती थीं। उनका नाम गुलाबी, लाली, माया और शेरनी था। ये चारों गायें आपस में बहुत अच्छी दोस्त थीं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहा करती थीं। वो खाती पीती भी एक साथ थीं और खेलती भी एक साथ ही थीं। उनके दरमियान मोहब्बत और भाईचारे का रिश्ता था और उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहती थीं। इनकी ये दोस्ती जंगल के तमाम जानवरों में मशहूर थी। इनका एक मामूल था कि ये हमेशा इकट्ठा घूमा करती थीं और एक दूसरे की हिफाजत करती रहती थीं। जंगल में शिकार करने वाले मुख्तलिफ दरिंदे मौजूद थे, मगर जब तक ये गायें इकट्ठी थीं, उनमें से किसी को भी कोई भी दरिंदा नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। शेर, हाथी और दूसरे दरिंदे इनके करीब आकर भी इनसे डरा करते थे, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि ये चारों एक साथ मिलकर एक दूसरे को बचा सकती हैं। लेकिन साथियों, एक दिन ऐसा हुआ जब गुलाबी और लाली ने झगड़ कर ये फैसला किया कि वो अलैदा अलैदा चढ़ने जाएंगी, तो माया और शेरनी ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और इकट्ठा ही चढ़ने का फैसला किया। ताहम गुलाबी और लाली की लड़ाई ने उनके दरमियान फासले पैदा कर दिए और वो दोनों मुख्तलिफ सिम्त में चली गई। जंगल का शेर, जो कि अक्सर दरख्तों के दरमियान छुपकर शिकार की तलाश किया करता था, उस दिन शेर ने इनके दरमियान की लड़ाई देख ली थी। शेर ने इस बात का फौरन अंदाजा लगा लिया कि अब इन चारों को अलग अलग देखकर उनका शिकार करना बहुत आसान हो जाएगा। उसने सोचा कि अगर ये गायें अब एक दूसरे से अलग अलग होकर चल रही हैं, तो इनमें से अब कोई भी शेर के लिए एक बहुत आसान सा शिकार बन सकती है। शेर ने अपने दिमाग में इनका शिकार करने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। उसने गुलाबी और लाली को अलग अलग जगहों पर देखा और फैसला किया कि वो पहले गुलाबी को शिकार करेगा। शेर एक दरख्त के नीचे छुप कर गुलाबी के करीब पहुंचा और उस पर हमला कर दिया। गुलाबी क्योंकि अकेली थी, इसलिए वो शेर के हाथों जान की बाजी हार गई। इसी दौरान शेरनी और माया, जो कि अभी भी एक दूसरे के साथ थी, एक दूसरे के साथ चलते हुए गुलाबी की तलाश करने के लिए आगे बढ़ी। जब उन्होंने शेर को देखा तो शेर से बचने के लिए वो एक तरफ दौड़ गई। शेर अपनी कामयाबी देखते हुए बहुत खुश हुआ और मौका देखकर उसने माया को भी पकड़ लिया और माया भी शेर के हाथों अपनी जान की बाजी हार गई। शेर के शिकार का खेल बहुत आसान हो गया, क्योंकि ये चारों दोस्त एक दूसरे से अलग हो चुकी थीं। जंगल के बाकी जानवरों को जब इनकी हालत का पता चला तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ और फिर उन्होंने एक दूसरे को ये बात समझाई कि दोस्ती में साथ रहना कितना अहम होता है और एक दूसरे को साथ रहने की अहमियत का एहसास दिलाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसानों और जानवरों के दरमियान इत्तेहाद में ताकत है। जब तक हम इकट्ठा रहते हैं तो मिलकर हम तमाम मुश्किलात का सामना कर सकते हैं, और जब हम तन्हा हो जाते हैं या लड़ते हैं तो हम खतरों का शिकार हो जाते हैं। इत्तेहाद और भाईचारे से हम अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं और मुश्किल हालात का सामना कर सकते हैं।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है. एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता. सवाल ये है कि इन हालातों में इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है. किस तरह इकोनॉमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है. इकॉनमी के बुनियादी तसव्वुरात और वैल्यूज से मुतालिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समाप्त कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स.
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं हूं नाज़िया FM 107 से एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स. दोस्तों, आज एक बहुत ही कमाल की इकोनॉमिक टर्म पर बात होने वाली है और ये टर्म है फ्री मार्केट. जी हाँ, ये ऐसा मार्केट नहीं है जहाँ पे हर चीज फ्री मिलेगी, बल्कि एक और कॉन्सेप्ट है जिसे अभी हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे. दोस्तों, फ्री मार्केट एक बेहद एक अहम इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी का बुनियादी हिस्सा है. इसका मतलब है कि मार्केट में गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग का निज़ाम सिर्फ सप्लाई और डिमांड के जरिए तय हो, बिना किसी गवर्नमेंट इंटरवेंशन या फिर कंट्रोल के. फ्री मार्केट सिस्टम को जो है वो कई तरह की कंट्रीज अडॉप्ट कर चुकी है, पर जहां गवर्नमेंट का रोल बेहद मिनिमम होता है. इस टर्म को समझना बड़ा इम्पोर्टेंट.

तो चलिए बढ़ते हैं और पहले मैं आपको समझाऊंगी कि एक्चुअल में फ्री मार्केट है क्या। दोस्तों, फ्री मार्केट का जो असल मतलब है वो ये है कि एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप करना जहां पर बायर्स और सेलर्स अपने इंटरेस्ट के मुताबिक ट्रेड करते हैं। इस सिस्टम में प्राइसेस का तय होना सप्लाई और डिमांड के जरिए होता है। यहाँ जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस भी बढ़ती हैं और जब डिमांड गिरती है तो प्राइसेस भी गिरती हैं। इस तरह से मार्केट अपने आप को रेगुलेट करता है। फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल फ्रीडम और कॉम्पिटिशन पर भी जोर देता है, जहाँ लोग अपने बिजनेस और इकोनॉमिक डिसीजन खुद ही लेते हैं बिना गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के। जी हाँ, फ्री मार्केट का इस्तेमाल मुख्तलिफ इकोनॉमिक पॉलिसीज और थ्योरीज में होता है। गवर्नमेंट्स खासकर फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स को अपने इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज में शामिल करते हैं ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन को फरोग दिया जा सके। फ्री मार्केट का इस्तेमाल कुछ की एरियाज में होता है जिस पर अब मैं बात करने वाली हूँ। वो कौन कौन से की एरियाज हैं? तो सबसे पहला है रिसोर्स एलोकेशन। जी हाँ, फ्री मार्केट में रिसोर्सेस की एलोकेशन सप्लाई और डिमांड के जरिए होती है। ये इंश्योर करती है कि रिसोर्सेज उन चीजों पर लगाई जाए जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जब कंज्यूमर्स किसी प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड करते हैं तो प्रोड्यूसर्स उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, जो कि होना भी चाहिए ना। वहीं दूसरा फैक्टर है कंपटीशन। जी हाँ, फ्री मार्केट सिस्टम में कंपटीशन बहुत जरूरी होता है। जब मल्टीपल बिजनेसेस एक ही मार्केट में होते हैं तो वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इससे कंज्यूमर्स को बेहतर चॉइसेस मिलती हैं और प्राइसेस भी कम होते हैं। वहीं एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है इनोवेशन। जी हाँ, फ्री मार्केट में इनोवेशन को भी फरोग मिलता है। जब बिजनेसेस को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेहतर बनाने का मौका मिलता है तो वो नए आइडियाज और टेक्नोलॉजीज को डेवलप करते हैं। इससे इकोनॉमी में ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। फिर इसके असर को भी समझना जरूरी है। या फ्री मार्केट का असर किसी भी इकोनॉमी पर बड़ा ही क्रूशियल है। किस तरह से ये असर डालता है इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। देखो, फ्री मार्केट सिस्टम से इकोनॉमिक ग्रोथ को फरोग मिलती है जब बिजनेसेस को अपने प्रोडक्ट्स बेचने का मौका मिलता है तो वो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा देते हैं और इससे ओवरऑल एक्टिविटी में इजाफा होता है। ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी में इजाफा होता है। वहीं इससे कहीं ना कहीं कंज्यूमर के वेलफेयर भी जुड़े हैं। फ्री मार्केट में कॉम्पिटिशन की वजह से कंज्यूमर्स को बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिलते हैं। जब बिजनेसेस अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर होने की कोशिश करते हैं तो इससे कंज्यूमर्स को फायदा होता है ना? वहीं पर देखा जाए तो इनकम इनइक्वालिटी भी मुतासिर होती है। जब फ्री मार्केट सिस्टम कभी कभी इनकम इनइक्वालिटी को बढ़ा सकता है, जब कुछ बिजनेसेस या इंडिविजुअल्स ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं तो उनकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जबकि दूसरे लोग इसमें महरूम रह जाते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट को कभी कभी इंटरवेंशन करना ही पड़ता है ताकि मोनोपोली को तोड़ा जाए और सोशल वेलफेयर को इंश्योर किया जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी देती हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस अमेरिका की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स को एक फ्री मार्केट इकोनॉमी के तौर पर देखा जाता है। यहाँ बिजनेसेस और कंज्यूमर्स को अपने इकोनॉमिक डिसीजंस लेने की आजादी होती है। गवर्नमेंट का रोल सिर्फ रेगुलेशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन तक ही आप कह सकते हो रिस्ट्रिक्ट होता है। यहाँ कंपटीशन की वजह से इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को फरोग मिलना शुरू हो जाता है। वहीं एक और बड़ा मार्केट है हांगकांग चाइना का। जी हाँ, हांगकांग को भी एक फ्री मार्केट इकोनॉमी के तौर पे जाना जाता है। यहाँ पर टैक्सेस बहुत कम है और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी मिनिमम है। इस वजह से यहाँ की इकोनॉमी बहुत तेजी से तरक्की कर रही है और लोगों को बेहतर मौके मिल रहे हैं। चाइना तो आप जानते ही हो, दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वहीं यूएस ऑफ कोर्स बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो ये सारी इकोनॉमीज जो हैं वो फ्री मार्केट की वजह से भी हैं। जब आप किसी को फ्री हैंड छोड़ देते, जस्ट इमेजिन आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और आपके बॉस आपके साथ दिन भर हर टाइम टोक रहे, ये ऐसे करो, ये वैसे करो, ये ऐसे नहीं करना, ये वैसे नहीं करना है, तो आपकी प्रोडक्ट

0: प्रोडक्टिविटी जो है या क्रिएटिविटी जो है वो मुतासिर होगी। वहीं ऐसा एनवायरनमेंट आपकी कंपनी आपको दे रही है जहां एक प्रॉपर गाइडलाइंस और रूल्स रेगुलेशंस आपको एक्सप्लेन कर दिए गए, बट बार बार टोका टाकी नहीं चल रही है, तो आपके जो आउटकम्स होंगे वो कमाल के होंगे, है ना। यही बात समझा रही हूँ मैं आपको फ्री मार्केट के जरिए। जी हाँ, एग्रीकल्चर मार्केट्स भी फ्री मार्केट के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करते हैं। फार्मर्स अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचते हैं और प्राइसेस सप्लाई और डिमांड के मुताबिक तय होती हैं। जब किसी सीजन में क्रॉप की सप्लाई ज्यादा होती है तो प्राइसेस गिरती हैं, और जब सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो एग्रीकल्चर मार्केट्स में भी फ्री मार्केट पॉलिसीज जो हैं या फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया जाता है। वहीं पर बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पर एग्रीकल्चर मार्केट्स में इस पॉलिसी को एप्लीकेबल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जो क्रॉप्स हैं या ये कह सकते हैं जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं, जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, वो बर्बाद भी हो जाते हैं, तबाह भी हो जाते हैं। उन्हें फार्मर्स को उनकी अच्छी सही प्राइसेस नहीं मिल पाती। गवर्नमेंट की भी अपनी स्ट्रिक्ट और रिजिड रेगुलेशंस हैं और इसके चलते जो है वो कंज्यूमर्स का भी नुकसान होता है। लास्ट में तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि फ्री मार्केट एक अहम कॉन्सेप्ट है जो किसी भी इकोनॉमी की बुनियाद है। इसका मतलब रिसोर्सेज एलोकेशन, कॉम्पिटिशन और इनोवेशन के लिए है। फ्री मार्केट का असर इकोनॉमिक ग्रोथ, कंज्यूमर वेलफेयर और इनकम इनइक्वालिटी पर भी होता है। इसलिए गवर्नमेंट्स को फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स को समझना और उन्हें अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में शामिल करना चाहिए ही चाहिए, ताकि इकोनॉमी को बेहतर बनाया जा सके। वेल, फ्री मार्केट सिस्टम से लोगों को अपने इंटरेस्ट के मुताबिक ट्रेड करने की आज़ादी मिलती है, जो कि ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी भी है। क्या कहते हैं आप, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? वेल, मैं उम्मीद कर रही हूँ आज के इस इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को मैं भरपूर तरीके से आपको समझा पाई होंगी। वेल, अभी के लिए दोस्तों मैं आपसे इजाजत लूंगी। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए इकोनॉमिक टर्म के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकोनॉमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्ला।
2: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है। इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन से यूज करके ट्रेवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
2: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
3: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।
4: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युतिअर रसूल फकद अता अल्लाह, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामीन, प्रोग्राम रूपरवर सुन्नतों में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से जोड़ने की कोशिश करते हैं और आज हम सुनेंगे कि हिकमत के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या रहनुमाई थी। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल

तस्वीर या एक पर्सनल मिस्टेक को पूरी दुनिया के सामने फैला दिया जाता है। लोग इसे एक्सपोजर कहते हैं, लेकिन दरअसल ये तो जुल्म होता है। कभी कभार ये हक गोई नहीं बल्कि किसी की इज्जत को तबाह करने की ख्वाहिश होती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि अगर किसी में गलती देखो तो मुमकिन हो तो उसे तन्हाई में नसीहत करो, उसकी इस्लाह की कोशिश करो, लेकिन उसके अयूब को दुनिया के सामने उछाल कर अपने दिल को बीमार न करो। सामने कराम, जब इंसान दूसरों के ऐब तलाश करने का आदी हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी इस्लाह भूल जाता है। उसे हर शख्स में कमजोरी नजर आती है मगर अपनी कमजोरी नजर नहीं आती। वो दूसरों के बुरे आमाल का एनालाइज बन जाता है मगर अपने नफ्स का मुहासबा नहीं करता, क्योंकि जो इंसान मुसलसल दूसरों की खामियां देखता है उसके अंदर तकब्बुर पैदा हो सकता है कि मैं उससे बेहतर हूँ, मैं ऐसा नहीं करता, मेरा किरदार ज्यादा पाकीज़ा है। इसलिए दिल की हिफाजत का एक अहम उसूल ये है कि दूसरों की पर्दादरी से पहले अपने बातिन की खबर लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी तरफ पहली उम्मतों की बीमारी सरकती हुई आ रही है, हसद और बुग्ज़। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अल-हालिका करार दिया, यानी मोड़ देने वाली चीज़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहत फरमाई कि ये बाल नहीं मोड़ती बल्कि दीन को मोड़ देती है। यानी इंसान के दिल में अगर मुसलसल हसद, कीना, नफरत और दुश्मनी जमा होती रहे तो ये उसके दीन की रूह भी कमज़ोर कर देती है। समझ कराम, अहले मारिफत की एक नहायत गहरा जुमला है कि अगर तुमने अल्लाह को पा लिया तो क्या खोया, और अगर अल्लाह को खो दिया तो क्या पाया। इंसान के पास माल हो, शोहरत हो, ताकत हो, ताल्लुकात हो, लोग उसकी तारीफ करें, लेकिन दिल अल्लाह से खाली हो तो उसके पास हकीकतन क्या है। और दूसरी तरफ किसी के पास दुनियावी वसाइल कम हो, लोग उसे न जानते हों, लेकिन उसका दिल अल्लाह से जुड़ा हो तो वो महरूम नहीं, वो अपने रब को जानता है, वो दुआ करना जानता है, वो सजदे में सुकून पाता है, वो तन्हाई में भी अकेला नहीं होता। इसीलिए इब्न कय्यिम रहमहुल्लाह से मनकूल एक हिकमत आमेज कलाम का मफहूम है कि हर चीज खो जाए तो उसका कोई ना कोई बदल मिल सकता है, लेकिन अगर अल्लाह से ताल्लुक खो जाए तो उसका कोई बदल नहीं। सामने कराम, सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के अंदर गोया एक मुसलसल स्पिरिचुअल सेंसर मौजूद था। वो अपने दिल की हालत को मॉनिटर करते रहते थे, क्या मेरा ईमान बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या मैं अल्लाह को पहले की तरह याद करता हूँ, क्या दुनिया ने मेरे अंदर ज़्यादा जगह बना ली है। वो ये भी देखते थे कि इबादत के बाद दिल की हालत क्या हुई। यही सेल्फ अवेयरनेस इंसान को बड़ी तबाही से बचाती है। जो शख्स अपने दिल की तब्दीली महसूस ही ना करे उसके लिए इस्लाह मुश्किल हो जाती है। लेकिन जो ये महसूस कर ले कि मेरे अंदर खुशू कम हो रहा है, जिक्र में लज्जत नहीं रही, कुरान सुनकर दिल पहले की तरह नहीं हिलता, वो इलाज की तरफ बढ़ सकता है। बुजुर्गाने दीन में से एक शख्स का वाकया बयान किया जाता है कि जब वो अपने दिल में सख्ती महसूस करते तो घर से निकल कर ऐसी चीज तलाश करते जो उन्हें दोबारा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करते। कभी नेक सोहबत, कभी किसी आलिम की मजलिस, कभी मस्जिद, कभी किसी साहिब दिल की नसीहत। एक रोज़ उन्होंने एक माँ और उसके बच्चे का मंजर देखा। माँ ने किसी गलती पर बच्चे को डांटा और बच्चा नाराज होकर घर से बाहर निकल गया। माँ ने दरवाजा बंद कर दिया। बच्चा चंद कदम आगे गया, फिर दाएं तरफ देखा, वहां कोई नहीं, बाएं तरफ देखा, वहां भी कोई नहीं। वो वापस माँ के दरवाजे पर आया, वहीं बैठ गया और रोने लगा, अम्मी अगर आप मुझे पनाह नहीं देंगी तो मुझे कौन पनाह देगा, अगर आप मुझ पर रहम नहीं करेंगी तो मुझ पर कौन रहम करेगा, अगर आप मुझे कबूल नहीं करेंगी तो मैं कहाँ जाऊँगा। माँ ने यह आवाज़ सुनी, दरवाज़ा खोला, रोते हुए बच्चे को गले लगा लिया और कहा, मैं ही तुम्हें पनाह दूंगी, मैं ही तुम पर रहम करूँगी। ये मंजर देखकर उस बुजुर्ग ने कहा, अब मुझे अपना दिल मिल गया। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि बंदे की असल जगह भी अल्लाह के दरवाजे पर है। जब दिल भटक जाए, गुनाह हो जाए, लोग छोड़ दें, तब बंदा अपने रब के सामने बैठ कर कहे, हे अल्लाह अगर तू मेरे दिल को दुरुस्त न करे तो कौन करेगा, अगर तू मुझे पनाह न दे तो मैं कहाँ जाऊँगा, अगर तू मुझ पर रहम न फरमाए तो मुझ पर कौन रहम करेगा। यही कैफियत बंदे को अल्लाह के करीब ले जाती है। समीन किराम, इंसान गुनाह के बाद कभी ये सोचता है कि मैं अब अल्लाह के सामने कैसे जाऊँ, मैंने बार बार तौबा तोड़ी है, मैं किस मुँह से दुआ करूँ,
इस शैतान

का एक और धोखा है। वो पहले गुनाह करवाता है, फिर गुनाह की शर्मिंदगी को अल्लाह से दूरी में बदल देता है। हालांकि गुनाह के बाद सही रास्ता अल्लाह से भागना नहीं, अल्लाह की तरफ भागना है। बंदे के लिए अल्लाह के दरवाजे के सिवा कोई हकीकी पनाहगाह नहीं। हंजला रजी अल्लाह अन्हु एक दिन परेशान हालत में निकले और कहने लगे, हंजला मुनाफिक हो गया। रास्ते में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु मिले। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? हंजला रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में होते हैं और आप हमें जन्नत और जहन्नम की याद दिलाते हैं तो यूँ महसूस होता है जैसे हम उन्हें अपनी आंखों से देख रहे हों, लेकिन जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से निकलते हैं और अपने अहले याल बच्चों और कारोबार में मशगूल हो जाते हैं तो उस कैफियत का बड़ा हिस्सा भूल जाता है। उन्हें खौफ हुआ कि यह तब्दीली कहीं निफाक तो नहीं, यानी ईमान की कैफियत में मामूली कमी महसूस हुई तो वो परेशान हो गए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम ऐसी कैफियत मैं भी महसूस करता हूँ। फिर दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर फरमाया कि अगर तुम हमेशा इसी कैफियत में रहो जिसमें मेरे पास होते हो तो फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों और रास्तों में तुमसे मुसाफा करने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या हंजला साअ व साअ, यानी ये हंजला एक वक्त ये कैफियत होती है और एक वक्त दूसरी। मतलब यह है कि इंसान ज़िंदगी में मुख्तलिफ जायज़ ज़िम्मेदारियों से गुजरता है। एक वक्त ज़िक्र फ़िक्र का है, एक वक्त अहलो याल की खिदमत का है, एक वक्त रोज़गार का है, एक वक्त आराम का है। इंसान हर लम्हा एक ही बुलंद जज्बाती कैफियत में नहीं रह सकता, इंसान की फितरत है। हमें काम करना है, हलाल रिज़्क कमाना है, अपने बच्चों की तरबियत करनी है, अपने शौहर या बीवी के हुकूक अदा करने हैं, वालिदैन की खिदमत करनी है, माशरे में जिम्मेदार किरदार अदा करना है। ये सब भी इबादत बन सकते हैं बशर्ते कि नीयत दुरुस्त हो। मसला ये कि इन मसरूफियात में अल्लाह को मुकम्मल तौर पर भूल ना जाए। ऐसा ना हो कि काम हमें नमाज से दूर कर दे, कारोबार दिल को हराम की तरफ ले जाए, तफरी कुरान से ताल्लुक तोड़ दे, तो यहाँ बैलेंस खराब हो जाता है। जब इंसान महसूस करे कि ईमान कमज़ोर हो रहा है तो उसे फौरन अपने लिए रूहानी ग़िज़ा तलाश करनी चाहिए। नेक लोगों की सोहबत, इल्म और ज़िक्र की मजलिस, मस्जिद में कुछ वक्त कुरान की तिलावत, तन्हाई की दुआ, सजदा, तहज्जुद की चंद रकातें, सदका, इस्तग़फ़ार और कोई ऐसा अमल जो दिल को दोबारा अल्लाह की तरफ मोड़ दे। जैसे जिस्म को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, दिल को भी ग़िज़ा चाहिए, और दिल की ग़िज़ा है कुरान, ज़िक्र, दुआ, सालेह सोहबत और इबादत। अगर जिस्म कई दिन खाना न खाए तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन दिल कई हफ्ते कुरान के बग़ैर, खुशू के बग़ैर और हकीकी दुआ के बग़ैर गुजरे तो हमें एहसास भी नहीं होता। सामने करम, क्या कभी आपने सोचा है कि नमाज को वक्त पर अदा करना इतना अहम क्यों है? सिर्फ इसलिए नहीं कि यह शरी हुक्म है, अगरचे यही सबसे बड़ी वजह है, मगर इसलिए भी कि नमाज दिन भर हमारे दिल के डायरेक्शन दुरुस्त करती है। फजर हमें दिन के आगाज़ में याद दिलाती है तुम अल्लाह के बंदे हो। जहर काम की मसरूफियत के दरमियान हमें रोक कर कहती है दुनिया तुम्हारा रब नहीं। असर दिन के ढलने पर याद दिलाती है वक्त गुजर रहा है अपने दिल की खबर लो। मगरिब दिन के अख्तिताम पर कहती है एक और दिन ख़त्म हो गया, अब अपने रब की तरफ लौटो। इशारात से पहले दिल को अल्लाह की याद में समेट देती है। ये पूरा नमाज का निज़ाम एक स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर है। अगर हम इसे तोड़ दें और हर नमाज के बारे में कहें अभी वक्त है, एक घंटे बाद पढ़ लेंगे, ये काम ख़त्म हो जाए फिर नमाज पढ़ेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया हमारी प्रायोरिटी बन जाती है। तो नमाज ये दिन में 5 मरतबा दिल का एक रिफ्रेशमेंट है। आप दुनिया में जाते हैं वहाँ गफलत, मुकाबला, ख्वाहिश, गुस्सा, स्ट्रेस सब कुछ है। फिर अजान आपको वापस बुलाती है, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ओ अल्लाह ताला दिन में 5 मरतबा हमें दुनिया के शोर से निकाल कर अपने सामने खड़ा फरमाता है ताकि हमारा दिल मुकम्मल तौर पर दुनिया में खो ना जाए। इंसान जब बार बार नमाज मौखर करता है तो वो अपनी प्रायोरिटीज़ को भी जाहिर कर रहा होता है। लाशौरी तौर पर कहता है ये काम अभी ज़्यादा अहम है, अल्लाह के सामने खड़ा होना बाद में,

0: छोड़ देता है जहाँ गीबत या फहाशी हो। जब इंसान बार बार गलत काम को रिजेक्ट करता है तो उसके दिल में एक तरह की स्पिरिचुअल इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। पहले हराम चीज बहुत अट्रैक्टिव लगती थी, अब दिल उससे अनकम्फर्टेबल होने लगता है। पहले गुनाह के करीब जाना एक्साइटिंग लगता था, अब दिल उसे खतरा समझता है। अब उसे बुराई छोड़ना फ्रीडम महसूस होती है। ये दिल की तरबियत का बुलंद मरहला है। दूसरा दिल वो है जो हर फितने को आसान से कबूल करता है, हराम देखता है, हराम सुनता है, गीबत की मजलिस में बैठता है, नसीहत को इग्नोर करता है और फिर भी कहता है मेरा दिल साफ है। इस तरह के दिल दरअसल साफ नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दिल को उल्टे बर्तन से तशबीह दी। एक कप को उल्टा रख दे, फिर उसमें जितना भी पानी या कॉफी डालें वो अंदर नहीं जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जब दिल मुकम्मल तौर पर उलट जाए तो नसीहत उसमें दाखिल नहीं होती। कुरान पढ़ा जाता है मगर असर नहीं होता, अजान होती है मगर मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि उसने अपने आप को ख्वाहिशात के ताबे कर दिया। हदीस के अल्फाज का मफहूम ऐसा ही है कि ऐसा दिल न नेकी को पहचानता है न बुराई को बुरा समझता है, बल्कि सिर्फ अपने ख्वाहिश का ताबे होता है। सरकरम चले अब आपको मफहूम बताता हूँ एक हिकमत आमेज शेर का, कि अगर दिल मर जाए तो नसीहत उसे फ़ायदा नहीं देती, जैसे बंजर जमीन को बारिश भी फ़ायदा नहीं देती। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिब अल-क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, या अल्लाह तू अपने दीन पर हमारे दिलों को साबित कदम रख। आमीन या रब्बल आलमीन। प्रोग्राम तफ़हीमुल क़ुरान के आज के इस हलके से साउंड डिज़ाइनर शकीब अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मा सलामा।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: नूर अला नूरी यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। रोशनी पर रोशनी, अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है।
4: अपने शरई मसाइल के हल, रोजमर्रा जिंदगी से मुतालिक दीनी रहनुमाई, अहले इल्म के मुदल्लल जवाबात और मुफीद इल्मी गुफ्तगु सुनने के लिए समात कीजिए नूरे इस्लाम। तर्तीबो पेशकश फुरकान शाहिद कासमी, हर जुमा शाम 4 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
5: दोस्तों, गाड़ी की रूफ टॉप पर बैठना या विंडो से बाहर झांकना सिर्फ एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क भी है। जब गाड़ी चल रही होती है तो ऐसे रवैयों से ना सिर्फ आपकी अपनी जान खतरे में होती है, बल्कि दूसरे लोग भी नुकसान उठाते हैं। ऐसे अनसेफ और इलीगल एक्शंस का सामना करते हुए हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं, बल्कि दूसरों को भी चोटों का शिकार बना सकते हैं। ट्रैफिक लॉज का मकसद सिर्फ कानून पर अमल करना नहीं, बल्कि हमारी और हमारे आसपास के लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है। गाड़ी के अंदर रहकर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना और विंडो के अंदर रहना जरूरी है। ये सब प्रिकॉशंस न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे बच्चों और दूसरे सफर करते लोगों के लिए भी जरूरी हैं। ट्रैफिक वायलेशंस का अंजाम सिर्फ फाइंस या लीगल एक्शंस तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि इससे सीरियस इंजरीज और एक्सीडेंट्स का खतरा भी होता है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 83 के तहत ऐसे रवैयों को कानून के तहत सजा मिलती है, जो हमारे लिए एक जरूरी वार्निंग है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की तालीम दें और उन्हें सफाई और हिफाजत के तरीकों का एहसास दिलाएं। आइए हम सब मिलकर ट्रैफिक रूल्स को अपनाकर ना सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर और सेफर इन्वायरमेंट क्रिएट करें। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
6: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो FM 107।

FM 107. Time check. Right guys, time for the time check. और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 6:01.

आज जब सुबह हुई तो मुझे लगा ओ इतनी जल्दी सुबह हो गई क्या. मतलब कभी कभी जो चीज़ हमें जितना इनफ अमाउंट में मिल रही होती है उसे हम सेटिस्फाई नहीं होते. हमें लगता है कि ये तो काफ़ी कम है, अभी तो थोड़ा सा और चाहिए था, है ना. ये हमारी जो थोड़ा और वाली आदत है ये पता नहीं कैसे जाएगी मेरी. एटलीस्ट मैं तो इस बात पे बात ही करूँगी. खैर फिलहाल आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सलाम आदाब. और आज है 28th of July, ट्यूसडे का दिन और बिल्कुल लास्ट के हमारे कुछ 2-3 दिन ये जब ये मंथ एंड होने वाला है. लेकिन हाँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और बिल्कुल कह सकते हैं कि साल के एकदम मिड में आ जाएंगे, हमारे पास जो है हमारी अपनी प्लानिंग्स फॉर द नेक्स्ट ईयर और वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी. लेकिन ये जो महीने होते हैं ना, लाइक जून, जुलाई एंड अगस्त, मुझे लगता है थोड़ा सा हल्के से रिलैक्स करने वाले महीने होते हैं. इतनी हसल वसल नहीं होती, मौसम भी यहाँ पर थोड़ा सा गर्म ज़्यादा रहता है. लेकिन हाँ, हर रोज़ एक नई उम्मीद देता है कि ज़िंदगी जो है वो एक बड़ा प्यारा सा सफ़र है और उस सफ़र में आपको जो है एकदम चैप्टर्स खाली मिल रहे हैं. हर रोज़ एक चैप्टर खाली मिलता है कि आप उठिए, अपने आप अपने पेन से एक अच्छी सी कहानी लिख दीजिए. हो सकता है कि कल का दिन आपका उतना परफेक्ट ना गुजरा हो और आज आपको एक मौका मिल रहा है कि आप अपना परफेक्ट वाला डे गुजार सकते हैं. देखिए हमेशा क्या है कि ज़िंदगी हमेशा हमें मौका दे रही होती है, एक सेकेंड चांस, अ न्यू अपॉर्चुनिटी. लेकिन हम अक्सर कल करेंगे कह के उस चीज़ को टाल देते हैं. बस अपने उस कल वाली आदत को या जितना जो जब मिल रहा है उसको भरपूर तरीके से इंजॉय ना करने की आदत को हमें छोड़ना है. फिलहाल तो मैं आपसे एकदम 1-to-1 कनेक्टेड हूँ कि आप जो है क्या कर रहे हैं, ऑफिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऑफिस जो है पहुंच चुके हैं या फिर घर पर बैठकर आराम से अपने लव्ड वंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ चाय और ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं या फिर आप वर्कआउट करने की प्लानिंग कर रहे हैं. बाय द वे क्या कर रहे हैं वो आप मुझे बताइए 666-2107 पर. और आज के शो में मैं तो बहुत सारी बातें लेकर आती हूँ, मौसम का हालचाल होता है, कुछ ट्रैफिक की भी आज बात करेंगे एंड ऑफकोर्स

गुड न्यूज खतर इस सेगमेंट पे भी आज एक छोटी सी अपडेट आपके साथ शेयर करूंगी। लोकल न्यूज तो हम देते ही हैं आपके साथ, एंड देन ऑफकोर्स टीटीटी जो हमारा टी टेबल टॉक जो होता है सेशन, जहां पर हम और आप मिलके एक टॉपिक

0: आपको याद रखनी है, और वो ये कि खुशी जो है ना वो कोई मंजिल नहीं है, बल्कि हर रोज़ ट्रैवल करने का आपका हमारा तरीका है। तो आज अपना दिल थोड़ा सा हल्का कीजिए, फिक्रें थोड़ी जो हैं वो कम कर लीजिए, और उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आपको खुश और बेहतर बनाती है, एटलीस्ट आपकी मॉर्निंग को खुश और बेहतर बनाती है। हम जो कहते हैं ना कि परफेक्ट डे क्या होगा, परफेक्ट डे मिलता नहीं है, परफेक्ट डे हमें खुद ही बनाना पड़ता है। तो बस इसी अच्छे से पॉजिटिव से नोट के साथ आज के शो का आगाज करते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैंडेटरी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो डिस्कशन होगा हमारा, कुछ और अपडेट्स होंगी और आपका साथ होगा। मैसेजेस आप मुझे ज़रूर कीजिए 666-22-107 पर।
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है। इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

0: आप सबको FM 107 की पूरी टीम की जानिब से सुबह बखैर। अल्लाह आपका दिन खैर और बरकत से भर दे, गमों को खुशी में बदल दे और आपको दीन और दुनिया की कामयाबियां अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: दोस्तों, जरूरतमंदों की मदद करना एक अहम और नोबल काम है, लेकिन आजकल फ्रॉडस्टर्स इसका फायदा उठाकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। ऐसी स्कीम से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। यहाँ कुछ और हिदायत दी गई हैं जो आपको फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज से बचाने में मदद दे सकती हैं। चैरिटेबल वेबसाइट की वेरिफिकेशन करें। जब आप ऑनलाइन चैरिटी देने का सोच रहे हो तो इंश्योर करें कि जिस वेबसाइट पर आप चैरिटी दे रहे हैं वो ऑफिशियल और सिक्योर हो। ऐसी वेबसाइट्स पर https://होने चाहिए और उनकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, ओवर द फोन डोनेशंस। अगर आपको फोन पर चैरिटी देने की दरख्वास्त मिले तो इस पर शक करें। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अक्सर डायरेक्ट कॉल्स नहीं करती। अगर आपको कॉल आती है तो पहले उनका वेरिफिकेशन करें। तीसरा, सोशल मीडिया रिक्वेस्ट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर फ्रॉडस्टर्स अपनी प्रोफाइल बनाकर लोगों से पैसे मांगते हैं। ऐसी रिक्वेस्ट को अवॉइड करें और सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को मदद दें जो पहले से एस्टेब्लिश्ड और ट्रस्टेड हों। चौथा, पर्सनल इंफॉर्मेशन। कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, एड्रेस एक्सेट्रा किसी भी अननोन सोर्स को ना दें। अगर आपको किसी भी चैरिटी की रिक्वेस्ट के दौरान अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने का कहा जाए तो उसे फौरन रिजेक्ट करें। पांचवा, टैक्स रिसीप्ट। जेन्युइन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आपको डोनेशन के बाद टैक्स रिसीप्ट्स भी देती हैं। अगर आपको रिसीप्ट ना मिले तो ये एक वार्निंग सिग्नल हो सकता है कि हो सकता है जो आपने चैरिटी दी वो इल्लीगल या फेक ऑर्गेनाइजेशन के पास गई हो। अगर आपको कभी भी शक हो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल आपको धोखा दे रहा है तो फौरन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें। आप अपनी कंप्लेंट्स हॉटलाइन नंबर 3361-8627 पर कॉल करके या मेथराज ऐप का इस्तेमाल करके भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ये टिप्स आपकी चैरिटी को सेफ और ट्रांसपेरेंट बनाने में मदद देंगी और आपको फ्रॉडस्टर्स के जाल में नहीं आने देंगी। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें।

हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।

0: राइट गाइस, एक बार वापस आप सभी को कहूंगी वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नाजिया आपके साथ, और कुछ प्यारे प्यारे लिसनर्स हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं और उनके बहुत ही अच्छे गुड मॉर्निंग वाले मैसेजेस आ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। हमें गुड मॉर्निंग भेजा है, अ वेरी गुड मॉर्निंग वक्रा से सुनते हुए तौफीक जी ने। आज आपने हमको अपना रियल वाला ब्रेकफास्ट का पिक्चर नहीं भेजी, ऐसा क्यों तौफीक जी? यहाँ पर सलाम कहते हैं हबीब अली खान जी, वालेकुम अस्सलाम, और इसके साथ सलाम टू एवरीवन इन एफएम उर्दू रेडियो एंड नेशनल लेमन डे आज भी है। नेशनल लेमन डे तो आपने 23 को बताया था, मुझे याद पड़ता है। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम और ये रिगार्ड्स हमें, ओ आई एम सो सॉरी, ये पहले का ही है, नीचे सलाम भेजा है उन्होंने। यूसुफ शमीम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, यहाँ पर सलाम भेजते हैं लियाकत जी एंड गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको। इसके साथ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैडम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। और ये मैसेज है मुझे सैम का, और इसके साथ हमें मैसेज किया है वेरी गुड मॉर्निंग जमील जी ने, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मोहम्मद जी हमें सुनते हुए अलखोर से, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। एंड हुसैन जी हमारे साथ जुड़ते हुए सलाम कहते हुए, वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद कर रही हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर आपका और मेरा हाल चाल तो हो गया, तो बढ़ जाते हैं मौसम के हाल चाल की तरफ।
1: मौसम का हाल चाल,
0: देखिए देखा जाए तो मौसम का जो हालचाल है वो ऑल टुगेदर एक जैसा है। मतलब आप कितना भी इनको जो है मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट मौसम जो है वो टस से मस्त नहीं हो रहा। वो कहते हैं ना कि अपने पर अड़ा हुआ है, तो हाँ जो मौसम है वो गर्म ही रहेगा और आज भी ठीक ठाक तरीके से जो है वो गर्मी ही रहने वाली है। ज़्यादातर धूप रहेगी और मैक्सिमम टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 44 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस, वहीं ह्यूमिडिटी रहेगी 68%। और अगर हवा की बात की जाए तो 9 किलोमीटर पर आवर, जबकि किसी भी तरह की मतलब दिन में आफ्टरनून में कोई ख़ास हवा आपको महसूस नहीं होगी। हाँ, इवनिंग्स में ज़रूर जो है थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाएगा। वहीं पर सनराइज़ की बात की जाए तो आज सनराइज़ जो है वो हुआ है 4:59 पर और सनसेट होगा 6:21 पर। इस तरह से देखा जाए तो ऑल टुगेदर हम सबके पास 13 आवर्स हैं और 22 मिनट्स हैं कि हम इस दिन को भरपूर तरीके से इंजॉय करें। लेकिन हाँ, अगर आप बाहर निकल रहे हैं, आफ्टरनून में बाहर निकल रहे हैं, तो भाई अपनी पानी इनटेक का ज़्यादा ख्याल रखिए, डायरेक्ट सनलाइट से थोड़ा सा परहेज़ कीजिए, सनस्क्रीन का आपको इस्तेमाल करना है, फिर सनग्लासेस का इस्तेमाल करना है, कैप्स वगैरह हैं तो वो ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि अपनी सेहत का ख्याल रखना भी ना एक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो मुझे लगता है ज़िंदगी भर मुनाफा देता है। तो बस इस तरह से अपनी सेहत का सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ख्याल रखना आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मौसम की बात तो हमने कर ली और इसी मौसम के साथ अब हम जो हैं आज 28 जुलाई के जो कुछ डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि आज है 28 जुलाई, तो आज बहुत सारे ऐसे दिन हैं नहीं इंटरेस्टिंग से, लेकिन एक दो हैं। आज दुनिया भर में ना वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है और ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी जो ज़मीन है, पानी है, दरख्त है और भी जो रिसोर्सेज हैं उन सब का ख्याल करना हमारी भी जिम्मेदारी है। ठीक है, सो छोटी छोटी आपकी आदतें, जैसे हमने कल भी बात की थी, शायद पानी अगर वेस्ट हो रहा है, कहीं दिख रहा है आपको, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखना, और जो कचरा है वो प्रॉपर बिन्स में ही डालना, और कुछ नहीं तो पेड़ लगाना, या छोटी छोटी चीज़ें जो आप कर सकते हैं, जैसे आप रिसोर्सेज जो हैं वो सेव कर सकते हैं आने वाली जनरेशन के लिए, उनको जो है वो देने के लिए आप जो है अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें और आपको मिलकर करनी है। अच्छा, उसके साथ आज एक और भी दिन है और ये दिन है नेशनल मिल्क चॉकलेट डे। कितना अच्छा दिन है। अच्छा, ये दिन जो है वो चॉकलेट पसंद करने वालों के लिए एक बहुत ही मीठा सा सेलिब्रेशन है। तो कभी कभी ज़िंदगी की जो छोटी छोटी खुशियाँ ना वो बड़ा दिल को सुकून देती हैं। जैसे अभी भी हम बड़े हो गए, लेकिन अगर कभी कोई हमें चॉकलेट देता है तो वो एक अंदर से वो एक्साइटमेंट, एक खुशी तो होती ही होती है, भले इसे आप जाहिर करें ना करें अपने इस चार्म को कि हाँ आज भी मुझे चॉकलेट पसंद है, लेकिन है पसंद लोगों को। तो इस तरह से एक दो दिन और है, बट वो कोई जैसे खास लगे नहीं, तो बस मुझे लगा कि चलो जो दो इंपॉर्टेंट डेज हैं उसके बारे में बात कर लेती हूँ। अलबत्ता यहाँ पर मैं जो है वो ट्रैफिक अपडेट भी आपके साथ शेयर करूँगी, और फिलहाल मैंने जो देखा वो ट्रैफिक बहुत ही सुकून वाला है। सुबह सुबह होता है ना कि अक्सर जो है वो कुछ रोड्स ऐसी हैं जहां पे खास करके बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, लेकिन फिलहाल किसी भी तरह का कोई बड़ा ट्रैफिक अलर्ट या फिर कोई रोड क्लोजर जो है उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। फिर भी अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या किसी भी तरह की कोई मीटिंग में जा रहे हैं, बच्चों के तो स्कूल बंद ही है, तो थोड़ा सा टाइम लेके फिर भी चलिए। और हाँ, हर तरीके से कोशिश कीजिए कि आपको सेफ डिस्टेंस रखना है, स्पीड लिमिट्स का खास ख्याल रखना है, और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है, जो कि हम बड़े नोटिफिकेशंस आते रहते हैं और हम जो है ना इतना एक अजीब सी क्यूरियोसिटी होती है कि किसने क्या मैसेज भेजा है, जबकि हम थोड़ी देर बाद भी देख सकते हैं, लेकिन नहीं, एक होता है हमारे अंदर। अच्छा हाँ, सुबह के जो पीक आवर्स की बात है, जो उसमें कॉर्निश वेस्ट पे सी रिंग रोड और इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाने वाली रोड्स पर थोड़ा सा ट्रैफिक जो है वो बढ़ सकता है, हल्का सा ज़्यादा है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसीलिए अगर आप यहाँ जा रहे हैं, आपको जाना है, तो अपना सफ़र अपने थोड़ा सा जो भी काम है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा वक्त ज़रूर रखिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगी। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे कहना ही कहना है आपसे, वो ये कि देखिए, मंजिल पर जल्दी पहुँचना ज़रूरी नहीं है, मंजिल पर महफूज पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सीट बेल्ट का ख्याल रखना है, आराम से ड्राइविंग करनी है, रेसलेस ड्राइविंग नहीं करनी है, दूसरों का भी ख्याल रखना है। तो चलिए, ये थे कुछ आज की अपडेट्स, और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो आज का जो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है उस पर बात करेंगे। आज का टॉपिक जो है वो वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे लग रहा है कि आप लोग को काफ़ी मज़ा आएगा जब हम और आप मिलकर इस टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। कुछ डिफरेंट भी है एंड देखना चाहूँगी कि किस तरह से आप जो है इस टॉपिक को लेते हैं, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। बट बिफोर दैट, एक छोटा सा ब्रेक, मैं यूं गई और यूं आई।
1: दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है, ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें, ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है, ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन्स के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन्स के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें, ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट RJ महावश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 101।

0: एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीस सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीस, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीस टू हैबिट, हदीस टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
1: दोस्तों, जरूरतमंदों की मदद करना एक अहम और नोबल काम है, लेकिन आजकल फ्रॉडस्टर्स इसका फायदा उठाकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। ऐसी स्कीम से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। यहाँ कुछ और हिदायत दी गई हैं, जो आपको फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज से बचाने में मदद दे सकती हैं। चैरिटेबल वेबसाइट की वेरिफिकेशन करें। जब आप ऑनलाइन चैरिटी देने का सोच रहे हो तो इंश्योर करें कि जिस वेबसाइट पर आप चैरिटी दे रहे हैं वो ऑफिशियल और सिक्योर हो। ऐसी वेबसाइट्स पर https.// होने चाहिए और उनकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, ओवर द फोन डोनेशंस। अगर आपको फोन पर चैरिटी देने की दरख्वास्त मिले तो इस पर शक करें। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अक्सर डायरेक्ट कॉल्स नहीं करती। अगर आपको कॉल आती है तो पहले उनका वेरिफिकेशन करें। तीसरा, सोशल मीडिया रिक्वेस्ट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर फ्रॉडस्टर्स अपनी प्रोफाइल बनाकर लोगों से पैसे मांगते हैं। ऐसी रिक्वेस्ट को अवॉइड करें और सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को मदद दें जो पहले से एस्टेब्लिश्ड और ट्रस्टेड हों। चौथा, पर्सनल इंफॉर्मेशन। कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, एड्रेस एक्सेट्रा किसी भी अननोन सोर्स को ना दें। अगर आपको किसी भी चैरिटी की रिक्वेस्ट के दौरान अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने का कहा जाए तो उसे फौरन रिजेक्ट करें। पांचवा, टैक्स रिसीप्ट। जेन्युइन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आपको डोनेशन के बाद टैक्स रिसीप्ट भी देती हैं। अगर आपको रिसीप्ट ना मिले तो ये एक वार्निंग सिग्नल हो सकता है कि हो सकता है जो आपने चैरिटी दी वो इल्लीगल या फेक ऑर्गेनाइजेशन के पास गई हो। अगर आपको कभी भी शक हो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल आपको धोखा दे रहा है तो फौरन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें। आप अपनी कंप्लेंट्स हॉटलाइन नंबर 3361-8627 पर कॉल करके या मेथराश ऐप का इस्तेमाल करके भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ये टिप्स आपकी चैरिटी को सेफ और ट्रांसपेरेंट बनाने में मदद देंगी और आपको फ्रॉडस्टर्स के जाल में नहीं आने देंगी। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप

0: आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी। आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: राइट गाइस, एक बार वापस आप सबको कहेंगे वेलकम, खुशामदीद। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नाजिया आपके साथ एंड 6:35 हमारे स्टूडियो क्लॉक की घड़ी में हो गए हैं।

0: तो चलिए अब वो टाइम भी आ चुका है कि जब हम आज का जो हमारा टिप जो हमारा TTT यानी टी टेबल टॉक जो सेशन है उसका आगाज करें, यानी आज के हमारे जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो इंटरेस्टिंग है, और पहले मैं थोड़ा सा उसको इस्टेब्लिश करूँगी, मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा आपको उसे एक्सप्लेन भी कर दूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो दुनिया भर में धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं उसको एक तवज्जो हासिल हो रही है, लोग उस पर बात करने लगे हैं, और इस टॉपिक का नाम है UBI यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी समझा दूँ कि UBI यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम होता क्या है। तो आसान बड़े सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी इनकम है जहां गवर्नमेंट हर शहरी को हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट दे, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट है कि हर शहरी को, मतलब गवर्नमेंट हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट दे। फॉर एग्जांपल 500 कतरी रियाल या कोई भी एज सच कोई भी फिक्स अमाउंट। अच्छा, ये अमाउंट जो है वो हर किसी को मिलेगा। हर किसी को मिलने का मतलब ये है कि चाहे वो जॉब कर रहा हो बंदा, चाहे उसका खुद का अपना बिजनेस हो, या फिर वो एक स्टूडेंट हो, या फिर हो सकता है कि वो बेरोज़गार हो। लेकिन ये UBI का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि हर शख्स को हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जो फिक्स हो गया वो मिलता रहे। तो इस कॉन्सेप्ट पे आज हम बात करेंगे। मतलब आप भी सोचिए कि हर महीने आपको एक फिक्स अमाउंट, सैलरी तो नहीं कहना चाहिए, एक फिक्स्ड रकम जो है वो मिल जाए, भले से आप जॉब कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, इससे ज़िंदगी आपकी आसान होगी या फिर आपके अंदर काम करने का जो मोटिवेशन है, मतलब जो पैसे कमाने का मोटिवेशन, जो काम करने का मोटिवेशन है, वो धीरे धीरे कम होगा या ख़त्म होगा? ये आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 666-22-107 पर, या फिर आप मुझे कॉल कीजिए डायरेक्टली 443-443-77। सोचिए थोड़ी देर के लिए कि अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको पैसे मिल रहे हैं, तो और आपके बच्चे को भी मिल रहे हैं लेटर ऑन, तो ये जो थॉट है, ये थॉट कैसा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस थॉट की वजह से जो एक बड़ी जनरेशन है, जो जनरेशन आ रही है, वो लेज़ी हो जाएगी? क्या आपको ऐसा लगता है कि लोगों की अपनी खुद की जो प्रोडक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी? क्या आपको ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर जो आगे बढ़ने की चाह है कि मुझे कुछ करना है, मुझे एक्स्ट्रा पैसे अर्न करने हैं, मुझे अपने आप को और अच्छे से बेहतर तरीके से इस्टेब्लिश करना है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी? क्योंकि अगर हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो रही हैं, या तो मैंने एक छोटा सा अमाउंट बोल दिया आपसे, थोड़ा सा इससे ज़्यादा भी हो सकता है या जो भी फिक्स हो, तो मतलब आपको क्या लगता है? वैसे तो सबको पैसे सुन के बहुत अच्छा लगता है कि एडिशनली हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो पैसे क्या आपके काम करने की जो एबिलिटी है उसे धीरे धीरे, उस कुव्वत को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं? क्या आपको उससे लगता है कि गुर्बत वाकई ख़त्म होगी, या फिर जो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं उन्हें एक्स्ट्रा पैसे भी मिल रहे हैं और मतलब उनका तो और फायदा हो गया, और जो बेचारे नहीं हैं तो वो तो फिर उसी स्टेज पर चल रहे हैं? या व्हाट यू थिंक, इस कॉन्सेप्ट को आप किस तरह से लेते हैं, आप इस पे कितना इत्तेफाक रखते हैं, यही आज आपको मेरे साथ शेयर करना है। टुडेज टॉपिक इज अबाउट यूनिवर्सल बेसिक इनकम। क्या ये वाकई एक अच्छी सोच है या ये सोच उतनी अच्छी नहीं है? आप बिल्कुल ऑनेस्टली मेरे साथ जुड़िए, बताइए मुझे अपनी राय कि आपको क्या लगता है कि ये सोच वाकई एक अच्छी सोच है, इससे लोगों का फ़ायदा होगा, इससे बेहतरी आएगी, या फिर ये सोच जो है वो उतनी पावरफुल नहीं है। या इसमें कुछ और इफ एंड बट या कोई और चीज़ आपको लगता है कि ऐड करना चाहिए तो वो भी मुझे बताइए। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज है, और कहते हैं, इनका नाम तो अहमद है, और अहमद कहते हैं कि अगर किसी को ज़्यादा पैसे मिलने लग जाएं तो इसमें मैडम बुरा क्या है? हाँ वही ना, लेकिन आप ही सोचिए कि अब आप जो है ना, आप कुछ एक्स्ट्रा कमाने की कोशिश कर रहे थे, अब आपने वो सरेंडर कर दिया। पैसे ज़्यादा मिलना या कहीं से एक्स्ट्रा पैसे मिलना तो बहुत अच्छा है, किसको बुरा लगता है, सबको पैसे अच्छे लगते हैं। लेकिन फॉर अ थॉट, क्या आपकी खुद की प्रोडक्टिविटी या आपके बच्चों की प्रोडक्टिविटी उस तरह से रह पाएगी? दिस इज़ माई क्वेश्चन। हो सकता है कि आप कुछ और अच्छा ऐड करें। फिलहाल मेरे साथ यहाँ पर एक कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग।

0: कौन है हमारे साथ?
1: जी उसामाबाद।
0: उसामा कैसे हैं उसामा आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ।
1: आज आपने बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और चुन के टॉपिक निकाला है।
0: चलिए जी, थैंक यू। आई होप आप कुछ
1: जी जी से जितना मैंने तो काफी बोला जा सकता है, काफी डिबेट भी की जा सकती है, बड़े मजे का टॉपिक है, इंटरेस्टिंग। इसमें मेरे ख्याल से जैसे हम डेवलपिंग कंट्रीज स्टेट्स हैं उनके लिए तो ये बेहतर है। इसमें भी दो सिचुएशन आ जाती है मेरे ख्याल से, मेरे नजरिए से ये कि जैसे हमारे पाकिस्तान, इंडिया, साउथ एशिया में इसमें टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा टैलेंट है और स्किल्स की भी कमी नहीं है, बहुत अच्छे बहुत यानी कि स्किल्ड पर्सन भी है। लेकिन अगर एक मिनिमम इतनी अमाउंट भी अगर वो गवर्नमेंट या कोई भी जो जो आप सिस्टम बता रहे हैं जैसे ये कि अगर होना चाहिए यूनिवर्सल
0: बेसिक
1: इनकम, बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारे उसमें बेसिकली क्या है कि बहुत टैलेंटेड लोग हैं लेकिन वो अपने बेसिक चीजों में इतने वो हो जाते हैं बिजी और क्या उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि न्यू इनोवेशन की तरफ जा ही नहीं पाते वो।
0: बिल्कुल,
1: या उनपे एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते, रिसर्च की तरफ नहीं हो पाते या मजीद उसमें वो नहीं कर पाते। अगर ये चीजें हो जाए तो मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव चीज साबित हो सकती है। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन कि हमारे साउथ एशिया में सिस्टम कैसे चलते हैं, ये भी सबको पता है कि ये एक किस्म की इम्पॉसिबल चीज ही है।
0: हाँ, इतनी जल्दी तो नहीं आएगा हमारी कंट्रीज में, क्योंकि एक तो जो पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं, छोटी कंट्रीज़ जो हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूज पॉपुलेशन है, वहाँ तो ये कॉन्सेप्ट चल जाएगा, ये सिस्टम जो है एग्जिस्ट कर सकता है, कर भी रहा है कर जगह। लेकिन हाँ, हमारे जैसे कंट्रीज़ में इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिल्कुल लास्ट ही हो गए।
1: इनकम भी तो ज़्यादा होती है ना उसका, फिर इकोनॉमी भी तो बड़ी होती है ना।
0: हाँ, लेकिन
1: जैसे अभी अगर देखा जाए तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है आपकी इकोनॉमी भी तो इतनी एक्सपेंड करती है ना।
0: हाँ, ये तो है ही, नो डाउट, हम उतना ही रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट की पॉकेट पे आता है, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट को देना है तो गवर्नमेंट तो ये सोचेगी इतनी बड़ी पॉपुलेशन में सबको दो। तो अभी आप देख रहे हैं धीरे धीरे पेंशंस भी खत्म कर दी गई हैं। नहीं, लेट्स रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग दैट, हमें उस पर नहीं बात करेंगे। बट एक जो बड़ा मसला है कि भाई इतनी ह्यूज पॉपुलेशन को केटर करना, वो भी एक चैलेंज बन जाएगा। और मुझे लगता है हाँ, अगर ये सोच के कोई यूबीआई को ले आए तब तो एक बहुत ही अच्छा, मैं कहती हूँ जो डिस्पैरिटी गैप है, जो अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है, जो गरीब बहुत गरीब होता चला जा रहा है, वो खत्म हो जाएगा, एक थोड़ा सा बैलेंस आ जाएगा सोसाइटी में।
1: या
0: बट आई डोंट थिंक सो कि इतनी जल्दी होगा।
1: जी जी, एजुकेशन सिस्टम में आपके मजीद बेहतरी आएगी, आइडियाज नए आइडियाज पे वर्किंग करने का, इम्प्लीमेंट करने का लोगों के पास वो होगा। लेकिन इन शॉर्ट के हम साउथ एशिया या एशिया के लोग अभी तक, स्पेशली ये पाकिस्तान इंडिया हम अगर देखें तो हम अभी तक इन्हीं चीजों से निकले कि अपनी बेसिक नीड्स पूरी करें तो वो इनोवेशन की तरफ या न्यू आइडियाज की तरफ कैसे जाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: मेरे ख्याल से ये चीज एक पॉजिटिव भी हो सकती है। दूसरी तरफ जहरी बात है, हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। कुछ जो क्या उसको कहते हैं, हम अपनी जुबान में हट रहे हैं, भी लोगों में आ जाएगी कि जब हमें आ रहा है तो हमें काम करने की क्या जरूरत है।
0: वही वही, काम करने का जो मोटिवेशन है वो लोगों का कम हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे और देखा गया और लोगों ने कहा जब हमें पैसे आ ही रहे हैं तो क्या जरूरत है। तो जाहिर है हम भी थोड़े से लेट बैक हो जाते हैं, हमें क्या जरूरत है।
1: स्टूडेंट्स पे या जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में न्यूली एंटर हो रहे हैं, मेरे ख्याल से बिगनर, उनके लिए मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव चीज साबित हो सकती है, क्योंकि उनके पास न्यू आइडियाज होते हैं, उनके पास एनर्जी होती है, मोटिवेशन होती है। लेकिन वो मे बी हर कोई, सबके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते,
0: नहीं होते। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए उस्मान जी, ये तो इट्स जस्ट ऑन अ वेरी लाइटर नोट, कि यूबीआई के एक्चुअल हकदार कौन होने चाहिए? क्या एल्डरली पीपल आपको लगते हैं जो बुजुर्ग हैं उनको यूबीआई के सिस्टम का पार्ट बनाना चाहिए,

0: या फिर जो housewives हैं यानी जो घर पे काम कर रही हैं जिनकी कोई earning नहीं है उनको UBI का part बनाना चाहिए या फिर आपको लगता है कि students को रखना चाहिए इस category में?
1: मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ को प्रायोरिटी पे स्टार्ट आप यानी कि एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. यहाँ पे एक चीज ये कि मैं समझता हूँ लेडीज को भी हमारे जैसे उसमें ना प्रोफेशनली हम खास तौर पर इन एरिया की खवातीन जो है इतनी अपने घर के मामले फैमिली सिस्टम में इन्वॉल्व है कि उनके अपने अंदर की जो एक होती है ना यानी कि बहुत बहुत टैलेंटेड है बहुत स्किल्ड पर्सन है. अब इवन के आप खवातीन के बगैर दुनिया की इकोनॉमी चलना भी मुश्किल है. मुश्किल क्या ना मुमकिन हो गई है.
0: कितना बड़ा हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है देखिए.
1: बिल्कुल इतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है कि मैं समझता हूँ कि इस लेडीज को एटलीस्ट सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए.
0: जी,
1: उनके
0: जी,
1: अंदर
0: जी.
1: ये चीज होनी चाहिए क्योंकि देखें जो इनके मर्द हज़रात हैं वो तो लाइफ के किसी भी फेज को वो तो बने इस चीज के लिए ना कि आप अपने आप को वो स्ट्रांग है ये वो अपनी चीजों को मैनेज कर लेते हैं. खवातीन की लाइफ में अगर कोई भी अप एंड डाउन करते हैं तो एटलीस्ट वो इंडिपेंडेंट इतनी होनी चाहिए कि वो किसी और चीज पे या बहुत उस पर वो ना करें. और सबसे बड़ी बात कि फिर वही बात आ जाती है जब आप फैमिली लाइफ में वो होते हैं जब फैमिली लाइफ आपकी स्टार्ट होती है तो मेरे ख्याल से कि जो मैंने एक चीज ये देखी है कि जो वर्किंग वुमेन होती है ना उनके बच्चे एज कम्पेयर टू हाउस वाइफ वो ज्यादा कॉन्फिडेंट और उनके अंदर मे बी कि उन्होंने अपनी मदर को ऐसे देखा होता है कि वो स्ट्रगल करते हुए तो उनके अंदर ये चीज हो जाती है.
0: सही
1: क्या लेके चीज ये पैदा होती है कि जी हाँ हमने भी यानी कि वो करना है क्योंकि हम ये जो 90s के हैं हम लोगों ने जब हम अपने यूनिवर्सिटीज और इन चीजों में थे ना तो हम लोग देखते थे जो हमारी क्लासमेट्स होती थी ना वो इतनी इन चीजों पे वो नहीं होती थी यानी कि एक वो एनवायरमेंट या एक चीज भी ऐसी बनाई जाती थी कि नहीं तुम लड़के हो तो तुम्हारा ज्यादा वो बनता है करना. मैं समझता हूँ नहीं लेडीज की भी उतनी खवातीन को भी उतना ही उसमें अपने आप को करना चाहिए कि क्या इसको बोलते हैं मुझे बताना नहीं आ रहा कि उतना ही फोकस अपने करियर पे करना चाहिए जितना एक उसको एक आदमी को एक लड़कों को लड़के को जरूरत है.
0: नहीं बिल्कुल आज के टाइम में तो खैर इसमें कोई डाउट ही नहीं है लेकिन है कुछ लोग जो इसको भी मानते हैं कि नहीं नहीं द वुमेन सा दे आर यू नो मेन की वो घर को संभाले एंड ऑल दैट बट स्टिल आई बिलीव कि हर वुमेन जो है अपनी गुड कैपेसिटी में अपने सिचुएशंस को देखते हुए अपने आप को किसी भी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें. And that is very important. Not necessarily कि आप बाहर ही आके जॉब कर रहे हो जो भी आप कर सकते हो in your good capacity, just do that. तो ये करना चाहिए.
1: आप तो कितनी सारी ऐसी वो है फील्ड है जिसमें आप इनिशिएटिव आप घर से ले सकती हैं वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं कि आप फैमिली और वर्क लाइफ को बैलेंस लेके भी चल सकती हैं.
0: True, true.
1: स्टार्टिंग में ऑब्वियसली चीजें
0: लेकिन यहाँ बताऊँ मैं आपको एक चीज उस्मान जी यहाँ पर वो यूबीआई वाली चीज जो ना घर में चल रही है जिन लेडीज को उनके हस्बैंड्स पॉकेट मनी देते रहते हैं ठीक है टाइम टू टाइम मतलब एक फिक्स अमाउंट उन्हें मिल रहा है बिना काम किए कुछ भी तो फिर वो उस कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और फिर वो नहीं चाहती काम करना कि मैं क्यों थकूं मैं बाहर क्यों जाऊं क्योंकि हर काम में मेहनत तो है पर कहीं ना कहीं एक वो लेजी वाला लेजी कहो या फिर जो मोटिवेशन है ना काम करना कुछ अर्न करना वो फिर धीरे धीरे कम होने लगता है कि मुझे तो मिल ही रहे हैं पैसे है
1: लेकिन ना? मैंने यहाँ पे भी बहुत ऐसी देखी है जिनके अंदर होता है कि नहीं बेशक मेरे हस्बैंड लेकिन मुझे भी एक फाइनेंशियली लेडीज को इंडिपेंडेंट होना चाहिए एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि बैड टाइम के लिए अपने आप को वो कितनी वो हो के अपने आप को कर सकें कि अपने एटलीस्ट के कभी खुदा ना खासा बुरा टाइम आए तो वो अपने आप को स्टैंड कर सकें अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें बच्चों को सपोर्ट कर सकें.
0: सही बात है बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त थैंक यू सो मच जज़ाकअल्लाह कि आप जुड़े हमारे साथ और आपने बहुत ओपनली अपनी जो राय है वो इस टॉपिक पे हमारे साथ शेयर की. इट वॉज रियली नाइस थैंक यू सो मच हैव अ फैंटास्टिक डे अपना ख्याल रखिए. ऑलराइट अल्लाह हाफिज़ Alright, और आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही दिलचस्प है इसको थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई करूँ और मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपसे पूछूँ लेट्स कीप UBI असाइड और ऐसे ही सोचते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है आपके लिए

0: थोड़ी देर के लिए सोचिए, अज्यूम कीजिए कि आपको कोई काम नहीं करना है, पर हर महीने एक छोटा सा अमाउंट आपके बैंक में आता रहेगा। तो ये आदत जहां आपको कोई काम नहीं करना है और एक सर्टेन अमाउंट आपके बैंक में आ रहा है, जो कि मुझे लगता है उतना सफिशिएंट नहीं है, तो ये सिस्टम या इस तरह का कुछ भी आपके साथ अगर ये माहौल क्रिएट किया जाता है, तो क्या वाकई ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या आपके लिए नुकसानदेह है, ये आज आपको मुझे बताना है। ठीक है, एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं शहजादा जी आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जस्ट ऑन किया अभी, थोड़ा सा लेट हो गया। मैं आया ही गाड़ी पे 6:30 को, फिर रिपोर्टिंग किया ऑफिस में।
0: अच्छा।
1: वहाँ 20 मिनट चले गए और फिर हाँ, तो एक बंदे की लिसनर की बात हो रही थी ना, कुछ क्या अपना मोटिवेशन क्या पता नहीं क्या इसके बारे में बात।
0: आज आज हम बात जो कर रहे हैं शहजादा जी, एक सिचुएशन आपको हमने दी है कि सोचिए अगर हर महीने आपको एक मुकर्रर अमाउंट मिल जाए, ठीक है, और भले से आप जॉब कर रहे हो या ना कर रहे हो, आप क्या इससे आपकी जिंदगी आसान होगी या फिर आपको लगता है इससे काम करने का जो मोटिवेशन है वो कम या फिर खत्म हो सकता है?
1: वो एक्चुअली ये जो अमाउंट आ रहा है आपके पास, चाहे वो एक रिटायरमेंट के बाद पेंशन के हवाले से या और किसी हवाले से, या आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका आपको एवरी मंथ है ना रेंट आ रहा है, घर बैठे बैठे उसका रेंट आ रहा है, तो अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड है ना कि आप वाकई उससे मुतमईन हो या नहीं हो। पहली बात तो यही है कि आप उससे खुश हो या नहीं खुश हो, कि नहीं ये इनफ नहीं है मेरे लिए, तो जाहिर सी बात है कि फिर आप अपना मेमोरी जो दिमाग का बटन दबाओगे कि यार इसको कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि ये जो आ रहा है तो इससे इसका डबल हो जाए या थोड़ा सा और कुछ सा है ना, तो फिर अगर आपके पास स्किल है, एजुकेशन है या और कोई बिजनेस स्किल है, तो आपको जो एक पेंशन के तौर पे या एक रेंट के तौर पर एक अमाउंट आ रहा है तो आप उसको सेव करके ना दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
0: अच्छा, इसमें शहजादा जी एक एंगल जो मैं आपको समझाना चाहूंगी वो ये भी है कि ये जो मुकर्रर अमाउंट है, जो फिक्स्ड अमाउंट आपको मिल रहा है, आपके बैंक में आ रहा है, ये अमीरों के अकाउंट में भी आ रहा है और बेचारे जो गरीब हैं, जो अंडर प्रिविलेज, उनको भी आ रहा है।
1: जी जी।
0: तो इससे क्या लगता है, पावर्टी खत्म होगी, गुर्बत खत्म होगी? क्योंकि अभी तो एक है कि गरीबी का गरीबी भत्ता और वो सारी चीजें जो स्कीम्स गवर्नमेंट की हैं, खास करके जो बेचारे अंडर प्रिविलेज हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं, उनके लिए होता है। अभी तो ये सबके लिए हो गया, अब जो वेल ऑफ है उसको भी मिल रहा है, जो वेल ऑफ नहीं है उसको भी मिलना है उतना ही, तो इससे क्या और गैप बढ़ेगा या कम होगा, आपको क्या लगता है, क्या ये सही होगा?
1: हाँ, जरूरतें बढ़ेगी और जो आपकी जो जरूरत है ना वो बढ़ेगी, वो थोड़ी ना कब दिन पर दिन हर एक चीज नहीं होती जाती है, हर एक यानी महंगाई बोलो, हर जो चीज बोलो, हर चीज तो होती जाती है ना, वो तो आपका गैप बढ़ेगा वो। अब तो इसके लिए मैंने बोला ना आपको, ये आप उससे कितने मुतमईन, कितने खुश है, क्या आप क्या कर सकते हो अपने उसके लिए, आपके अपने क्या अंदर एक एक्टिविटी लेके आ सकते हो, या ताकि इसको ये जो है ना, ये जो खाना पूरी जो खाली है इसको जो या बढ़ाया जाए या बंद किया जाए, इसको और आगे लेके जाए, और यानी एक मतलब एक अच्छी मतलब सोच, एक फ्यूचर के हवाले से भी और फैमिलीज के हवाले से भी, और आपकी जो एक प्रॉपर्टी उसके दो हो जाए, तीन हो जाए, दस हो जाए, उसको स्टेप टू स्टेप आप आपके बढ़ते ही जाए ना, बढ़ने का ही आपके केस में जज्बा और एनर्जी, उससे क्या होगा आपकी जो गुर्बत है ये जो है ना वो तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, फिर आप किसके काम है, आपके पास इतना कैपेसिटी हो जाएगी कि आप किसके लिए कुछ मतलब कर गए, और आप और कुछ अपनी फ्यूचर अपनी फैमिली के लिए जो आपको मिल रहा था पेंशन उसमें कहीं डबल उसके लिए आप जब गए दुनिया से तो उसके लिए सब छोड़ के गए ताकि उसको पीछे उसको कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ ना हो, तो बेहतर से बेहतर यही है कि आप अपना जो बैठे बैठे अमाउंट आ रहा है तो आप उसको डेवलप करें, यहाँ तक है, और डेवलप करें और मेहनत

0: करे ना उस पर, ये नहीं किया। और कई ऐसे है भी, अब उसके एक एक एक मुद्दा ये भी आ जाता है कि आपकी एज लिमिट, आपकी एज एक उम्र हो चुकी है ना, और आप बैठे हुए हो और घर पे एक ही, और आपके जो एक बेटी थी, जैसे अभी मेरी खाला है ना, उनकी एक बेटी, उन्होंने शादी कर दी और चले गए,
1: अच्छा।
0: सऊदी अरब में रहती है फैमिली का, मेरी खाला अकेली रहती है, खालू भी गुजर चुके हैं कोरोना में, अब वो बड़ी भी अकेली रहती, लेकिन उनका इतना बड़ा घर है कि उनको साइड से दो कमरे निकले उसका रेंट आता है उनको, तो वो बड़ी, हाँ वो बड़ी भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह है ना कि मेरे मतलब शोहर ने इतना छोड़ के गया, तो मुझे इसका मतलब ये आ रहा है, तो वो तो चाहते हुए भी मतलब ये बड़े अमाउंट है तो कुछ नहीं कर सकता। अप टू योर एज, आपकी एज पेपर भी हाँ ये रखता है ना
1: शहजादा जी, जो सबसे बड़ी दलील निकल के आती है ना, जिसके बाद गवर्नमेंट कहती है कि हम यूबीआई को जो है वो नहीं लाना चाहते, वो ये है कि अगर बिना काम किए लोगों को पैसे मिलने लगे ना, तो लोग काम करने में दिलचस्पी ही नहीं लेंगे, तो किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी जो रन होती है, जहाँ लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, वो कैसे चलेगी।
0: जी बिल्कुल, ये सऊदी अरब में भी ना, अच्छा आप बात करें,
1: जी जी बताइए, बोल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं जी बताइए, आप बताइए।
0: तो सऊदी अरब में जो फैसल के टाइम पर है ना, ऐसी था अब्दुल अजीज फैसल के टाइम पे, जो पुरानी हिस्ट्री ना बताते थे कि हर फैमिलीज को है ना एक मतलब एक अमाउंट मिला करता था हर एक तीन तीन महीने पे है ना, तो जो बैठे रहते मतलब कोई अभी कोई काम नहीं करता था, उनको तो मालूम नहीं था तीन महीने हमको तो आ रहे हैं पैसे और क्या करने की काम जरूरत करें, तो उससे क्या हो गया, जो फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, नए नए मिनिस्टर नए नए लोग आते गए अपना हुकूमत में, तो उन्होंने फिर ये सब है ना निकाला कि नहीं ये काम इनको करना चाहिए, और फिर ये जब जावे तो इनके पास कोई स्किल नहीं, कुछ नहीं इनके पास, जावे क्या मेरे जॉब चाहिए तो कोई भी नहीं, कोई कंपनियां नहीं रखे, तो एक गवर्नमेंट्स ने ना, इसको बोलते गवर्नमेंट, देखो एक्सीलेंट गवर्नमेंट इसको बोलते हैं, उन्होंने क्या किया मालूम, एक कानूनी बना दिया, अगर कोई एक छोटा सा सुपरमार्केट भी खोलता है ना, तो हमारे ना 30% आपको लेने पड़ेंगे उस टाइम पे, हाँ 30% भले उसको अगर कुछ स्केल आती हो या ना आती है, और गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से उसकी सैलरी इतनी फिक्स हो जाएगी, इतनी सैलरी देना नहीं है, एक गवर्नमेंट फैसिलिटी और गवर्नमेंट लॉ है, ठीक है ना। और जो बिजनेसमैन है जिसकी कंपनियां से या मार्केट से, तो जाहिर सी बात है उसको रखना है, उसको ट्रेन करना है, क्योंकि उसको सैलरी दे रहा है वो, तो ये एक्सीलेंट गवर्नमेंट होती है। लेकिन आज गवर्नमेंट ने क्या किया है सऊदी अरब की, कि जो भी कंपनियां जो भी मार्केट जो भी कुछ हो नया बिजनेस हो, तो हमारे जो 50% रहेंगे।
1: अच्छा शहजादा जी, एक चीज मैं आपको यहाँ पे रोक के, एक बस बहुत ही क्विक सवाल है मेरा आपसे, बस बहुत जल्दी मुझे बताइए, क्या ये जो कॉन्सेप्ट है कि हर किसी को पैसे मिलने चाहिए, फिक्स अमाउंट उनके अकाउंट में आना चाहिए, ये ठीक है, या आपको लगता है कि सिर्फ जरूरतमंद अफराद को ही ये अमाउंट जाना चाहिए वो ठीक है? इन दोनों कॉन्सेप्ट में अगर आपको एक चूज करना है, किसके साथ आप जाएंगे, सबको मिलना चाहिए बराबर, या फिर जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें मिलना चाहिए?
0: इसमें तो पहला हक तो जरूरतमंद का ही है जो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि है ना सबको इक्वल नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हर एक की स्किल हर एक की जॉब के ऊपर भी होता है ना, कोई गवर्नमेंट जॉब है कोई प्राइवेट जॉब है,
1: नहीं, नहीं, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से मान लीजिए, गवर्नमेंट की एक सिस्टम बन जाता है, वो सिस्टम के थ्रू अब सबको जा रहा है पैसा, सबको मिलेगा, तो क्या सबको मिले ये ठीक है आपको लगता है? उससे आपको नहीं लगता कि जो लोग हैं वो बड़े सुस्त हो जाएंगे, उनका काम करने का जो मोटिवेशन है वो लो हो जाएगा, या आपको लगता है कि जो फिक्स अमाउंट है जो पैसा है सिस्टम के थ्रू जो आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंद लोगों तक ही पहुँचना चाहिए?
0: जी लेकिन अमाउंट तो है ना मिलना चाहिए रिटायरमेंट के बाद, है ना जो भी उनका चेक गिरा है ना,
1: वो तो मिलते ही है, वो तो नहीं, वो तो शहजादा जी है, ये तो रिटायरमेंट से पहले की बात हुई है।
0: हाँ तो अभी ये गवर्नमेंट ला है जो पुराने सदियों से चला आ रहा है ना, वो लेजी हो जाएंगे अगर उनको पैसा मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे,
1: यही पूछना था मुझे आपसे, लेजी हो जाएंगे,
0: गौर करती है उनका कॉन्सेंट्रेट रहता है तो भाई ये तो ऐसे तो नहीं जाएगी, लेकिन कोई भी बंदा पेंशन और जो रेंट महीने का जो भी एक अमाउंट उसके पास फिक्स आ रहा है ना उसमें मुतमइन कभी नहीं होता, वो कुछ ना कुछ करता भी है, वो अपना हाथ पैर मार के कुछ ना कुछ है ना आगे बढ़ने के लिए, हर एक आज की जो जनरेशन जो वक्त चल रहा है, तो मैं तो कहता हूँ 99% लोग ऐसे है जिनको अगर लाखों रुपए की रेंट आता है ना, तो उनके भी पर्सनल बाइक

0: में एक फिनी चार्टर बिजनेसमैन में इन्वेस्टमेंट है, हर जगह शेयरिंग, हर जगह मार्केट में कुछ शेयर है।
1: ये भी आपने एक अच्छा पॉइंट कहा कि अगर एक्स्ट्रा पैसे आते हैं तो लोग जो है उसे इन्वेस्ट कर देते हैं किसी तरह का, कोई और बिजनेस शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल, जरूरतमंद है, जरूरतमंद को तो मिलना चाहिए, लेकिन जरूरतमंद को भी इनफ नहीं है, और जिसके पास है, जिसको मिल रहा है उसके पास इनफ भी, इनफ का तो सवाल ही नहीं होता, वो और इनफ चाहिए, और इनफ चाहिए, तो कोई मुतमइन नहीं है, कोई सेटिस्फाई नहीं है।
1: जहाँ तक पैसे की बात है कोई खुश नहीं है, सबको लग रहा है हमारे पास बहुत कम है, ये बात तो सच है आपने। बिल्कुल, चलिए, थैंक यू सो मच जज़ाकअल्लाह शहजादा जी, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू फॉर योर कॉल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों आज का हमारा सवाल इस UBI यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इस कॉन्सेप्ट पर हम बात कर रहे हैं। इसमें अब ऐसे हम आपसे पूछते हैं कि जो लोग अच्छी इनकम कमा रहे हैं उन्हें भी एक फिक्स पैसे मिल रहे हैं, वहीं वो लोग हैं जिनकी बेचारों की सैलरी बिल्कुल अच्छी नहीं है उन्हें भी एक अमाउंट मिल रहा है, तो क्या इससे गुर्बत कम होगी कि गुर्बत और बढ़ जाएगी? What do you think? आपको क्या लगता है? ये एंगल भी है, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। 6622107 पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप मुझे कॉल कीजिए 4434377 पर। यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा मैंडेटरी ब्रेक ले रही हूँ, वापस आऊंगी तो इसी टॉपिक पर फर्दर डिस्कशन हमारा जारी रहेगा।

FM 107. Time check. वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स. मैं हूं नाजिया आपके साथ और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 7:03.

0: जी एक बार वापस आप सबको कहेंगे वेलकम खुशामदीद। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त यहाँ जुड़ चुके हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रईस जी कैसे हैं
1: आज? आज बड़े मतलब टाइम पास आपका टॉपिक है, इसमें अगर चाहो तो बस थोड़ा सा जोक सपाट भी कर सकते हो और इसमें पॉइंट की बात भी रख सकते हो। सारी
0: नहीं, इसमें आप अच्छे से पॉइंट रखिए, अपनी अच्छी राय रखिए। मतलब मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, यूबीआई को तो एक साइड में रख देते हैं।
1: जब यूनियन बैंक

0: कमा रहा है, तो घर के लोग इतने वो बन के मस्त खा के मौला बन के घूम रहे हैं ना कि उनको कोई परवाह नहीं यार, छोड़ो काहे को मतलब ये करके बस अपना पढ़ाई थोड़ा मोड़ा मतलब जोर जबरदस्ती से कर रहे हैं, लेकिन वो मजा नहीं है अभी लोगों के अंदर बैठ के खाने का, खासकर अब उनके जो हम लोग के बच्चे भी हैं, वो जो हम लोगों ने मशक्कत देखी है अपनी परेशानी देख के और हमने अपने आप को मतलब ये किया कि भाई आगे हमारे फ्यूचर हमारा क्या होगा, अगर हम इसी तरीके से रहे तो हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, मतलब हमारे फिर आने वाली नस्ल भी हमें परेशान मतलब परेशानी उठाएगी, तो ये सोच के हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा ये किया, कोई स्किल सीखा, कोई ये करके कि चलो भाई कुछ डेवलप करके कि चलो ये एक चीज में नहीं हो रहा तो दूसरे चीज को हम ट्राई करके उसमें कोशिश किए, लेकिन आज की जो जनरेशन है ये इसमें इतना ज्यादा नहीं है, और खासकर जो आपने कहा वुमेन के ऊपर, वो लोगों को भी मतलब नहीं करने का मतलब उतर, वो भी उनको बोल रहे हैं कि भाई सारे घरों के लोग कर रहे हैं, हमारा क्या, हमारे थोड़ी जिम्मेदारी है, मर्दों की जिम्मेदारी है, ये भी चीजों को लोगों के अंदर ये मिस अंडरस्टैंडिंग आ चुका है। हाँ, इस्लाम ने एक दायरा रखा, बाउंड्री रखा, उस बाउंड्री को ना बिना लागे वुमेन को भी दिया गया, क्योंकि हमारे उम्महातुल मोमिनीन में से खदीजतुल कुबरा वो खुद भी सबसे बड़े बड़े अच्छे बिजनेस के उस पर उनका मतलब ये था, तो हमें उससे सबक लेना चाहिए कि एक जो इस्लाम ने एक दायरा रखा है, ये नहीं, मना नहीं किया कहीं पे इस्लाम ने वुमेन को कोई, लेकिन उसके जो उस दायरे में रह के उस बाउंड्री को नहीं लागना है। अब वो समझ सकते हैं, जो इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले वुमेन हैं वो समझ सकती हैं, और वो जो उनके घर के वो हैं वो भी समझ सकते हैं कि उनको भी उस दायरे में रह के अगर वो करना कुछ चाह रहे तो उनको मतलब सपोर्ट करें और उनको करने दें। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं बस एक पे डिपेंड हो के चलो यार अपने को मिल रहा है, बस 5 किलो राशन मिल रहा है, खा रहे हैं और क्या जरूरत है ये करने का। इसी पे सबसे ज्यादा ये जो गवर्नमेंट ने भी कुछ ये किया हुआ है लोगों को, ये भी मेरे ख्याल से मैं इसके खिलाफ हूँ भाई, लोग
1: नहीं, अगर जैसे जरूरतमंद है, माजूर है, उन्हें तो मिलना चाहिए। अब बेचारे
0: उसी पे आ रहा था मैं
1: जी,
0: उसी पे आ रहा था कि भाई एशिया में मतलब बहुत ज्यादा वो बेचारे जो बहुत परेशान हाल है, उनको बिल्कुल हक है, 5 से और भी ज्यादा उनको मिलना चाहिए, और भी हक मिलना चाहिए, खाली 5 किलो से मतलब ये नहीं मसला बनता, उससे नहीं हल होता उनका, लेकिन जिनके पास कैपेसिटी है, उनके पास इस्तेमाल है, उनको उनको आगे बढ़ के उनका हक नहीं खाना चाहिए, बल्कि उनको छोड़ना चाहिए कि भाई उनको दे दिया जाए हमारी जगह पे, और वो बल्कि 5 किलो से खा और 5 और बाकी जो कुछ बचेंगे उससे अपने अपनी जरूरियात, खाली खाने से नहीं है मतलब उनको दवा कपड़ा और सारी चीजों को मतलब उनको ये प्रोवाइड किया जाए। तो इस चीज पे गवर्नमेंट मतलब कोई भी हो, हाँ कहीं की भी हो, तो इसके ऊपर उनको फोकस करना चाहिए कि जो जिसके पास इस्तेमाल है उनको ना देके, बल्कि जो गैर इस्तेमाल रखने वाले हैं उनको उनका मदद किया जाए और उनको उसमें मतलब ये करके आगे करके उनका मदद करके और उनके लिए कुछ जरिया बनाया जाए उनके कमाई का। अब आप देख ले, खाली पॉपुलेशन के ऊपर आप थोड़ा सा बात किया था, आप चाइना के अंदर देख ले कितना पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ पे एक सिस्टमेटिक मतलब ये चल रहा है, तो वहाँ पे कोई अपने मतलब उसने एक बाउंड्री रखा हुआ, उस बाउंड्री से नहीं तो इसके लिए देखो पूरी दुनिया पे उसने मतलब 70% कब्जा करके रखा हुआ है।
1: उनकी मैन पावर है, उसको वो एक बहुत बड़ा एसेट समझते हैं, कितने लोग हैं, उनकी मैन पावर है, उनके पास लोगों की ताकत है, उसका सही यूटिलाइजेशन भी हो रहा है, एंड दैट्स हाउ दे आर जनरेटिंग मनी। तो वो तो है ही,
0: वो खुद करप्टेड रहे, वो खुद करप्टेड रहे और खुद मतलब उनके अंदर मतलब ये रहे कि यार चलो आज अपने हैं, कल पता नहीं क्या होगा, तो हम अपनी 10 नस्लों के लिए अपना ये करके रखे, तो फिर वो उस मुल्क के मतलब आवाम कभी कभी कामयाब नहीं हो सकती है, क्योंकि जो भी आते हैं बस यही सोचते हैं कि हम तो चंद दिनों के लिए हैं, पता नहीं किस दिन हमारी मतलब कुर्सी की टांग खींच ली जाए और फिर हम कुछ ऐसा कर लें ताकि हमारे आने वाली नस्लें। तो इस पे आदमी को खुद भी थोड़ा सा फैसला लेना चाहिए कि जो जिस लायक है मुल्क की, अगर आप कोई भी डेवलप कर रहे हो तो अपने आने वाले नस्लों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने ये सोच बना के अगर लोग रखें तो फिर वो देश की भी मतलब ये होगी और आने वाले उसकी जनरेशन और उसका ये भी तरक्की के उस पर रहेगा। आप देखें एक छोटा सा बिजनेसमैन भी है अगर हम लोग के करीब का, हम लोग फार्मर हैं, इतना कुछ करके भी पास इतना नहीं, लेकिन एक छोटे जो उनके बच्चों को देखें, मैं देख रहा हूँ मार्केट में उनके बच्चों को, उनका माइंड सेट उसी हिसाब से कर दिया गया है कि वो कहीं से भी आते हैं फिर अपने दुकान में बैठ के वो अपना टाइम मतलब ये कर स्पेंड कर रहे हैं वहाँ पे, और ये करके वो सीख भी रहे हैं बात करने का कस्टमर से और ये करने का, तो उस हिसाब से उनकी जनरेशन

0: करने वाले भी वो फट से उन, अगर वो उनका बुजुर्ग और वो लोग उसको छोड़ते हैं तो फिर फट से उनके जो बच्चे हैं उस पे ये हो जाते हैं बैठ के और अपना कामयाबी मतलब ये करते हैं। तो हमें इतना ज्यादा मतलब ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल कि बस हम अपने आप को ये करके और अपने बाल बच्चों के लिए अपने फ्यूचर के लिए दूसरे पे ये हो के कि मतलब हाँ मिल रहा है हमें नहीं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए और अपने आने वाले उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए कि अगर हमारी यही आदत रहेगी तो फिर हमारे बच्चे और हमारे जो नस्लें हैं वो भी उसी उसमें लखपत होगे और फिर उनको बस वही है कि यार मिल रहा है जितना ये करके जी खा रहे हैं और इसी पे नहीं, इसी पे खाली ये नहीं इकतफा करना चाहिए। हो सकता है दिन बजे मान लो जमीन भी है हमारे पास,
1: कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हम जो है डिपेंडेंट होते चले जाएंगे, गुलामी की तरफ आते जा रहे हैं, कमजोर होते जाएंगे, हमारी स्किल्स को हम कम करते चले जाएंगे, क्यों हमारी अपनी कैपेसिटी रहेगी, हम डिपेंडेंट हैं कि हमें मिल गया उससे हमने खा लिया चल गया। अब हमारी ना ये चाहत भी नहीं है, वो तो एक फिक्स अमाउंट है, फिक्स ही रहेगा मतलब कुछ भी छोटा सा अमाउंट, अब उसमें हमारा गुजारा हो रहा है तो हम अपने आप को बेहतर करने की भी नहीं सोचेंगे क्योंकि हम उस कंफर्ट जोन में आ गए कि भाई फ्री में मिल रहा है चलो चल रहा है ये चलो। उन लोगों के साथ तो ठीक है जो बुजुर्ग अफराद हैं, लेकिन वो जो बच्चे हैं उनको भी मिल जाए और वो भी उसी सोच का शिकार हो जाए तो कैसे किसी भी दुनिया की इकोनॉमी रन होगी या फिर कैसे चलेगा।
0: हमारे लोगों के अंदर खासकर मतलब ये हम लोग के एरिया के इलाके में जो बरसगीर में सबसे बड़ा ऐब यह है कि घर का एक फर्द कमा रहा है तो सारे लोगों को बैठ के सोच रहे हैं कि बस, और वो बेचारा अपना मेहनत करके कमा रहा है और उसमें भी पूरा वो सोचते हैं कि वो मतलब हम 90 खाए वो 10 खाए, वो उसी पे उनको मतलब ये इतने मतलब उनका ये, और उसके ऊपर इल्जाम भी लगाते हैं इतने तो हमारे साथ ज्यादती किया है। तो ये आप समझ सकती हैं इतना ज्यादा, ये बहुत बड़ा जुल्म है और इसको जब तक लोगों का ये माइंड सेट जब तक नहीं बदलेंगे, और इस्लाम ने हमारे ये नहीं कहा कि जो औरत कमा रही है उसका पूरा हक है, जो मर्द कमा रहा है ये उसका पूरा है, मतलब मर्द के ऊपर इतनी जिम्मेदारी थी उसके बाल बच्चे उसकी वाइफ उनके उनकी जिम्मेदारी उसके ऊपर दी गई, ना कि पूरे खानदान और पूरे उसको पूरे लोगों को उसी में बांध के और जिम्मेदार बना के। ये नहीं कह रहे कि ज्वाइंट फैमिली उतने हद तक सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी को ये करके रहना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसका एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री से हम लोग को अक्सरियत क्योंकि बस आम जो लोग हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा आप समझ सकती हैं, उनमें रह के वो चीजें को सारी चीजें हमारे हम लोगों ने अपने ऊपर अप्लाई की है जिस तरीके से हमारे रहनुमाई इस्लाम ने किया है, अगर उसके उसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम इसको ये करें तो सबको अपना हक भी मिल जाएगा और सारे लोग सेटिस्फाई और खुश भी रहेंगे। तो इस चीजों को मतलब हमको इतना ज्यादा डिपेंड नहीं होके रहना चाहिए कि बस हाँ मिल रहा है तो बस हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा कि उनके पास कितनी कितनी जमीन है, कितना कितना है, और उनकी आने वाली नस्ल पूरा बेच खा के और वो बेचारे इस तरीके से आ गए कि मतलब क्योंकि उनको बैठ के खाने की आदत पड़ी थी।
1: यस, ये
0: तो वो आगे नहीं सोचे, आगे के लिए अपने फ्यूचर के लिए नहीं सोचे। तो ये चीजें हमारे अंदर से निकाल के फेंकना चाहिए हमें जी, अपने बच्चों के लिए अपने फ्यूचर के लिए, हो सकता है आने वाले और नस्लों के लिए मत कुछ ऐसा करके जाएं कि ताकि वो लोग भी एक जरिया जरिया बनते बनते बनते बनते ऊपर की तरफ जाएं, ना कि वो उनको नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं। हम पहाड़ों से धक्का दे रहे हैं कि हम बच्चों को बस मिलते हैं, तुमको करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो हूँ ना, मैं दे रहा हूँ ना, ये चीजें हम
1: बिल्कुल
0: बहुत ज्यादा मतलब ये कर रहे हैं, हमको इसके ऊपर ख्याल करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल मैं आपकी बात के साथ इत्तेफाक रखती हूँ। यही सोच जो है जो मुझे लगता है, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे मिलना सबको अच्छा लगता है, मिलना भी चाहिए, लेकिन कहीं वो हमें निकम्मा ना बना दे, कहीं हमारी जनरेशन एकदम काहिल ना हो जाए, सुस्त ना पड़ जाए, ये बहुत जरूरी।
0: मैंने बहुत कमाया अपने लाइफ में नाजिया, मैंने बहुत परेशानी भी देखा फाइनेंशियली, हम लोग बहुत मतलब है जमीन पर उसके, लेकिन उससे नहीं पूरा होता है, जमीन किसान के उससे इस तरीके से महंगाई और मजदूर रख के खेती करवाते हैं, नहीं पूरा होता है जमीन, जिस तरीके से दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है और सामान और जिस तरीके से ये खाद, और आप खुद सोच रही हैं कि मतलब किस तरीके से अभी हालात बनते जा रहा है, तो इतना ज्यादा ये हो रहा है। अगर हम बाहर से ऊपर का मतलब ये ना करें तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब मुसीबत का, क्योंकि इतना ज्यादा जरूरत बन गया है आजकल के पहले के हिसाब से और आज के हिसाब में, जमीन आसमान का फर्क हो गया, क्योंकि हम लोगों ने बहुत नीचे से देखा हुआ है, और आज के हालात में सोचो कि उतना जिस तरीके जिस पैसे को सबसे अमीर माना जाता था, आज वो अपने पॉकेट में लेके घूम रहे हैं आम लोग, और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें इसके, और दिन ब दिन हम खुद सोचना चाहिए कि आने वाले जनरेशन में दिन ब दिन हालात बदलते जा रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे आने वाले वो परेशान ना हो, कुछ ऐसा कोई जरिया बना के दे दो कि उनको

0: उनके लिए आसानी का ये बने,
1: आसानी हो जाए
0: ताकि मतलब ये बन के बैठे रहे, निकम में बन के बैठे रहे।
1: हाँ, मुझे लगता है यूबीआई से बहुत ज्यादा अच्छा है जो खास किसी वीकर सेक्शन के लिए जो फंड्स दिए जाते हैं वो गवर्नमेंट की स्कीम या फिर पेंशंस का जो है प्रोविजंस, वो सारी चीजें इज क्वाइट गुड। लेकिन हाँ, यूबीआई का एकदम से आ जाना या ये, हालांकि हम सब के लिए फायदेमंद होगा लेकिन नुकसानदेह भी होगा क्योंकि गवर्नमेंट भी टैक्स बढ़ाएगी, पैसे तो आपसे ही लेगी।
0: हाँ, जिस पॉइंट पे मैं बात कर रहा था, लेकिन मैं ये नहीं मतलब कि मैं अपने ऊपर की यार इतना हो गया तो अब तो हम आके अपने रूम पे जिस तरीके से हमारे जो रोज का मतलब ये था उसमें कोई खास मैंने तब्दील नहीं किया कि अपने जिस तरीके से हमेशा चल रहा था उसी पे मैं जिया। ये नहीं कि बहुत ज्यादा यार चलो अब तो बस ये इतना हो गया, इतना कमा लिया तो अब चलो कुछ दिन मजे कर लो, ये बेवकूफी है। फिर वो आदत बन जाती है,
1: आदत बन जाती है। एग्जैक्टली,
0: हाँ, फजूल खर्च करने का, फजूल खर्च करने के लिए अल्लाह ने हमें कई जगह पे रोका है कि फजूल खर्च करने वाला शैतान का भाई तक कहा है कुरान में। हाँ, तो ये चीजें हमें मतलब इस पे ये करना चाहिए, अपमाना रवि अख्तियार करे बंदा अपने उस पे, तो अल्लाह ताला उसको थोड़े मुश्किल भी आएंगे तो उसके अंदर सब्र आएगा, और जो थोड़ा पैसा ज्यादा आया तो भी उसके अंदर मतलब ये उसके अंदर गुरूर नहीं आएगा, वो भी सोचेगा कि यार आज है थोड़ा सा इस तरीके से करें कि ताकि दूसरों का मदद से लेके मतलब सारी चीजें उसके ऊपर ये हो जाएगी, उसके अंदर अपने अंदर वो बना के रखेगा कुवत और ताकत की। हाँ हाँ, हम ओवर ना हो, ओवर नहीं होना चाहिए आदमी को। हाँ, और ना दूसरे के ऊपर एकदम ये होके रहना चाहिए कि आज हमारा बाप कमा रहा है तो हमको क्या जरूरत है। अरे भाई, हाँ, बाप का ना वो उम्र बाकी रहेगा ना वो कमाई बाकी रहेगा, हम अपने फ्यूचर के लिए हमें सोचना चाहिए। और मैं इसी के ऊपर इसी पॉइंट से मतलब और आगे चीजों के लिए मतलब मैं ये कर रहा हूँ, ये नहीं कि खाली बाप के तक ही है, उसमें सारी चीजें हैं, मतलब गवर्नमेंट से कुछ हमको मिल रहा है या और कुछ मिल रहा है तो उसके ऊपर हमको अपने लिए आगे फ्यूचर के लिए कुछ हम पैसा आ रहा है तो कुछ उसको ऐसे जगह इन्वेस्ट करें ताकि हमारे आने वाले वक्त के लिए या कुछ उसमें हमारे लिए फायदा का जरिया बन के और हमारा ये आमदनी बाकी रहे।
1: थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू फॉर योर कॉल, अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए। ओके,
0: मैंने उनको रोक दिया, मैं बोला पहले उनको कट कर दिया मैंने, पहले
1: ये तो आपने गलत किया, पहले आपको पहले उनसे बातचीत करनी चाहिए थी।
0: मैंने बात तो थोड़ा हुआ है, कॉन्टेक्ट हुआ है तो फिर और बाकी थोड़ा गप सप तो वो तो बाद में हो जाएगा, मसला नहीं है। मैंने नेट को थोड़ा बंद कर दिया, मैं बोला ये डिस्टर्ब।
1: चलिए खैर, अब आप सबसे पहली फुर्सत में अपनी फैमिली से, अपनी वाइफ से बात कीजिए, हम आपका वेट कर रहे होंगे।
0: वालेकुम
1: अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। ऑल राइट, सो यहाँ दोस्तों आज हम यूबीआई की बात कर रहे हैं और किसी ने पूछा कि हम यूबीआई की बात क्यों कर रहे हैं। ये है जैक। तो बहुत सारी जगह गवर्नमेंट्स जो हैं वो लोगों की ओपिनियन ले रहे हैं, लोगों से जानना चाहते हैं कि वो इस सिस्टम के लिए तैयार हैं, क्या ये सिस्टम उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। कुछ कंट्रीज़ में जो था वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर सिस्टम को लाया भी गया था, जहाँ पर उतना फ़ायदा नहीं हुआ देन इसको वापस ले लिया गया। तो एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो,
2: हाँ जी,
1: गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज तो आपकी जल्दी मॉर्निंग हो गई 8 बजे से पहले।
2: जी बिल्कुल, बहुत जल्दी होगी मैडम आज।
1: कैसे,
2: उसका क्यों? रीजन है ये जो आपका शो है।
1: अरे तब तो मैं कहूँगी इसका फायदा हो रहा है आपको कि नुकसान हो रहा है?
2: फायदा हो रहा है मैडम।
1: ओ सीरियसली, चलिए फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लगा कि आपकी नींद ही खराब हो रही है, तब तो अच्छी बात नहीं कह सकते इसे।
2: नहीं नहीं मैडम, नींद से नहीं कॉम्प्रोमाइज, टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, एडजस्टमेंट।
1: सही, तो आज का आपने हमारा टॉपिक सुना।
2: एक्चुअली आपने दो बार मैडम यूबीआई का जिक्र किया ना।
1: हाँ, यूबीआई।
2: तो मैं सोच रहा था यार आजकल थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, मैं भी अपना स्कैनर नाजिया जी को भेज देता हूँ, वो यूपीआई कर देंगे।
1: नहीं, मैं बात कर रही हूँ जो सिस्टम है, जो कॉन्सेप्ट जिस पर बात चल रही है, चर्चा हो रही है, एंड दैट इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूबीआई जिसे कहते हैं। तो क्या ये वाकई एक अच्छी सोच है या आपके हिसाब से ये अच्छी सोच नहीं है?
2: जी बिल्कुल मैडम, आपने बात तो की नहीं, आपने की यूनिवर्सल बिजनेस
1: बेसिक बेसिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम
2: इनकम। जी तो यार मैडम, इसमें ना तीन चार चीजें मिक्स ही होगी।
1: अच्छा,
2: अभी मैं कॉल सुन रहा था रईस भाई की, तो इसमें सिर्फ उसी पे बात करनी है जो गवर्नमेंट स्कीम्स देती है या हम लोग कुछ एक्स्ट्रा हम लोगों को पैसा मिलता है कंपनी की तरफ से? आप थोड़ा क्लियर बताइए मैडम।
1: हाँ मैं आपको बताती हूँ, यूबीआई का जो कॉन्सेप्ट है

0: वो एक तरह का ऐसा सिस्टम लाना है जहां पर हर किसी को, चाहे जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो एल्डरली पीपल हैं या फिर अनएम्प्लॉयड हैं, सबको एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने उनके अकाउंट में एक पैसा, जो एक मुकर्रर रकम है, वो मिल जाएगी। तो इससे आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी लोगों की आसान होगी, या फिर जो वो काम करने का मोटिवेशन है वो कम हो जाएगा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जो गुर्बत है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो अमीर है उनके पास पैसे हैं लेकिन उन्हें भी ये पैसा मिलेगा UBI? ये ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ज़रूरतमंदों तक, उन्हीं लोगों को जाएगा। अब इससे क्या कि गुर्बत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या कुछ और आपकी सोच है? तो ये चीज़, और सबसे बड़ा सवाल कि बच्चों को भी मिल रही है एक पैसे, तो क्या उनकी दिलचस्पी काम करने के लिए कम नहीं होती चली जाएगी? हर आदमी एक लेजी सोसाइटी नहीं बन जाएगी?
1: जी मैडम, सबसे पहले तो ये जो स्कीम है ना, ये केवल अपनी कंट्री में नहीं है,
0: ये तो यूनिवर्सल करोगे ना, हाँ, बहुत जी, सारी कंट्रीज, हमारी
1: बहुत सारी कंट्रीज में चली आ रही है। जी बिल्कुल।
0: और कुछ लोगों ने वापस ले ली, जैसे फिनलैंड है, उन्होंने स्टार्ट किया, एक दो साल रखा, फिर उन्होंने देखा कि हाँ इसका जो है वो नुकसान हो रहा है इकोनॉमी।
1: मैं मैडम आपको बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ, हमारे वहाँ पे भी ना बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं राशन को लेके।
0: अच्छा, ओके।
1: इवन पंजाब में मैडम 200 यूनिट तक अभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्री है।
0: अच्छा
1: जी बिल्कुल मैडम। मैडम सही नहीं है ना ये? कुछ टाइम के लिए तो सही है, बट इट्स स्लो पॉइजन मैडम। तो अगर मैडम देखा जाए तो इस चीज का लोड किसके ऊपर पड़ेगा? फ्री फ्री फ्री फ्री फ्री, कोई ना कोई बॉडी तो है ना जिसके ऊपर लोड पड़ रहा है। तो वो लोड मैडम एक दिन इतना बढ़ जाएगा, वो हमारे ऊपर ही पड़ेगा ना।
0: जो आपने वर्ड यूज किया ना, स्लो पॉइजन, धीरे धीरे निकम्मी हो जाती है कम्युनिटी।
1: जी मैडम, ये जो मैडम फ्री की चीजें है ना, नाजिया जी, मेरे को नहीं लगता ये सही है।
0: है ना, मुझे भी मेरा भी दिल ले रहा है कि एकदम फ्री। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे लग रही है कि बेचारे जरूरतमंद का हक भी मार रहे हैं लोग, जो कमा रहे हैं, जो वेल्दी हैं, जिन पे पैसा है, उनको भी ये पैसा जा रहा है। इससे ये अच्छा ना हो कि और थोड़ा सा पैसा बढ़ा के उन जरूरतमंदों तक पहुंच जाए जो वाकई जिनको जरूरत है, जो पावर्टी लाइन के नीचे हैं।
1: जी जी, अगर इस चीज को छोड़ के हम लोग देखें ना, जो हमारी कंट्री में डिसेबल्ड हैं या जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए मैडम इतनी अच्छी फैसिलिटीज है ना,
0: बहुत है।
1: बहुत सारी स्टेट्स तो ऐसी हैं जिनमें 3000 के आसपास उनको सिर्फ पेंशन मिलती है मैडम।
0: हाँ हाँ, विकलांग भत्ता और वो सारी चीजें बहुत है, बहुत है, बिल्कुल। स्कीम्स गवर्नमेंट की बहुत है,
1: बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं मैडम जिन्होंने, अगर ट्रेन में ट्रेवल करना है, बस में तो तकरीबन फ्री होता है, उनका कार्ड बना होता है ना, तो ट्रेन में भी कुछ ऐसा सिस्टम होता है, भी फ्री के जैसा ही होता है वो।
0: सही बात है।
1: अगर उनके पास उनके हवाले से मैडम देखें तो उनके हवाले से ये चीज तो मैडम बिल्कुल सही है, जिनको जरूरत है।
0: जिनको है जरूरत उनके लिए तो अच्छा है, और जिनको जरूरत ही नहीं है उनके भी अकाउंट में जा रहा है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल, सबको जाएगा, सबको, अमीर गरीब सबको। तो ये सोच आपके हिसाब से सही नहीं है, मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि नहीं?
1: नहीं नहीं मैडम, ये तो एक्चुअली क्या है, ये ना मेरे अंदर ये जो चीज है फ्री का खाने वाला माल, ये अच्छा साइन थोड़ा है मैडम।
0: आप वाकई बहुत अच्छे इंसान है, मुझे कहना चाहिए ये, वरना हर किसी को अच्छा लगता है फ्री में खाना, फ्री में कोई चीज मिल जाए। लेकिन आपने ये बात जो एक वर्ड यूज किया ना, स्लो पॉइजन, बहुत ही अच्छा वर्ड दिया आपने। ये एग्जैक्टली रियलिटी है, जहाँ जिन कंट्रीज में इसको लेकर आए थे सिस्टम को UBI के, वहाँ देखा लोग जो हैं वो एकदम काहिल, निकम्मे और एकदम समझ लीजिए नाकारा हो गए, कुछ काम ही नहीं कर रहे, कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा, क्योंकि उन्हें एक फिक्स अमाउंट तो आ रहा है उनके उसमें। तो दैट्स हाउ ये फिर वापस लिया गया।
1: लेके आने का सिस्टम तो कुछ और था, बाद में देख लेना इसको। एक्चुअली क्या है, ह्यूमन साइकी के ऊपर बहुत असर पड़ता है ये फ्री चीजों का ना मैडम। ये अलग सा बटन बंदे के दिमाग में पड़ता पड़ता पड़ता मैडम इतना ज्यादा बटन हो जाता है ना, ये दिखता तो नहीं है मगर बंदे को पता बाद में चलता है, अभी मैं तो बिल्कुल लेजी हो गया।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, ये इंसान को बाद में पता चलता है, और जब उसे पता चलता है तो उससे उस चीज से निकलने में उसे बहुत, उस फेज से निकलने में बहुत टाइम लग जाता है।
1: मैडम आप यकीन मानिए, मैंने ना लाइन में ऐसे बंदों को भी लगे हुए देखा है ना राशन लेते हुए मैडम, जो जाके स्टेज पे लेक्चर देते हैं लोगों को, भाई ऐसे जिंदगी जीनी चाहिए, ये है सिस्टम, वो है सिस्टम। भाई सोसाइटी में बहुत अच्छे बनते हैं वो लोग।
0: हाँ,

0: ये जो कार्ड है मैडम सरकारी बंदों का तो नहीं बनता, मगर फिर भी जो बंदे बहुत अमीर है मैडम, रईस बंदे हैं वो, उन्होंने भी ये कार्ड बनवाए थे क्योंकि फ्री के लिए।
1: अब देखो आप किसी का जायज हक मार रहे हो ना, अब बेचारा जो जरूरतमंद होगा, जिसको इसकी सच में जरूरत है और आप तो अफोर्ड कर ही सकते हो, तो आप उनका हक मार लेते हो। ये मुझे पता है ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगता है जैसे आप किसी का जायज हक मार रहे हैं।
0: जायज हक मार रहे हैं, बिल्कुल।
1: अब आपके हाथ पैर हैं, आप कमा सकते हैं, आप कमा भी रहे हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं, सब कुछ है, उसके बाद भी आप UBI कहते हो कि हाँ मैम मुझे मिलना चाहिए या इसकी दावेदारी मैं भी पेश करूं। और मुझे लगता है ऐसे कितने लोग हैं जो बेचारे कमा नहीं सकते या जिनके पास स्किल्स नहीं है या जो इतनी गुर्बत का शिकार है कि अच्छे से पढ़ नहीं सकते, उन तक वो रकम जाती है। अब आप में भी बट रही है।
0: हाँ मैडम, बस मैडम चक्कर पता क्या है, देखो मैडम मैंने कोविड के टाइम में ये चीज फील की थी क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ने पैसे दिए थे उस टाइम, तो चलो जरूरत थी,
1: बिल्कुल
0: उस टाइम तो जरूरत थी, वो तो जस्टिफाई है मैडम,
1: सही बात है।
0: मगर मैडम हम लोग बात तो कर रहे हैं आपस में मैडम, मगर ये पैसा चीज ऐसा है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना दिया, जब ये मेरे अकाउंट में आ गया ना 500 या 700, आप यकीन मानिए मैडम मेरा दिल नहीं करेगा वापस करने को।
1: हाँ ये तो सच कहा आपने
0: जी, ये सच है मैडम, ये सच्चाई है मैडम सोसाइटी की,
1: सच्चाई है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो कहेगा कि हमें पैसा अच्छा नहीं लगता। अभी अगर मैं ये सवाल करूं कि कितने लोग हैं जिन्हें पैसा बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे ख्याल से सारे के सारे कहेंगे हाँ
0: अच्छा हमें पैसा लगता है मैडम, अच्छा देखिए
1: हमें मिलना चाहिए।
0: मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको, वो तो चलो मेहनत के जरिए हर किसी ने जीता था, मैंने भी जीता था, मेरे दोस्तों ने भी जीता था, आपने शो किए थे ना दो।
1: हाँ नहीं वो तो देखिए आपकी मेहनत हाँ, थी वो तो एक अलग,
0: मैं वही उसी की एग्जांपल दे रहा हूँ।
1: हाँ।
0: वो चीज देखिए, वो बंदे ने मेहनत की, कॉल की, पार्टिसिपेट हाँ, किया, वो चीज में पैसा आएगा वो अच्छा लगता है।
1: हाँ, सही बात,
0: उसकी खुशी और भी डबल है। मगर अगर मैडम वैसे भी अपने अकाउंट में आ जाए ना, तो बंदे का दिल नहीं करता वो पैसा वापस करने,
1: नहीं करता, ये तो फैक्ट है। यही तो मैं कह रही हूँ, ये साइकी जो है ना ह्यूमन की, और ये जो हमारी मेंटालिटी डेवलप होती चली जाती फ्री फ्री फ्री वाली, ये हमें बिल्कुल नकारा और निकम्मा बना देगी हमारी जनरेशन।
0: आप यकीन मानिए नाजिया जी, मैं ना गाड़ी में बैठा हूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा
1: जी,
0: 2025 में ना 25 में कोई बंदा मेरे साथ ना गाड़ी में बैठा था चंडीगढ़ में 5 से 7 साल पहले ऊपर में, तो उसने मेरे को UPI किया था इंडिया में, तो उस बंदे की आई सैलरी 25,000 मैडम, 2025 की बात है, तो उसने गलती से कहीं मेरे को 25,000 सेंड कर दिया, मैं इधर ही था मैडम कतर में।
1: अच्छा फिर
0: हाँ मैंने देखा यार, मेरे नहीं नहीं मेरे को किया उसने सेंड, मैं बताता हूँ आपको। तो मैडम जिस बंदे का 25,000 चले जाए इंडिया में, तो आपको पता है उस बंदे को तो हाथों पैरों की पड़ जाती है,
1: सही बात है।
0: विद इन अ मिनट मैडम उस बंदे के 20-25 मैसेज आ गए, मे आई नो यू, आप कौन हो, मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा उस बंदे का नाम भी है प्रफुल करके कुछ है ऐसे। तो मैडम मैंने उसको बोला थोड़ा ठंडी सांस लो भैया, मेरे को इंडिया का नंबर सेंड करो अपना, मैं आपको कॉल करता हूँ, आप नहीं कॉल कर सकते मेरे को। तो मैडम 2 या 3 मिनट के अंदर मैंने उसकी जो अमाउंट थी पूरी की पूरी वापस कर दी।
1: वाह क्या बात है गाबा जी, आप सच्चे बहुत अच्छे इंसान हैं। देखिए कुछ लोग तो फोन ही नहीं उठाते, बंद कर देते हो, आपसे कैसे कांटेक्ट करता भाई, वो दूसरे कंट्री में था,
0: ऑप्शन नहीं था, वो कुछ भी नहीं,
1: कुछ भी ऑप्शन नहीं था। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ,
0: कुछ भी ऑप्शन नहीं था क्योंकि इसमें जो गलती है उसकी
1: और मेरी आपके लिए वैसे तो थी बहुत इज्जत, आज और बहुत ज्यादा बढ़ गई। मुझे वाकई मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जैसे लोग हैं सोसाइटी में। हर कोई जो है वो बहुत सेल्फ सेंट्रिक मतलब वाला वैसा नहीं है, कुछ लोग अच्छे मौजूद हैं और यही अच्छे लोग चाहिए आज की दुनिया में। और प्लीज़ ऐसी बातें ज़रूर ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि आपके कहने से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं उनके जहन में बात जो है वो स्टोर हो जाएगी और वो भी इस तरह के काम करने के लिए मोटिवेट होंगे। आई एम श्योर होते होंगे, लेकिन थोड़ा सा और होंगे
0: जी। मैं मैडम आपको अभी स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ।
1: नहीं मुझे यकीन है आपने कहा, मुझे पूरा यकीन है।
0: नहीं नहीं वो नहीं, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ आपको, तो चलो आप भी चेक कर लेना।
1: बहुत बड़ी बात है, लोग फोन ऑफ कर देते हैं, और ये तो फिर भी 25 था, मैं तो कह रही हूँ बहुत छोटी रकम के लिए भी मैंने देखा लोग नहीं वापस करते, नहीं देते, मतलब नहीं चाहते करना। तो खैर अच्छी बात है कि आप उनमें से नहीं है। Nice.
0: और अगर चाहो तो मैं स्कैनर सेंड कर देता हूँ मैडम
1: मैं कुछ ना कुछ भेजती हूँ
0: ओके शुक्रिया मैडम,
1: चलिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। ऑलराइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है UBI, विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल बेसिक इनकम। आपको क्या लगता है ये वाकई अच्छा है, ये अच्छा हो सकता है, ये सोच अच्छी है या ये सोच अच्छी नहीं, हमें नाकारा निकम्मा एंड व्हाट एल्स वी कैन से, ये सब बना रही है। ये आज का हमारा टॉपिक है, ज़रूर हमारे साथ जुड़िए 666-22-107 पर। आई थिंक एक छोटा सा हमें मैंडेटरी ब्रेक यहाँ पर ज़रूर लेना होगा और वापस आएंगे तो आज जो है वो है टर्निंग बैक ट्यूसडे, यानी 90s के आपके जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं वो भी हम प्ले करेंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, कोई आपका फेवरेट सॉन्ग है हमें ज़रूर बताइएगा 666-22-107 पर। फिलहाल के लिए छोटा सा ब्रेक, मैं यूं गई और यूं आई एंड स्टे हुक्ड टू FM 107 दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: मॉर्निंग्स, मैं हूँ नाजिया आपके साथ 7:42 ऑन द क्लॉक एंड यस, आज हम बात कर रहे हैं UBI की, यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ये कॉन्सेप्ट या ये सोच, ये सिस्टम आपके हिसाब से कहाँ तक ठीक है? आपको क्या लगता है, क्या ये सोच वाकई ठीक है? इससे एक्चुअल में फ़ायदा होगा किसी का या इससे किसी का भी फ़ायदा नहीं हो सकता? वैसे बहुत सारे लोग जो हैं इस बात पर बहुत डिबेट करते हैं। कुछ लोग इसके प्रो भी बोलते हैं, ऑफकोर्स उनका मानना है कि हाँ इससे लोगों का फ़ायदा होगा, लेकिन हाँ इसके बहुत ज़्यादा जो हैं वो चैलेंजेस हैं। स्पेशली जब इसको इम्प्लीमेंट करने की बात हुई और जब कंट्रीज़ ने इम्प्लीमेंट किया तो एक्चुअल में बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर मैं फ़ायदे की भी बात करूँगी, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो है इसके नुकसान के बारे में ही बात करूँगी। लेकिन बिफोर दैट लेट्स गेट कनेक्टेड टू वन कॉलर। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं आरिफ जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और कैसी जा रही है आपकी मॉर्निंग अभी तक?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मॉर्निंग अच्छी जा रही है, नाश्ता हो गया, पराठे खा लिए, चाय
0: पराठे खा लिए, चाय हमने पी ली, और हमने ना पराठे खाए अभी तक ना चाय पी है। अब 9 बजे के बाद
1: तो घर, आपने आप तो 9 बजे घर चले जाओगे, हमको तो 4 बजे जाने के लिए मिलेगा।
0: ए
1: तो
0: भाई, क्या बोला है आपने, मैं 9 बजे घर चली जाऊंगी? हमारी पूरे 8 घंटे की जॉब होती है, 9 बजे हम घर थोड़ी जाते हैं।
1: फिर भी आप लोग आपका शिफ्ट खराब करके तो आपको नाश्ता मिल जाएगा ना?
0: हाँ, मतलब ये है कि आप जाके ब्रेकफास्ट कर सकती हो, मतलब जाके क्या, आप जो भी कुछ आप लेकर आए वो ब्रेकफास्ट आप कर सकते हैं, बट हाँ टाइम तो आपको अपना पूरा करना है, और भी बहुत सारे काम होते हैं पता है हमारा। अब सबसे आसान काम यही है यहाँ पे जो कर रहे हैं, इसके अलावा सारे मुश्किल काम
1: भी है ना, आप लोग का रिकॉर्डिंग शो भी होता है और भी सारे काम है, पूरा तैयारी करके बैठना पड़ता है।
0: हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें लिखनी पड़ती हैं, तो काम हमारे भी हैं। अच्छा, आज हम बात करें कि हम लोग काहिल ना बने, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये वाकई एक अच्छी सोच है या फिर ये सोच अच्छी नहीं है आपके हिसाब से?
1: यूनिवर्सल इनकम पहले तो उस पे आना चाहूँगा जो आप UBI या क्या बोल रहे थे ना, जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है राशन या जो भी।
0: अच्छा, नहीं मैं इसी की बात कर रही थी, UBI। हाँ, जो राशन वगैरह और जो भत्ता है वो सब, पेंशन वगैरह वो तो है,
1: वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। क्यों? अगर जिसे एक भाई ने बोल के गया कि उन्होंने बोल के गए भाई नहीं थे बुजुर्ग, क्योंकि सबसे छोटा तो शायद मैं ही कॉलर हूँ इस पे। तो वो एक तो अगर जो पैसे वाले हैं वो छोड़ते हैं ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले होते हैं ना, जिनको ठेका मिला हुआ था वो लोग खा जाते हैं।
0: हाँ, वो करप्शन तो खैर एक अलग मुद्दा है ही,
1: वो कहा जाते हैं। उससे अच्छा वो जिसके जिसका भी जो हक है वो सबके लिए आता है, यानी कि जिसके पास पैसा है जिसके पास, वो सबके लिए गवर्नमेंट की तरफ से आता है। गवर्नमेंट ने ये नहीं बोल के निकाला कि ये सब गरीबों के लिए, गरीबों के लिए अलग है, जो गरीब है या जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए भी अलग स्कीम आती है, बस उनके लिए। और जो एक सबके लिए भी आती है वो उनका हक भी है, क्यों जब गवर्नमेंट ने सबके लिए निकाला तो हक बनता है ना। ये कह सकते हैं जिसके पास है अलहमदुल्ला, उसको कमी नहीं है, वो अल्लाह ताला ने उसको कमी नहीं दिया था, वो लेके दूसरों को दे सकते हैं जिसके जो ज्यादा जरूरतमंद है।
0: पर वही बात है कि जिसके अकाउंट में आ जाता है ना, जैसे भी गाबा जी ने कहा, फिर वो दूसरे को कहाँ देना चाहता है? पैसा हर किसी को अच्छा लगता है। अब कुछ भी एक्स्ट्रा आपको बिना कुछ किए मिल जाए और आपके पास आए, कितना भी कोई गरीब हो, आपके पॉकेट से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। निकल जाए ये बात मैं नहीं कहूंगी कि लोग नहीं देते, देते हैं, बड़ा मुश्किल है।
1: मुश्किल ये भी होता है कि उसने वो फ्री, उसको उसको भी किसी ने फ्री में नहीं दिया होता है ना।
0: यही भी कह सकते हैं कि अब उसे फ्री में मिल रहा है। फ्री में मिलने की चीज जो है ना, वो एक आदत की तरह एक लत है,
1: तो लोग फ्री में लेना चाहते हैं। और जो जिसने पसीने से खून मेहनत करके जिसने कमाई हो, उसने इकट्ठा किया हो, वो भी तो नहीं देना चाहिए, वो भी तो फ्री का ही लेना सोच रहे हैं ना, तो किसका पॉकेट है वो आपको निकाल के कम आदमी दे सकता है।
0: सही बात है, जरूरी है। और एक चीज मैं और बताऊं आपको आरिफ जी, कुछ कंट्रीज में इस सिस्टम को लेकर आए, इस चीज को वहां पे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, और एक बड़ा चैलेंज क्या निकला, जब फ्री में कोई चीज मिली पैसे, तो लोगों को ऐसा दर्द नहीं होता, तो वो अच्छे से खर्च करते थे, स्पेंड करते थे। और जब ज्यादा स्पेंड करने लगे, ज्यादा चीजें खरीदने लगे, तो चीजों की जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, और इससे क्या महंगाई बढ़ गई। वो महंगाई
1: तो कमा रहा हूँ। हाँ, मेरे को ये खर्च

0: करने में खुद पे खाने के लिए भी खर्च करने में मेरे को तकलीफ होती है।
1: देखो
0: अब जब मैं नहीं कमा रहा था, बाबा से पैसे मिल रहे थे घर से,
1: है ना,
0: तो पैसे मिल रहे थे, तो हाँ, तो मैं बिना सोचे खर्च कर दे रहा था
1: वही।
0: और मैं जब इधर आया ना, बाबा का मेहनत देखा, खुद की मैंने काम करना शुरू किया, तो अपना जो तकलीफ होती है काम करने में, जितना दूसरों को दूसरी की बात डाली और वो गिर गिर सुन सुन के जो पैसा मिलता है, आप एक एक पैसे की अहमियत जानते हो, कीमत जानते हो कि ये मेरे खून को मैं दूसरों से गाली खा के ये पैसा मैंने कमाया।
1: तो आप जब मेहनत से वो कमाते हो तो उसे एक एक पैसे की, एक एक पैनी की बड़ी अहमियत होती है।
0: और वही चीज जो जब मुझे बिना मेहनत के मिल रही थी बाबा की, तो मेरे अहमियत नहीं था, कुछ अहमियत नहीं था मेरे।
1: वही ना, यही कॉन्सेप्ट जो है, यही थॉट जो है वो बड़ा ही डरा देता है कि लोग जो हैं फिर उसे उड़ा भी रहे हैं उसी तरह से।
0: मैंने आने से पहले मेरे इतने सपने थे कि 4-5 लाख का एक मेरा गाड़ी है, मैं बाइक एक शौक है, मैं सोचा था वो लूंगा, एक अच्छा सा मोबाइल लूंगा। अभी तक ना बाइक ले पाया ना मोबाइल, क्योंकि वो पैसे की मेरे को अहमियत पता चल गई, वो उससे भी ज्यादा जरूरत है मेरे दूसरे की, तो उसपे मैं फिजूल खर्चे क्यों करूं, मेरे काम चल रहा है। तो
1: वाह,
0: जो अभी फोन है उससे मेरा काम चल रहा है,
1: माशाल्लाह कितने मैच्योर हो गए आप।
0: मेरा बाइक है वो नहीं है, पर दूसरी बाइक है उससे भी मेरा काम चल रहा है, तो उसपे मैं क्यों फिजूल खर्चे करूं।
1: अब मुझे लगता है आपके बच्चों को आपका शौक एक बार पूरा करना चाहिए, जो आपको सबसे अच्छा फोन लगता है वो आपको गिफ्ट करें आने वाले टाइम में। बाइक तो खैर ज्यादा महंगी हो जाएगी, फोन ही तक
0: रहता है। मेरे को कितना बार फोर्स किया कि मोबाइल बोलते थे ले लो, पर मैंने नहीं लिया, बाबा ने पैसा भी हाथ में रख दिया था, फिर मैंने घर भेज दिया कि नहीं चाहिए, क्यों चाहिए, इससे मेरा काम चल रहा है।
1: वही ना, तो कि पैसे की हमें अहमियत का एहसास है, क्योंकि हम खुद अपनी मेहनत से कमा रहे हैं ना, और जब हमें यूं ही मिलने लग जाएगा पैसा तो फिर हम उतनी अहमियत नहीं करेंगे। और हुआ भी ये था, लोगों ने अहमियत करना छोड़ दिया, खूब खर्चा करते थे धड़ल्ले से, उससे महंगाई भी बढ़ गई उस कंट्री में, क्योंकि अपना अपने एग्जाम्पल दिया, और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपने लाइफ एग्जाम्पल के साथ है, और आपने समझाया कि ये है और ये वजह है कि आई एम लाइक अगेंस्ट विद यू।
0: एक बात है, अगर किसी के पास ड्रीम ना हो ना और उसको एक फिक्स अमाउंट मिल रहा, उसकी जरूरत पूरी हो रही है, तो वो उसके लिए अच्छा है।
1: हाँ, ये भी देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं UBI के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि आने वाला जो दौर है वो AI और ऑटोमेशन का दौर है, और ऐसे दौर में आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ जॉब्स तो कम होंगी ही होंगी, ठीक है, इससे तो हम सब इत्तेफाक रखते हैं, कुछ नई भी आएंगी लेकिन कुछ कम भी होंगी। तो ऐसे में ये UBI का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल आपको सिक्योरिटी देता है, एक छोटा सा ही सही जो भी अमाउंट है आपके पास आ रहा है। इसका फायदा ये हो सकता है कि कुछ लोग समझदारी से, एक तो एक उनका फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो गया कि मेरे पास एक छोटी रकम आ रही है, अब वो रकम मैं कलेक्ट करके कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लूं, या उसको मैं किसी तरह से कहीं और ऐसा इन्वेस्ट करूं कि उसके अच्छे रिटर्न्स मुझे मिले। अगर ये प्लानिंग और ये सोच है देन दैट्स गुड, तब तो मैं कहती हूं कि अच्छा है, आना चाहिए, होना चाहिए।
0: मेरे को अभी हम लोग का अलहमदुल्ला कुछ कमी नहीं है, मैं अपने बच्चे का गवर्नमेंट की तरफ से मेरे बच्चे को हर एक महीने का 300 ऐसा कुछ रेफर मिलता है,
1: अच्छा,
0: में जमा है।
1: अरे ना,
0: मैंने उसका गवर्नमेंट की तरफ से वो है, किसी का डिस्ट्रिक्ट में है किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में मैंने उसका पूरा पेपर बना के रेडी कर दिया, तो उसका खुद का अकाउंट गवर्नमेंट ने खोल कर दिया।
1: हाँ देखो,
0: मैंने पूरा
1: इस तरह का होता है कि जब वो छोटा छोटा पैसा वो जब हायर स्टडीज मतलब बड़े क्लास में पहुंचेगा तो वही रकम उसकी हायर स्टडीज में काम आ जाएंगी, तो इस तरह की तो स्कीम्स।
0: हाँ, मैं वो दिखा के किसी को दे भी सकता हूँ, मेरे को मैं उसको पढ़ा सकता हूँ, इतना मेरे को वो कैपेसिटी है, या फिर मेरे को कभी कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ तो वो मेरा कुछ थोड़ा सा हेल्प हो सकता है ना।
1: हाँ, बहुत हेल्प हो जाता है, बहुत हेल्प होता है। आप मेंटली काफी सॉर्टेड होते हो, फाइनेंशियली आप थोड़ा सा सिक्योर महसूस करते हो, इफ यू हैव अ सर्टेन अमाउंट इन योर बैंक, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और होना भी चाहिए, और इसीलिए हम सेविंग्स को प्रमोट भी कर रहे होते हैं, इन्वेस्ट कीजिए, सेव कीजिए, देखो कितना अच्छा है। ऐसी बेशुमार स्कीम्स हैं जहाँ पर जिनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, अभी तो हमें नाम ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, अगर हर कोई ईमानदारी से अपना काम करे तो आराम से मुल्क में गुर्बत भी कम होगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आएगी, लोग खुशहाल भी होंगे, लेकिन हर चीज़ अगर ईमानदारी से हो अपनी जगह तब हर चीज़, क्योंकि स्कीम्स तो बहुत अच्छी बनती है। हाँ, वो करप्शन ना हो, स्कीम्स बहुत अच्छी गवर्नमेंट बनाती करती है, जैसे इम्प्लीमेंट होने शुरू हो जाती है फिर वहाँ पे थोड़े से मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं।
0: अभी एक नया स्कीम लेके आया नेपाल गवर्नमेंट ने, लॉटरी सिस्टम। आप अगर टैक्स दे रहे हो किसी भी 100 रुपया के ऊपर से बिल पे आप बैठ दे रहे हो ना, तो

0: आपको वो लॉटरी में जाएगा, दिल्ली का एक विनर आएगा 1 लाख का, और 15 दिन पे एक दूसरा विनर निकालेंगे 10 लाख वाला।
1: अरे वाह,
0: तो ये लोकली है, ये लोकल के लिए बनाया। वो अपोर्ट में जो रह रहे हैं ना बाहर में, उनके लिए भी तस्वीर लेके आ रहे हैं। मतलब
1: गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है भाई, अच्छी बात है कि इस तरह की अच्छी अच्छी स्कीम्स
0: हैं। पैसा भेजते हैं ना लीगल थ्रू, लीगली उसके ऊपर हम लोग को लॉटरी में, वो ऑनलाइन पूरा सिस्टम है, आप उस पे अपना रजिस्टर करोगे तो वो आपका दिल्ली का लॉटरी सिस्टम, वो अभी शायद अभी लागू नहीं हुआ पर प्लानिंग में है, वो पूरा
1: आने वाले टाइम में हो जाएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। ओके जी,
0: अल्लाह हाफिज।
1: ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे साथ बहुत ही जबरदस्त कॉल, इन्होंने समझाया भी, बताया भी, और कितना अच्छे से बताया कि कितनी स्कीम्स हैं जिनका फायदा हम उठा सकते हैं, जिनके बारे में हमें उतनी शायद नॉलेज भी नहीं होती। तो एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ कनेक्ट हो चुके हैं। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, कैसे हैं आप? खैरियत से?
2: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत। काफी देर से मैं सुन रहा था
1: जी,
2: लेकिन मैं ड्राइव कर रहा था तो उस वजह से मैं कॉल नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं बोला अच्छी बात नहीं है, कॉल जब भी पहुंच जाऊंगा तो इंशाल्लाह कॉल करूंगा।
1: सही सही, हम आप फ्री हैं इस वक्त?
2: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: चलिए फिर ठीक है, फिर आप आराम से बात।
2: मैंने मौजू टॉपिक सब सुन लिया, बहरहाल अभी अभी ये असल मसला ये है कि अगर गवर्नमेंट कोई फैसिलिटीज दे भी रहे हैं तो हम लोग भी उनका गलत फायदा लेते हैं, और उसमें कुछ डिपार्टमेंट्स वो ऐसे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट के लोग जो है इन्वॉल्व होते हैं, वो करप्शन अपने लिए पैसा बनाने के लिए वो किसी प्राइवेट या दूसरे कंपनीज को ट्रांसफर करते हैं। मैं मिसाल दूंगा और वो मिसाल हमारे बिल्कुल सामने है। मेरे ख्याल में जो हमारे सुनने वाले जो हमारे पेशावर से और ये एरिया से जो ताल्लुक
1: भाई, बस कंट्री का और जगहों का नाम मत लीजिएगा, ठीक है?
2: नहीं, नाम नहीं लूंगा,
1: किसी भी गवर्नमेंट का, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कुछ भी नाम मत लीजिएगा।
2: नहीं, किसी का भी नहीं लूंगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने हेल्थ में कुछ वो दिया हुआ है तो उसका गलत हम लोग फायदा ये ले रहे हैं कि वो प्राइवेट को दिया हुआ है, तो प्राइवेट में क्या होता है कि अगर एक मरीज पे 10 रुपया या 10 रियाल खर्चा होता है तो प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी है वो कितना चार्ज करते हैं, उसके ट्रिपल बल्कि तकरीबन 80% ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। ये मेरे साथ हुआ है, तो ये तो एक तो ये गलत हो गया, सही है। दूसरी बात ये कि मैंने एक ऐसा टाइम भी देखा था कि कुछ लोग ऐसे थे, कुछ मैं क्या बोलूं कि या सैलाब आया था जो भी था, बाहर हाथ लोग ऐसे बैठे हुए थे, तो मैं एक दूसरे बंदे से पूछा, मैं बोला ये लोग काम नहीं करते, बोलते इन लोगों को काम की क्या जरूरत है, बाहर से आता है मिलता है, वो जिसका हक था उसको नहीं मिल रहा था, जिसका हक नहीं था वो लोग ले रहे थे। ये मैंने
1: लाइव आपने बता दिया, देखो ये ड्रॉबैक होंगे जो आपने बताया।
2: मैं इस बात का गवाह हूँ, और अगर मैं झूठ बोलूँ तो मैं क्या बोलूँ आपको कि ये जो हेल्थ की बात मैंने की, मेरी फैमिली में, हमारी फैमिली पूरी तकरीबन डॉक्टर्स है सारे, तकरीबन
1: अच्छा माशाल्लाह,
2: यानी आप 70-75% उसमें डॉक्टर्स है हमारी फैमिली में,
1: माशाल्लाह।
2: और मेरी बच्ची बीमार हो गई तो उसके कितना, सिर्फ 6,000 रुपया उस पर खर्चा आ रहा था वो इसके इलाज पे, और वो उनके मामू जो यानी उनके कजन है, मामू के लड़के हैं वो डॉक्टर्स है, बड़े बड़े सर्जन है, वो लोग बोले हॉस्पिटल वाले को बोले कि भाई हम लोग अपने अपने उससे कर रहे हैं, ये चार्ज नहीं करो, ये गलत बात है, ये बोले नहीं नहीं बस आप सिर्फ आईडी दे दो मुझे बोला। मैं बोला मैं क्यों दूं, मैं पैसा दे रहा हूँ कैश, 6,000 रुपया है, बोला नहीं। तो जब वो मैसेज मुझे आया 27,000 का,
1: अरे
2: कितना एक्स्ट्रा आया, 21,000।
1: तो आप तो कहते 6,000?
2: अभी ये पैसा किस, नहीं 6,000 तो मैं उस पे खर्च आया पूरा, लेकिन जब वो लोगों ने वो चार्ज किया तो वो 27,000 था, वो गवर्नमेंट से कट जाता है।
1: अच्छा,
2: कट जाता है ना।
1: ओह अच्छा अच्छा,
2: तो ये क्या हुआ, ये 21,000 जो ये करप्शन है कि नहीं है? अभी उस पे जितनी यानी दवाई सर्जरी का जो भी खर्चा था वो 6,000 था ओनली।
1: बताइए
2: और चार किया उन लोगों ने 27

0: 1000
1: तो ये हमारी ही वो है, हम लोगों की ऑफ कोर्स, हम ही सब जिम्मेदार
0: हैं, हम लोगों की गलती है, हम लोग जिम्मेदार है इसकी। हाँ, और हम इस बात पे खुशी मनाते हैं कि हमारे से देखो बस ये ऐसे फ्री में नहीं है, फ्री में बिल्कुल नहीं है, ये खर्चा अगर मेरे अगर मेरी बच्ची का इलाज हुआ है 6,000 यानी 27 ले लो तो वो 21,000 किसी और के उससे जेब से जाता है, मेरे जेब से तो नहीं जाता। ये करप्शन के बहुत बड़े तरीके, बहुत तरीके हैं इन लोगों के पास, वो करते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर ये फ्री का कर दें, ये लोग फ्री का करते हैं तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो फ्री में बस उधर बैठे रहते, काम काज कुछ भी नहीं, बस फ्री में मिलता है, ये गलत है।
1: ये
0: काम करना चाहिए, उसका अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि भाई सैलरी दे दो। दूसरी बात ये, मैं पेंशन के बहुत खिलाफ हूँ। पेंशन ये कि वो बंदा रिटायर हो गया, उसका इंतकाल हुआ, फिर उसकी उसके बच्चे वो पैसे ले रहे हैं, भाई क्यों, वो बात खत्म हो गई, सिलसिला खत्म हो गया, बच्चे वो अपना काम करे, खुद करे। मैं मेरे एक दोस्त है, उसका उसका साला है, वो अपनी अपनी वालिदा का वालिद का पेंशन ले रहा है और उसका कब इंतकाल हुआ है मालूम नहीं। तो क्यों भाई, वो काम तो वो करता था, ये कुछ काम नहीं कर रहे, ऐसे ही बैठा हुआ है, पैसा ले रहा है और बस उड़ा रहा है।
1: यही सोच कि लोग निकम्मे ना हो जाए, एकदम काहिल ना हो जाए, काम करने के लिए उनका मोटिवेशन खत्म ना हो जाए, अगर उन्हें एक लिमिटेड मतलब एक फिक्स अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में आता रहेगा तो करेंगे नहीं काम, हम क्यों करें।
0: जी नाजिया बहन, बहुत बातें हैं, लेकिन अफसोस ये कि ये चैनल पे हम नहीं कर सकते।
1: हाँ, बहुत सी चीजें हम नहीं बोल सकते हैं।
0: और एक और चीज, बदकिस्मती हमारी ये है, हमारी बदकिस्मती ये है कि अगर कोई, वो जो एक भाई साहब ने बोला कि गलती से पैसे आए, अगर गलती से बाई मिस्टेक किसी के अकाउंट से या किसी के मोबाइल से किसी से भी पैसे आए तो हम लोग आंख बंद करके बस वो बोलते यार छोड़ो, वापस क्यों करें, आए बस हमारा नसीब है। नहीं, हमारा नसीब नहीं है, ये उनका अपना नसीब था लेकिन वो गलती से आया और देना चाहिए वापस। अगर एक दुकान
1: लोग नहीं
0: वाला
1: देते,
0: कोई गलती
1: ये
0: से,
1: तो अच्छे बंदे थे, इन्होंने दे दे, लोग नहीं देते, फोन ऑफ कर लेंगे, बंद कर लेंगे, सोचेंगे हमें कैसे पकड़ सकता है। और ऐसे कितने मैंने केसेस सुने,
0: मैंने
1: रकम चले गई वापस ही नहीं दिया।
0: मैं मेरे साथ काम करते थे, यूई की बात है, अकाउंट में आए उनके तकरीबन 6,500 दरहम आए थे, वो उसने निकाल दिए। मैं बोला भाई ये बोलते नहीं, ये हमारा नसीब है बस। बाद में जब पता चला, उन लोगों ने उनको बोला, फोन किया कि आपने अकाउंट से इतने पैसे निकाले हो या गलती से, बाय मिस्टेक आए होंगे। हाँ, तो ये गलत हो गया ना।
1: बिल्कुल, लेकिन लोग करते, खुश हो जाते हैं ना, पैसे एक्स्ट्रा कहीं से फ्री में कुछ मिल जाए।
0: मैं उधर मुल्क गया था, एक दुकान वाले से कुछ सामान ले लिया, जब पैसे दे रहा था 1,000 रुपये उसको दे दिया, तो 250 बनते थे, तो उसने बजाय इसके कि वो 250 काटते तो उसने मुझे उल्टा उसने मुझे कुछ ज्यादा दे दिए। तो मैंने उनको बोला कितने, बोलते कम दिए। मैं बोला नहीं, आप गिनती करो कितने दिए। तो वो इतने खुश हुए बाद में, बोलते हालांकि पैसे कम थे लेकिन उनके लिए तो बहुत थे ना। तकरीबन
1: ये, और वो आपके कैरेक्टर को उन्होंने जज किया, देखिए कितना अच्छा ऑनेस्ट शख्स है ये। तो ये बहुत जरूरी है, अल्लाह तो देख ही रहा है कि हमारी ईमानदारी, थोड़े से पैसे देना चाहिए, और थोड़े से पैसे से आपका क्या भला होने वाला है,
0: ये उनके लिए बहुत है, उनके लिए बहुत है ये। इसलिए कि वो सुबह से शाम तक वो मेहनत कर रहे हो, वो क्या कमाएगा एक चीज में, 10 रुपए ज्यादा कमाएगा, ज्यादा से ज्यादा 50
1: नहीं, मैं कह रही हूँ किसी के साथ कोई धोखा करके थोड़े से पैसे ले लेता है तो उससे उस इंसान का क्या फायदा होगा, कहीं ना कहीं निकल जाएंगे, कहीं ना कहीं निकलेंगे आपके पैसे, बीमारी में निकलेंगे, कोई और हादसा होगा, कोई और परेशानी या तकलीफ, तो वो पैसा जो है किसी का हलाल पैसा, अगर आप मार लेते हो, ले लेते हो, तो कहीं ना कहीं निकल ही जाता है, ये तो मान के चलो। तो कितना अच्छा है कि आप उसको वापस कर दो।
0: चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, अभी मेरी ड्यूटी टाइम भी है।
1: और थैंक यू,
0: टॉपिक हमेशा की तरह बहुत अच्छे, लेकिन आज कुछ पेचीदा सा था,
1: थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है,
0: कुछ ऐसा था कि हम यानी टॉपिक एक और हम लोग दूसरे मौजू उसमें डालते हैं, लेकिन वो सब मेरे ख्याल में वो उससे कुछ रिलेटेड ऐसे, जैसे मैंने कुछ बातें की वो तो वो मौजू से बाहर थी, लेकिन फिर भी
1: ये सारी चीजें मौजू पे ही हैं। कहीं ना कहीं आप ये बता रहे हैं कि फ्री पैसा जो है वो मिलना किस तरह से नुकसानदेह हो सकता है, उसके आपने अपने एग्जांपल, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, किसी ने अलग एक्सपीरियंस शेयर किया, मतलब हर आदमी बता रहा है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दलील है इस सिस्टम को लेकर कि लोग जो है नाकारा और निकम्मा बनेंगे, या हम किसी का जायज हक मार रहे हैं जो वाकई जरूरतमंद है

0: उनका पैसा जो है वो कट के जो जिन्हें जरूरत नहीं उन्हें भी मिलेगा, तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए अच्छा नहीं है। चलिए आप आई थिंक जो आपके स्टूडेंट्स आपको अपना रहे
1: मेरे स्टूडेंट बिल्कुल वो साथ ही खड़े हैं।
0: अच्छा चलिए ठीक है
1: जी, ओके बहुत शुक्रिया जी,
0: अल्लाह हाफिज़। ऑल राइट, यहाँ पर जितने भी लोग आए मैं यही कहूँगी आप में से जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं हर किसी ने कुछ ना कुछ अच्छा ऐड किया है। ये कॉन्सेप्ट नया है, ये समझने में आइडिया नया है, बट कुछ कंट्रीज़ में ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हुआ, फिर उन्होंने इसको वापस लिया, कुछ कंट्रीज़ प्लान कर रही हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इस मुद्दे को मैंने इसलिए निकाला कि एटलीस्ट आप इस टर्म से, इस टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस तो होंगे, वाकिफ तो होंगे, आपको पता तो चलेगा UBI है क्या एंड दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह से आने वाले टाइम में इवॉल्व हो सकता है या किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो प्लानिंग कर रही है, क्या क्या इसके चैलेंजेस हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, इन सारी चीज़ों पर मैं भी बात करूंगी। बट बिफोर दैट वी आर कनेक्टेड टू वन कॉलर। हेलो
2: हेलो, गुड मॉर्निंग।
0: वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अजू है हमारे साथ, राइट?
2: यस यस।
0: ओके, सो हाउ यू डूइंग अजू?
2: Going well, and the good thing is weather is very good, cloudy.
0: Yeah, today cloudy. It's better. Yeah, it's better.
2: Yeah, it is better weather.
0: True.
2: So Nazia, today you are talking UBI, right?
0: Yes.
2: Okay. Who referred this topic from your own or your colleagues or something?
0: No, I did on my own. And the thing is, because I wanted everyone to know about this concept. Many people are there, they are not aware of this terminology UBI, so I just wanted to introduce this. Aur kis tarah se aage aane wale time mein agar ye implement hota hai kuch countries mein to iske kya challenges honge, kya iske fayde ho sakte hain, kya disadvantages ho sakte hain.
2: This UBI is small countries, small population countries and highly economically well that countries is okay.
0: Aur unhi countries mein hai like, zyada karke
2: no see Nazia. See, the system is give and take policy, okay? So the government takes something from you and return back to you.
0: They take tax from us or wages वापस आती है?
2: Yeah, of course. Where will get the money getting from where? Government, from taxes only.
0: True.
2: See, the person was spending, for example, if I'm in India, I'm spending 500 rupees every day, okay? For 2 liter petrol and food and expensive and whatever something only for person 500. It depends on the person. Maybe some person was spending 100-200. Okay. So for the central and state government depends on their

0: would be.
1: We cannot talk against corruption. Please, for my personal opinion, this UBI is totally unfair because this UBI will not get everyone.
0: Yeah. Even I believe this, ki universal basic income ka concept is not fair enough for everyone. Because everyone doesn't suit fit into that idea.
1: For my category in India, I mean upper middle class, I will not get anything. So what is the use in UBI?
0: But you are contributing to economy in some way or the other. आप अपनी lifestyle बेहतर तरीके से spend कर पा रहे हैं, you know, और कोई ऐसे challenges नहीं हैं आपके लिए. तो do you really need supply. Some extra money from government like that? नहीं, because आप तो already कमा रहे हैं. You don't need it, no.
1: Yeah,
0: you can contribute in some way or the other. आप उस position में हैं जहाँ आप contribute कर सकते हैं through tax or whatsoever you can. टैक्स ही है और हमारे पास क्या है, टैक्स के ही थ्रू हम करते हैं. तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन है फॉर ऑल दोज जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं या डाउनट्रोडन्स हैं.
1: यू कैन गिव यूबीआई फॉर द सीनियर सिटीजन व्हिच इज ओके एक्सेप्टेबल.
0: पेंशंस दे आर गेटिंग
1: No, only for government staffs only they are getting pension. For my father is not a government staff, he is a farmer. Now my father is 65 years old. He is not getting anything from the government. Even the If he want to go somewhere, he can pay money.
0: But उसमें भी एक चीज है, मैंने देखा कि अगर जो सीनियर सिटीजन्स हैं और उनका कोई भी नहीं है, मतलब उनको देखभाल करने के लिए, उस केस में तो दिया जाता है.
1: Nothing there, no.
0: नहीं, but you are there to look after him. You are there to you know support him financially. So for that, ऐसे लोग जिनका कोई नहीं है वारिस, you know, उनके लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट होता है.
1: कोई पर्सन आदमी के पास कुछ नहीं है तो हाउ दे कैन सपोर्ट.
0: अगर आप इफ यू आर कमिंग अंडर पॉवर्टी लाइन तो फिर तो एक है सर्टेन एक अमाउंट दिया ही जाता है. जैसे आप जानते हैं तब गवर्नमेंट देती है कि अगर आपकी इतनी इनकम इससे कम है दे यू आर अंडर पॉवर्टी लाइन तो उन लोगों को तो पैसे दिए जाते हैं. देखिए स्कीम्स मैं कहूंगी बहुत अच्छी हैं, बट एग्जीक्यूशन इज अ बिग चैलेंज.
1: Yeah, but this is comes with the pros in this UBI.
0: I myself am not quite a pro of UBI. मैं भी नहीं हूँ, because I understand कि बहुत सारे लोग जो हैं, वो मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं. And if I am taking that money, तो मैं उनका हिस्सा ले रही हूँ, उनका हिस्सा मार रही हूँ. So for that, I'm also not the pro UBI. बट हाँ, आने वाले टाइम में लोग कहते हैं कि ऑटोमेशन और एआई की वजह से जॉब्स खत्म हो जाएंगी और कम होंगी. खत्म तो नहीं कहना चाहिए, लेट्स से कम हो जाएंगी. सो फॉर दैट ये यूबीआई इज गोना बी अ काइंड ऑफ यू नो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको देगा. हल्की सी, बस हल्का सा एक यही पॉइंट है जो हम कह सकते हैं कि हाँ इट्स लाइक क्वाइट रेलेवेंट. अदरवाइज तो हम सब इस चीज़ को जानते हैं और समझते हैं, और शायद इसीलिए हमारी कंट्रीज में तो ये कभी भी हो गई ही नहीं. तो ये बड़ा ही मुश्किल है कि इस तरह का यूबीआई का कॉन्सेप्ट कभी आए. बट हाँ, जहाँ कुछ कंट्रीज़ में वो लोग भी वापस ले रहे हैं, सो दैट हैज़ बिकम क्वाइट डिबेटेबल कि क्यों वापस किया जा रहा है, क्यों यूबीआई को हटाया जा रहा है. एंड दैट्स हाउ आई वांटेड टू नो कि लोग क्या समझते हैं, इसको कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, उनकी क्या राय है.
1: द रियल थिंग इज दिस, सम पीपल नॉट गेटिंग, सम पीपल वाज गेटिंग, दैट इज द
0: That's true. But very well said. Thank you so much for your honest and your opinion aur itni open opinion ke liye. Thank you for connecting with us. Bahut acha lagta hai aapse baat karke aur aap bahut achi raaye hamesha hi hamare saath share karte hain. Thank you once again. Have a great day. Take care.
1: Yeah, have a great day, Najib. Thank you.
0: Take care. Bye. All right, dosto, yahan pe chhota sa break and I'll be right back.

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: राइट दोस्तों, एसपी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाज में बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आपने एंजॉय किया. वेलकम बैक.
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ सिर्फ एफएम 107 पर. दिल से देसी.
0: राइट गाइस, एक बार वापस आप सबको कहूंगी वेलकम, खुशामदीद. आप सुन रहे हैं समा मॉर्निंग्स, मैं हूं नाजिया आपके साथ. आज हमने बहुत ही अलग सा टॉपिक जो था वो बड़ा इंटरेस्टिंग और सुनते ही बड़ा एक्साइट करने वाला टॉपिक लगता है यूबीआई, जहां हम बात करते हैं कि एडिशनल पैसे आपकी बैंक अकाउंट में आ रहे हैं. ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है, बट रियालिटी, ग्राउंड रियालिटी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. देखो, हर कोई चाहता है कि उसको बेसिक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट के अंदर जगह मिले, लेकिन उसके अपने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसके अपने बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं. कुछ प्लस पॉइंट भी हैं, जैसे थोड़ा कुछ हद तक गुर्बत कम हो जाएगी, कुछ हद तक आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, कुछ हद तक कह सकते हैं कि लोग जो हैं वो नए आइडियाज़ की तरफ मोटिवेट हो सकते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा एडिशनल मनी हो तो शायद नए बिजनेसेस भी लोग स्टार्ट कर सकते हैं. थोड़ा स्ट्रेस तो कम होगा, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी तो आएगी ही जहन में, लेकिन अगेन इसकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है. जैसे इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम जब सोचते हैं बहुत सी कंट्रीज़ में तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ये आइडिया आ रहा है, इस पर बात होती है, लोग कहते हैं. अगेन जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जिनकी बहुत अच्छी इकॉनमी है वो तो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी इसको वापस ले लिया फॉर द रीज़न कि जो सबसे बड़ी चीज़ निकल के आई वो ये कि लोगों के काम करने की जो उनकी सलाहियत है या जो काम करने के लिए वो जो मोटिवेट होते थे वो धीरे धीरे कम हो गए और एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया. कुछ लोग ये समझते हैं कि बिना काम के जब इनकम हो ही रही है तो काम क्यों करें. तो ये जो चीज़ है वो डिफरेंट रिसर्चेस हुई, लोग बैठे, उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो लेज़ी हो जाएगी, जो कि है, ये बात सच है. इसके अलावा अगर इसके ड्रॉबैक्स देखे जाएं तो हर कंट्री जो है अगर वो इसको लेकर आता है, या कुछ कंट्रीज़ फॉर एग्जांपल जो भी हैं जो वेल इक्विप्ड हैं या फिर वो कंट्रीज़ जो स्ट्रॉन्ग हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो भी अगर इसको लेकर आती हैं तो इसको लाने के लिए गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा बजट बनाना होगा. एक बहुत बड़ा बजट बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ऑफकोर्स टैक्स से आएगा, तो वो कहीं ना कहीं एडिशनल बर्डन जो है लोगों पर पहुँचेगा. इसके अलावा बहुत सारे इकोनॉमिक है वो ये मानते हैं कि अगर इस कॉन्सेप्ट को ले आए अगर हम, तो जो जो लोग हैं उनमें ना ख़रीदने की, जैसे मैंने कहा कि वो पावर बढ़ जाएगी. परचेजिंग पावर बढ़ती कहाँ से? जब आपके पास पैसा होता है. और जब परचेजिंग पावर बढ़ती है तो चीज़ों की जो सप्लाई और डिमांड की चेंज है वो चेन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, तो फिर उससे क्या होता है? इन्फ्लेशन, यानी महंगाई बढ़ जाती है. तो घर हो, चीज़ें हो, खाना हो, सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, बहुत सारे लोग ख़रीद रहे होंगे तो ज़ाहिर है, तो उसकी तो जब डिमांड ज्यादा होगी तो फिर वो महंगाई भी होने लग जाएंगी चीजें, तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है. फिर एक बहुत बड़ी चीज़ जो बहुत बड़ा चैलेंज है और जिसको मैं भी स्ट्रांगली मानती हूँ, एडवोकेट करती हूँ, यूबीआई का जो बेसिक आइडिया है कि सबको पैसे मिलें, इस आइडिया से मैं इत्तेफाक नहीं रखती. क्योंकि कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, अमीर को भी पैसा मिल रहा है, गरीब को भी पैसा मिल रहा है, तो क्या वाकई हम इंसाफ कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं. जो हम वो जो डिस्पैरिटी गैप को जो कम करने की बात कर रहे हैं वो तो खाई और अमीर और गरीब की खाई बढ़ती चली गई और ज़्यादा बढ़ गई, तो इस लिहाज से भी मुझे लगता है कि सही नहीं है. और फिर आज एआई और ऑटोमेशन तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं और कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि यूबीआई ज़रूरी हो सकता है, जबकि कुछ का ये ख्याल है कि लोगों को पैसे देने की बजाय उन्हें उन पैसों से स्किल्स या फिर कोई बिजनेस सेटअप करा दिया जाए. और ये लाइन, ये बात इतनी अच्छी और इतनी कन्विंसिंग है जिस पर मैं कहूँगी कि यस, अगर कुछ पैसा ऐसा मिल रहा है या कोई ऐसी स्कीम है जहाँ पे लोगों के बिजनेसेस को स्टार्ट कराने में मदद की जाती है, जो कि है भी, तो वो अपने आप में एक बड़ी बात है और अच्छी बात है. क्योंकि हर अच्छा आइडिया तभी कामयाब होता है जब उसके पीछे अच्छे इरादे हों, साफ इरादे हों, लोग साथ में हों, बेहतर प्लानिंग हो, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो और उसका एग्जीक्यूशन

कम्युनिकेशन भी प्रॉपर तरीके से हो और ये सारी चीज़ें व्हेन आई से प्रॉपर आई मीन बहुत ही ऑनेस्टली और अच्छे तरीके से किया जाए तो वाकई वहाँ पर तरक्की नज़र आती है, दिखती भी है और उसका फ़ायदा भी होता है जो हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जो हम देखते हैं, हम बात कर रहे हैं UNSDGs की, जहाँ पे कहा है कि नो पावर्टी, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सबकी बेहतर हो, अच्छी हो, हेल्थ केयर की बात होती है, तो उन सारे गोल्स को अचीव करने की तैयारी भी हमें करनी है। उसके लिए ऐसी स्कीम्स हमें लेकर आना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट ला रही है, उस पर काम चल रहा है और चल रहा है लगातार, हमें भी उसको पूरी तरह से सपोर्ट करना है। जैसे सैयद खादिम हुसैन जी ने कहा, कुछ गलतियां हमारी भी हैं, हम भी उस सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं जिसको हम खुद पसंद नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम जब उन चीज़ों को प्रमोट करने लगते हैं तो वो चीज़ें फिर हमारी रोज़मर्रा की आदत का हिस्सा बन जाती हैं, पर शायद वो हमें बुरी भी नहीं लगती क्योंकि हमने हर बार इतना देख लिया होता है कि हम यूज्ड हो जाते हैं। तो कोशिश यही करना है कि जो चीज़ सही है, जो फेयर है, हमें उसके साथ खड़े होना है हमेशा ही। उसमें हो सकता है हमारा कुछ थोड़ा सा लॉस हो लेकिन किसी और का कुछ ज़्यादा भला हो रहा है जो हमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, तो प्लीज़ उसका ज़रूर भला कीजिए। चलिए अब यहाँ पे इस टॉपिक को तो मैं एंड करूंगी और अब हम अपने गेम सेगमेंट की तरफ आएंगे एंड गेम सेगमेंट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर मैं आपको कुछ हिंट और क्लू दूंगी और आपको मूवी गेस करनी है। 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम होगा, 30 सेकंड्स में क्लू झटपट आपको दिए जाएंगे और जितनी जल्दी आप क्लू समझ के, हिंट समझ के मूवी गेस कर लेते हैं उतने पॉइंट्स आप स्कोर करेंगे। सो अगर आप डायरेक्टली खेलना चाहते हैं, मतलब खुद ही कॉल करना चाहते हैं, तो नंबर है 4434377। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं आपको कॉल करूं तो आप मुझे हाय हेलो लिखकर भेज दीजिए 666-22-107 पर। और आज के लिए एक और खूबसूरत सा गाना कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाज में एंजॉय कीजिए। इट्स 90s स्पेशल, आज हमारा ट्यूसडे का 90s स्पेशल सेगमेंट जहां पे बहुत ही अमेजिंग से गाने आप लोगों के लिए लाइनअप किए हैं। स्टे हुक्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: 107 पर दिल से देसी।
1: Right guys, एक बार वापस आप सबको कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूँ नाजिया आपके साथ 8:32 ऑन द क्लॉक। एंड यस, कुछ लोगों के यहाँ प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं, जैसे डॉक्टर सैम हैं और इन्होंने कहा कि आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया, आई रियली रियली लव्ड लिसनिंग इट। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच आपके इस मैसेज का। इसके अलावा हमें सऊदी अरेबिया से सलाम कहते हुए और सुनते हुए मियाँ बख्श जी, वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग आपको। रियाज जी, ओके रियाज जी का अपना ही कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, गाबा जी ने भी हमको जो है स्क्रीनशॉट भेजा है। इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ जी हैं हमारे साथ, तो मेरे हिसाब से यूपीआई बहुत ही गलत है। हाँ जी, जैसे कि ओ वाओ, और बहुत ही अच्छा नाम यूसुफ जी ने कहा है कि इसका नाम यूपीआई नहीं होना चाहिए, DPBI, डिजर्व पीपल बेसिक इनकम। बहुत ही अच्छा, मैं भी यही कहूँगा कि आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक था। थैंक यू सो मच यूसुफ जी, थैंक यू। एंड कुछ लोग जो हैं वाकई इसके साथ, आई एम फ्री तमिलनाडु, आई टोटली एग्री। अच्छा, सलाम है कादिर अब्दुल हादी जी, वालेकुम अस्सलाम। शायद वो यूबीआई के बारे में ही बताना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके साथ है यहाँ पर, ओ वाह, अबुधाबी से कोई हमें सुनता हुआ, रणवीर सिंह जी हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बड़ा अच्छा लग रहा है कि कुछ लोग सऊदी से सुनते हुए, कुछ लोग हमें अबुधाबी से सुनते हुए, दैट्स नाइस। एंड प्रिंसन है हमारे साथ, कहते हैं आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट। ओ रियली, अभी हम आपके साथ जो है वो इस गेम का आगाज करते हैं। आपको मैं कॉल मिलाती हूँ, लेकिन कुछ मैसेजेस रह जाते हैं तो वो मैं कंप्लीट कर लूँ। यहाँ पर एक और मैसेज है और इनका नाम तो नहीं लिखा है, बट ये कहते हैं कि आपके आज के इस टॉपिक को मैंने बहुत एंजॉय किया एंड थैंक यू सो मच। कभी कभी इस तरह के टॉपिक होने भी चाहिए। ओह थैंक यू सो मच, आप अपना नाम लिखते तो कितना अच्छा होता। अच्छा, ये दुआ है मेरी रब से, ये सॉन्ग की रिक्वेस्ट है मुमताज अहमद जी की। अच्छा, यहाँ पर मुझे दो रिक्वेस्ट आई हैं, एक है गाना हम तो दीवाने हुए यार, ये गाने की रिक्वेस्ट मुझे भेजी है और इनका नाम है अहमद जी। उसके अलावा एक और गाना है मौका मिलेगा, जो हमें रिक्वेस्ट भेजी है इस गाने की, और ये गाने की रिक्वेस्ट है सैयद खादिम हुसैन जी की। तो अब इन दोनों में से आप मुझे बताइए कि कौन सा गाना आपको लगता है कि चलाना मुझे चाहिए।
2: मामा ठाकुर, हम एक दूसरे से
1: अब जरा सा मुझे थोड़ा सा आप लोग मुझे बताएंगे जरूर कि ये दो गाने जो हैं, अभी मैंने जो दो बताए, अहमद जी की रिक्वेस्ट है हम तो दीवाने हुए यार, या फिर सैयद खादिम जी की रिक्वेस्ट है मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, इन दोनों में से कौन सा गाना जो है आप चाहते हैं कि चलाया जाए। ज़्यादा लोग कौन से गाने के लिए वोट कर रहे हैं ये मुझे बताइए, तो वही गाना आप लोग के लिए प्ले किया जाएगा। एंड यहाँ पर ओके, यहाँ पे प्रिंसन ने बहुत ही अच्छा प्यारा वाला जो कि दीपिका का हस्बैंड आपको सुनता है अबुधाबी से, हाँ रणवीर जी का मैसेज था, इट्स रियली नाइस। जसविंदर जी ने कहा है कि मौका मिलेगा तो ये गाना चलाइए। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, जैसे हम दो गाने आपसे पूछ रहे हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट करें कि हमें बताइए कौन सा गाना चलाना चाहिए हमें। मौका मिलेगा तो मैं बता दूंगा, मतलब मैं सुनवा दूंगी, मौका मिलते ही ये गाना चलाऊंगी, या फिर दूसरा गाना हम तो दीवाने हुए यार जो अहमद जी ने हमें रिक्वेस्ट की है, तो आप डिसाइड कीजिए, बताइए। उससे पहले हमारे साथ यहाँ कॉलर जुड़ गए, हेलो।
3: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हैं जावेद जी आप?
3: अल्लाह का शुक्र है। मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करूंगा कि अब फकत आदतों की वर्दिश है, रूह शामिल नहीं शिकायतों में। तो मिला के मैंने दुनिया अचीव कर ली, लेकिन कॉल ना मिल पाई मेरी, आखिर मिल गई।
1: चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली मिल गई। मैंने आपसे कहा आप इतनी जहमत ना लिया करें और मुझे एक मैसेज कर दिया करें कि मुझे प्लीज़ कॉल कर लीजिए, तो मैं अब मैं मैसेज भी देखती ही रहती हूँ, तो मैं आपको कॉल कर लूँगी उस केस में।
3: वो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि मैं बाज़ूकात ऐसी जगह पे होता हूँ जहाँ पर कवरेज नहीं होती।
1: हाँ, ठीक सही।
3: तो वहाँ पर फिर मतलब है कि आप मुझे बिल्कुल मेहरबानी है कि आप कॉल करेंगे, लेकिन फिर मेरे तक वहाँ तक सिग्नल्स नहीं पहुँचेंगे तो अच्छा नहीं है ना फिर इस चीज़ का।
1: अच्छा, सही।
3: और मैं सारे लिसनर्स जितने भी हैं उनको भी सलाम करता हूँ, जितने भी पार्टिसिपेट जिन्होंने आज किया माशाल्लाह, एक से एक अपनी अच्छी खूबसूरत राय और गाबा जी मैं उनको नहीं जानता लेकिन मेरा मैसेज अगर वो सुन ले तो बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया है और
1: अच्छा।
3: मैं मुझे कभी किसी ने पैसे नहीं भेजे, प्लीज मुझे भेजिए मैं भी देखूं इसका
1: क्या मैं वापस कर पाता हूँ कि नहीं, मैं भी तो देखूं। नहीं पता, मुझे यकीन है आप वापस कर देंगे, इस चीज़ का तो मुझे यकीन है, मैं ट्राई कर सकती हूँ, आपको भेजूँ और मुझे पता है आप वापस आराम से करेंगे और उसमें कुछ एक्स्ट्रा और लगा के वापस करेंगे।
3: काफी एक्स्ट्रा लगा के भेजूंगा। अच्छा फिर सवाल यहाँ पर, मतलब गाबा जी की बात सुन के मैं ये सोच रहा था क्योंकि इंसान फिर सोच में जाता है कि यार रूए जमीन पर क्या अगर इंसान के अंदर एक लुकमा भी जो हलाल का ना हो तो क्या उसके अंदर राहत मुसर्रत या वो फील सुकून से उसका जमीर गवारा करता है?
1: बिल्कुल भी नहीं मुझे नहीं लगता।
3: तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि दो गानों का आपने लोगों को वैसे ही बता दिया है कि तो मैं
1: कौन सा आपकी चॉइस है?
3: नहीं मुझे तो अच्छा है, मौका मिले तो हम बता
1: अच्छा।
3: देंगे।
1: तो अभी तक तो मेरे पास तीन लोगों का यही मैसेज है, ये हमें रिक्वेस्ट सैयद खादिम हुसैन जी ने की थी और एक रिक्वेस्ट की है अहमद जी ने, हम तो दीवाने हुए, तो अभी तक मौका मिलेगा कि ज़्यादा लोग जो हैं वो कह रहे हैं तो ये मैं चलाऊंगी। लेकिन उसके पहले आपको मेरे साथ गेम तो खेलना ही पड़ेगा।
3: नहीं पहले मौका तो मैं इसलिए मौका इसलिए क्योंकि मैं अपने हिसाब से मौका देख रहा हूँ कि कौन से लोग मुझे पैसे भेज दें, मैं मौका तलाश करूँ।
1: नहीं अब मुझे मौका मिला है तो मैं आपके साथ गेम तो पक्का खेलूंगी। यहाँ पर मैं कुछ डायलॉग्स आपको बोलूंगी, आपको मूवी गेस करनी है 30 सेकंड्स। अरे पहचान लेंगे, अरे पक्का पहचान लेंगे, मुझे यकीन है आप पहचान लेंगे। बहुत सिंपल रखी है, मैंने ट्राई कीजिए ठीक है?
3: अच्छा जी
1: चलो ठीक है, आपके साथ स्टार्ट करते हैं और 30 सेकंड्स आपके स्टार्ट होते हैं। कितने आदमी थे?
3: शोले।
1: मुगैम्बो खुश हुआ?
3: मिस्टर इंडिया।
1: मेरे पास माँ है?
3: तिवार।
1: जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी।
3: डर।
1: ये
3: सही नहीं, सॉरी नहीं वो शाहरुख खान की जो है, शाहरुख खान की काजुल की।
1: राइट। अच्छा बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
3: पास।
1: टाइम निकल गया, बट आपने तीन मूवी सही गेस की हैं, शोले, मिस्टर इंडिया एंड दीवार। क्या बात है, कह रहे थे मुझे एक भी मूवी नहीं आती और तीन का स्कोर आपने किया। वाओ,
3: नहीं वो दिल वाले दुल्हनिया लेके बाद में याद आ गया आपने दिल वाले जो एकदम मतलब एकदम सडनली मैं मतलब उस
1: आपने थ्री का स्कोर भी किया, आपके ठीक ठाक नॉलेज है मूवीज को लेकर, ऐसा नहीं है?
3: बाकी थैंक यू वेरी मच। और दूसरा ये कि दो दिन मेरी गैर हाजिरी होगी क्योंकि आई एम जस्ट ट्रैवलिंग आउट ऑफ स्टेशन।
1: ओके
3: तो फिर वापसी मेरी होगी सैटरडे और इंशाल्लाह संडे को मैं जुड़ूंगा आप सबके साथ। ठीक है,
1: डेफिनेटली। चलिए आप अच्छे से जाइए और साथ खैरियत के आइए। अगर कोई मुझे यहाँ पे कॉल कर रहा है जिनका नंबर है लास्ट में 365 तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप मुझे कॉल कीजिए, नंबर है 443-443-77। ठीक है, 443-443-77 हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे साथ गेम खेलना चाहते हैं, कुछ और बात करना चाहते हैं, ज़रूर जुड़िए। और यहाँ पे कुछ लोग हाय भी लिखकर भेज रहे हैं, तो जो लोग हाय हेलो लिखकर भेज रहे हैं उन्हें हम अभी थोड़ी देर में कनेक्ट करेंगे। हेलो
4: हेलो
1: हाय गुड मॉर्निंग, कौन है मेरे साथ?
4: गुड मॉर्निंग, राज है।
1: हाय राज,

0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया, आप कैसे हैं मैडम?
0: आज तो बहुत टाइम के बाद आपसे बात हो रही है। तो क्या वेकेशंस वगैरह पे आप गए थे?
1: मतलब I keep coming and going.
0: तो चलिए आपके साथ गेम खेलूंगी और आप तो हमारे हमेशा के हमेशा ही हर गेम के चैंपियन रहे हैं। आई होप आज भी आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। कुछ मैं डायलॉग्स बोलूंगी और आपको मूवी गेस करनी है। ठीक है, चलो जी। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। वन मिनट। अब मोगैम्बो खुश हुआ।
1: इंडिया।
0: बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: DDLJ।
0: राहुल नाम तो सुना होगा।
1: DDLJ।
0: नो। प्यार दोस्ती है।
1: पार।
0: हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं और शादी भी एक बार होती है।
1: पार।
0: ऑल इज वेल।
1: Three idiots.
0: Finally, आपने 1-2. चलिए, फिर भी आपने कुछ तो स्कोर तो किया है राज, क्योंकि ये नया गेम है, अभी हम लोगों ने नया स्टार्ट किया है, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई एम श्योर आप आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बट वेरी वेल प्लेड, बहुत अच्छी कोशिश। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। ऑल राइट, हैव अ ग्रेट डे, बाय। दोस्तों, यहाँ पर जो है वो गेम स्टार्ट हो गया है, जहाँ पर मैं आपके लिए डायलॉग्स बोल रही हूँ और आपको मूवी पहचाननी है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप पहचान सकते हैं, ठीक ठाक तरीके से स्कोर कर सकते हैं, तो हाय हेलो लिखकर आप मुझे भेजिए, मैं आपको यहाँ पे कॉल करूँगी। अच्छा, यहाँ पर यूसुफ जी ने कहा कि राज जी का 3 स्कोर हुआ। अच्छा, ओके, आई एम सॉरी, मुझे लगा कि उन्होंने शायद 2 बताए, बट यहाँ पर उन्होंने बोला कि नहीं, 3 स्कोर किया है, सो दैट्स नाइस। दो मुझे क्यों याद आता है, अच्छा हाँ 3 हुआ, ऑल इज वेल भी था। चलिए, थैंक यू सो मच यूसुफ जी, थैंक यू, आपने मुझे करेक्ट किया, वरना मैंने राज जी को सिर्फ 2 ही का स्कोर बोल दिया। बट चलिए, इट्स अ टाई, जावेद जी ने भी 3 का स्कोर किया और इन्होंने भी 3 का स्कोर किया। अगर आप हाई लिख के भेज रहे हो ना, तो उसका मतलब ये है कि आप गेम खेलना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई है, मैम आई विल प्ले। ओके नाइस, इनका नाम है मोइन अहमद। ओके, सो इनको मैं कनेक्ट करती हूँ, बट बिफोर दैट वी आर कनेक्टेड टू वन मोर कॉलर। हेलो,
2: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन है हमारे साथ?
2: सरफराज आलम बात कर रहा हूँ। नाजिया मैम, क्या हाल चाल है आप?
0: कैसे हैं सरफराज आलम जी? एक जमाने के बाद आपसे बात हो रही है, इसलिए मैं आपकी आवाज़ भी नहीं पहचान पाई। सही है, आप खैरियत से हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ।
2: बहुत बार फोन लगाया लेकिन वो छुट्टी पे चली गई।
0: बट इंशाल्लाह वो आएंगी, लास्ट तक आ जाएंगी। हाँ, इस शो में तो शायद 2 ही दिन हो, फिर बाकी नए टाइम पे इंशाल्लाह। तो चलिए, आपके साथ जो है वो गेम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ डायलॉग्स बोलूंगी मूवी के और आपको झटपट से मूवी पहचाननी है। समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट बोलते जाइएगा, 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है। ठीक है, ओके। तो चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑल इज वेल।
1: थ्री इडियट्स।
0: जादू की झप्पी।
1: जादू की झप्पी, मुन्ना भाई एमबीबीएस।
0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
1: पास।
0: पलट पलट पलट।
1: डीडीएलजे।
0: बिल्कुल सही। रिश्ते में तो हम तुम्हारे अब्बा लगते हैं।
1: नाम है शहंशाह।
0: एक चुटकी सिंदूर की कीमत।
1: एक चुटकी सिंदूर की कीमत, दीपिका पादुकोण।
0: चलिए, थोड़ा सा और टाइम देते हैं, सोचिए नाम बताइए। दीपिका आपने बिल्कुल सही पहचाना। मूवी कौन सी है?
1: देवदास। देवदास।
0: पूछा भी तो किसी ने गलत बताया आपको, हद है।
1: हमारे साथ हमारे दोस्त बैठे हुए हैं।
0: ये आपकी नेगेटिव मार्किंग करवाएंगे जरूर।

0: जो कर जीत रहे गलत बता बता के ये हरवा देंगे. लेकिन आपने हाईएस्ट स्कोर किया पता है, 1, 2, 3, 4 आपने किया है. 5 आप कर सकते थे अगर आप एक चुटकी सिंदूर की कीमत बता पाते, लेकिन आपने हाईएस्ट स्कोर किया अभी तक का.
1: मैं भूल गया.
0: मैं अभी इसलिए नहीं बताऊंगी, किसी और से पूछ लूंगी ना ये. मैं हो सकता है वो बता दे. ओम शांति ओम था. आपको याद भी आ गई दीपिका, बट नाम नहीं याद आया. बट फिर भी आपने बहुत अच्छा खेला, काफी अच्छा स्कोर किया. क्या बात है सरफराज जी, नॉट एट ऑल बैड. आप आए और आते के साथ ही एकदम धमाल वाली एंट्री आपने ली है. सबसे हाईएस्ट स्कोर है अभी आपका. देखते हैं
1: क्योंकि मुझे देखने का बहुत शौक है, तो इसलिए दोस्त लोग बैठे यार लगाओ, आप लगाओ, आप उनको कनेक्ट कर लगाओ.
0: चलिए अच्छा है आपको शौक है और आप पहचान पा रहे हैं, क्योंकि डायलॉग्स कभी कभी थोड़ा सा टफ होता है, नहीं याद आती ना मूवी. लेकिन मैंने सारे बिल्कुल पॉपुलर वाले डायलॉग्स निकाले हैं, तो मुझे था कि शायद कोई पहचाने. बट वेरी वेल प्लेड, थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. और अपने सारे फ्रेंड्स को मेरी तरफ से हाई कहिएगा. हैव अ ग्रेट मॉर्निंग, एंजॉय कीजिए अपनी मॉर्निंग को एंड रेस्ट ऑफ योर डे. ओके टेक केयर, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज. ऑल राइट, यहाँ पर जो है दोस्तों गेम स्टार्ट हो चुका है. यहाँ पे मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कनेक्ट हो जाऊँ. ओके लेकिन उससे पहले कोई मेरे साथ यहाँ जुड़ना है. ठीक है, हेलो. अरे वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आरिफ जी हमारे साथ राइट. तो आप गेम खेलने के लिए तैयार हैं? चलो जी आपके साथ गेम स्टार्ट करते हैं और 30 सेकंड्स आपको मिलेंगे जितने मैक्सिमम मूवीज आप पहचान लें.
1: ओके
0: ओके आपका टाइम स्टार्ट होता है. आप एक चुटकी सिंदूर की कीमत.
1: ओम शांति ओम.
0: पुष्पा आई हेट टीयर्स.
1: पुष्पा.
0: बाबू मशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं. उठा ले रे बाबा उठा ले.
1: हेरा फेरी.
0: क्या बोला आपने?
1: हेरा फेरी.
0: सही, ये बाबू राव का स्टाइल है. फिर हेरा फेरी. आपने तीन यहाँ पे सही पहचाने हैं. 1, 2, 3, 4 फोर आपने सही पहचाने. आरिफ जी क्या बात है, 4 आपने स्कोर किया है. आपका और सरफराज जी का टाई हो गया. बट आपने अच्छी ट्राई की, बहुत अच्छी ट्राई की. एक आप अलबत्ता नहीं पहचान पाए कौन सा था, बट चलिए फिर भी बहुत अच्छी कोशिश एंड वेरी वेल प्लेड. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. अपना ख्याल रखिए. हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज. ओके दोस्तों, अब कुछ लोग जो हमें हाय हेलो लिखकर भेज रहे हैं और बोल रहे हैं कि प्लीज़ हमें कॉल कर लीजिए. मोइन जी मैं अभी बस आपको कॉल करूँगी एंड यहाँ पर साकिब जी हमारे साथ गेम खेलना चाहते हैं उनको मैं करूँगी. प्रिंसन को मुझे कॉल करना है एंड मुस्तकीम जी इन्होंने बोला है कि इन्हें गेम खेलना है, इनके इन्हें मैं कॉल करूँ, तो मैं आपको कॉल करती हूँ. ठीक है, लेकिन उसके पहले जो हमें गाने की रिक्वेस्ट आई और जहाँ आप लोगों ने कहा कि गाना चला दीजिए, तो चला देते हैं. बट यहाँ पे अच्छा है कि इसमें पहले डायलॉग है ज़्यादा. चलिए खैर मैं एडिटेड वर्जन भी देखूंगी, जब तक ये डायलॉग्स चल रहे हैं तब तक कुछ मैसेजेस ले लें. यहाँ पे सलाम कहती हैं, कैसी हैं आप? और जहरा नसीम पाकिस्तान से, सैयद खादिम हुसैन की बड़ी बेटी, आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ. मेरे बाबा का नाम रेडियो पर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है. मेरे बाबा को स्पेशल सलाम. क्या बात है, चलिए आपकी बेटी का इतना प्यारा सा मैसेज. आई होप आप सुन पाते या सुन रहे, आई डोंट नो. यहाँ पर प्रिंसन को कॉल कर लीजिए, मैं अभी करती हूँ इन्हें कॉल. एंड साकिब जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेट्स प्ले. श्योर साकिब जी, ज़रूर. अब मुझे टाइम अलाउ करता है कि नहीं करता है मैडम जी. जसविंदर जी कह रहे कितनी गोलियाँ हैं. चलिए अभी एक गोली देते हैं.

राइट गाइस, वेलकम बैक. और आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स. मैं हूं नाजिया आपके साथ. आइडियली तो मुझे एक दो लोगों को और कॉल पे लेना ही चाहिए, बट अब मेरे पास टाइम नहीं है. और इट्स अ प्रॉमिस प्रिंसन, कल भी हम ये वाला गेम रखेंगे, तो कल मैं डेफिनेटली आपको कॉल करूंगी एंड टाइम होगा 8:20 के आसपास. साकिब, मैं आपको भी कल कॉल करूंगी. मैंने आपके नंबर यहाँ लिख लिए हैं. मोइन का नंबर मैंने लिख लिया है, मुस्तकीम का नंबर मैंने लिख लिया है. वो लोग जो आज मेरे साथ गेम खेलना चाहते थे, फॉर सम रीजन हम नहीं खिला सके, और आपके सॉन्ग को भी मुझे प्ले करना था, इसलिए कल ये गेम आपके साथ मैं कंटिन्यू करूंगी. लेकिन आज जो लोग हमारे साथ खेले उसमें टाई जबरदस्त आ रहा है. सरफराज और आरिफ जी ने 4-4 का स्कोर किया है, जो कि अपने आप में बहुत ही अमेजिंग है. थैंक यू सो मच प्रिंसन फॉर द स्पिरिट, यू आर रियली अ पॉजिटिव पर्सन. उन्होंने लिखा नो वरीज, थैंक यू सो मच. कल मैं डेफिनेटली आपको खुद कॉल मिलाऊंगा, इट्स गोना बी अ सरप्राइज कॉल. बट आज के लिए दोस्तों बस इतना ही. कल इंशाल्लाह सुबह 6 बजे आपकी हमारी मुलाकात होगी इसी शो में जिसका नाम है समर मॉर्निंग्स. तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए FM 107 और कहते रहिए दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर. दिल से देसी.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी

0: शिरकत के लिए भी क्वालिफाई करेंगे। सामीन समाप्त कीजिए न्यूज़ हेडलाइंस।
1: न्यूज़ हेडलाइंस आरजे सफा के साथ फ्रॉम उर्दू रेडियो एफएम 107।
2: साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से इस्लामी ममालिक में रबियों के इत्तेहाद के सरबरा और उनके हमरा वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में वफ्द ने साहिब समूह अमीर वालिद रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल पर दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब, जॉर्डन और कनाडा के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर राब्तों के दौरान खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल, बिलखसूस कशीदगी में कमी, अमनो इस्तेहकाम के फ़रोग़ और मुश्तरका सफारती राब्तों से मुतालिक जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। वज़ारत दाखला और दाखली सलामती फोर्स लखोया के कमांडर ने पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखला व नारकोटिक्स के वज़ीर मोहसिन रज़ा नकवी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी के शोबों में तआवुन के ताल्लुकात और उन्हें मज़ीद फ़रोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। कतर ने ड्रोन्स के ज़रिए सऊदी अरब की तेल की तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिशों की मज़ाहमत करते हुए इन हमलों को सऊदी अरब की ख़ुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया है। इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर एफएम 107 से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। स्टूडियो से हमारी साउंड टेक्नीशियन नूर, सोशल मीडिया टीम से युसरा महमूद और न्यूज़ रूम से फुरकान शाहिद और मुझे यानी सफा सफदर को अगली मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। फी अमान अल्लाह।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे ईसा बाशिम के बारे में। ईसा बाशिम कतर के मशहूर एथलीट हैं जो सिर्फ अपनी ज़ाती कामयाबियों की वजह से ही नहीं बल्कि अपने बेटे और ओलंपिक हाई जंप चैम्पियन मुमताज़ बाशिम की तरबियत और हौसला अफजाई की वजह से भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत हिस्सा एथलेटिक्स को दिया और हमेशा सेहतमंद और एक्टिव ज़िंदगी का पैगाम दिया। हाल ही में ईसा बाशिम ने एक और काबिल तारीफ कामयाबी हासिल की जब उन्होंने GCC गेम्स में 5000 मीटर रेस वॉक मुकाबले में मेडल जीता। दोस्तों, इस कामयाबी ने साबित किया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और लगन, मेहनत और डिसिप्लिन के जरिए हर स्टेप्स पर बेहतरीन नतायज हासिल किए जा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि इसी टूर्नामेंट में, यानी इसी चैम्पियनशिप में, बाप और बेटे यानी मुमताज़ बाशिम और उनके वालिद ईसा बाशिम ने कॉम्पीट किया। एंड दैट इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, जहाँ पे फादर एंड सन जो है अपने अपने मुख्तलिफ इवेंट्स में कॉम्पीट करते हुए सबको नजर आए। या दोस्तों, मुमताज़ बाशिम की कामयाबी के पीछे भी उनके वालिद का अहम किरदार रहा है। उन्होंने बचपन से ही अपने बेटे को स्पोर्ट्स की तरफ रागिब किया और उन्हें मेहनत, सब्र और अज़म की तालीम दी। आज मुमताज़ बाशिम दुनिया के अजीम तरीन हाई जंप एथलीट्स में शुमार होते हैं, जबकि उनके वालिद अपनी मिसाली ज़िंदगी और स्पोर्ट्स से वफादारी की वजह से लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने हुए हैं। ईसा बाशिम की कहानी ये पैगाम देती है कि खानदानी हिमायत, लगातार मेहनत और स्पोर्ट्स से मोहब्बत जनरेशन तक कामयाबी का जरिया बन सकती है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, अब कतर में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है। मैतराज 2 ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी फिजिकल विजिट के। इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो। तीसरा, दोनों पार्टीज सेलर और बायर का मैतराज ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा, बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

0: पूरी करती हो। प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है, मैत्राज 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं कि हर उम्र में एक्सरसाइज जो है वो होनी चाहिए और वो कैसे। एक्सरसाइज सेहतमंद जिंदगी की बुनियाद है, लेकिन हर उम्र में इसकी ज़रूरत और उसके फवायद मुख्तलिफ हो सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बच्चों और नौजवानों में एक्सरसाइज की अहमियत पर बात करेंगे। बचपन जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा का अहम दौर होता है। इस उम्र में दौड़ना, खेलना, साइकिल चलाना, स्विमिंग करना और इस तरह और बहुत सारी जो हमारी जिस्मानी एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चों की बोन्स को और उनके मसल्स को मजबूत बनाती हैं। एक्सरसाइज दिल और फेफड़ों की कारकर्दगी को बेहतर बनाती है और मोटापे के ख़तरे को कम करती चली जाती है। और ये अब बहुत बड़ा एक पूरी दुनिया का एक इशू है कि मोटापा जो है बचपन में और जो टीनएजर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। आजकल बच्चों का ज़्यादा वक्त मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स और वीडियो गेम्स पर गुजरता है, जिससे जिस्मानी एक्टिविटी कम हो जाती है और इसी वजह से वज़न ज़्यादा होने लगता है, कमज़ोर जिस्मानी सेहत और इसी तरह जो तवज्जो में कमी जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। यंग एज में यानी नौजवानी में एक्सरसाइज की अहमियत और ज़्यादा हो जाती है। इस उम्र में हमारा जिस्म तेज़ी से ग्रोथ उसमें होती है, नशोनुमा पाता है और बाकायदा वर्जिश एतमाद, कुव्वत बर्दाश्त और जिस्मानी फिटनेस में इजाफा करती है। बहुत सारी जो रिसर्चेस की गई हैं और इन रिसर्च से मालूम हुआ है कि एक्सरसाइज जहनी सेहत के लिए बेहद मुफीद है। ये हमारे जहनी दबाव को कम करती है, मूड बेहतर बनाती है और तालीमी कारकर्दगी में मददगार साबित होती है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों और नौजवानों को रोज़ाना कम से कम 1 घंटा जिस्मानी कोई भी एक्टिविटी एक्सरसाइज करने की तरगीब दें। और ये तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो खेल कूद, पैदल चलना, साइकिलिंग या किसी भी पसंदीदा खेल की सूरत में हो सकती हैं, यानी जो भी उन्हें खेल जो है वो पसंद हो आप उन्हें इनक्रेज कीजिए। याद रखिए बचपन में अपनाई गई सेहतमंद आदत ज़िंदगी भर फ़ायदा देती हैं।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: One step to 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
2: One Step to 2030.
1: दोस्तों आज हम बात करेंगे Humans Plus Machine, जिसे कहते हैं Human Augmentation. आज हम सिर्फ स्मार्ट वॉच पहनते हैं, लेकिन फ्यूचर में टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा स्मार्ट हो जाएगी, हमारी बॉडी का हिस्सा बन सकती है। ह्यूमन ऑगमेंटेशन का मतलब है टेक्नोलॉजी इंसान की एबिलिटीज को एनहांस करे, चाहे फिजिकल हो या फिर मेंटल। इसमें वेयरेबल डिवाइसेस भी शामिल हैं, जैसे स्मार्ट ग्लासेस जो आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन देते हैं, या फिर ऐसे सूट्स जो इंसान की स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। और भी एडवांस चीजें हैं, जैसे ब्रेन इम्प्लांट्स, जैसे इंसान मशीन को सिर्फ सोच से कंट्रोल कर सकता है। मेडिकल फील्ड में ये टेक्नोलॉजी डिसेबल्ड लोगों की लाइफ चेंज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिफिशियल लिम्स जो बिल्कुल रियल जैसे मूव करते हैं। फ्यूचर में हो सकता है कि इंसान ज्यादा फास्ट सोच सके, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मशीन्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए। लेकिन यहाँ एथिकल सवाल भी है, क्या इंसान और मशीन का फर्क खत्म हो जाएगा? क्या ये सेफ है? पता नहीं। ह्यूमन प्लस मशीन फ्यूचर का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट। ये लाइफ को आसान और बेहतर बना सकता है, लेकिन इसे रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना होगा। दोस्तों एक बात तो क्लियर है, 2030 यानी 2030 का फ्यूचर सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, बल्कि इंसान और टेक्नोलॉजी की पार्टनरशिप का है। चाहे फार्मिंग हो, एनवायरमेंट हो, जॉब्स हो या फिर ह्यूमन एबिलिटीज, हर जगह इनोवेशन हमें एक नई दुनिया की तरफ ले जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि फ्यूचर आएगा, किस तरह से आएगा, किस तरह से हमें उसको अडॉप्ट करना है। सवाल ये है कि हम उसके लिए कितना तैयार हैं, क्या हम उस तरह से तैयार हैं कि नहीं, ये चीज जानना और समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। वेल चलिए, ये सवाल मैं आपकी तरफ ही इसको थ्रो कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ। सोचिएगा, बताइएगा कि आप क्या उस तरीके से तैयार हैं, क्या मेंटली फिजिकली आपने अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया है, इस लर्निंग का हिस्सा बन चुके हैं कि नहीं। फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: दोस्तों, घर की हिफाजत आपके हाथों में है। एयर कंडीशनर की सेफ्टी पर तवज्जो दें। हर साल कई घर सिर्फ इस वजह से आग के शिकार होते हैं कि लोग छोटी छोटी सेफ्टी को नजरअंदाज कर देते हैं। एयर कंडीशनर का सही इस्तेमाल और देखभाल आपको इस किस्म के हादसों से बचा सकता है। इससे मुताल्लिक कुछ एहतियात बरतें। एयर कंडीशन की सफाई में लापरवाही ना करें। अगर आप अपने एसी की सफाई नहीं करते हैं तो उसमें धूल मैल वगैरह जमा हो जाता है। ये ब्लॉकेज गर्म हवा का रास्ता रोकता है, जिससे यूनिट ज्यादा गर्म होकर आग लग सकती है। हर 2-3 महीने में फिल्टर की सफाई करें और एक दफा एसी का ओवरऑल चेक जरूर करवाएं। बिजली के लोड का ख्याल कीजिए। अक्सर लोग मार्केट से सस्ता और नॉन स्टैंडर्ड डिवाइस या एक्सटेंशन ले आते हैं, जो एयर कंडीशनर का लोड बर्दाश्त नहीं करते। ये छोटी सी गलती शॉर्ट सर्किट या स्पार्क बन सकती है। हमेशा सिर्फ सर्टिफाइड और अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक आइटम्स का ही इस्तेमाल करें। हमेशा किसी प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन से मशवरा लें। एसी से पानी टपकता है, वहां स्विच या सॉकेट लगाने से बिजली का करंट या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। याद रखें, हमेशा किसी एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस करवाएं। अगर एसी से अजीब स्मेल, आवाज या ज्यादा गर्म हवा आ रही हो तो फौरन उसे बंद करें और चेक करवाएं। FM 107 कहता है कि आपकी आगाही और एहतियात ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर वालों की जिंदगी बचा सकता है।
1: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
2: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107, Dil Se Desi.
3: आप सुन रहे हैं FM 107.
4: Dil Se Desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम बैक टू इको स्विच विद सफा ऑन FM 107, जहां हम बात करते हैं उन सिंपल आइडियाज की जो हमारी डेली लाइफ को ज्यादा सस्टेनेबल बना सकते हैं। भाई देखिए, आज का टॉपिक है यूजिंग रिफिलिंग स्टेशंस, यानी के एक ही कंटेनर को बार बार रिफिल करना इंस्टेड ऑफ हर बार नई बॉटल या पैकेजिंग खरीदना। देखिए, हम अक्सर सुपरमार्केट जाते हैं और शैम्पू, हैंड वॉश, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स या वाटर बॉटल्स खरीदते ही हैं, है कि नहीं? ये तो डेली लाइफ की चीजें हैं। प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, बॉटल डस्टबिन में चली जाती है और हम फिर से क्या करते हैं, एक नई बोतल खरीद लाते हैं। अच्छा, इको स्विच हमें एक सिंपल सवाल पूछता है, अगर सिर्फ अंदर का प्रोडक्ट खत्म हुआ है तो भाई पूरी पूरी बॉटल क्यों दोबारा खरीदनी? अच्छा जरा सोचिए, दोहा में एक फैमिली है जहां हर महीने शैम्पू, डिश वॉशिंग लिक्विड, हैंड सोप और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स खत्म हो जाते हैं। ये तो नॉर्मल सी चीज है, हर बार नई प्लास्टिक बॉटल्स घर आती हैं और पुरानी बॉटल्स ये जा डस्टबिन के अंदर। साल के एंड तक अगर देखा जाए तो एक ही घर से डजंस ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स कलेक्ट किए जा सकते हैं। अब आप इमेजिन करें कि अगर वही फैमिली एक स्ट्रॉन्ग रीयूजेबल बॉटल रखे और सिर्फ प्रोडक्ट रिफिल करवाए, तो भाई प्रोडक्ट भी मिल गया, पैकेजिंग वेस्ट भी कम हो गया। ये है इको स्विच का सिंपल सा आइडिया, यानी कंज्यूम करें लेकिन अननेसेसरी वेस्ट क्रिएट ना करें। अच्छा भाई, अब आपको ना चलते चलते कुछ इंटरेस्टिंग सरप्राइजिंग से फैक्ट्स बता देती हूँ। देखिए, दुनिया भर में हर साल आप कह लें कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ टन्स प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है और सिंगल यूज पैकेजिंग इसी का बड़ा हिस्सा है। अच्छा, एक प्लास्टिक बॉटल या कंटेनर को बनाने में रॉ मटेरियल्स, एनर्जी और वाटर, जो पानी होता है ना, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर एक ही कंटेनर को मल्टीपल टाइम्स यूज किया जाए तो भाई हर रिफिल के साथ नई पैकेजिंग की जरूरत कम हो जाती है। अच्छा, रिसर्च के मुताबिक रीयूजेबल कंटेनर्स अगर प्रॉपरली मेंटेन किए जाएं तो डजंस या हंड्रेड्स ऑफ सिंगल यूज कंटेनर्स रिप्लेस किए जा सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिफिल सिस्टम सिर्फ प्लास्टिक कम नहीं करते बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन इमिशन भी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अच्छा साथियों, कतर में रिफिल कल्चर अभी कुछ कंट्रीज की तरह वाइड स्प्रेड नहीं हुआ, ये मैं मानती हूँ, लेकिन सस्टेनेबिलिटी अवेयरनेस के साथ साथ ये कॉन्सेप्ट ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है। कुछ सुपरमार्केट्स इको कॉन्शियस स्टोर्स और क्लीनिंग प्रोडक्ट सप्लाईज, रिफिल ऑप्शंस और रीयूजेबल सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं। कतर में कुछ लोग पानी रिफिल स्टेशन का भी यूज करते हैं स्पेशली रीयूजेबल बॉटल्स के लिए, साथ ही क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के लिए कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूलाज और रिफिल पैकेजिंग्स भी अवेलेबल होती हैं, जो कि पैकेजिंग वेस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। अच्छा, इको स्विच का मैसेज ये है कि हम सिर्फ ये देखें कि भाई हमारे एरिया में कौन सा रिफिल ऑप्शन अवेलेबल है और उन्हें डेली रूटीन का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है। साथियों, रिफिल स्टेशंस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पैकेजिंग वेस्ट रिड्यूस करते हैं जबकि बॉटल्स बार बार यूज होती हैं, तो भाई नए प्लास्टिक कंटेनर्स की डिमांड भी कम हो जाती है इससे। तो भाई इसका इम्पैक्ट सिर्फ वेस्ट तक लिमिटेड नहीं रहता, कम पैकेजिंग का मतलब होता है कम मैन्युफैक्चरिंग, कम ट्रांसपोर्टेशन और कम रिसोर्स का यूज, यानी एक छोटी सी रिफिल हैबिट एनवायरमेंट के लिए मल्टीपल बेनिफिट्स क्रिएट कर सकती है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक ऑफिस या फैमिली रेगुलर क्लीनिंग प्रोडक्ट बॉटल्स रिफिल कराना स्टार्ट करे तो महीने में कई प्लास्टिक बॉटल वेस्ट होने से बच सकती हैं। अच्छा चलिए, आपको एक रिलेटेबल एग्जाम्पल देती हूँ। आप जरा सोचिए कि आप रोज काम पर जाते हैं या बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जाते हैं तो एक वाटर बॉटल ले लेते हैं। एक दिन की बॉटल छोटी लगती है ना आपको, आप कहते हैं कि भाई एक ही तो बॉटल है, क्या ही फर्क पड़ेगा एक दिन में किसी बॉटल का एक। लेकिन अगर एक साल के अंदर आप उसे कैलकुलेट करें तो वो टर्न आउट टू बी हंड्रेड्स ऑफ बॉटल्स बन जाती है। अब अगर आप एक अच्छी क्वालिटी रीयूजेबल बॉटल यूज करें और उसे रिफिल करते रहें तो आप अपनी डेली हैबिट्स को इको फ्रेंडली बना सकते हैं। देखिए कतर के वार्म क्लाइमेट में हाइड्रेशन जरूरी होती है, इसलिए रीयूजेबल वाटर बॉटल कैरी करना एक प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल हैबिट है। अच्छा, इसी के साथ आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दे देती हूँ जो आप बहुत आराम से फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि भाई घर में अच्छी क्वालिटी वाली रीयूजेबल कंटेनर रखें जो रिफिल के लिए सूटेबल हो। दूसरा, सुपरमार्केट में शॉपिंग करते वक्त रिफिल पैकेट्स या कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट्स को प्रेफर करें। तीसरा, पानी के लिए डिस्पोजेबल वाटर की जगह आप रीयूजेबल बॉटल्स कैरी करें। चौथा, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के लिए रिफिल ऑप्शंस एक्सप्लोर करें जहां ये चीज अवेलेबल हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑफिस या फैमिली के साथ रिफिल कल्चर प्रमोट करें ताकि ज्यादा लोग इस हैबिट को अडॉप्ट करें। साथियों, इको स्विच का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि रिफिल का मतलब ये नहीं है कि हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करें। रिफिल का मतलब है स्मार्ट कंजम्पशन। देखिए भाई, आज के जमाने में ना सस्टेनेबिलिटी का मतलब सिर्फ चीजें कम खरीदना नहीं है बल्कि उन्हें इंटेलिजेंटली यूज करना है। रिफिल हैबिट्स हमें सिखाती हैं कि हर प्रोडक्ट के साथ एक्स्ट्रा पैकेजिंग लेना जरूरी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई जो लोग रिफिल

0: हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं ना, वो अक्सर अपनी शॉपिंग हैबिट्स को भी ज्यादा माइंडफुल बना लेते हैं। तो भाई कंक्लूजन ये है, यानी कि आखिर में इको स्विच का सिंपल मैसेज ये है कि हर बार नई बॉटल लेना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे सस्टेनेबल चॉइस यही होती है जो हम पहले से यूज की हुई चीज होती है उसे दोबारा से इस्तेमाल कर सके। तो भाई अगली बार जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदें तो एक छोटा सा इको स्विच जरूर ऑन कर लीजिएगा। क्या मैं इसे रिफिल कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग द होल कंटेनर? क्या मैं इसे रिफिल कर सकता हूँ? इसी नोट के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107, जहाँ हर छोटी सस्टेनेबल हैबिट एक बड़े पॉजिटिव चेंज की तरफ ले जाती है। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर. दिल से देसी.
1: अस्सलामु अलैकुम. आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर. मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज हम बात करेंगे बुजुर्गों के एहतराम की अहमियत के बारे में. बुजुर्ग हमारे माशरे का कीमती हिस्सा होते हैं. उनके तजुर्बे और नसीहत हमारी जिंदगी के लिए रहनुमाई का जरिया बनती हैं. इस्लाम हमें सिखाता है कि बुजुर्गों की इज्जत करें और उनके साथ नरमी और अदब से पेश आए. अक्सर हम अपनी बिजी जिंदगी में उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उनके अल्फाज में जिंदगी का गहरा तजुर्बा होता है. उनकी खिदमत और इज्जत करना सिर्फ एक सोशल ड्यूटी नहीं बल्कि सवाब का जरिया भी है. जब हम बुजुर्गों का एहतराम करते हैं तो हम अपने आने वाली नस्ल को भी यही तर्ज देते हैं कि अदब और इज्जत कितनी जरूरी है. आज का अमल ये है कि किसी बुजुर्ग से मोहब्बत से बात करें, उनका हाल पूछें और उनकी किसी बात को तवज्जो से सुने. ये था आज का मैसेज. आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर. मैं हूँ आरजे मावश. फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ.
2: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी.

0: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
1: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
0: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
1: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
0: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
2: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
3: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
4: आप सुन रहे हैं FM 107।
5: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। अस्सलाम वालेकुम साथियों, इस वक्त FM 107 की घड़ी बजा रही है ठीक 11:01 और आ गए हो, होशियार हो गए हो, नहीं हुए हो तो मैं जगाने आ गई हूँ। आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड ऑन FM 107।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: तो भाई जो होशियार थे उनको मुबारकबाद कि वो होशियार थे, और जो नहीं थे उनको जगाने के लिए मैं आ गई हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो साथियों मैं हूँ सफ़ा और आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड ऑन FM 107, मेरा और आपका साथ रहता है। कब तक भाई बताओ, इतने दिनों से सुन रहे हो, अभी भी मुझे बताना पड़ेगा। चलो जिन्होंने नहीं सुना या जो अभी नए ज्वाइन किया है जिन्होंने, बता देती हूँ कि भाई 11 बजे से लेकर 1 बजे तक मेरा और आपका साथ रहता है। ये एक बड़ा भरपूर इंटरैक्टिव शो है जहाँ पे हम जिंदगी को लाइट मुद्दे पे देखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। देखो टेंशन वेंशन यहाँ नहीं लेकर आना, जैसे लोगों के घर में आने से पहले जूते उतार कर बाहर आते हैं ना, इस शो में आने से पहले अपनी टेंशन वगैरह को साइड वाली पॉकेट में रख कर भूल जाना और फिर आना, ठीक है। तो भाई मेरा और आपका साथ रहता है 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, इंटरैक्टिव शो है। तो आपने करना ये है कि पहले तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि भाई सबसे पहला काम आज एक ड्यूटी दे रही हूँ, ड्यूटी ये है कि आपने जाना है अपना इंटरनेट ब्राउजर खोलना है, या इंटरनेट ब्राउजर नहीं छोड़ दें, इंटरनेट ब्राउजिंग को छोड़ दें, सोशल मीडिया पे जाएं, ठीक है। सोशल मीडिया की बात करते हैं आज। सोशल मीडिया पे आपने जाकर ये करना है कि पहले तो आपने हमें फॉलो करना है ना। हमारा सोशल मीडिया का हैंडल है @FM107Qatar, @FM107Qatar। वहाँ पर जाकर आपने हमें फॉलो करना है, जो जो आपके अपने पसंद के आर्ज हैं उनकी अपडेट आती रहेगी, न्यूज़ शूज़ फॉलो करनी है वो आती रहेगी, कुछ इवेंट्स की अपडेट्स हैं वो आती रहेंगी। मतलब ये कि कतर में क्या कहाँ कैसे कब क्या क्या चल रहा है सबकी रिपोर्ट आपको रहेगी। वैसे पूरा दिन क्या ही करते हो, सोशल मीडिया ही तो देखते हो, एक सेकेंड ज़रा आँख दाएँ बाएँ कर लो, नहीं तो सोशल मीडिया पे घूमते घूमते हमें भी फॉलो कर लेना। अच्छा ये काम कर ही लिया तो फिर एक और काम भी कर लेना।

को आज काम का डे है, आज मैं थोड़ी सी ना ओवर एफिशिएंट चल रही हूँ काम में, क्योंकि आज है ट्यूसडे। देखो मैं हमेशा ट्यूसडे के बारे में ये बात कहती हूँ कि ट्यूसडे मुझे बड़ा पसंद है। अब आप पूछेंगे क्यों, जिनको नहीं पता या जिनको भूल गया, जो मेरी तरह मेरे साथ रह रहकर गजनी हो गए हैं, उनको एक दफा फिर याद दिलाते हैं। पता है ट्यूसडे पे खड़े होकर ना आपको वीकेंड बड़ा पास सा नजर आने लगता है, मतलब दिल को खुशी होती है, दो दिन और है सफा, ये दो दिन, सिर्फ ये दो दिन, आय हाय हाय हाय, फिर दो दिन की छुट्टी, हाय हाय हाय। तो खैर मेरे तो चलते रहेंगे ये मामलात, ये खुशियां मैं एंजॉय करती हूँ, छोटी छोटी छोटी खुशियां हैं ना जिंदगी में, छोटी छोटी खुशियों की तो चसाती है, क्या बड़े मामलात के पीछे भागते पड़े रहते हो, पहले छोटी खुशियों को तो एंजॉय करो। अच्छा हाँ, फिर मैं कहाँ निकल गई, अच्छा ठीक है वापस आती हूँ। तो भाई आपने करना ये है दूसरा काम कि आपने इस शो को इंटरैक्टिव रखना है, क्योंकि बनाया ही इंटरैक्टिव शो है। अगर आप इसके अंदर पार्टिसिपेट ना करेंगे तो क्या ही कोई मामला तय पाएगा। तो आपने करना ये है कि आपने इंटरैक्टिव रहना है, ताकि मुझे पता चल सके भाई कौन कौन कहाँ कहाँ से लगातार होशियार गोभी दें फूलों खुशबू लगा के, ओके खुशबू लगा के आपने सुनना है। तो आपने करना ये है कि हमें मैसेज करना है। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सुन रहे हैं? मुझे ऐसे पता चलेगा कि आप मुझे मैसेज करेंगे। जो लोग कहते हैं कि सफा जल्दी जल्दी नंबर बता के ख़त्म कर देती है, आज उनके लिए आराम से नंबर बताएंगे, ठीक है। आपने मुझे मैसेज करना है 666-22-107 पर। मैसेज करने के लिए नंबर है 666-22-107। और भाई जिन लोगों की ख्वाहिश है कि वो ऑन एयर आके बात करें, दूसरों को सुनाई भी दें, हमें भी कुछ सुनाएं, वो अम्मा वाली सलवातें ना सुनाना, अच्छी अच्छी बातें सुनाएं, मतलब कुछ अच्छा लाइट मोड वाला जो रेडियो पे बोला जा सके, वो इंटरैक्टिवनेस रखनी है आपने, तो ज़रूर आए। आपको किसने मना किया है, प्लेटफॉर्म ओपन है। आपने सिर्फ करना ये है कि आपने कॉल करनी है। कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-77। क्या नंबर है? 443-443-77 नंबर है कॉल करने के लिए। अक्सर औकात लोग जो पहली दफा कॉल कर रहे होते हैं वो मुझसे शिकायत ये करते हैं कि सफा जी आप ऐसी तेज रफ्तार से नंबर बता जाती हैं कि हमें पूरा एक हफ्ता लग जाता है एक एक नंबर नोट डाउन करने में। तो भाई देखो आज ये शिकायत नहीं होगी, ये जो खामोशी से बैठकर बहाने ढूंढते रहते हो ना, सुनते हो लेकिन कॉल नहीं कर रहे होते, पता नहीं किस खुशी में। अरे क्या मसला है, डरते क्यों हो? क्लास के स्टूडेंट थोड़ी ना हो, और मैं कोई टीचर थोड़ी ना हूँ, प्रिंसिपल थोड़ी ना हूँ जो डांटूंगी। करना सिर्फ ये 443-443-77 पे आपने मुझे कॉल करनी है।

सही मालूमाती बात करनी है आपने उसके ऊपर, ठीक है? देखते हैं कौन कितनी बातें कर लेता है। कहते हो ना बड़ा सफा बातें करती है, सफा बातें करती है, सफा ऐसी बातें नहीं करती, टैलेंट है भाई, टैलेंट, कम्युनिकेशन स्किल है भाई। कितने साल? हाँ तकरीबन 10 साल प्लस एक्सपीरियंस होगा भाई बात करने का, अपनी पॉकेट में 10 साल प्लस एक्सपीरियंस है कम्युनिकेशन का। तो बताओ कौन है मैदान में? चलो कॉलें तो आना शुरू हो गई हैं, मैं आप लोगों की कॉल्स अटेंड करने की कोशिश जरूर करती हूँ, लेकिन उससे पहले मौसम के बारे में हाल अहवाल ले लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? थोड़ा सा मौसम के बारे में पहले इधर उधर की बातें कर लेते हैं ना, मौसम के बारे में क्या ही कोई मसला हो रहा है भाई। देखिए भाई मौसम के बारे में वैसे तो आपको बहुत कुछ पता होगा, लेकिन मैंने कहा कि मैं भी शहीदों में उंगली कटवा ही लूँ, बता दूँ ना जिनको नहीं पता, जिनको मौका नहीं मिला। बिजी चल रहे हैं लोग, बहुत बिजी लाइफ में, तो ऐसे बिजी लोगों को ना मैं वेदर रिपोर्ट दे देती हूँ, जिनको अभी तक मौका नहीं मिला कि वो मोबाइल अपने मुंह की तरफ रखें और वेदर रिपोर्ट देख सकें। सीधी सी बात है, 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चल रहा है, सनी वेदर है और फील्स लाइक 44 है, और एक्सपेक्टेड यही है जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, सनी स्काई। अच्छा आज एक बड़ी अजीब सी बात है, बहुत अजीब सी बात है, मैं सुबह से देख रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि बादल आए हुए, लेकिन धूप वैसी वाली नहीं है। किस किस को ऐसा लग रहा है या सिर्फ मुझे वहम हो रहा है? पूरे इतने दिनों की धूप खा खा के शायद मेरी आंखें झुंझला गई हैं कि क्या है, या वाकई में बाहर ज्यादा धूप नहीं लग रही, गर्मी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गर्मी एंड धूप, ये याद रखो, गर्मी है नो डाउट, क्योंकि भाई ह्यूमिडिटी 36 पे पहुंची हुई है, ह्यूमिडिटी नहीं आसरा कर रही किसी का, किसी की सगी नहीं है, ह्यूमिडिटी हायर देन यस्टरडे चल रही है, आज 36 पर है ह्यूमिडिटी, 36% पर है। लेकिन अच्छा हवाएं भी जो है, हवाओं की रफ्तार भी आज अच्छी खासी, मतलब कहा जा रहा है कि 14-16 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर है। लेकिन मामला कुछ ऐसा है कि मुझे धूप नहीं नजर आ रही, वो जो एक फिटी हुई धूप होती है ना, जो आपकी, आप कहते हैं वो चिकन के ऊपर जो रोस्ट, वो गोल्डन रोस्ट लेकर आती है, वो जो सनबर्न करती है ना हमें धूप, वो वाली मुझे नजर नहीं आ रही। किसी और के साथ ही मामला है या सिर्फ मैं ही बेहोश चल रही हूँ? अच्छा भाई जरूर बताएं मुझे मैसेज करके 666-22-107 पर, मौसम का हाल मैंने आपको दे दिया है, और ये भी बताती चलूं कि अगर थोड़ी बहुत आज आपको गर्मी कम लग रही है तो ये मत भूलिएगा कि पानी पीना है, पानी, पानी जिंदगी है, नेमत है, अच्छे तरीके से पेट भर के पानी पियो, अच्छे तरीके से हाइड्रेटेड रहो, अननेसेसरी आउटडोर एक्सपोजर नहीं करो, और क्या क्या करो, और अच्छा पीछा अच्छा खाना पीना रखो, लस्सी वगैरह पियो, ठंडी ठंडी चीज़ें खाओ पियो। मुझे पता है आम का सीज़न है, आम के पीछे पागल हुए पड़े हो, लेकिन आम गर्म होता है तासीर में, एक मॉडरेट लेवल में खाओ, और बाकी अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए आप क्यूकम्बर्स खाएँ, फ्रूट्स अच्छे अच्छे खाएँ, जूसेस का इंटेक ज़्यादा रखें, पानी ज़्यादा पिए, हाइड्रेटेड रहें, मतलब ये ठीक है। तो अभी के लिए काम करती हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, आप लोगों की कॉल्स जा रही हैं, छोटे से ब्रेक के बाद आकर आप लोगों से मुलाकात होती है। आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड ऑन एफ एम 107 विद सफा। तो भाई ये कौन सा गाना आ रहा है? ओ उसने सुहाना, चलो मैं गाऊंगी तो वैसे ही डर जाओगे, छोड़ो रहने दो। चलो भाई गाना एंजॉय करो, थोड़ा सा वॉल्यूम हाई करो, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना, हाइड्रेटेड रहना है। मिलते ब्रेक के बाद।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: और भाई हमें परफेक्ट नहीं होना, क्योंकि परफेक्शन के लिए बहुत चीजों की कुर्बानी देनी पड़ती है, और मेरे अंदर तो बिल्कुल भी इतना सब्र तहम्मुल नहीं है बस।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ, सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
0: तो भाई सन एंड साउंड में आप सभी का वेलकम है। आ जाओ भाई, गोभी दें फूलों, खुशबू लगा कर आ जाओ। देखो गर्मियों के दिन है, खुशबू जरूर लगा कर आना, जरूर प्लीज मेरे ऊपर मेहरबानी करना। तो भाई वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड विद सफा। और भाई हमारे पास मैसेजेस की भरमार आ चुकी है, तो मैसेजेस पढ़ लेते हैं इससे पहले कि गजनी सफा भूल जाए। तो भाई कौन है हमारे साथ? कयूम भाई मैसेज कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आज आपकी बातें सुनकर शोले की बसंती याद आ गई। हाय हाय हाय, ओए ओए ओए, मैं कहती हूँ जब भी कोई शोले के बारे में बात करता है ना, मुझे सिर्फ हेमा मालिनी की खूबसूरती याद आती है भाई, मुझे और कुछ याद नहीं आता। शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन I have ever seen. और ख़ासतौर पर उस टाइम पर जब इतना मेकअप, इतना कुछ डर्मेटोलॉजी में इतना कुछ नहीं होता था, नेचुरल ब्यूटी थी भाई लोगों की, नेचुरल खूबसूरती होती थी खातिन की, तो वो और फिर क्या कह रहे हैं आपकी बातें सुन के बड़ा मज़ा आता है। थैंक यू। देखिए मैं कह रही हूँ ना, 10 साल प्लस का एक्सपीरियंस है। तो और कौन है मेरे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कौन है भाई? ना मालूम अफराद हैं कुछ। समी भाई हैं? अच्छा समी भाई, अरे समी भाई कैसे हो? ठीक ठाक हो? और तौफीक भाई भी कह रहे हैं वाकरा से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वैसे एक बात तो बताएं, ये तौफीक भाई आपके झाड़ को क्या हुआ? ये पीला क्यों हो गया है? पीला क्यों हो गया झाड़ को? हॉस्पिटल लेकर जाएं इसे, झाड़ तो हरे होते हैं, इसे कहीं जॉइंडस तो नहीं हो गया? चले खैर, उम्मीद करते हैं आपका झाड़ सही हो जाए, ये दरख्त आपने भेजा है तस्वीर में। और क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसी हैं समी भाई? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखें अल्लाह की रजा में राजी रहने वाले लोग जो है ना, बहुत, मैंने कहा ना परफेक्शन के लिए हम नहीं भागते, हम बस छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहते हैं। जैसे कि हमें अभी थर्सडे पे खड़े होकर हमें ट्यूसडे पे खड़े होकर हमें थर्सडे याद आ रहा है। ओके अस्सलाम वालेकुम सफा जी, कैसी हैं आप? और ये कौन है हमारे साथ? शेख इरफान हैं। बिल्कुल ठीक ठाक है मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम चल रहा है। और भाई कौन है? गुलफाम भाई हैं, गुलफाम खान कह रहे हैं कि भाई हाँ जी सुन रहा हूँ खुशबू लगा के। वेरी गुड। अच्छा इन्होंने एक और अपडेट भी दी थी, कह रहे हैं कहीं कहीं बादल आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, धूप आ रही है जा रही है, तो कुछ ऐसा मामला चल रहा है। मैं तो दुआ कर रही हूँ अल्लाह करे, देखो जुलाई का महीना अभी चल रहा है, अभी उम्मीद अभी बाकी है, अल्लाह ताला चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तो भाई दुआ करो कहीं से मज़े की बारिश हो जाए भाई, कहीं से हो जाए। अब मुझसे फैक्चुअल होकर बात नहीं करना इस बारे में, ये फैक्चुअल होकर बात नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है? तौफीक भाई आपने तो दिल पे ले ली बात। तौफीक भाई ने जो पीला वाला झाड़ भेजा था उसको नज़रअंदाज करते हुए गुलाबों की तस्वीर भेजी है। वाह तौफीक भाई, हमने तो कहा था कि अल्लाह ताला आपके इस झाड़ को हरा भरा कर दे, आप तो माशाल्लाह से कौन से रंग के रेड सफ़ेद और पिंक कलर के गुलाबों के फूल लेकर हाजिर हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भाई वालेकुम अस्सलाम, आरिफ भाई कह रहे हैं कैसी हैं आप? कहीं तो बादल हैं बस अब कहीं से अच्छा कह रहे हैं कहीं तो बादल हैं लेकिन कहीं कहीं से आग के गोले बरस रहे हैं। अच्छा भाई यूसुफ भाई कह रहे हैं कि भाई देखें जो मैंने सोशल मीडिया फॉलो करने को कहा था ना, तो कह रहे थे भाई देखें हमें तो मौका मिलता नहीं है मोबाइल इस्तेमाल करने का। यूसुफ भाई रहन दो, यूसुफ भाई ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसको मोबाइल इस्तेमाल करने का मौका ना मिलता। यूसुफ भाई बस कर जाएं, यूसुफ भाई बहुत हो गई। कह रहे हैं जब थोड़ा बहुत मौका मिलता है ना तो उसके अंदर मैं न्यूज़ व्यूज़ फॉलो कर लेता हूं। तो भाई न्यूज़ के लिए हमें भी फॉलो कर लो, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, हम भी तो न्यूज़ देते हैं। डोंट वरी वरी सफ़ा, सब आपको खुशबू लगा कर सुन रहे हैं यूसुफ भाई। चले भाई आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने का मामला ये कि आप लोगों के मैसेजेस भी चल रहे हैं, मैसेजेस भी मैं लूँगी, लेकिन आगे थोड़ा सा बातचीत को बढ़ाते हैं। जब हम गर्मी के बारे में बात करते हैं ना, तो हमेशा ये कहा जाता है कि इंसान की नॉर्मल लाइफ में भी और वैसे भी जब भी आपका किसी चीज़ के ऊपर दिल ख़राब हो या दुखने लगे ना, तो हमेशा कहा जाता है कि अपने से नीचे वालों को देखो तुम्हें सब्र आ जाएगा। ये एक बात कही गई है वाकई में। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज़, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लूँ जो कि दिखने में तो बड़ी खूबसूरत लगती है लेकिन है बड़ी

जो हम लोग कहते हैं ना कि आग के गोले बरस रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बड़ी तबाहकुन हकीकत है एक जगह की. इसे कहा जाता है दलूल, और ये है एथोपिया में, जहाँ ना रात भर उतनी ही गर्मी रहती है जितनी दिन भर रहती है. अच्छा, हमारा मामला क्या है भाई, कोविड एम्पलो, हमारा मामला क्या है भाई, सुबह के टाइम वही 45-47 ऐसी गर्मी पहुंच रही है ना, है ना. रात के टाइम फिर भी अल्लाह ताला का करम होता है, थोड़ी सी ना गर्मी कम हो जाती है, 35 तक 37 तक आ जाता है, टेम्परेचर नीचे आ जाता है. लेकिन ये जो दलूल एथोपिया वाली जगह है ना, सोचिए एक ऐसी जगह जहाँ सूरज डूबने के बाद भी गर्मी अपने उरूज पर जोर पर होती है, जहाँ रात की हवा में भी ठंडक के बजाय आप कह लें तपिश, वो जो लू वाली तपिश होती है ना, वो पड़ती है. ये किसी साइंस फिक्शन का मैं आपको नहीं बता रही. आप एक काम करें, मोबाइल होगा ना आपके पास, आप अपने पास जाकर इंटरनेट पे सर्च मारें दलूल एथोपिया. ओ भाई, इस जगह को आप देखेंगे ना जब, तो ये बाकायदा ऐसी लगती है जैसे कोई एलियन नुमा कोई जगह है, खूबसूरत रंगारंग भरी हुई. लेकिन कहते हैं ना कि जो दिखता है वो लाजमी नहीं है वही हो, दिखने में बड़ा अच्छा है. देखिए दलूल एथोपिया के आप कह लें कि एक जगह है, इसे कहा जाता है दनाकिल डिप्रेशन. नहीं, मेरा और आपके वाला डिप्रेशन नहीं जो हमें पैसे का हुआ पड़ा है, नहीं नहीं, दनाकिल डिप्रेशन की एक कहानी है. इसको डिप्रेशन वो वाला कहते हैं जो नीचे की साइड पर होता है. तो दनाकिल डिप्रेशन में वाक़ है ये जगह दलूल, जो दुनिया के सबसे गर्म और सख्त माहौल वाले इलाकों में से एक माना जाता है. यहाँ ज़मीन, हवा और मौसम मिलकर इंसान के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का ना चैलेंज क्रिएट कर देते हैं. अच्छा, दलूल को अक्सर दुनिया के सबसे ज़्यादा गर्म तरीन जगहों में से शुमार किया जाता है. मतलब ये कि आप सहरा को भी साइड पे कर दें भाई, ये इतना ज़्यादा गर्म तरीन. यहाँ साल भर का एवरेज टेम्परेचर जो रहता है ना, वो तकरीबन एवरेज बता रही हूँ, 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाता है. और 35 अगर आप यहाँ कतर वाला समझ रहे हैं ना, तो वो नहीं लें, क्योंकि कतर में फिर भी आसमान के ऊपर गुबार आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो हीट, वो जो रेज होती हैं, वो दब जाती हैं. इनका आसमान बिल्कुल नीला होता है भाई, वो बिल्कुल ही अलग किस्म की चमड़ी उधेड़ देने वाली गर्मी होती है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ दिन का टेम्परेचर नहीं होता, बल्कि ये दिन और रात दोनों का एवरेज टेम्परेचर होता है. आमतौर पर ना, जब दिन भर धूप निकलती है तो क्या होता है, शाम होती है, थोड़ी सी गर्मी नीचे आ जाती है, ज़मीन की गर्मी रात में टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ज़मीन की गर्मी कम हो जाती है. लेकिन दलूल में ये प्रोसेस बहुत बहुत बहुत कम होता है. इसकी वजह से ये होता है कि गर्मी जो होती है ना ज़मीन की, वो अंदर ही उसी जगह पर ट्रैप हो जाती है, और लोग लिटरली मुंतज़र रहते हैं कि बस एक ठंडी हवा का कहीं से झोंका आ जाए. लेकिन दलूल सिर्फ अपनी गर्मी की वजह से मशहूर नहीं है, ये जगह अपनी अजीब व गरीब, आप कह लें इंटरेस्टिंग खूबसूरती के लिए भी मशहूर है, जिसके बारे में बात कर रही थी मैं, कि अगर आप इसकी तस्वीरें जाकर देखें ना, तो आपको लगेगा हाय ये तो वही जगह है जिसके बारे में मैं ख्वाब देखा करता था, इतनी खूबसूरत लगती है ये, मैंने खुद देखी तस्वीरों में, मैंने कहा कितनी खूबसूरत जगह है. लेकिन उसकी हकीकत कुछ और है. ये इलाका समंदरी सतह से नीचे के डिप्रेशन में मौजूद है, मतलब ये हमारे लेवल से नीचे है, जहाँ आपको नमक के मैदान, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ और ज़मीन पर बने हुए लाजवाब रंगों के मिनरल्स के फॉर्मेशन होते हैं ना, वो भी नज़र आते हैं. मतलब ये कि आप देखेंगे ना, तो आप इतना देखने में इतना खूबसूरत लगता है भाई, मतलब पीली, नारंगी, येलो, ऑरेंज और ग्रीन और ब्लूइश किस्म की आपको जो ना ज़मीन नज़र आती है, और वो पानी की थोड़ी बहुत सतह भी आपको नज़र आती है, तो वो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है. मगर इस खूबसूरती के पीछे की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल. पानी की कमी, शदीद गर्मी और सख्त मौसम की वजह से यहाँ रहना इंसान के लिए लिटरली एक चैलेंज होता है. कहा यह जाता है कि साइंटिस्ट जो जाते हैं ना, वो कुछ टाइम के लिए जाते हैं और सिर्फ यहाँ पर वो करते हैं, अपनी साइंटिफिक रिसर्चेस करते हैं, कि अगर इंसान, जैसे कहा जाता है ना कि इंसान जो है ना वो अगर मार्स पर, मरीख पर या दूसरे तीसरे किसी प्लेनेट पर जाए तो उसका क्या हाल होगा. तो इस जगह को लिटरली ये कंसिडर किया जाता है कि वो दूसरे प्लैनेट्स की सख्त कंडीशंस, हार्श कंडीशंस को मेजर करने के लिए, एक आइडिया लेने के लिए यहाँ पर जाते हैं. अच्छा, दनाकिल डिप्रेशन को अक्सर अर्थ की सबसे एलियन जैसी जगहों में माना जाता है. मतलब ये कि इन्हें कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ के मनाजिर बिल्कुल किसी दूसरी दुनिया के लगते हैं. तो अगली दफ़ा जब आप गर्मी में परेशान हो

गर्मी से परेशान हो जाएं जब अगली दफ़ा, तो भाई ये मत कहिएगा कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि एक पल के लिए सही थोड़ा बहुत टेम्परेचर नीचे तो आता है। दलून को याद कीजिए, एथोपिया में है जगह जहाँ रात की ठंडक भी लिटरली लग्जरी समझी जाती है। तो भाई एक काम करते हैं, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद जब मैंने आपको इतना कुछ बता ही दिया है और मैंने आपको समझा ही दिया है और आपको शुक्रगुजारी पे मजबूर कर ही दिया है, तो कलमा पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो और ज़िंदगी को रवा दवा रखो। ज़िंदगी तो ऐसे भी गुजारनी है, गोभी दया पुल्लो, ऐसे भी थे वैसे भी, तो उसको हंस के मुस्कुरा के गुजारो। एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के बाद थोड़ा सा ब्रेक तो लेना ही पड़ता है भाई, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाता है रे भाई, तो मुझे भी कुछ ब्रेक चाहिए। आपको भी सुनने के बाद थोड़ा सर्च वर्च मारो भाई, मैं बता रही हूँ वर्थ इट है। सर्च करो, इंटरनेट पे सर्च करो, उसकी खूबसूरती अलग से नज़र आती है भाई जगह की, लेकिन लाजमी तो नहीं है, जो जैसा दिखेगा वो वैसा होगा। वैसे अगर दलूल को साइड पे किया जाए तो इंसानों का भी यही मामला है, कुछ लाजमी तो नहीं है जितने हसीन दिखते हो उतने हो भी। क्या पता किस किस के अंदर कौन सी नेगेटिव चीजें बातें हैं। चलो कोई नहीं, हम सब में हैं, वी विल वर्क ऑन इट, वी विल बी बेटर। चलो जी, आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड विद सफा ऑन

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारते दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर। डोंट मिस इट, डोंट मिस इट।
2: हवा के झोंके आज मौसमों से उठ गए।
3: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। हर शाम 4-5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
4: तो जी वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड और FM 107। और गोविंद यहाँ पुल्लो, देखो खुशबू लगा कर आ जाओ। और क्योंकि हम अब आगे बढ़ने लगे हैं तो हम सवाल की तरफ चल लेते हैं, ठीक है? क्योंकि दरिया की उस पार हमारी इंफॉर्मेशन थी, तो दरिया की इस पार हमने जो है वो सवाल का सिलसिला भी शुरू करना था। जाहिर बात है इन्फॉर्मेटिव शो तो है ही है, लेकिन आपसे बातचीत कैसे करेंगे? तो भाई इससे पहले कि मैं सवाल आपको बताऊं, हमारा मुद्दा आज का आपको बताऊं, तड़कता भड़कता मुद्दा, मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमारे साथ शो में शामिल हो सकते हैं 4434377 पे कॉल करके। 4434377 इज द नंबर टू कॉल। और चाहें तो हमें मैसेज भी भेज सकते हैं, अपनी उंगलियों को थोड़ा सा जो है ना, उंगलियां तो नहीं, मतलब लोग अंगूठे से ही टाइप करते हैं। आप लोग कैसे टाइप करते हैं? मैं तो अंगूठे से टाइप करती हूँ, मेरे तो अंगूठे के सिक्स पैक निकले में भाई, मैं बता रही हूँ बिल्कुल यूँ स्मार्ट, जिम जाने की जरूरत नहीं मेरे अंगूठे को, मैं अंगूठे से टाइप करती हूँ। तो भाई अच्छा, अपनी तारीफें क्या ही करूँ मैं। देखें शानदार अंगूठा है मेरे पास, सिक्स पैक वाला, होगा किसी के पास? खैर तो भाई मैं आपको बता रही थी कि आपने करना यह है मैसेज करने के लिए, आपके पास नंबर है 666-22107 इज द नंबर टू मैसेज। और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, चाहे तो आप मुझे कॉल भी भेज सकते हैं। देखो जरा कॉल भी कर सकते हैं, क्या ही चल रहा है जिंदगी में भाई, गर्मी बहुत हो गई है भाई, सर चकरा रहा है। अच्छा चलो अब हम सवाल की तरफ आ जाते हैं भाई। आज का चैलेंज जो है ना वो कुछ ऐसा है कि वही वाला मामला है कि दरिया में डुबकी लगानी है बगैर स्विमिंग आए हुए या खाई में गिरना है। चलो आज आज का सवाल कुछ एडवेंचरस सा करते हैं, ठीक है? जरा सोचिए, अगर आपको सिर्फ एक दिन के लिए दुनिया की किसी एक एक्सट्रीम जगह पर जाने का गोल्डन चांस मिले, लेकिन मामला ये एक्सट्रीम जगह, एक्सट्रीम का वर्ड सुन लो समझ लो, ऐसे उठाए कॉल करना शुरू कर दिए, एक्सट्रीम का वर्ड सुन लो और समझ लो, मतलब ये जहां पे बे इंतहा गर्मी हो, आए हाय हाय हाय बे इंतहा गर्मी, या जहां पे बे इंतहा सर्दी हो भाई, वो आर्टिक वाला जो सिस्टम होता है ना, वो वाला बे इंतहा -55 की सर्दी हो रही हो भाई वहां पर, मतलब एक जगह ऐसी कि जहां पर आइसक्रीम का नामो निशान नहीं हो, और दूसरी जगह ऐसी कि जहां पे आप खुद आपकी कुल्फी जम जाए, तो ऐसी जगहों में से आप कौन सी जगहों पे जाना पसंद करोगे और वो कौन सी जगह होगी? या ठंडी जगह पे जाना पसंद करोगे एक्सट्रीम, या एक्सट्रीम गर्म जगह पर? और उस जगह का नाम भी बताओ ना, ताकि हमें इंटरेस्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया दलूल का, इंटरेस्टिंग हमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले ना कि दुनिया में कुछ अच्छी ऐसी ठंडी जगहें भी हैं जहाँ पर हम अपनी दिल की खुशी के लिए बर्फ़ जमाना अपनी पसंद करेंगे। तो आपने मुझे कोई ऐसी जगह बतानी है जहां पर आप एक दिन के लिए या एक्सट्रीम सर्दी हो या एक्सट्रीम गर्मी हो एक दिन के लिए जाना पसंद करेंगे। आप कहेंगे नहीं भाई, लाइफ टाइम वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है भाई, यहाँ तो मैं जाऊँगा। वो जैसे मुझे कबीर भाई ने बताई थी, कबीर भाई कहते हैं यार वो जो साइबेरिया है ना, साइबेरिया की एक जगह बताई थी उन्होंने, वहाँ पर वो कहते हैं भाई इतनी सर्दी होती है कि वहाँ पर लोग, मतलब उनको ना लोगों का क्या मामला है कि वहाँ पर लोग खाने पीने को भी वो क्या करते हैं, वो कुछ है नहीं खाने पीने को वहाँ पर। बड़ी मुश्किल से वो मछली वगैरह पकड़ते हैं तो उनके पास फ्रिज फ्रीजर वगैरह कुछ नहीं है, वो बाहर ऐसे ही यूं करके रखते हैं और वो जम जाती है। लोग वहाँ पे कच्चा मीट खाते हैं क्योंकि वहाँ पे पकाने के लिए इतना एक्सट्रीम है वेदर कि आग काम ही नहीं करती। तो ऐसी जगहें भी हैं दुनिया में लेकिन लोग रहते हैं, और मुश्किल से 500,000 लोगों की आबादी है वहाँ पर। ऐसी एक्सट्रीम जगह है कोई ऐसी जगह तो बताओ। 666-22-107 इज द नंबर टू कॉल, 666-22-107 इज द नंबर टू कॉल, और चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं 443-443-77 पर। आप जब तक सोचो

सोचो, जरा ध्यान से सोचो. देखो पहली चीज तो आपने मुझे बतानी कि गर्म या ठंडी, और फिर उस जगह का नाम भी बताओ मुझे, ताकि कुछ नॉलेज में भी इजाफा हो ना. ठीक है, ऐसे ही नहीं. दो मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, जरा सोचो समझो और फिर मुझे कॉल करो. दो मिनट का एक ब्रेक लेते हैं क्योंकि अजान भी होने वाली है. अभी अगर मैंने किसी कॉल उठा ली ना तो मामला होगा कि मुझे कॉल बीच में काटनी पड़ जाएगी, और फिर हमारा जो वो कन्वर्सेशन का एक लेवल चल रहा होता है ना, मोमेंटम, मजा आ रहा होता है बात करने में, वो तसलसल टूट जाता है. तो एक काम करती हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अजान के बाद फौरन वापस आते हैं. ठीक है, आप जब तक वो अच्छी सी बेहतरीन सी जगह सोच कर रखो. अब जैसे मैंने बताया, जैसे आर्कटिक है, वहाँ पे जाने के लिए तो भाई 55 मुल्कों की आपको वीज़ा चाहिए सिर्फ. वो इतनी ठंडी जगह है, अल्लाह माफ़ करे, मैं जहाज़ के थ्रू जा रही थी, ऊपर से ऊपर अभी नीचे नहीं थी तो -55 दिखा रहा था. भाई ऐसी भी जगह है दुनिया में, मुझे अगर कोई बोले ना तो मैं कहूँगी भाई मुझसे ना हो पाएगा, सर्दी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे, सर्दी बिल्कुल भी नहीं. मतलब ये ए सी का ये नॉर्मल ए सी है, इसका 18 का टेम्परेचर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता. तो मैं -55 में तो मैंने तो जहाज में जम जाना है भाई, जाने की बहुत दूर की बात है. अभी फिलहाल तो गल सुन, सोनियो गल सुन, मैसेज में बता सकते हो, कॉल में बता सकते हो, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आकर. ठीक है, सुनते रहे FM 107, दिल से रेसी.

0: चूज करेंगे एक्सट्रीम, सर्दी चूज करेंगे एक्सट्रीम, और उस जगह का नाम क्या होगा? अब देखो, मैंने इतना तो आप लोगों को टाइम दे दिया था कि आप लोग थोड़ा सा रिसर्च विसर्च कर लो. अब जैसे कुछ जगहों का मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? कुछ जगहों का जैसे मैंने आपको बताया था, अभी ये दलूल का मैंने एथोपिया का आपको बताया कि दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट प्लेस माना जाता है इसे. एक मैंने जगह आपको बताई वो रशिया की साइबेरिया, जहाँ की मैंने आपको बताया था मुझे बड़ा शौक है. कबीर भाई ने मुझे बताया था और मैं सुनकर इतनी वो हो गई थी, फैसिनेट हो गई थी कि मोबाइल तक वहाँ पे काम नहीं करते क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंड होती है, मोबाइल बंद हो जाते हैं भाई, मोबाइल बंद हो जाते हैं वहाँ पर. अच्छा, एक कॉलर की तरफ चलते हैं. अगर आपने भी कॉल करनी है हमें तो कॉल कर सकते हैं 4434377 पर शामिल हो सकते हैं, 4434377 पे कॉल करके, या मैसेज करना चाहें तो 6662107 पे मैसेज कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन है हमारे साथ?
1: मेरा नाम नदीम है
0: जी. नदीम भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
1: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए.
0: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. नदीम भाई ये बताएं, जल्दी में लग रहे हैं, किसी का कोई दुकान से कोई चीज उठा के भागे हैं क्या?
1: नहीं नहीं नहीं, गाड़ी में बैठा हुआ हूँ.
0: तो गाड़ी में कोई मसला चल रहा है क्या?
1: नहीं नहीं,
0: ऑक्सीजन की कमी चल रही है. अच्छा तो ये बताएं इतनी जल्दी में क्यों हैं?
1: नहीं नहीं नहीं, जल्दी में नहीं हूं, आप बोलिए.
0: अच्छा ये बताएं नदीम भाई कि पहले तो बताएं कि मुझे मुझे सच सच बताएं, बाहर मौसम पहले से मतलब कल की बनिस्बत थोड़ा बादल छादल है क्या?
1: बादल वादल तो नहीं है लेकिन गर्मी बहुत है.
0: गर्मी है, कल की बनिस्बत थोड़ा सा सूरज चाचू कम मुस्कुरा रहे हैं या ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं?
1: थोड़ा कम मुस्कुरा रहे हैं,
0: थोड़ा कम मुस्कुरा रहे हैं. मैंने इनकी टूथपेस्ट चेंज करने को कहा था, मेरे ख्याल से गंदी वाली टूथपेस्ट इनको पहुंचा दी गई है. मैं दो तीन दिन से सोच रही थी भाई गंदी वाली टूथपेस्ट पकड़ाऊंगी सूरज चाचू को, वो सस्ती वाली होती है ना, सस्ती वाली, वो वाली. तो मेरे ख्याल से पहुंच गई है उनको. अच्छा नदीम भाई ये बताएं कि अगर आपको जिंदगी में मौका दिया जाए कि आप किसी भी एक एक्सट्रीम वेदर को चूज करें, या एक्सट्रीम सर्दी या एक्सट्रीम गर्मी, तो आप किसको चूज करेंगे?
1: एक्सट्रीम गर्मी.
0: एक्सट्रीम, ओ भाई. और फिर अगर ये कहा जाए कि चलो एक्सट्रीम गर्मी वाली जगह पर जाओ, तो कोई जगह ऐसी आती है दिमाग में?
1: जी मैं अभी खतर में हूँ. हाँ? और खतर में मैं 6 साल से हूँ, तो यहाँ की गर्मी से अभी बहुत अच्छा मेरा
0: दोस्ती हो गई है.
1: हो गया, समझो. हाँ? दोस्ती हो गई, तो अभी बिना फैन के बिना एसी के मैं सो सकता हूँ गर्मी में, टेंट तो सो सकता हूँ डायरेक्ट.
0: अच्छा कतर के अलावा, कतर के अलावा,
1: कतर के अलावा, कतर के अलावा शायद दुबई जाऊंगा.
0: वही वाली बात हो जाती है, वही वाली. गर्व से बाहर निकलो ना, गर्व से बाहर निकलो भाई, दुनिया बहुत बड़ी है, अल्लाह ताला की दुनिया.
1: मैं ऑस्ट्रेलिया चूज करूंगा मैं. हाँ? अभी मैं इंडियन हूँ और इंडियन क्लाइमेट के सिमिलर है ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट, तो फिर भी वो गर्मी बर्दाश्त कर ले सकते हैं,
0: वो वाली गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं. टेम्परेचर आप कह रहे हैं, हॉट वेदर इन ऑस्ट्रेलिया कितना मैक्सिमम जाता है? मैं अगर हिसाब लगाऊं तो कितना हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में इतना होता है क्या?
1: उतना हॉट नहीं है लेकिन है, बराबर है, बेरेबल है वहाँ की गर्मी.
0: बेरेबल तो मैं यही तो कह रही हूँ, एक्सट्रीम एक्सट्रीम वाली. जैसे अभी जैसे मैंने बताया दलूल की, दलूल की तो भाई बहुत ज्यादा है, मतलब वहाँ पे लोग. हाँ ऑस्ट्रेलिया का भी ये हिसाब है कि अराउंड अराउंड कहा जाता है कि 49 से 50 डिग्री सेल्सियस गर्मियों में, गर्मियों में ना उनके पास गर्मी बहुत ज़्यादा चली जाती है. वहाँ पर एक एरिया है ऑस्ट्रेलिया का हीट चैम्पियन जिसे कहा जाता है, वो है मार्बल बार, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में. और वहाँ के टेम्परेचर के बारे में कहा जाता है कि मार्बल बार ने 1922 से लेकर 1923 में 160 डेज लगातार 38 से ऊपर की गर्मी रिकॉर्ड की गई थी. और वहाँ पे तभी अक्सर औकात आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलियन वो जंगलों में आग लग जाती है गर्मियों के दिनों में, सुना आपने?
1: जी सुना था.
0: हाँ वो भी इसलिए लगती है क्योंकि वहाँ पे वाकई में गर्मी ऐसे कतर में 50 तक चली जाती है ना तकरीबन, वहाँ पर भी ये हिसाब है, वहाँ पर 50 तक चली जाती है. तो जा सकते हैं आप इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अच्छे वेदर भी एंजॉय करें, गर्म वेदर भी एंजॉय करें. अब चले आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना आपके साथ कुछ मजे का गेम भी खेल लिया जाए.
1: ठीक है, ट्राई करेंगे. बोलिए.
0: चले आज जो है ना हमने कुछ लाइफ में ट्विस्ट लेकर आए, हम आपको देंगे एक टॉपिक और आपने उस बात करनी है, और आपको दिया जाएगा 1 मिनट. ठीक है, उस 1 मिनट के अंदर जब 1 मिनट खत्म होगा तो मैं खुद बता दूंगी आपको कि 1 मिनट खत्म हो गया. उससे पहले अगर आप बीच में कहीं रुक गए तो आपका टाइम अप, पॉज नहीं लेना आपने, बस उसके ऊपर लगातार बात करनी है.

0: ठीक है, वर्ड तो नहीं है, टॉपिक दे देती हूँ आज, क्योंकि अक्सर औकात लोग वर्ड में गुम हो जाते हैं. तो चले भाई, आपका आज का जो टॉपिक है वो है मच्छर. आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ. नाउ मच्छर.
1: अभी आप मेरे को जी, अभी आप टॉपिक दिए मेरे को मच्छर की, ठीक है ना. मच्छर तो देखिए ऐसा है, मच्छर बहुत टाइप के होते हैं, जिसमें मलेरिया भी होता, डेंगू भी होता, कुछ नहीं हुआ तो कम से कम इतना होता कि रैशेस हो जाते. रैशेस में हुआ ना हुआ, कम से कम ब्लैक सॉरी रेड स्पॉट्स आ जाते. और आपके मच्छर का ऐसा इतना बेचारा इतना सताता रात में आके, कि जब तक वो बेचारे को मारे नहीं उन्हें खामोश नहीं बैठता. ठीक है, उन्हें उसके उसके क्या बोलते हैं, उसकी आदत से मजबूर है उन्हें, और हम भी हमारी आदत से मजबूर है कि हमारे उसको मारना जरूरी है.
0: हाँ.
1: तो हमारी रात की नींद हराम हो जाती.
0: हाँ.
1: अब ये सब से अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम लोग दूसरे हिसाब से देखे, ऐसा भी हो सकता है उन्हें कहीं जाके कहीं कुछ कचरे पे बैठ के आया, या फिर कहीं किसी और आदमी जिसको कुछ उसके पास जाके आया, हमारे खाने पे बैठ गया, तो फिर वो हमारे अंदर हमारे को बीमारी अलग लग जाती, उसके बाद में वो ब्लड का प्रॉब्लम हमारे को अलग हो जाता. इसके से ऐसा है, मच्छर कम से कम इतना है. मच्छर हमारे को मच्छर से बचने के लिए, जैसा पानी को एक जगह रुका हुआ है, जैसा स्टैग्नेंट वाटर है, उसको हटाना जरूरी है.
0: भाई हो गया भाई, तालियां हो जाए भाई के लिए. भाई बात कर सकते हैं, और पता नहीं भाई के एक्सेंट से लग रहा है भाई हैदराबाद के. हैदराबाद के भाई, मुझे बड़ा मजे का लगता है हैदराबादी एक्सेंट, मुझे बहुत मजे का लगता है. मुझे आपकी बात से समझ में आया था. चले भाई, गुड हो गया. नाइस. अच्छा, मच्छर जो है वो टाइप के नहीं होते. डेंग मच्छर से निकली हुई बीमारियां अलग अलग टाइप की होती हैं.
1: मैंने अब कुछ भी बोलना था बोल.
0: चले भाई, गुड एफर्ट. बात ये थी कि हमने बोलना था. चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज. भाई ने ऑस्ट्रेलिया चूज किया एक्सट्रीम वेदर के लिए. आसपास का ये कुछ बर्दाश्त हो जाएगा. चलो इससे ऊपर चलो ना, खतरों के खिलाड़ी इससे आगे भी जगह हैं. ढूंढो इससे आगे भी जगह हैं. आप मुझे कॉल कर सकते हैं 443-443-77 पर. 443-443-77 इज द नंबर टू कॉल. और अगर चाहें तो मैसेज भी भेज सकते हैं 666-22-107 पर. और भाई मैसेज के बारे में बात की जाए तो मैसेज धराधर आ रहे हैं. प्लीज ऐड माय नंबर. कौन है? हाउ, दिस इज मोहम्मद अशरफ. हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड. मैं कैसे ऐड कर लूँ ऑफिस के मोबाइल नंबर पर? आप नाम लिख दिया करें ना. अच्छा, और कौन है हमारे साथ? और कौन है? हाय जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर. मेरा एक दोस्त है, उसका उसको रोज़ाना बोलता हूँ कि ना कर, काम पर आया करो, मगर वो उसे कोई असर नहीं होता. ओ भाई, देखो ये कौन है? एहसान भाई. हर ऑफिस में एक शख्स ऐसा ज़रूर होता है जिसके साथ ये मसला होता है गर्मियों में. तो मेहरबानी करके, अगर कोई ऐसा शख्स है जो ये मानने को तैयार नहीं है कि उसे अशद ज़रूरत है डिओड्रेंट इस्तेमाल करने की, खास तौर पे मेहरबानी करके गर्मियों के दिनों में, तो कर लो भाई, कर लो. अगर कोई सामने से मुंह पे बोल रहा है कि नहा धोकर खुशबू लगाकर आ जाओ, तो समझ जाओ कि प्रॉब्लम है, ना करो बहस. अब एहसान भाई की दुख मैं समझ सकती हूँ, हर ऑफिस में एक शख्स ऐसा होता है. तो एहसान भाई, मेरी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं, मैं मानती हूँ इस बात को. और अगर आपके दोस्त सुन रहे हैं तो भाई मेहरबानी. ओ भाई मेहरबानी, ओ भाई तेरी मेहरबानी भाई. ना दो कराओ गर्मियों के दिनों में, ये जुल्म ना ढाओ. हम एक्सट्रीम गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे, हमसे ये बर्दाश्त ना होगा. 443-443-77 इज़ द नंबर टू कॉल. और कॉल आ रही थी, जैसे ही मैं कॉल उठाने लगती हूँ पता नहीं कहाँ लोग आते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन है हमारे साथ? फलक भाई. फलक भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे. और कौन है हमारे साथ? और कौन है? कौन सी जगह है नेम? अच्छा, साद नूर. रशिया में एक जगह जिसका मैं बता रही थी ना, एक तो मैं एक्सट्रीम गर्मी का मैंने दलूल का बताया था इथोपिया का, एक जो मैं बता रही थी वो साइबेरिया है रशिया में, जहाँ पर एक्सट्रीम सर्दी होती है. आप दोनों में से किसी को भी सर्च कर सकते हैं और आप बताएं कि आपको कौन सी जगह पसंद आएगी. भाई 443-443-77 इज़ द नंबर टू कॉल. और देखते हैं हमारे कॉल पे कौन है. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम
0: जी. कौन है हमारे साथ? देखें भाई, ये जो एको इफेक्ट चल रहा है ना, इसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है रेडियो कम करके.
2: जी मैडम, कम कर दीजिए.
0: देखिए, मैं अपने आप से वैसे ही बर्दाश्त नहीं होती, तो मुझे मेरी आवाज़ और सुनाई देगी तो मेरा क्या ही हाल होगा. कौन है हमारे साथ?

0: जी अदनान।
1: अदनान भाई कैसे हैं?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं
1: एकदम मस्त एंजॉय कर रहे हैं गर्मी को।
0: बस तो आपकी प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए बहुत एंजॉय करते हैं।
1: अदनान भाई प्रोग्राम देख रहे हैं कि सुन रहे हैं? मुझे कंफ्यूज कर दिया आपने। सुन रहे चले भाई, थैंक यू सो मच भाई। अदनान भाई ये बताए, मैंने एक सवाल किया था और वो सवाल पता है वेदर से रिलेटेड था कि आपको कौन सा मौसम पसंद है, एक्सट्रीम सर्दियों वाला या एक्सट्रीम गर्मियों वाला?
0: मुझे तो सर्दियों वाला ज्यादा पसंद है।
1: सर्दियों वाला ज्यादा पसंद है। तो अगर मैं आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको एक मौका दे जिंदगी में तो आप क्या करेंगे, एक्सट्रीम सर्दी वाले वेदर में कौन सी जगह पर जाना पसंद करेंगे? आपकी नजर में कौन सी जगह एक्सट्रीम सर्दी वाली है?
0: एक्सट्रीम सर्दी वाले तो पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो स्वात हो जाएगा या जीत पुनेर जो भी
1: उस कर दूं ऊपर मरी हल्का है भाई, मरी वाली सर्दी नहीं, मरी वाली हल्की बहुत हल्की सर्दी है, मरी वाली
0: हल्का है लेकिन ये अगर स्वाद की साइड भी चले जाओ तो ऊपर कालाम वगैरह उधर बहुत ज्यादा बर्फ।
1: हाँ वो जो स्कर्दू नारायण कगान हुंजा वो तो जी, भाई जी, जी, लोग कहते हैं सर्दियों में उधर की कंडीशन और उधर के जो कह लिया जाए जो मनाजिर होते हैं, जो व्यू होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप नेदरलैंड्स में बैठे हुए या सॉरी न्यूजीलैंड में बैठे हुए, न्यूजीलैंड में
0: जी,
1: तो वो इतना खूबसूरत हो जाता है। और वहाँ के कुछ एरिया इतने रिमोट हैं कि वहाँ पर तो अभी तक मतलब लोग पैदल चलकर जाएं तो जाएं, गाड़ी वगैरह कोई सिस्टम नहीं है वहाँ पर।
0: जी जी लास्ट टाइम मैं खुद वेकेशन पे गया था तो हम घूमने फिरने उधर गए थे, सर्दी में बहुत मजा आया था, बहुत मजा।
1: अच्छा मेरा सजेशन मानिए, अगर आपको इतना ही पसंद है ना तो जिंदगी में कोशिश कीजिए इंशाल्लाह साइबेरिया जाएगा, रशिया।
0: उधर तो मुझे कुल्फी मलाई बन जाएगी।
1: हाँ ना, तो हमने यही तो कहा कि एक्सट्रीम टेम्परेचर होना चाहिए ना। अब देखिए वहां पर जो सर्दी होती है ना वो -67 पर होती है, -67 डिग्री रिकॉर्ड की जाती है वहां पर। तो भाई बंदा जाए ना तो ऐसी जगह पर जाए जहां पे खुद भी कुल्फी बन जाए, मतलब सोचे इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वहां पर कि गाड़ियों का जो फ्यूल होता है ना पेट्रोल जो होता है वो जम जाता है, पेट्रोल जमता नहीं है लेकिन वहाँ पे इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर है कि गाड़ियों का पेट्रोल जम जाता है, वहाँ पे लोग गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं कर पाते।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: चले भाई
0: इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो चले जाएंगे
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस वहाँ पे जाके आइसक्रीम ना खाना भाई। ठीक है,
0: आइसक्रीम
1: है आइसक्रीम बन जाएंगे खुद, जब सोचो भाई पेट्रोल जम जाए वहां पे जाकर और जो ना हम वहां पे जा रहे हैं घूमने, एक्सट्रीम एक्सट्रीम। चले भाई इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक अता की तो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह
0: इंशाल्लाह, बस आपकी दुआ होगी तो इंशाल्लाह चले जाएंगे
1: इंशाल्लाह भाई। अच्छी अच्छी दुआएं सबके लिए, अच्छी अच्छी दुआएं सबके लिए, इज्तमाई दुआएं सबके लिए, आमीन। अच्छा भाई ये बताएं कि नदीम भाई गेम खेलेंगे, गेम ठीक है। एक मिनट दिया जाएगा आपको, एक टॉपिक दिया जाएगा ठीक है, और आपने उसके ऊपर बात करनी है।
0: जी जी बिल्कुल
1: ठीक है। और आपका टॉपिक है सीक्रेट रेसिपी, ठीक है, सीक्रेट रेसिपी बतानी है आज आपने हमें एक मिनट तक। एक मिनट खत्म होगा मैं ऑलरेडी आपको खुद बोल दूंगी एक मिनट खत्म हो गया, आपने बीच में रुकना नहीं है ठीक है।
0: सीक्रेट रेसिपी में तो बहुत आते हैं लेकिन मेरा सीक्रेट रेसिपी जो है वो बिरयानी होगी।
1: ठीक है,
0: तो अगर बिरयानी आपको पसंद है तो बिरयानी बहुत बहुत मसाले होते हैं, जैसे अगर आप पुलाव बनाते हो, चिकन बिरयानी बनाते हो या मटन बिरयानी बनाते हो तो उसमें आपने अलग अलग मसाले डालने हैं और उसको पहले अच्छी तरीके से आपने भूनना है। ठीक है, चावलों को भून के अच्छी तरीके से उसमें भी तकरीबन कोई 5-6 यानी ज्यादा 10 या 20 मिनट लगते हैं। तो उसको भूनने के बाद आपने टमाटर और प्याज को आराम आराम से काटना है ताकि आपकी आंखें भी प्याज से जो है ना खराब ना हो जाए, और टमाटर भी ऐसे होते हैं कि उसको भी कोई कच्चा होता है कोई ज्यादा नरम होता है सख्त होता है, तो उस बिना में देख के आपने टमाटर को भी अच्छी तरह से, और उसमें मिर्ची भी आती है तो मिर्ची भी ज्यादातर ऐसी होती है कि बंदा काट के आंखों में भी चली जाती है तो उसकी भी सूजन होता है। और उसके बाद अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज को भी अगर आपने काटना है तो अच्छी तरीके से धो के प्याज को आहिस्ता आहिस्ता काट ले, उसके बाद फिर
1: चलें जी हो गया टाइम अप हो गया, वेरी गुड हो गया भाई वेरी गुड हो गया। बात कर सकते हैं, बातों नहीं लोगे मतलब आपकी कंपनी में कोई बेजार नहीं होगा। सही है भाई ये सही है। अच्छा आप कहाँ से हैं? मुझे लग रहा है पाकिस्तान से हैं, तो आप कहाँ से हैं पाकिस्तान से?
0: नहीं मैं तो अभी कीतम में फूड डिलीवरी का काम करता हूँ, लोकेशन पे जा रहा हूँ तो

0: को आपका प्रोग्राम में सुन के बहुत अच्छा लगता है, तो आज मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, शायद हमारी कॉल लग जाए, तो किस्मत अच्छी थी।
1: वेरी गुड हो गया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। नहीं नहीं, मैं पूछ रही थी कि पाकिस्तान में कहाँ से हैं, कौन से इलाके से हैं?
0: पाकिस्तान में मैं कुहाट से हूँ।
1: अरे भाई, कुहाट से? खूबसूरत जगह है कुहाट, बहुत खूबसूरत जगह है माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह, नेचुरल ब्यूटी है वहाँ पर। चले भाई, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एंजॉय करें, अल्लाह हाफिज। चलो भाई, देखो आपने करना ये है कि आपने हमें मैसेज करनी है या कॉल करनी है, तो आप कॉल करने के लिए नंबर है 4434377, 4434377, और चाहें तो हमें मैसेज भी कर सकते हैं 6622107, 6622107। अच्छा भाई, यूसुफ भाई का मैसेज आया, यूसुफ भाई ने दलूल की मुझे तस्वीर भेजी। हाँ दलूल, देखें खूबसूरत है ना सफा जी। इंसान की नेचर में ना तो एक्सट्रीम हीट बर्दाश्त करना हो सकता है, ना ही एक्सट्रीम सर्दी, तो जवाब कैसे दें आपके सवाल का? अरे भाई देखें, इंसान की बॉडी को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है। अब गर्मी, आपको क्या लगता है कतरी गर्मी को बर्दाश्त कर सकता था? डेजर्ट है, नहीं कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान की आप कह लें कि बॉडी को ऐसा भी बनाया कि वो अडेप्ट कर। तो ऐसी जगह जैसे मैं बता रही थी साइबेरिया का, तो ऐसी जगह पर लोग रहते हैं भाई, बेशक कम आबादी है, बहुत कम आबादी है, लेकिन लोग रहते हैं वहाँ पर। अब जैसे मैं आपको एक एक एक जगह बताती हूँ, मुझे याद पड़ रहा है अटिकामा डेजर्ट है चिली में, चिली कंट्री है उसका, अटिकामा एक डेजर्ट है और उसको कहा जाता है द ड्राइस्ट प्लेस ऑन अर्थ। लोग यहाँ पर भी रहते हैं, इंसान की बॉडी अडेप्ट कर लेती है, टेम्परेचर वहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है और दिन के टाइम ऊपर चलाता है, और रात के टाइम ऐसे ही जैसे दिन के टाइम एक्सट्रीम जाता है ना, रात के टाइम वैसे एक्सट्रीम नीचे भी आता है। और इस जगह के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर ऑलमोस्ट आप कह लें ऑलमोस्ट नो रेनफॉल एट ऑल। जो नासा वाले ना वहाँ पर मार्स के इक्विपमेंट्स को टेस्ट करने के लिए भेजते हैं उस लैंडस्केप के लिए, सोचें वो कितनी हार्ड कंडीशन होगी। वहाँ का डेजर्ट बहुत सख्त तरीन है, और मैं अगर वैसे बात करूँ तो वहाँ के आसमान भी हमारे आसमान की तरह नहीं है, वो बड़े क्लियर स्काई होते हैं कि जहाँ पर हमें इतने गुबार वाले आसमान में 50 की गर्मी इतनी तेज़ लगती है, तो वहाँ के आसमान बिल्कुल नीले साफ शफाफ होते हैं। वहाँ पर तो ऐसा लगता है जैसे आर पार हो जाएगी धूप हमारे। तो भाई सोचें वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स के लिए गैजेट्स भेजे जाते हैं, इक्विपमेंट्स भेजे जाते हैं, तो इनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, और इंसान वहाँ पे भी रहते हैं, यहाँ पर भी इंसान रहते हैं, तो इंसान कैन अडेप्ट अकॉर्डिंगली। तो भाई आप मुझे कॉल कर सकते हैं 4434377 पर, और एक कॉल आई है, देखते हैं कॉल पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम जी, सफा जी क्या हाल चाल?
1: मेरे हाल चाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रजा में राजी, लोग खुशबाश रहते हैं हम और खुशियां बांटते हैं। तो भाई कौन है हमारे साथ?
2: मैं जी अब्दुलरहमान।
1: अब्दुलरहमान भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं?
2: शुक्र अल्लाह का सब ठीक। पहचान लिया होगा आपने शायद,
1: देखे गजनी मूवी देखी आपने? अच्छा मैं इतना बता दूं कि मुझे आपका नाम याद है, नाम याद है आपका, आपसे मेरी माशाल्लाह से 2-3 दफा पहले ही बात हो चुकी है, मुझे ये भी याद है।
2: जी जी जी जी, ये आप कल मैसेज में भी कह रही थी कि जब आप स्माइल कर रहे हो वही वाला।
1: तो भाई अब्दुलमान भाई देखें आपकी तस्वीर, मेरे ख्याल से मैंने तस्वीर के ऊपर कमेंट किया था, सही?
2: जी हाँ।
1: अरे वाह, वो वाले अब्दुलरहमान भाई जिनकी डीपी बड़ी शानदार सी लगी है, पता चल रहा है छुट्टियों के टाइम पे खिंचवा कर आए थे ये तस्वीर। सबके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो होता है छुट्टियों का भाई।
2: जी सब फैमिली के पास होते हैं ना सब, तो उनका तो फिर खुशी अलग ही होती है ना।
1: चले एक और छुट्टियों के बारे में बात करते हैं, एक दिन की छुट्टी के बारे में, कि अगर आपसे कहा जाए कि एक एक्सट्रीम वेदर वाली कंडीशन में आप एक जगह छुट्टी मना कराओ एक दिन की, तो आप कौन सा चूज करोगे, सबसे एक्सट्रीम गर्मी या सबसे एक्सट्रीम सर्दी?
2: सबसे एक्सट्रीम सर्दी।
1: सर्दी, हमारे घर वालों की तरह है आप लोग भी, एक्सट्रीम सर्दी चाहिए।
2: गर्मी में तो पहले इधर 4 साल थे, 5 साल ठंडी चूज करेंगे
1: भाई। मैं तो यहाँ की पैदाइश हूँ, तो मुझे तो यहाँ की गर्मी

0: अलास्का। अरे भाई बिल्कुल ही एक्सट्रीम में चले गए ये तो।
1: ये तो इधर है -90 पे। सर्दी जो है ना वो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ।
0: सही।
1: पाकिस्तान में टूर भी किए हुए हैं बहुत बाइक पे ना, टूरिस्ट बाइक का तो वो बहुत ही ठंडी जगह पे गए हैं, लेकिन उसका ठंड का कोई इशू नहीं है।
0: आपको ना एंटार्क्टिका के वॉकस्टॉक स्टेशन पे जाकर छोड़ देना चाहिए। पता है वहाँ पे भाई मेरे, पता है कितनी सर्दी है वहाँ पर, -89 की।
1: तो इसका -83 समथिंग था आई थिंक।
0: अरे भाई भाई वहाँ भी जाने को तैयार है, दुनिया की सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड की गई वाली जगह पर।
1: ठंड जो है वो कंट्रोल कर लेता है सर, गर्मी नहीं कम कंट्रोल होती है। ये कैसे करे इतना, इसी में जैसे मर्जी रह ले फिर भी कहीं से।
0: आइस वाटर बात क्या करें, आइस वाटर बात। अच्छा बताए कुछ लोग ना आइस वाटर बात वाकई में लेते हैं, कुछ एथलीट्स वगैरह जो होते हैं ना वो कहते हैं उससे इंसान की जो फिजिक है ना वो सही रहती है, इंसान स्ट्रांग रहता है उससे। पढ़ा नहीं अभी कहां तक सही है मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि मैं तो सर्दी से बहुत भागने वाला इंसान हूँ ना।
1: मैं हार्डबॉल वगैरह खेलता था ना, वो हार्डबॉल के मैच जो होते हैं वो गर्मी क्रिकेट जो होती है हार्डबॉल जो, वो सर्दी में इसलिए होता है कि कहीं चोट भी लग जाती है ना तो वो जल्दी रिकवर हो जाती है।
0: सही,
1: गर्मी में नहीं होती।
0: चले जी आप जाएंगे कहाँ, आपने कहाँ का बताया, कहाँ का?
1: अलास्का।
0: अलास्का, अरे भाई अलास्का जाएंगे। अच्छा अलास्का में मैंने ये भी सुना है कि सूरज 6 महीने सूरज डूबता नहीं है, 6 महीने सूरज निकलता नहीं है, इज इट?
1: नहीं, ऐसा नहीं है।
0: अलास्का अलास्का नहीं है,
1: नॉर्वे की कुछ साइड आई थिंक।
0: हाँ अच्छा अच्छा मैं मिक्सअप हो रही हूँ। चलें फिर, अच्छा चलें एक काम करते हैं, आपको देते हैं चैलेंज, टॉपिक का चैलेंज देते हैं आपको, आपने 1 मिनट तक बात करनी है इसके ऊपर, ठीक है?
1: ठीक है
0: तो 1 मिनट के लिए, और आज आपको देंगे एक फनी सा चैलेंज, क्योंकि मुझे आप लग रहे हैं बातूनी सही वाले फनी वाले बंदे लग रहे हैं, मुझे इसके ऊपर बात कर जाएंगे आप। तो आपका टॉपिक है अम्मा का सुपर लितर, मतलब ये कि अम्मा की जो उड़ती हुई चप्पल आती है ना
1: जी,
0: तो बस वो अम्मा की चप्पल टॉपिक है, ट्रेनिंग वाला चप्पल। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ।
1: अम्मा की चप्पल किसने सिखाई, जिसने नहीं खाई उसने क्या जिंदगी दी है। हर बात से अम्मा की चप्पल आती थी, कोई ये कर लो बेटा ये करोगे तो ये इधर से आ गए, इधर से बाहर आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ की चप्पल पता की नहीं गया, कहाँ से आ रहे हैं, ये आ गई चप्पल, कहाँ से आ रहा है कुछ नहीं पता, पढ़ नहीं रहा, ये आ गई चप्पल, ये नहीं करना वो नहीं करना, ये मैंने कहा इसके साथ ही जाना उसके साथ नहीं जाना, क्यों गया उसके साथ, ये आ गई चप्पल। हर बात पे चप्पल बचना पड़ता था, बस किस बात पे बचे, ऐसा नहीं होता कि किसी बात से बचा जाए, लेकिन माँ कि अपने माँ बच्चे के लिए वही ना कि कहते हैं कि अगर बच्चे माँ का प्यार जो होता है ना उसके यही होता है कि अगर उसे उन्होंने मार के तरबियत यही होती है ना कि अगर नहीं सिखाएगा तो क्या करेगा आगे जाके इस जिंदगी में, लास्ट में जा पढ़ाते हैं जिसमें जाके तंग होगा खुद ही वो।
0: सही, चले भाई आपका टाइम पूरा हो गया, वेरी गुड, अम्मा की चप्पल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। आप एक बात तो बताना भूल ही गए भाई, अम्मा का निशाना बड़ा सेट होता है, चूकता नहीं है निशाना अम्मा का।
1: वो स्टार्ट हो जाता ना शुरू से ही जब पढ़ने,
0: मैं बता रही हूँ हमारी देसी अम्माओं को, अगर ओलंपिक में टारगेट चप्पल के साथ टारगेट करने को बोला जाए ना तो भाई गोल्ड मेडल लेकर आएंगी, गोल्ड मेडल। और लेकिन टारगेट पे पता है किसको खड़ा किया जाए, हमें खड़ा किया जाए टारगेट पर, बहुत बहुत जबरदस्त। अम्मा का सुपर लितर, शानदार किस्म का, देखिए उनके इस सुपर लितर के नताइज हम हैं। हमें
1: वो किया तो हम सुधरे हुए थे
0: बिल्कुल, मैं 100% मानती हूँ आपकी इस बात को। चलें जी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
1: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
0: भाई वैसे एक बात बताऊं, मेरी अम्मा जब चाहे सुपर लित्तर हो चाहे वो हाथ भी हो ना अम्मा का, अम्मा वैसे कभी मारती नहीं थी, लेकिन अम्मा ने कभी अगर जिंदगी मारने की कोशिश भी की ना तो अम्मा के इतने नरम मुलायम हाथ मेरे अम्मा के कि वो लगते ही नहीं थे, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, कोई फर्क ना पड़ता

0: था मन मन ही मार से हमें, बहुत ही कोई डीट और आते हम। अच्छा भाई अब एक काम करते हैं, आप लोग की कॉल्स का सिलसिला भी जारी है, मैसेजेस का सिलसिला भी जारी है, मजा आ रहा है। क्या करूं, ब्रेक लूं कि कॉल ले लूं? भाई कॉल चल रही है तो कॉल ले लेती हूं। दिल ये जा रहा था कि ब्रेक लूं, लेकिन ये भी सोच रही हूं कि भाई कॉल भी लेनी है। तो चले भाई 443-443-77 इज द नंबर टू कॉल, और आप चाहें तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, 666-22-107 इज द नंबर टू मैसेज। और देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ?
1: हमजा।
0: अच्छा भाई हमजा भाई, बहुत दिनों बाद नजर आए हमजा भाई, कहाँ गुम हो गए थे? हमने कोई टेक्स्ट वेक्स तो लगाया नहीं था कॉल पर।
1: आपकी आवाज़ वाकई कमजोर है।
0: कल कॉल की थी क्या? सच बताएं।
1: डेली बेस पे कॉल कर रहा हूँ
0: हमजा भाई। कल तो ना की थी, ये तो ना करें, ऐसा ना करें ना, परसों मतलब कल से पहले की थी आपने, और आपने आपको मैंने बोला भी था कि आपने अच्छा कंटेंट दिया है हमें, गुड, इट वाज अ गुड कंटेंट।
1: परसों के चॉकलेट में बात हुई थी।
0: देखा परसों हुई थी, कल तो ना की थी।
1: कल भी आपके कॉन्टेक्ट में मैंने बात की थी, मैं क्या उसके जहाँ तक मुझे याद है। जो भी है, क्योंकि मैं जाना डिग्री का काम करता हूँ, तो बात करने के बीच में कभी ऐसा मौका हो जाता है।
0: अच्छा सही मेहनती बच्चा है, मेहनती बच्चा है। देखिए मेहनती बच्चों से हम सवाल नहीं करते ज्यादा। हमजा भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं कैसे हैं?
0: अल्लाह का करम है,
1: दावा है कि आपने फंसाना ही है लोगों को बस।
0: देखिए लोग, अरे भाई देखो ना, मामला पता है क्या है, रुलाने को आधी दुनिया से भी ऊपर बैठा हुआ है, 80% दुनिया तो रुलाने पे तुली हुई है, तो क्या ही मैं भी उनके अंदर शामिल हो जाऊं? हम हटके लोग हैं भाई, हम हटके हैं।
1: आप उनके अंदर ही शामिल हो रही हैं, आप फंसाने में तुली हुई
0: है। मैं वही कह रही हूं, हम हटके, हम थोड़ा हम यूजुअल कॉमन परसेंटेज से जरा हटके हैं, तो वो जो 10-20% बच जाता है ना, हम उनमें से हैं, तो हम कहते हैं भाई खुश रहो और खुशियां बांटो। अच्छा ये तो बताएं, ये बताएं, ये बताएं कि एक दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, एक्सट्रीम गर्मी में कि एक्सट्रीम सर्दी में?
1: मैं वही आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ ना कि ऐसी खुशियाँ या तो जमा दें या पिघला दें।
0: देखिए हम एक्सट्रीम में बिलीव करते हैं, हमारे पास या ब्लैक है या व्हाइट, देयर इज नो ग्रेज।
1: वैसे सीरियस बात पूछे ना तो सही दिल से मैं पाकिस्तान ही रहना चाहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर मौसम मिला है।
0: हाँ,
1: ठीक है,
0: ये तो है, चले अपने अपने इस बॉक्स से बाहर निकलते हैं ना, हम बॉक्स से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है भाई। अपने डरबे से बाहर निकलते हैं, पाकिस्तान के डरबे से बाहर निकलते हैं, ठीक है। पाकिस्तान तो हम माशाल्लाह जाते हैं, छुट्टियों में भी जाते हैं, पहले भी वहां पे रहे, एंजॉय भी किया बहुत कुछ, उससे मतलब एक ख्वाहिश होती है ना इंसान की, कुछ अलग, कुछ एडवेंचरस लोग होते हैं। अब मेरे जैसे एडवेंचरस लोग हैं ना, उनको अगर कोई बता देना कि सफा फलानी जगह पर ना पता है क्या हुआ था, तो भाई मेरे कान खड़े हो जाते हैं, मैं कहती हूँ हाँ ऐसा भी कुछ हुआ था, तो मुझे वो चीज मजा देती है, वो एडवेंचर।
1: आपको एक एडवेंचर के नाम पे एक फनी चीज बताता हूँ, मेरे वालिद साहब जो है ना, अल्लाह पाक उनको लंबी उम्र दे और खुश रहे,
0: आमीन आमीन।
1: उनका ना अक्सर ये होता है कि उनको घूमने फिरने का इतना शौक नहीं है, तो हम लोग अगर सीवी वगैरह जाएं या आगे पीछे कहीं घूमने के लिए जाएं, दो दरिया वगैरह, तो जब वापस आया था तो वाली साहब का एक कमेंट पास होता है, लौट के बुद्धू घर को आए, तो मैं घर पे नहाने के लिए मिलता, इतना बड़ा दरिया जा मुझे खारे पानी में इतना पानी मिल रहा है, तुम लोगों को घर पे नहाने के लिए, फिर भी तुम लोग ये काम करते हो, ये बात है। बाकी घूमने का क्या, घर पे जो फैसिलिटीज मिलनी है तुम
0: नहीं, वो भी देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वो फैसिलिटीज भी नहीं मिलती, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक लग्जरी है, मैं तो ये कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके अलावा फॉर एग्जांपल देखें, मेरी बहन रहती है कनाडा में, अब मैंने उसे सिर्फ बातें सुनी है कनाडा की, अब कनाडा का एक जगह एक टेरिटरी है जिसको कहा जाता है यूकॉन टेरिटरी कनाडा में, और उसके टेम्परेचर ना लोएस्ट 62.8 पे जाते हैं, -62.8 डिग्री सेल्सियस। अब ये वो टेम्परेचर है जहां पर हवा भी जम जाती है भाई, मतलब अगर आप पानी यूं करके उछालें ना हवा में तो वो जम जाएगा, आपके उछालते ही जम जाएगा वो पानी, तो वहां पे पॉपुलेशन भी बहुत कम है। अब अगर मुझे कोई ऐसी जगहों का बोले ना, वैसे मुझे सर्दी पसंद नहीं है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, लेकिन मैं देखना जरूर चाहूंगी आउट ऑफ द बॉक्स।

0: देखना जरूर चाहूंगी भाई. हाँ अरे भाई कैसा लगता होगा, एक ख्वाहिश होती है ना, एक एक, एक आपको टेम्प्ट आता है.
1: आपको एक मजे की बात बताऊं, असल अब कंडीशन ये चल रही है कि गर्मियां तो हमने बर्दाश्त कर ली, सब कुछ देख लिया कर लिया, ठीक है एक्सेप्टेबल है ये, हम लोग बर्दाश्त कर लिए. आप अगर देखना चाहें तो सर्दी देखना चाहेंगे, हम लोग
0: सर्दी देखना चाहेंगे. तो सर्दी में कोई कोई कोई ऐसा नाम दिमाग में आता है किसी कंट्री का?
1: जहाँ आपने बताया वहीं चलूंगा. वैसे कनाडा मैंने देखा है.
0: अच्छा देखा है,
1: ये है कुछ शहर ऐसे हैं जितना मैं कल सर्च कर रहा था तो मैंने एक जगह देखी, बोस्निया करके नाम है जगह का. आप कैसे करेंगे वो, मीन्स मैंने कभी इतना नाम नहीं सुना, बाकी नहीं सुना, लेकिन मैं उसकी देख रहा था प्लेसेस वगैरह, मोस्ट ब्यूटीफुल. आप बिलीव नहीं कर सकते कि इतनी खूबसूरती या इतना सब कुछ.
0: बोस्निया, बोस्निया, हाँ मैंने मैंने मैंने मैंने भी बोस्निया का देखा है. हाँ जी देखा नहीं मतलब सर्च में. सही,
1: इसी तरह पिछले दिनों मैंने पोलैंड का सर्च किया तो वो भी
0: भाई पोलैंड बड़ी खूब अच्छा लगा. ग्रीनलैंड भी एक ऐसी जगह है जहाँ का टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम पर जाता है, -69 डिग्री तक जाता है उधर का टेम्परेचर. ग्रीनलैंड भी एक बहुत खूबसूरत जगह है.
1: पोलैंड का एक मुझे पिछले दिनों ही पता चला, खैर ये तो बात बहुत पुरानी है लेकिन मुझे पता पिछले दिनों चला. जस्ट अ मिनट, इसका करना है ऑयल चेंज करवाना. अच्छा जी, सॉरी फॉर जो है मैं पोलैंड का बता रहा था कि पोलैंड का मुझे पता ही ये चला कि उसमें जो है जो वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट था, क्या कहते हैं उसको, जहाँ स्विमिंग के लिए कहते हैं, जो अभी दुबई ने बनाया.
0: चले ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं, नाम तो याद नहीं आ रहा. हाँ स्विमिंग के लिए आगे
1: कुआं, कुआं नहीं जिसको कहते जो पानी वगैरह.
0: हाँ हाँ हाँ वेल हाँ,
1: उसके लिए वो वैसा, वो जो है काफी टाइम तक पोलैंड के पास वो रिकॉर्ड रहा है कि सबसे डीपेस्ट पोलैंड का था वो. फिर अभी दुबई ने जिस तरह बनाया तो फिर वो रिकॉर्ड दुबई के.
0: कुएं के बारे में बात कर रहे हैं या वो बोरिंग होती है जो, उसके बारे में बात कर रहे हैं? कुछ चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ अच्छा हुआ अल्लाह ताला बेहतर करके दे दे और घूमे फिरें. अल्लाह हाफिज. अरे हमजा भाई साथ तो गेम नहीं खेला, हमजा भाई ऐसे निकल लिए. अरे भाई हमजा भाई कॉल ली काट दी भाई. अच्छा ये जिसके बारे में बात कर रहे थे ना वो मुझे जहाँ तक समझ में आया वो उसको कहते हैं डीपेस्ट स्कूबा डाइव. ये इजिप्ट में भी है, मैन मेड डीपेस्ट स्कूबा डाइव के जो हैं वो डीपेस्ट जो हैं वो मेरे ख्याल से ये पोलैंड का बोल रहे थे, पोलैंड ने रिसेंटली बनाया उसका बोल रहे थे, तो उसके अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड का बोल रहे थे कि पोलैंड ने अपना नया नया बनाया है. अच्छा ये मार्केट में न्यूज़ नहीं आई है. चलो भाई इसी न्यूज़ के साथ एक काम करते हैं, आप लोगों की कॉल्स तो जा रही हैं, कॉल्स मैं लूँगी लेकिन मैसेज वालों को भी थोड़ा एक नज़र देख लूँ, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएंगे. भाई क्या कह रहे हैं भाई, कयूम पार्कर क्या कह रहे हैं, कयूम पार्कर, पीटर पार्कर क्यों याद आ रहा मुझे, नाम ऐसा मिलता जुलता लग रहा. और क्या कह रहे हैं, आई लव योर डायलॉग, अल्लाह की रजा में राजी. हाँ भाई मैंने भी इसे सीखा था, तो मैं जब भी ये बोलती हूँ मैं कहती हूँ आधा हजार तो उनको मिलता ही होगा. आई ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग इट, रियली फील्स गुड वेन एवर आई से दिस, क्रेडिट गोज टू यू. मेरे देखिए मुझे सिर्फ एक हिस्सा मिलेगा उसका जब जब आप बोलेंगे वो. अरे भाई वो सलमान खान वाला डायलॉग याद आ गया, एक नेकी करो फिर आगे तीन लोगों को और बांटो तो तुम्हें फिर वो तीन लोग आगे और तीन लोगों को करेंगे, मतलब बांटते चले जाएंगे गुड थिंग्स. तो ये वो वाला हिसाब चल रहा है. अच्छा और कौन है, यूसुफ भाई, यूसुफ भाई क्या कह रहे हैं, अच्छा सही है तो मेरा जवाब एक्सट्रीम हीट होगा क्योंकि मुझे सर्दी अच्छी नहीं लगती. यूसुफ भाई माशाल्लाह मेरी क्या करी. आप सर्दियों का मामला पता है, जैसे सर्दियाँ आती हैं ना तो वो दरवाज़ा देखा है आपने जिसके अंदर तेल की कमी होती है, उसको खोला जाए तो ची ची आवाज़ करता है, मेरी हड्डियाँ भी वैसी ची ची आवाज़ करती हैं सर्दियों में. क्या कह रही हूँ सुबह, गर्मी होगी तो कैसे भी पानी पी पी के गुजारा कर लूंगा, ठंडी चीजें खा खा के बर्दाश्त कर सकता हूँ, वेयर एज सर्दी तो कुछ भी कर लो बर्दाश्त नहीं होती, स्पेशली विद मी। हाँ मुझसे भाई, मैं आपकी जज्बात समझ सकती हूँ। एक और मैसेज में कौन है, अस्सलाम वालेकुम मैडम, आई होप यू आर डूइंग वेल। फॉर मी आई विल सजेस्ट पाकिस्तान, मेरे बेस्ट प्लेस टू विजिट, मरी बेस्ट प्लेस टू विजिट। अच्छा अली भाई कह रहे हैं, अली भाई मरी से थोड़ा सा और ऊपर जाना, थोड़ा सा और ऊपर, वो हंजा हो गया, स्कर्दू हो गया, वो वाली जगह भी अच्छी हैं। असल में मैंने मरी इतनी दफ़ा घूम लिया ना कि मैं बोर हो गई तभी। अच्छा और कौन है हमारे साथ, मिस्टर ए नाम लिखा हुआ है क्या, ए, अब मैं क्या बोलूँ, ए ने मैसेज किया है। अच्छा अल्लाह पाक ने मेरे पाकिस्तान को सब मौसम दिए हैं। अच्छा भाई ये हुबुल वतनी जाग रही अंदर से, ये पेट्रियाटिक इंसान बोल रहा है जज्बाती होकर। गर्मी देखनी है तो मुल्तान चले जाएं, सर्दी देखनी है तो मरी नारान की गलियों में चले जाएं। आपने अगर मरी ही बोलना था तो मुझे पता चल रहा है कि आप कहां तक घूमें पाकिस्तान में। भाई मरी से ऊपर एक ऐसी दुनिया है जो आप देखोगे तो आप कहोगे ये इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। इतनी खूबसूरत आंखें मलने पर मजबूर हो जाओगे, आप कहोगे ये कौन सी पिक्सल में चल रही है दुनिया, मेरी आंखें इस खूबसूरती को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। हुंजा, स्कर्दू और भी ऊपर बहुत सारे इलाके हैं लेकिन वो बहुत रिमोट हैं तो लोग उस पर आमतौर पर जाते नहीं हैं, आसानी से पहुंच नहीं पाते आसानी से। अच्छा भाई गुलजार भाई क्या कह रहे हैं, गुलजार भाई ने किया मैसेज, वॉइस मैसेज किया। गुलजार भाई आपके मैसेज पर आएंगे लेकिन एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं साथियों, और ब्रेक के बाद वापस आकर आप लोगों की कॉल्स भी जा रही हैं, कॉल्स भी रिसीव करेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, सुनते रहें सफ़ा के साथ। शो का नाम है, क्या नाम चल रहा है भाई शो का, सन एंड साउंड। असल में वो दो दिन इतने सारे शो एक साथ कर लिए ना तो कन्फ्यूज़ हो जाता है बंदा कभी कभी। सन एंड साउंड सुन रहे हैं आप सफ़ा के साथ। तो भाई अरिजीत सिंह आप थोड़ी देर के लिए कुर्सी संभालें और मेरा साथ दे दें थोड़ा सा, प्लीज प्लीज। आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड और FM 107 दिल से देसी घेरुआ। भाई ये गाना है ना इसकी अलग फील है, वैसे इतने लव सॉन्ग्स मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन ये गाने का जो बीट है ना इस गाने की, जो सुरताल, मैं भाई क्या बोलूं, क्यों मैं दिमाग खराब करूं। चलो भाई वॉल्यूम ऊपर करो, FM 107 सुनो और गाना एंजॉय करो। मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

0: भाई पहले तो आप मिले ही होगे, अब फिर से मिल लो, कोई बात नहीं।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ, सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
0: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड एफएम 107। और सफा आज बात कर रही है एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम बातें कर रहे हैं हम, लाइट मोड पे एक्सट्रीम बात। हुनर देख रहे हैं मेरा, टैलेंट देख रहे हैं मेरा, लाइट मोड पे एक्सट्रीम बात कर रही हूँ मैं। तो भाई साथियों, जाने से पहले हमारा मुद्दा ये चल रहा है कि देखो भाई, हम जो है ना बात कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि अगर आपको अल्लाह ताला तौफीक दे कि आप एक दिन के लिए किसी ऐसी जगह पर घूम कर आएँ जो कि बहुत एक्सट्रीम हो, या तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो, या तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ठीक है, तो वो कौन सी जगह होगी। एक लिस्ट होती है ना हमारी, एक बकेट लिस्ट होती है लाइफ में। बहुत सारे लोगों के बहुत मुख्तलिफ ख्वाब होते हैं, और कुछ ट्रैवलिंग का जो शौक रखते हैं लोग, उनके दिमाग में भी कुछ तस्वीरें होती हैं, कुछ ख्याल होते हैं कि हाँ भाई मेरी जेब जब भारी होगी ना

0: तो जाऊंगा मैं यहाँ कट लेकर. तो मुख्तलिफ जगह होती है मुख्तलिफ लोगों के पास. कुछ लोगों के पास टू डू बोल रही हूँ, बकेट लिस्ट में कुछ लोगों के पास अपने कंट्रीज विद इन देयर ओन कंट्री. अब जारी बात है हर कंट्री की अपनी एक खूबसूरती है, कोई कंट्री किसी से कम नहीं है. कुछ लोग ये प्रेफर करते हैं कि भाई हम अपने मुल्क के अंदर रहकर अपने मुल्क को इर्द गिर्द घूम लें. जैसे इंडिया पाकिस्तान हमारी जो कंट्रीज हैं, इनके पास डिफरेंट एरियाज में इनका ये कि इनकी लोकेशन कुछ ऐसी है कि इनके पास डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट मुख्तलिफ वेदर्स होते हैं, वेदर कंडीशंस होती हैं. तो ये कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम अपनी कंट्री के अंदर ही घूमना पसंद करेंगे, हमें एक जगह पे गर्मी मिल जाएगी तो एक जगह पे एक्सट्रीम सर्दी मिल जाएगी. लेकिन कुछ लोग ये होते हैं कहते हैं कि भाई बाहर निकल के, डब्बे से बाहर निकल के भी देखूँ, मैं आउट ऑफ द बॉक्स भी देखूँ दुनिया. अब अगर मैं बोलूँ तो मुझे शौक है वो अपना अंटार्कटिका जाने का, अंटार्कटिका जाने का. पता नहीं क्यों है, बस देखने का शौक है. सर्दी मुझसे बर्दाश्त होती नहीं है, लेकिन मुझे देखना है कि आखिर ऐसी क्या जगह है जहाँ पर जाने के लिए 55 रिस का वीज़ा चाहिए भाई, अप्रूवल चाहिए. क्या है क्या इस जगह में आखिर ऐसा. अच्छा, एक और जगह जो मेरे दिमाग में आती है वो कनाडा की एक जगह है जिसको कहा जाता है ईओरेका. अब मैं आपको इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ. एंटार्क्टिक का फ्रोजन रिसर्च टाउन कहा जाता है इसे, ईओरेका को. अब ये जगह ऐसी है जहाँ पर -40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नॉर्मली अराउंड रिकॉर्ड किया जाता है. इसके मज़े की बात ये कि दुनिया के सबसे नॉर्दर्न रिसर्च स्टेशंस में से एक है. यहाँ सर्दियों में, सर्दियों के महीनों में सूरज एक होता है ना नजर आना या झलक दिखला जा, वो भी सीन नहीं होता यहाँ पर. मतलब बहुत कम नजर आता है भाई यहाँ पर. ये हाल है यहाँ पर सर्दी का कि साइंटिस्ट यहाँ आर्कटिक वेदर और क्लाइमेट चेंज स्टडी करते हैं. ये वही जगह है जहाँ पर पोलर बेयर्स और आर्कटिक वाइल्ड लाइफ का रीजन पाया जाता है. तो भाई ऐसी जगहें हो ना तो मज़ा आता है. ग्रीनलैंड भी मुझे जाने का बड़ा वो होता है, इट साउंड्स वेरी अमेजिंग. क्योंकि ग्रीनलैंड के बारे में क्या जाता है कि ग्रीनलैंड ज़्यादातर जो हिस्सा है ना उसका, वो हिस्सा बर्फ से कवर्ड है. आइस शीट इतनी बड़ी है कि अगर पूरी पूरी पिघल जाए ना तो दुनिया का सी लेवल बहुत ऊपर सुपर से भी ऊपर जा सकता है भाई. अगर ग्लेशियर्स आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ पे जो ग्लेशियर्स है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं बिल्कुल स्लो मोशन में, जैसे रिवर मूव कर रहा होता है ना वैसे बिल्कुल स्लो मोशन में मूव करते हैं यहाँ पे ग्लेशियर्स. भाई जबरदस्त जगह होगी, सुभान अल्लाह. आखिर में इंसान ही कहता है सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है भाई, अल्लाह ताला की कुदरत है. कुछ लोगों को बहुत एक्सट्रीम गर्म वेदर्स पसंद है, कुछ लोगों को बहुत एक्सट्रीम ठंडे वेदर्स पसंद है. तो अगर आपको सवाल ये है कि अगर आपको एक दिन का टाइम दिया जाए, अगर आपको एक दिन का कहा जाए कि अल्लाह ताला आपको तौफीक दे रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे? एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में जाएंगे या एक्सट्रीम हीट वेदर में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? और हमें मैसेज किया है किसने, लतीफ़ भाई ने मैसेज, लतीफ़ भाई ये जो आपने मुझे वीडियोस भेजी है ना, मैं इनके ऊपर टोटली अग्री करती हूँ. और मैं मानती हूँ कि हमारे मुल्क में ऐसी जगहें हैं जो कि आप कह लें कि भाई दिल क्या रूह भी चोरी कर लें, इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगहें, कैमरा उनको कैप्चर नहीं कर सकता, उनकी खूबसूरती को जस्टिफाई नहीं कर सकता कैमरा. बहुत खूबसूरत जगह है हमारे मुल्कों में, ये बात मैं मानती हूँ. लेकिन आप कहाँ जाना पसंद करेंगे ये तो बताएं ना. वीडियोस तो भेज रहे हैं लेकिन आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? एक कॉलर है हमारे साथ जो कि आए और ठक करके चल दिए. अरे भाई मैं आ रही थी आपकी तरफ ही, आ रही थी. आप मुझे कॉल कर सकते हैं साथियों, अगर आप शामिल होना चाहते हैं डिस्कशन में तो 443-443-77 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं. चाहे तो मैसेज भी कर सकते हैं, 666-22107 इज द नंबर टू मैसेज. कॉल के लिए नंबर है 443-443-77. जी अस्सलाम वालेकुम.
1: जी वालेकुम अस्सलाम.
0: कौन है हमारे साथ?
1: जी मेरा नाम आसिफ है और मैं काफी देर से आप ट्राई कर रहा था बट अनफॉर्चुनेटली काफी बिजी थी आप तो कॉन्टेक्ट नहीं हो सका.
0: आसिफ भाई माजरत माजरत.
1: देखिए
0: नाराज नहीं हुई आसिफ भाई, लेकिन नाराजगियां हमारे साथ नहीं चलती.
1: नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं हूँ. और ये मेरी मतलब गुड लक एटलीस्ट यानी अटेंड कर ली कॉल.
0: भाई हमारी गुड लक है आपने हमें कॉल कर ली. चले ये बताएं कैसे ठंड एंजॉय कर रहे हैं बाहर की?
1: जी गर्मी है बाहर, मॉर्निंग में तो मौसम अच्छा था. इनफैक्ट जब आप कह रही थी कि मतलब कुछ बादल है और मौसम अच्छा है उस वक्त वेदर वाकई अच्छा था, बट अभी जो है मतलब हीट जो है स्टार्ट हो गई है. मतलब
0: आसिफ भाई आपको एक राज की बात बताऊं, मैं भी आर्कटिक और अंटार्कटिक के बारे में बात कर रही थी ना, सच बता रही हूँ, सच बता रही हूँ, मैं भूल गई कि बाहर क्या टेम्परेचर हो रहा है.
1: अभी मैं निकल गई दुनिया में, गाड़ी में 44 शो हो रहा है टेम्परेचर.
0: मैं अलग डायमेंशन में निकल गई भाई. अभी आपने मुझसे बोला ना, मैंने अभी आपसे कहा हाँ सर्दी एंजॉय कर रहे हैं, तो आपने मुझसे कहा कि हाँ गर्मी तो बहुत पड़ रही है, तो मैंने कहा है अच्छा गर्मी पड़ रही है, अरे भाई वापस आ जाओ सब वापस आ जाओ. मैं वाकई में निकल गई थी आर्कटिक अंटार्कटिक वाली साइड पर. अरे भाई आसिफ भाई, मेरी क्या तो डे ड्रीमिंग खत्म की है आपने.
1: नहीं बट रियली यानी अंटार्कटिका और ये इस तरह की जो है ना, हमें विजिट करना चाहिए. मतलब बचपन में क्या बुक से पढ़ते थे, मूवीज में देखते थे, तो ये चीजें जो है ना वाकई में कभी कभी मेरा भी दिल करता है कि ऐसी जगह पे एटलीस्ट विजिट करना चाहिए कि यहाँ पर है क्या. मतलब रियली यानी कि मैं अब बात पूछ रहा था आपकी.
0: अच्छा यही बात तो मैं कह रही हूँ कि मुझे जरा जगह बताए ना कि आपका कौन सा दिल करता है. हर किसी एक बकेट लिस्ट होती है. अब इंसान पहुंचे ना पहुंचे ये अल्लाह ताला की मर्जी, लेकिन एक एक ख्वाहिश होती है ना कि भाई इस जगह के बारे में मैंने बड़ा सुना है, मुझे इस जगह पे जाना है.
1: देखिए अभी जगह तो ऐसी काफी है जाने की, बट मैं मतलब मेरा दिल करता है कि वो एक जगह नहीं जहाँ पर पानी जो सी इसके दो पानी है आपस में वो मिलते हैं.
0: हाँ हाँ हाँ
1: हाँ रियली मेरा वो बहुत दिल का, उसका कुरान में भी जिक्र है और मेरा बहुत दिल करता है वो जगह जो है ना वो देखने के लिए ना. तो
0: सही सही,
1: अगर कभी मौका मिला तो जरूर वो जगह मैं विजिट करूंगा.
0: सही. नहीं नहीं मेरा सवाल ये था कि एक्सट्रीम. अच्छा ये वो जगह है. अच्छा ये जो आप दो समंदरों का मिलने का वो कह रहे ना, ये आई बिलीव ये गल्फ ऑफ अलास्का है, दो समंदरों का मिलने की जगह है इसे. और ये जो है यूएसए की साइड पर है. अच्छा इसका मामला पता है क्या है? इसका मामला ये है कि ये आपको जो इसकी एक पट्टी, हम जो वीडियोस वगैरह में देखते हैं ना, इसकी एक पट्टी हमें हमेशा दिखाई नहीं देती. वो पता है एक मखसूस टेम्परेचर और एक मखसूस जो है ना वो मौसम आता है जिसमें ये बहुत क्लियरली नजर आती है. इतनी क्लियरली कि जैसे हम वीडियोस देखते हैं ना, वो क्लियरली एक मखसूस मौसम में होती है. जैसे यहाँ पे कतर में पर्पल आइलैंड है, तो पर्पल आइलैंड पे आप वैसे जाएंगे ना तो आपको बिल्कुल नॉर्मल सा नजर आएगा, आपको कुछ नजर नहीं आएगा. लेकिन एक मखसूस वेदर आता है जिसके अंदर वो पर्पल आइलैंड, क्यों पर्पल आइलैंड कहा जाता है उसे, वो नजर आता है. तो इसका भी वही है, जो गल्फ ऑफ अलास्का है ना, दो समंदरों का मिलने की जगह जो है, जो खारा पानी और मीठा पानी जहाँ पे मिलता है, जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है सूरह रहमान में, तो वो जगह जो है वो पैसिफिक प्लस गल्फ ऑफ अलास्का है. तो वो बड़ी खूबसूरत जगह है, वो है भाई. लेकिन आज हमारा मुद्दा कुछ और है, एक्सट्रीम पर है हमारा मुद्दा, कि कुछ ऐसी जगह जो बहुत एक्सट्रीम गर्मी हो या बहुत एक्सट्रीम सर्दी हो, कोई ऐसी जगह आती है आपके दिमाग में? आपको क्या पसंद है, गर्मी पसंद है सर्दी पसंद है?
1: नहीं मुझको तो सर्दी पसंद है, गर्मी मतलब ये सर्दी पसंद है.
0: अच्छा चलें फिर मैं आपसे अगर सिंपल से पूछूंगी भाई, जब मैं सर्दी का नाम लेती हूँ तो आपके दिमाग में कौन सी जगह आती है, आप कहाँ घूमने निकल जाते हैं?
1: देखिए अगर मैं पाकिस्तान में हूँ तो फिर तो मैं नॉर्दर्न एरियाज में मतलब वो मुझे अच्छी लगती है. वहाँ पर स्नो हो रही होती है मरी में, तो वो ना एक बहुत अच्छी कंडीशन होती है, वहाँ पर जाने को दिल करता है.
0: सही सही, पाकिस्तान का हो गया, ठीक है. अच्छा आपने स्कर्दू वगैरह देखा है, हमजा स्कर्दू?
1: नहीं उधर नहीं गया मैं, बट वो भी बहुत अच्छी है. लेकिन उधर सर्दियों में क्या होता है कि पानी जो है ना वो बहुत ज्यादा
0: टैप के अंदर जम जाता है. वो जिस टूटी से, पानी की टूटी कहते हैं ना हम टैप टूटी, तो वो पानी का जो कतरा गिर रहा होता है ना वो वही जम जाता है.
1: ऐसा है
0: तो वो बड़ी खूबसूरत जगह है भाई, नो डाउट. वो बहुत अच्छा मरी वाली साइड फिर भी काबले बर्दाश्त है. उससे और ऊपर जाए ना तो भाई वो बहुत बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है वहाँ पर.
1: मरी में गया था 2017 में, ये सर्दियों में गया था, जनवरी में गया था. तो उस वक्त मतलब स्नो फॉलिंग हो रही थी और इवन के मार रोड पे इतनी स्लिपरी जगह हुई हुई थी, बहुत स्लिपरी हुई थी कि चला नहीं जा रहा था.
0: मैं दो तीन दफा भी गई हूँ भाई, और वहाँ पे गिरना इतना खतरनाक है कि आप गिरते ही चले जाओगे, आप.
1: जी बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मैं और मेरे निश्चित भी साथ थे और हमने वहाँ पर इवन के शूज भी, वहाँ की कंडीशन
0: नहीं हो पाई थी. उधर के शूज भी लोग अलग पहनते हैं.
1: हाँ वो अलग शूज होते हैं, हम शूज लेके गए थे तो उसमें क्या था वो नहीं, मतलब गिर भी रहे थे और वो पानी भी अंदर था, ऐसा कुछ था सीन. तो फिर हमने वहाँ से शूज लिए और वो काफी आपको पता है वहाँ पर तो कंडीशन देख के फिर वो प्राइस भी बढ़ जाती है.
0: और मजे की बात ये, वो इतना खतर, जब बर्फबारी ज्यादा होती है तो वो इतनी खतरनाक जगह हो जाती है कि अगर आप पहाड़ों पे भी चल रहे हैं ना, तो तब वहाँ जाकर मुझे पता चला कि लोग स्टिक्स लेकर क्यों घूमते हैं, जो हम मूवीज में देखते हैं ना, वो स्टिक्स लेकर घूमते हैं. वो स्टिक्स इसलिए नहीं लेकर घूम रहे होते कि वो सहारा ढूंढ रहे होते हैं, ना ना ना ना ना ना ना, वो स्टिक्स इसलिए होती हैं कि आपको आने वाली जगह को आप यूं करके घोपते हो स्टिक को, कि अंदर कोई डीप ट्रेंच तो नहीं है, ये आपको अंदर लेकर जाएगा सीधा पांव रखोगे तो. तो वो मुझे, मैंने भी एक दो दफा मरी का चक्कर लगाया था तो बड़ी मालूमात हासिल हुई थी, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी स्नो देखी नहीं थी और मैंने फर्स्ट टाइम मरी में जाकर देखी थी।
1: और अच्छा मारोड भी हमने होटल लिया, उसके बाद फिर वहाँ पर ये कंडीशन हुई बारिश और ये स्नो फॉलिंग बहुत ज्यादा थी। अच्छा थोड़ी देर के जब रुकी तो मिसेज ने जिद की कि नहीं थोड़ा बाहर निकलते हैं घूम के। मैंने कहा कंडीशन, मैंने कहा नहीं हमें विजिट करने आए चलना चाहिए। अच्छा क्या हुआ, हमें गाड़ी तो नहीं मिल रही थी और वहाँ पर कंडीशन ऐसी थी गाड़ी चल भी नहीं रही थी।
0: सही, सही, हाँ।
1: हमने क्या किया, बाई वॉकिंग जो है ना हम नीचे जाना स्टार्ट हो गए। अच्छा हम थोड़ी देर आगे गए तकरीबन आधा किलोमीटर, तो इतनी शदीद स्नो फॉलिंग हुई और इतनी शदीद हुई कि ना हम ना आगे जा सकते थे ना पीछे जा सकते थे। अब हम देखिए हम करेंगे, और हमें रस्तों का भी नहीं पता था। और आपको पता है वहाँ पर थोड़ा नीचे गए तो जंगल और सारी आती है, कुछ लोग बताते हैं वहाँ पर लेपर्ड भी फिर रहे होते हैं और सारी होती है। तो हम तो थोड़े काफी परेशान हो गए। फिर लकीली ये हमारी लक थी कि जो लोकल एक बंदा था वो गाड़ी के ऊपर मारो की तरफ जा रहा था।
0: सही।
1: तो उसके पास हम बैठे, उसके गाड़ी में हम बैठे और बड़ी मुश्किल से हम वापस आए दोबारा।
0: सही सही।
1: तो
0: सही,
1: वो मुझे हमेशा याद रहेगा। सर्दियों में इंजॉय होता है, बट सर्दियों में आप ज्यादा वहाँ पर घूम फिर नहीं सकते जब मैंने कंडीशन देखी थी। बट ये कि आपको
0: जम जाता है भाई, अगर आपके पास प्रॉपर ड्रेसिंग ना हो ना, ऐसी बहुत सारी जगह है दुनिया में कि जहाँ पर आपको लोग कहते हैं हम 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के अंदर अंदर आपकी आंखों की पुतलियां जम जाएंगी अगर आप 15 मिनट 10 मिनट बाहर रहे तो।
1: ऐसे ही है।
0: तो वो बड़ी एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, लेकिन लोग वहाँ पर भी रहते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत, सुभान अल्लाह, लोग वहाँ पर भी रहते हैं भाई, वहाँ पर भी जिंदगी चलती है।
1: तो उनके लिए तो नॉर्मल लाइफ है, जो वहाँ के लोकल्स हैं उनके लिए बहुत नॉर्मल लाइफ
0: है। अच्छा चलें, ये तो हो गई हमारी कुछ यादों की बारात की बातें। अब आपके साथ एक मिनट के लिए जल्दी से गेम खेल लेते हैं क्योंकि हमारा जाने का टाइम भी हुआ है। और देखें, आपको दिया जाएगा एक टॉपिक, आपने बड़े मजे से उसके ऊपर बात करनी है, ठीक है? तो भाई आपका एक मिनट कहाँ गया, मेरा टाइमर कहाँ गया, एक मिनट रुकें जरा। हाँ मेरा टाइमर ये रहा। आपका टॉपिक है अचानक लॉटरी लग जाए, ठीक है? आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ।
1: अचानक लॉटरी लग गई है मेरी। हाँ
0: अचानक लॉटरी लग जाए। हाँ
1: अरे अच्छा, मेरी अभी अचानक लॉटरी लगी है अभी। मुझे जो है ना मैसेज आया है, मैंने लॉटरी अप्लाई की थी, मेरी 1 मिलियन की लॉटरी लगी है। यस रियली थैंक यू। मैं काफी अच्छे से ट्राई कर रहा था। तो भाई अभी मेरे प्लान बहुत ज्यादा है। अभी तो एक तो मैंने कहा कि मेरी लॉटरी लगेगी, सबसे पहले तो मैं जाऊंगा जो मैंने आपकी जगह जिक्र की थी, जो जहाँ पर दोनों पानी इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ पर जाऊंगा लॉटरी से, वो मैंने विजिट करना है। उसके बाद जो है इसी लॉटरी से जो है मैंने अपनी मिसेज जो है उसके लिए काफी चीजें काफी खरीदनी है, जो मुझे काफी अच्छे से वो कह रही थी ठीक है उनको हैप्पी करना है। और इसके अलावा कुछ जो लॉटरी में बहुत सारा कुछ पैसा जो है वो मैंने चैरिटी भी करना है।
0: सही।
1: और जी चैरिटी में दूंगा, उसमें जो यहाँ पर लोकल कदर चैरिटी है वहाँ पर दूंगा, कुछ पाकिस्तान में है वो दूंगा। और भाई इसके अलावा मैंने एक गाड़ी अच्छी सी लेनी है। हाँ पसंद।
0: चलें भाई आपका टाइम अप हो गया, बट गुड। गाड़ी भी लेनी है, बेगम के लिए सोना भी लेना है, तो दो दरिया भी घूमने जाने हैं, तो सब कुछ
1: चैरिटी भी करनी है।
0: तो ये बताएं, ये जो लॉटरी है डॉलर में निकली है कि रियाल में?
1: रियाल में निकली है ना, 1 मिलियन इतना कुछ तो रियाल में हो सकता है।
0: अरे भाई डॉलर बोलना चाहिए था ना, ट्रिपल हो जाता ना। अरे भाई अरे ये क्या कर देता। चले यहाँ से भाई, अल्लाह ताला आपकी दिली ख्वाहिशें पूरी करे, आपकी हर जायज दुआ को अल्लाह ताला कबूल करे, और जो यहाँ कंप्लीट ना हो पाए उसका अजर आपको जन्नत में दे इंशाल्लाह। 70 हुरे इंशाल्लाह। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
1: अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।
0: हाय कैसी मासूम सी ख्वाहिशें थी आसिफ भाई की, मुझे बड़ी प्यारी लगी ख्वाहिशें। और जिस तरीके ने उन्होंने कहा ना अपनी बेगम के लिए मैंने कुछ सामान लेना है, उसने मुझे काफी टाइम से कुछ सामान बोला था वो लेना है, हाय हाय मैं पिघल गई। सो क्यूट। ये बड़ी बात है कि आप वैसे लगी नहीं है लॉटरी, लेकिन लग जाए और फिर भी आप याद रखो, बोलने में भी आप याद रखो अपनी बेगम को, तो इट्स वेरी वेरी वेरी मैं कहूँगी बहुत बहुत अच्छा प्यारा, सुभान अल्लाह बहुत प्यारा जेस्चर होता है। तो भाई साथियों देखो भाई, अल्लाह ताला ने, जो लोग ये कहते हैं कि भाई हम इतने एक्सट्रीम वेदर में जाके करेंगे, कि अल्लाह ताला ने ना इंसान को अडम दी हुई होती है, इंसान की बॉडी को भी और माइंड को भी। मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी थी ये जो मैंने सवाल निकाला था, ये मैंने इस मामले में निकाला था कि मैंने एक बहुत खूबसूरत बात पढ़ी थी कि अल्लाह ताला ने कहा है कि ये दुनिया मैंने वसी बनाई है, बहुत वसी बनाई है, इसके अंदर घूमो फिरो, देखो कि मैंने क्या क्या बनाया है, मेरी हमद और सना करो, तस्बीह करो, तुम्हें ये सब कुछ देखने से पता चलेगा कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ, इसके मैं कादिर हूँ, मैं हर चीज पे कादिर हूँ, तुम्हें ये पता चलेगा। तो जब हम एक्सट्रीम चीजें देखते हैं ना, तब हमें इंसान का पता चलता है कि इंसान की लिमिटेशंस क्या है। जब हम सिर्फ अगर मौसम का ले लें, एक्सट्रीम वेदर के बारे में ही सोचें, तो हम ये पहले तो दिमाग में ख्याल आता है कि ये कैसे, हाउ कम, और फिर बेख्तियार इंसान के मुंह से निकलता है सुभान अल्लाह। मैंने अपनी जिंदगी में कभी बर्फ नहीं देखी थी, मुझे याद नहीं पड़ता एक बहुत लंबे अरसे तक। मुझे एक शौक था, मेरी बकेट लिस्ट में एक चीज थी कि मैं बर्फ देखूं, स्नो देखूं। और जिस दिन मैंने पहली दफा बर्फ देखी या स्नो देखी, तो मेरे मुंह से बेख्तियार निकला था सुभान अल्लाह। और वो इतना खूबसूरत मेरे लिए मोमेंट था कि मैंने दिल में ये सोचा कि अच्छा, अल्लाह ताला ख्वाहिशें भी पूरी होती हैं, तो अपने आप को वक्त से पहले बूढ़ा ना करें, अपनी ख्वाहिशें रखें, अपनी बकेट लिस्ट रखें, ऐसी एक्सट्रीम एडवेंचरस जगहों को अपनी लिस्ट में रखें, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको वो घूमने फिरने का मौका दे, क्योंकि इस घूमने फिरने में ही कहीं ना कहीं हम अल्लाह ताला की क्रिएशन को देखकर उससे और ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और झुकते हैं उसकी तरफ। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, इस नोट पे आपको छोड़े जा रही हूँ कि अपना ख्याल रखें, अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रखें, और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जो इंसान अपना ख्याल नहीं रख सकता, वो दूसरों का ख्याल क्या ही रखेगा। और अपना ख्याल रखने का मतलब है अपने आप को खुश रखो, अपनी एक बकेट लिस्ट रखो, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहां घूमूंगा। करो भाई, ये करो सब कुछ। जिंदगी सिर्फ एक दफा मिलती है, उसको अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में जियो और खुश रहो। तो भाई, सफा के साथ आप सुन रहे थे सन एंड साउंड ऑन FM 107। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 के स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 1:01।
2: आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: स्पोर्ट्स में आपका इस्तकबाल है दोस्तों, FM 107 पे फजील के साथ हैं 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। समर स्पोर्ट्स यानी कि स्पोर्ट्स की दुनिया में इन गर्मियों में क्या कुछ हो रहा है, अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग लोकेशंस पर कौन से कैसे मैचेस चल रहे हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, चाहे वो फीफा के बारे में बात हो, चाहे वो क्रिकेट के बारे में बात हो, चाहे वो फुटबॉल के UEFA के बारे में बात हो या फिर विमेंस T20 के बारे में बात हो। लेकिन आज और पिछले 2 दिनों में जो कुछ हो रहा है क्रिकेट में वो देखने लायक है, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक और वेस्ट इंडीज से लेकर पाकिस्तान, इंडिया से लेकर जिम्बाब्वे तक बहुत ही खलबली मची हुई है क्रिकेट की दुनिया में। और हम बहुत सी बातें करेंगे स्पोर्ट्स की दुनिया में, समर स्पोर्ट्स में क्या कुछ है आज सबसे पहले नज़र डालेंगे। लेकिन सवाल जो है उससे भी शुरुआत होती है, जैसे कि लोगों को पता ही है आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। श्रीलंका विमेन का मैच होने वाला, पाकिस्तान विमेन थर्ड ODI मैच, ये फाइनल मैच होगा और 3 मैच होने हैं वनडे इंटरनेशनल सीरीज के और ये है फाइनल मैच, इसके बारे में बात करेंगे। और एक डबल हेडर मैच होना है UK में जो हो रहा है, इसके बारे में भी हमने कुछ दिन पहले बात करी थी, और UEFA चैंपियंस लीग पर भी नज़र डालेंगे। और फिर सवाल जो पूछा जाता है उसका जवाब भी हम डिस्कस करते हैं तकरीबन 1:25 या 1:20 के दरमियान। फिलहाल सबसे पहले सवाल की तरफ रुख करते हैं, सवाल क्या है आज का जिसका जवाब आपको देना है। और ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है, लेकिन आज का सवाल आएगा 4 ऑप्शंस के साथ। तो चलिए सवाल की तरफ, आपको ये बताना है कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में वो इकलौता प्लेयर कौन है जिसने 2 बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता है। पूरे इतिहास में सिर्फ 1 ऐसा प्लेयर है, इतिहास यानी कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक यानी कि 2026 तक, 1 प्लेयर है जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2 बार जीता है अवार्ड। क्या है उसका नाम आपको बताना है, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी, विराट कोहली या डेविड वार्नर। क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी, विराट कोहली या डेविड वार्नर, आपको बताना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर 6622107। और एक बात का खास ख्याल रखिएगा, हम बात कर रहे हैं ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के बारे में।

इकलौता एक ऐसा प्लेयर है जिसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है ट्वाइस, दो बार अवार्ड मिला है पूरी हिस्ट्री में. कौन है वो प्लेयर, उसका नाम बताइए. चार ऑप्शन भी दे दिए हैं, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी, विराट कोहली या डेविड वार्नर. कल जवाब का इंतजार 6662217 पर. जवाब आना शुरू भी हो गए हैं और सबसे पहले ये जवाब आया है एहतराम साहब का, बिल्कुल सही जवाब है. क्या बात है, अहमद मुस्तफ़ा खान ने भी इस गेम में पार्टिसिपेट करते हुए अपना जवाब दर्ज करा दिया है, बिल्कुल सही. और साबिर इनका नाम है, ओके, साबिर सा साबिर ने भी गलत जवाब बता दिया है क्योंकि इकलौते हैं. ओके साबिर भाई, जवाब आपका गलत है, लेकिन ये है कि हाँ ये तगड़े खिलाड़ी हैं जिनका आपने जवाब यहाँ पर लिखा. उसके अलावा इमरान खान ने भी बिल्कुल सही जवाब बताया, बहुत ही उम्दा. लोगों के जवाब तो आ रहे हैं, हम की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हो जाए और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिटेल में हम बात करेंगे श्रीलंका वेमेन वर्सेज पाकिस्तान वेमेन के तीसरे ODI के बारे में. वेस्टइंडीज़ और पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा है और उसमें एक रिकॉर्ड बना है, और एक ऐसा रिकॉर्ड बना है जो मुझे लगता है कि दशकों तक या सेंचुरीज में ऐसे रिकॉर्ड बनते हैं. 100 साल बीत जाते हैं फिर भी ऐसे रिकॉर्ड नहीं बनते हैं, ये रिकॉर्ड ऐसा बना है. इस पर भी हम बात करेंगे. वेस्ट इंडीज़ के एक फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान के टेस्ट मैच में, जो कि पहली इनिंग जो है वो हो चुकी है. अब दूसरी इनिंग पर जो वेस्ट इंडीज़ है वो पहुंच चुकी है, लेकिन क्या कुछ हुआ इस पर भी हम थोड़ा नज़र डालेंगे और फिर बाकी चीज़ों के बारे में, बाकी स्पोर्ट्स में क्या कुछ चल रहा है उस पर भी अपन बात करने वाले हैं. लेकिन सवाल एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, सवाल बड़ा ही आसान है, सिंपल सा. आपको बताना है कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में इकलौता ऐसा प्लेयर कौन है जिसको दो बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है. ऑप्शन है चार, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी, विराट कोहली या डेविड वार्नर. इन चारों में से एक जवाब है, बताइए. और अगर आपको नहीं पता है थोड़ी देर रुकिए, आपको जवाब भी पता चल जाएगा. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, FM 107 पे दिल से देसी.

0: वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: हवा के झोंके आज मौसमों से उठ गए।
2: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
3: द रिक्वेस्ट शो
2: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ,
3: फजील के साथ
2: संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: दिल से देसी
4: आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
5: हाँ जी हबीबी, समर स्पोर्ट्स में आपका है इस्तकबाल। FM 107 पे फजील के साथ हैं आप। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बात आज पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के विमेंस ODI के बारे में। ये तीसरा ODI है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3 ODI मैचेस होने थे, एक एक मैच दोनों ने जीत रखा है ऑलरेडी और ये मैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और ये मैच इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले वक्त में ये दोनों राइवलरी टीम बनने वाली हैं। जिस तरह से ये गेम खेलती हैं, जिस तरह से इन दोनों के बीच यानी कि पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच राइवलरी चल रही है, एक एक से अभी फ़िलहाल बराबर है। और आज सबसे पहले बैटिंग करी है पाकिस्तान की टीम ने, 40 ओवर में 187 रन बनाए, ऑल आउट हो गई विमेंस की टीम। और अभी श्रीलंका खेल रही है, 173 का स्कोर ऑलरेडी बना लिया है, सिर्फ 15 रन चाहिए, 35 ओवर खेल लिया और सिर्फ 2 ही विकेट गिरे हैं। तो ऐसा लगता है ODI के इस तीसरे फाइनल मैच में 2-1 से श्रीलंका ये मैच अपने नाम कर लेगी, ये सीरीज भी अपने नाम

कर लेगी। अगर हम बात करें प्लेयर्स की के सबसे अच्छा पाकिस्तान में किसने खेला, 35 बॉल पे 40 रन का योगदान ओपनर फिरोजा ने, गुल फिरोजा जिनका नाम है उन्होंने दिया, और उसके बाद जो ओपनर एक और थी शम्स, उन्होंने कोई खास यू नो काम करके नहीं दिखाया, इसकी वजह से टॉप ऑर्डर बिखरा। फिर अमीन जफर ने भी कोई खास खेल नहीं खेला, ऑब्वियसली 0-0 पे आउट हो गए। उसके बाद सबसे अच्छा अगर किसी ने प्रदर्शन किया है तो वो हैं सना और अली, सना बोले तो फातिमा सना और अली। अगर हम बात करें तो इन्होंने टोटल जो स्कोर किया है वो 71 बॉल पे 34 रन का स्कोर किया, 3 चौके के साथ मुनीबा अली ने ठीक ठाक स्कोर किया है और अपनी टीम को कम से कम इज्जतदार स्कोर पर लेकर गई, 187 के टोटल स्कोर पर लिया और 188 का टारगेट सेट किया श्रीलंका के लिए। लेकिन श्रीलंकन टीम के जो शुरुआती 3 बल्लेबाज थे उन्होंने ही मैच पलट दिया। गुरुरत्ने इन्होंने 12 रन स्कोर किया, विकेट जल्दी गिरा, लेकिन उसके बाद दोनों ने यानी कि जो बाकी के प्लेयर थे अथापत्तु, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया, जिन्होंने 52 रन बनाए 38 बॉल पे। इससे पता चलता है कि पिच इतनी ख़राब तो नहीं थी, ऑल दो होम ग्राउंड का कह सकते हैं फ़ायदा श्रीलंकन टीम को, विमेंस टीम को ज़रूर था। हर्षिता ने भी स्कोर अच्छा किया और फिर 61 रन की पारी हर्षिता ने खेली, ये भी ज़बरदस्त खिलाड़ी रही। फिर उसके बाद परेरा, इन्होंने भी इतना स्कोर कर दिया कि फिर टीम जो है वो घुटनों पे आ गई। आई मीन 71 बॉल पे 45 रन का स्कोर किया, 7 चौके के साथ ज़बरदस्त खिलाड़ी रहे। ये 4 के 4 प्लेयर अच्छा करके गए और स्ट्राइक रेट भी अच्छी थी, यही वजह है कि 35-175 अभी तक स्कोर कर लिया है और 5 के करंट रन रेट से आगे बढ़ रही हैं। तो श्रीलंकन विमेंस टीम ऑब्वियसली समझ में आता है कि होम ग्राउंड का फायदा जरूर है, 175 रन पे 2 विकेट 35 ओवर कंप्लीट होगा और अब सिर्फ 13 रन चाहिए 87 बॉल्स पे। तो ओवरऑल देखने में समझ में आ रहा है कि ये मैच श्रीलंका के हाथ जा चुका है, ये सीरीज भी श्रीलंकन की टीम के हाथ में जा चुका है। अब बात कर लेते हैं बाकी खेल के बारे में। आज हेडिंगली होने वाला है, हेडिंगली के लीड्स में होने वाले हैं 2 बड़े मैच और ये हैं सनराइजर्स लीड्स और मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के बीच का मुकाबला। विमेंस मैच होगा दोपहर 3 बजे और मेन मैच होगा शाम को 6:30 बजे, तो इसको देखना बिल्कुल ना भूले। उसके अलावा फुटबॉल UEFA चैंपियंस लीग और कॉन्फ्रेंस लीग क्वालिफाइंग मैच आज होना है यूरोपियन क्लब्स के लिए, एक्साइटिंग क्वालिफाइंग मैचेस शेड्यूल्ड हैं और ये भी मजेदार मैच होने वाले हैं। ऑल्दो ये क्वालिफाइंग मैच है, फैंस इतना एग्रेसिवली से फॉलो में भी ना करें। उसके अलावा प्रीमियर लीग प्री सीजन फ्रेंडलीज हो रहे हैं, अगेन फ्रेंडलीज भी लोग ऐसे देखते हैं, पिछले हफ्ते भी मैंने बताया था कि फ्रेंडलीज भी मैच ऐसे देखे जाते हैं जैसे ये राइवलरी टूर्नामेंट के मैचेस हों। तो ये मैच जो बेस्कट स्टेडियम में होगा वो है एस्टन विला और रियल स्कडीड के बीच, और चेल्सी वेस्टर्न सिडनी के बीच भी मैच जो होना है वो सिडनी में होना है, जबरदस्त ये भी खेल होने वाला है। ऑल्दो फ्रेंडली मैचेस है प्रीमियर लीग प्री सीजन। फिर उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे तगड़ा मैच चल रहा है भाई, और ये मैच है वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान का। यार ऐसे मैच देखने को बहुत ज्यादा कम मिलते हैं, इतने तगड़े मैच देखने को सच में बहुत कम मिलते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं पहली इनिंग से, स्कोर कार्ड से ही शुरू करते हैं। 311 रन वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए, चंद्रपॉल ने 21। उसके अलावा जो सबसे अच्छी बैटिंग करी है वो है केविन हॉज, इन्होंने भी जबरदस्त खेल दिखाया है, 84 रन का स्कोर किया है, अच्छा है। फिर उसके बाद शाई होप ने भी अच्छा स्कोर किया और 92 तक पहुंचे, लेकिन फिर उसके बाद मोहम्मद अली ने इनका विकेट ले लिया, LBW आउट कर दिया है। तो यहां तक तो ठीक था, 311 स्कोर किया, इज्जतदार स्कोर था, डिफेंड किया जा सकता था और डिफेंड किया भी। पाकिस्तान की टीम जब बैटिंग करने आई तो मुझे लग रहा था कि आज ओएस थोड़ा आजान ओएस जो है वो स्कोर करेंगे, लेकिन इतना स्कोर नहीं कर पाए, नए प्लेयर हैं बट स्कोर नहीं कर पाए। किमार रोश ने जबरदस्त इनका विकेट लिया, फिर इमामुल हक जो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं 63 का स्कोर किया, मसूद ने 109 किया। फिर उम्मीद थी कि नीचे के जो खिलाड़ी हैं बाबर आजम आगर रिजवान ये आसानी से, उस्मान शहजाद ये संभाल लेंगे मैच, लेकिन भाई कुछ जबरदस्त हुआ और ये जबरदस्त क्या हुआ, ये हुआ जस्टिन ग्रीव्स के स्पेल में। आपको जैसे मैं बता रहा था

कि कुछ अनोखा हुआ, ये रिकॉर्ड सालों साल नहीं कोई बना पाता है। ग्रीन्स जब बॉलिंग कर रहे थे, इन्होंने 6 ओवर कंप्लीट कर दिए जिसमें एक मेडन था और 27 रन दिया था इन्होंने और एक भी विकेट नहीं लिया था, एक भी विकेट नहीं लिया था जस्टिन ने। 6 ओवर, एक भी विकेट नहीं, 27 रन दिया है और सिर्फ एक मेडन किया है। उसके बाद ये दूसरे स्पेल में जब आए, लगातार 5 ओवर किए, हर ओवर में एक विकेट लिए, किसी भी ओवर में 5 के 5 ओवर में यानी कि 30 बॉलों में एक भी रन नहीं दिया, एक भी रन नहीं। इक्वेशन क्या बनी, जहां 6 ओवर में 27 रन देके एक मेडन से 0 विकेट, सेम सिचुएशन आई जहां पर 6 मेडन 11 ओवर कंप्लीट 27 के 27 रन और 5 विकेट्स लिए जस्टिन ग्रीव्स ने। इस तरह के रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं और मसूद का विकेट भी जस्टिन ग्रीव्स ने लिया। जब आप बॉल देखेंगे ना ग्रीव्स की, वो जो दूसरा स्पेल लेकर आए, जब बॉल सेमी न्यू या कह सकते हैं थोड़ा पुराना जरूर हुआ, उसके बाद जो स्पेल डाला है भाई साहब, नई बॉल से वो स्पेल नहीं आ रहा था, जो सेकंड स्पेल में ग्रीव्स ने वो काम करके दिखाया। मसूद को 109 पे आउट किया, बाबर आजम 23 पे आउट हो गए, फिर सलमान आगा 20 पे, रिजवान 12 पे, जमाल 3 पे, उस्मान 0 पे, शहजाद 19, अब्बास 0 और अली 2 रन बना के नॉट आउट खेल रहे थे। लेकिन अब आते हैं वेस्ट इंडीज की तरफ। जब दूसरी पारी शुरू हुई तो पाकिस्तान के प्लेयर्स ने सोचा कि यार छोड़ेंगे तो नहीं, अगर मैच सामने से चल रहा है तो कुटाई तो चलेगी। 282 पे पाकिस्तान ऑल आउट जरूर ही, वेस्ट इंडीज की बैटिंग आई, फिर वेस्ट इंडीज को घुटनों पर लेकर आई पाकिस्तान की टीम। 126 का स्कोर अभी है फिलहाल वेस्ट इंडीज का, 43 ओवर कंप्लीट हो गए, 7 विकेट के नुकसान पर खेल रही है और 3 विकेट टेस्ट मैचे में मतलब यूं गिर जाता और कभी कभार यही 3 विकेट बहुत लंबे वक्त तक चलता, यही खूबसूरती है क्रिकेट की। चंद्रपॉल दूसरे इनिंग में 35, फिर उसके बाद 5, जो जबरदस्त प्लेयर थे केविन हॉज, उन्होंने भी स्कोर नहीं किया, पिछले में स्कोर किया था बट इसमें 0। लेवलर है ये क्रिकेट का खेल, 0 रन। शाई होप जो 92 स्कोर कर गए थे वो 10 पर आउट हो गए। जस्टिन ग्रीव्स जिन्होंने जबरदस्त स्पेल डाली, 5 विकेट लिया, उन्होंने कॉन्फिडेंटली गेम खेला और 20 रन का स्कोर किया, वो भी आउट हो गए। अब्बास ने उनका विकेट लिया, फिर 8, 5 और 22 पर जोसेफ खेल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की, तो यार पाकिस्तान के बॉलर 3 विकेट लेने के बाद मोहम्मद अब्बास का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल ज़बरदस्त है। वैसे आप अब्बास को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो किसी दफ्तर में काम करने वाले शख्स हैं, पता नहीं ये क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं। लेकिन बहुत ही उम्दा स्पेल डाला, 13 ओवर में 6 मेडन डाला है, 14 रन ही पड़े उनको और 3 विकेट ले लिए हैं। फिर उसके बाद शहजाद, उन्होंने भी हुर्रम शहजाद ने जो खेल का मुजाहरा किया, लाजवाब 12 ओवर करके 2 विकेट 36 रन दिए हैं और 2 मेडन भी डाले हैं। अली 1 विकेट लेकर 1 मेडन डालकर अभी भी बैट्समैन को परेशान कर रहे हैं वेस्ट इंडीज के, और जमाल 10 ओवर कंप्लीट कर चुके हैं, 39 रन दिए हैं और 1 विकेट लिया है। सो ओवरऑल मुझे लगता है ये मैच अभी बीचों बीच फंसा है और अभी तो सिर्फ 3rd दिन का अंत हुआ है, 2 दिन बाकी है, बहुत कुछ हो सकता है। वेस्ट इंडीज ऑल्दो 155 रन की लीड लेकर खेल रही है, वी विल सी कि आगे आने वाले वक्त में क्या होगा, और ये पहला टेस्ट मैच है, टोटल 2 टेस्ट मैच ही होने हैं। अब रुख करते हैं हल्के हाथ से सवाल की तरफ। दोस्तों आज का सवाल, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में वो एक लौता प्लेयर कौन है जिसने 2 बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता है, इसका आपको नाम बताना है। 4 ऑप्शन भी आपको दिए हैं, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी, विराट कोहली या डेविड वार्नर। ऑल्दो कई लोगों ने सही जवाब दे दिया है, अब देखते हैं बाकी क्या जवाब है। रमेश ने सही जवाब दिया है, फिर उसके बाद इकबाल नेपाली ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, कामरान अली ने भी सही जवाब दिया, बहुत ही उम्दा, तो एक ही गलत जवाब है। अभी साबिर ने भी सही कर लिया है, बिल्कुल सही बात सही लिखा है, और फिर आरिफ अंसारी ने भी सही जवाब लिखा है, बहुत ही उम्दा, वेल डन, क्या बात है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है द वन एंड ओनली ग्रेटेस्ट विराट कोहली। बिल्कुल विराट कोहली ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है और एक

0: लौटे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने टूर्नामेंट में T20 के टूर्नामेंट में ये खिताब जीता है, विराट कोहली। अच्छा कौन कौन से साल, 2014 और 2016। 2016 तो जबरदस्त चल ही रहा था, विराट कोहली का कौन नहीं जानता, चाहे वो IPL हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वो ODI हो, भाई आग बरसा रहे थे अपने बैटिंग से, आग। कुछ 900 रन IPL में बनाए थे यार, लोग आज तीन तीन चार चार सेंचुरी मारने के बाद भी 900 पे नहीं पहुंच पा रहे। तो दोस्तों ये था आज का जवाब। वेल आप लोगों ने बहुत ही उम्दा खेला, आरिफ ने सही जवाब दिया, फिर इकबाल नेपाली ने सही जवाब दिया, साबिर ने पहले डेविड वार्नर बोला था लेकिन फिर उन्होंने जवाब अपना सही कर लिया, कामरान अली ने सही जवाब दिया, रमेश, इमरान, एहतराम, अहमद, मुस्तफ़ा खान, इन सब ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी आपसे आज शाम 4 बजे आपके अपने मर्जी के गानों के साथ। तब तक सुनते रहें FM 107 और जुड़े रहें हमसे दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक,
3: टाइम चेक, चेक चेक चेक टाइम चेक। इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के 1:30, यानी इट्स टाइम फॉर,
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
3: सो यस माय देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है? हाँ जनाब, वैसे आज मंगल का दिन है एंड आई एम श्योर कि अभी दो दिन आपकी मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, तो थोड़ा मिसिंग फैक्टर तो रहा होगा, है कि नहीं? पर क्या करें, गर्मी इतनी बढ़ रही है, मौसम में तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कोल्ड फ्लू ना हर घर की एक कॉमन सी चीज़ हो गई है। तो बस वही हो गया था आपकी ए फॉर अमिता को, और इस चक्कर में आपकी मेरी मुलाकात में थोड़ा सा डिले हो गया। बट एनीवे आई एम रिकवर्ड, और अभी मैंने सोचा कि चलो आपसे मिलूं और आकर आज एस्केप रूम का चैलेंज दे दूं। तो क्या लगता है आज किस चैलेंज को आप लेना चाहेंगे और अपने आप को बचाना चाहेंगे एस्केप करके? हाँ, सोचो सोचो सोचो। मैं बस कहना चाहती हूँ कि ये गर्मियों का सीज़न चल रहा है जहाँ पर हर कोई परफेक्ट वेकेशन के बारे में सोच रहा है या वेकेशन में जा चुका है या जाने वाला है। अब इसी परफेक्ट वेकेशन में एक ट्विस्ट आ जाए खतरनाक सा, तो फिर क्या हो? चलो आज यही ट्विस्ट है जो मैं आपको एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद बताऊंगी, और एस्केप रूम का चैलेंज आपके सामने आएगा, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और हाँ, हमारा 666-22-107 666-22-107 ये जो नंबर है इसे याद कर लीजिए, क्योंकि इसके जरिए आपकी मेरी मुलाकात होती रहेगी, बातचीत कंटिन्यूसली चलती रहेगी। और अभी अभी आपके लिए क्या है, क्या बात है, 90s का सुपर हिट गाना लेकिन एक नए अंदाज में। स्टे ट्यून्ड FM 107 पर, दिल से देसी, एंजॉय इट।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: क्रिकेट हो
2: and he's hooked that away. That's four runs.
1: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
3: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
1: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM,
3: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: हां जी माय देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है। एफएम 107 पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। तो आज के एस्केप रूम की सिचुएशन जनाब बड़ी कमाल की है। देखिए, हर कोई समर्स में परफेक्ट वेकेशन चाहता है और यही आप भी चाह रहे थे। हाँ, आपने एक परफेक्ट वेकेशन के टिकट्स लिए और आप पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? आप एक खूबसूरत ट्रॉपिकल आइलैंड के किनारे पहुंचे। हाँ जी, बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। वाह, आपको इतना अच्छा लग रहा है कि ये क्या खूबसूरत जगह है, जन्नत से कम नहीं लग रही। जहाँ पर जो समुद्र का पानी है वो एकदम नीला पानी और एकदम साफ पानी के आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। सफ़ेद चमकती मिट्टी और हल्की ठंडी हवाएं, आए हाय, जन्नत जैसा मंजर, क्या बात है। लेकिन थोड़ा गौर से देखिए, वो मिट्टी सिर्फ चमक नहीं रही है, वो हिल रही है। दिस इजंट अ वेकेशन, यू कहें तो किसी लिविंग नाइटमेयर से कम नहीं है। आप गलती से दुनिया के सबसे जहरीले सांपों के नेस्टिंग ग्राउंड पर पहुंच गए हैं। उफ, अब क्या होगा। मतलब ये खूबसूरत सा आइलैंड जहां पर आप घूमना फिरना चाहते थे, अब आपको जो अपने कदम भी हैं वो बड़े फूक फूक कर रखने पड़ेंगे। वेल, ड्यून से लेकर शोर लाइन तक हजारों जहरीले स्नेक्स आपके और उस रेस्क्यू बोट के पीछे, या यूं कहें रेस्क्यू बोट के बीच स्लिप सिदर कर रहे हैं जो समुंदर में खड़ी है। अगर आपको यहां से बिना एक भी स्नेक बाइट के निकलना है तो आपको एक शैडो की तरह, एक साय की तरह खामोशी और प्रिसिशन से चलना होगा। तो मैं आपको दूंगी 3 रिडल्स, या यूं कहें 3 क्लूज। आपको सही जवाब देना है, रास्ता साफ करना है और धीरे धीरे उस रेस्क्यू बोट की तरफ बढ़ना है। सो आर यू रेडी फॉर द चैलेंज? चलिए तो शुरुआत की जाए। एक के बाद एक आपके चैलेंज आपकी तरफ आएंगे। अभी फिलहाल रुक जाइए, डोंट टेक अनदर स्टेप। आपके पैरों के पास उस लंबी घास में कुछ थरथरा रहा है। सैन डियागो जू के एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ सांपों के पास एक बिल्ट इन अलार्म सिस्टम होता है जो उनकी दुश्मन को उनकी लोकेशन देता है। यस, द क्लू नंबर 1 इज हियर। मैं एक मशहूर सांप हूं जिसकी दुम बहुत खास है। ठीक है, मैं एक मशहूर सांप हूं जिसकी दुम बहुत खास है। मैं इसे हिलाकर एक तेज सूखी आवाज निकालता हूं ताकि प्रीडेटर्स मुझे, या यूं कहें मुझसे दूर रहें।

है मैं कौन हूँ, इस स्नेक का नाम क्या है। अगर आपने सही बता दिया तो पहला रास्ता साफ हो जाएगा, आप थोड़ा और आगे जा पाएंगे। यस, तो आई रिपीट अगेन, मैं एक मशहूर सांप हूँ जिसकी दुम बहुत खास है। मैं इसे हिलाकर, तेज हिलाकर सूखी आवाज निकालता हूँ ताकि प्रीडेटर्स मुझसे दूर रहे। बताएं इस स्नेक का नाम क्या है और क्लू नंबर वन सॉल्व करें। फिलहाल सोचने के लिए मैं आपको एक म्यूजिकल ब्रेक पर ले जाती हूँ एंड लेट मी सी कि आप में से कितने लोग हैं जो सही जवाब दे पाते हैं। तो कहीं ना जाए, बने रहे हमारे साथ FM 107 पर, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: यस माय डियर गाइस, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है ऑन एफएम 107 पर। कैसा लगा आपको हमारा ये म्यूजिकल ब्रेक? आई एम श्योर आपने जरूर इंजॉय किया होगा एंड एट द सेम टाइम अपने दिमाग को भी दौड़ाया होगा, क्योंकि आज आपका जो परफेक्ट वेकेशन है वो एक नाइटमेयर में तब्दील हो गया है। हाँ, मतलब सोचा था कि एक ट्रॉपिकल आइलैंड में जाकर फुल ऑन जो नेचर है, नेचुरल ब्यूटी है, उसे इंजॉय करेंगे, लेकिन इस नेचुरल ब्यूटी के चलते एक चीज हो गई हमसे, और वो हुई एक छोटी सी गलती कि हम एक ऐसे ग्राउंड में आ गए जो कि जहरीले सांपों का नेस्टिंग ग्राउंड था। अब चलो कोई नहीं, हमें पता नहीं था, लेकिन अब हमें यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। वेल, ड्यून से लेकर शोर लाइन तक हज़ारों जहरीले स्नेक्स आपके उस रेस्क्यू बोट के बीच आ रहे हैं, जो ऐसे सरसरा रहे हैं, घूम रहे हैं। उफ, इट्स रियली रियली चैलेंजिंग। तब आप क्या करने वाले हैं? हाँ, तो अब आपको क्लू नंबर वन सॉल्व करना पड़ेगा। वेल, आपके पैरों के पास लंबी घास है और सामने आपने देखा तो कुछ थरथरा रहा है, एंड जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, सैन डिएगो ज़ू के एक्सपर्ट्स हैं, उनके मुताबिक कुछ सांपों के पास एक बिल्ट इन अलार्म होता है जो कि दुश्मन की आहट से उनकी लोकेशन बता देता है। चलिए, क्लू नंबर वन हमें सॉल्व करना था और वो ये था कि मैं एक मशहूर सांप हूँ जिसकी दुम बहुत खास है। मैं इसे हिलाकर एक तेज़ सूखी आवाज़ निकालता हूँ ताकि प्रीडेटर्स मुझसे दूर रहें। बताएं मैं कौन हूँ? ऑलराइट, कुछ लोगों ने लिखा है किंग कोबरा, कुछ ने लिखा है गिरगिट, ओके, और कुछ ने लिखा है वाइपर, कुछ ने लिखा है रैटल स्नेक। चलिए बता देती हूँ कि जिन्होंने लिखा है वाइपर, रैटल स्नेक या खड़खड़ सांप, हाँ जी, इट्स एब्सोल्युटली द राइट आंसर। क्या बात है भाई, क्या बात है। क्लू नंबर वन आपने आखिर सॉल्व कर ही लिया, वाह। आइए जरा देखें जिन्होंने सबसे पहले हमें सही जवाब दिए हैं। वो हैं हुसैन, रमेश, प्रिंसन, मोहम्मद यूसुफ खान, और कौन हमारे साथ जुड़ गया है भाई। एक प्रोफाइल में सिर्फ वाई लिखा हुआ है भाई, नाम भी ज़रूर बताया करे तो बेहतर होगा, है कि नहीं। और जैद ने भी सही जवाब दिया है, अकबर, इशार एंड मोहम्मद। वेल डन गाइस, आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है, वाह क्या बात है। वेल, आप बड़ी होशियारी से अब इस रैटल स्नेक के बगल से निकल गए, कुछ नहीं हुआ आपके साथ, क्योंकि आपने क्लू नंबर वन सॉल्व किया और सही जवाब दे दिया। लेकिन जैसे ही आप बीच के रॉकी हिस्से पर पहुंचे, उफ, एक लंबा, ठीक है, एक लंबा और रोबीला सांप सीधा खड़ा हो गया, उफ, सीधा खड़ा हो गया। वेल, जब सांप एकदम सीधे खड़े होते हैं तब टेंशन बढ़ जाती है, वो और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। Yes, उसने आपकी आंखों में देखा और अपनी जो गर्दन है उसे फैलाने लगा। अरे रे रे रे, बहुत तरह के स्नेक्स हैं जो आपके आसपास घूम रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। चलिए, क्लू नंबर टू आपके लिए आता है। मेरा ताल्लुक एंशिएंट इजिप्ट से है। जब मैं गुस्से में होता हूँ या खतरा महसूस करता हूँ तो मैं अपनी गर्दन की खाल, जो उसकी गर्दन की खाल है, उसे एक चौड़े हुड की तरह फैलाता हूँ। बताइए मेरा नाम क्या है? कम ऑन, कौन सा वो स्नेक है जिसका जिसकी जो गर्दन है एक बड़े हुड की तरह फैल सकती है, ठीक है, और इसका ताल्लुक एंशिएंट इजिप्ट से है। Once again, I'll repeat the clue. मेरा ताल्लुक एंशिएंट इजिप्ट से है। जब मैं गुस्से में होता हूँ या खतरा महसूस करता हूँ तो मैं अपनी गर्दन की खाल को एक चौड़े हुड की तरह फैला लेता हूँ। बताइए मेरा नाम क्या है? Come on guys, अभी हमने पहला पड़ाव पार किया जहाँ पे रैटल स्नेक ने हमें कुछ नहीं कहा। दूसरे पड़ाव में ये दूसरे किस्म का स्नेक हमारी राह को रोक रहा है। नाम बताओ और इससे छुट्टी पाओ, ठीक है? जल्दी से नाम बताए 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ सही जवाब दीजिए। और सोचने के लिए मैं आपको देती हूँ एक म्यूजिकल ब्रेक। बड़ा ही शानदार गाना फर्राटा, जो कि आपके एनर्जी लेवल्स को बरकरार रखेगा. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। एस्केप रूम का सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के 2:02, और इस वक्त जब दो दो एक लाइन पर है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये विश करें कि आप आज इस ट्रॉपिकल आइलैंड से जो कि जहरीले स्नेक्स का नेस्टिंग ग्राउंड है उससे बच के निकल सकें, उससे एस्केप कर सकें।
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देखें।
1: यस जनाब, तो वेलकम वंस अगेन। FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। तो भाई आज जो आपका परफेक्ट वोकेशन है वो एक चैलेंज में तब्दील हो गया और आप एक ऐसे आइलैंड में पहुंचे जहां पर हर तरफ जहरीले सांपों का डेरा है। ठीक है, आपको अगर इनसे बच के निकलना है तो 3 क्लूज को सॉल्व करना है। ये स्नेक्स, ये सांप आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन अगर आपने एक भी गलत जवाब दिया तो भाई इनके बाइट से कोई नहीं बचा पाएगा। यस, आप सब ने पहला चैलेंज सॉल्व किया। क्लू नंबर 1 का सही जवाब था रैटल स्नेक, वाइपर या खड़खड़ सांप भी इसे कहते हैं। आपने सही जवाब दिया और जब आप बीच के किनारे पहुंचे तो बीच के रॉकी हिस्से पर पहुंचते ही एक लंबा और बड़ा रोबीला सांप ना सीधा खड़ा हो गया आपको देखकर, जैसे कि बिल्कुल अलर्ट हो गया है। और क्लू नंबर 2 ये है कि आपको पहचानना है कि आखिर ये स्नेक कौन सा है, इसका नाम क्या है। तो इसका ताल्लुक एंशिएंट इजिप्ट से है। जब मैं गुस्से में होता हूँ या खतरा महसूस करता हूँ तो मैं अपनी गर्दन की खाल को एक चौड़े हुड की तरह फैला लेता हूँ। बताएं मेरा नाम क्या है। तो अभी भी हमारे कुछ लिसनर हैं जो रैटल स्नेक लिख रहे हैं। देखिए वो गलत जवाब है। सही जवाब सीधा मैं बताती हूँ बिना वक्त बर्बाद किए।

इट इज किंग कोबरा. तो जिन्होंने कोबरा लिखा है, किंग कोबरा लिखा है, कुछ ने इजिप्शियन कोबरा लिखा है, आप सबके जवाब सही है. जोरदार तालियां आप सबके लिए. भाई पेट थपथपा लो, आसान नहीं होता है पहेलियां सुलझाना. अचीवमेंट है भाई, अचीवमेंट. एस्केप रूम से बाहर निकलना है तो बस एक एक करके ये लेवल्स पार करने होंगे. और जिन्होंने सही जवाब दिया, आइए जरा उनके नाम जल्दी जल्दी गिन लेते हैं. तो उनके नाम है इशार और अकबर, जैद, मोहम्मद और कौन कौन जुड़ा है. देखिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज नाम जरूर लिखा करें. आरिफ ने भी सही जवाब दिया है. ये शख्स कौन है? ये है मोहम्मद बिलाल. बिलाल ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है. यूसुफ ने भी सही जवाब दिया है. और कौन कौन जुड़ रहा है हमारे साथ? मोहम्मद मुशीर आलम ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है. हुसैन ने भी सही जवाब दिया है. और मोहम्मद यूसुफ खान, यासिन, सैमुअल, गुड जॉब गाइस, आप सब ने सही जवाब दिया है. और इसके चलते दूसरा लेवल भी पार हो गया. क्या बात है. अब आप धीरे धीरे पीछे हटे, ठीक है? क्यों? क्योंकि किंग कोबरा जो एकदम स्ट्रेट खड़ा था, वो धीरे से नीचे आया और उसने आपको रास्ता दे दिया. आपने भी उसे परेशान नहीं किया, उसने भी आपको परेशान नहीं किया. अब आप सीधा लहरों के नज़दीक आ चुके हैं. हाँ, लहरें नॉर्मल है, थोड़ी सी तेज, थोड़ी सी कम, बस इसी तरह से आप बिल्कुल लहरों के नज़दीक आ चुके हैं. हाँ, अब क्या होने वाला है? लेकिन आपने नोटिस किया कि ये जो सांप होते हैं ना, सिर्फ आपको देख नहीं रहे हैं, ये हवा को सैंपल कर रहे हैं. इन्हें अंधेरे में भी पता है कि आप कहाँ हैं, क्योंकि इनके पास एक बहुत खास सेंसरी टूल होता है. यस, इस टूल को आपको पहचानना है. क्लू नंबर 3 आपके लिए यही है. मैं सांप का वो हिस्सा हूँ जो हवा को सूंघता है. यस, हवा को सूंघने और शिकार को ट्रैक करने के काम आता है. मैं लंबा हूँ, पतला हूँ और आखिर में दो हिस्सों में बटा हुआ हूँ. मैं क्या हूँ? कम ऑन गाइस, ये बहुत सिंपल क्लू है जिसे आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं. सही जवाब दीजिए और इस ट्रॉपिकल जहरीले आइलैंड से बाहर निकल जाइए, एस्केप कर लीजिए, ठीक है? सो 666-22-107, 666-22-107 इज आर नंबर. अपने नाम के साथ सही जवाब हमें भेजें. क्लू नंबर 3 आपके लिए है कि मैं सांप का वो हिस्सा हूँ जो हवा को सूंघने और शिकार को ट्रैक करने के काम आता है. मैं लंबा हूँ, पतला हूँ और आखिर में दो हिस्सों में बटा हुआ हूँ. तो मैं क्या हूँ? सोचे सोचे म्यूजिकल ब्रेक आपकी राहों में. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी.
1: यस वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता. और क्या कहना जनाब, आज हम एस्केप रूम में अपने ब्यूटीफुल से वेकेशन के चैलेंज को सॉल्व कर रहे हैं. मतलब कभी हमने सोचा कि हम इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं और सडनली हमको एकदम, जैसे कहते हैं ना कि स्कूल के दिनों में फाइनल एग्जाम सामने आ जाते हैं, अब उस तरह का पेपर सॉल्व करना है. हाय कितनी मुश्किलें होती हैं. लेकिन ये एग्ज़ाम ऐसा है कि अगर आपने इसे पास नहीं किया तो जान का खतरा है कि नहीं. वेल, आप एक ट्रॉपिकल आइलैंड में वेकेशंस के लिए गए, समहाउ आप पे जहरीले स्नेक्स के नेस्टिंग ग्राउंड में आप चले गए. आपको पता नहीं था कि ये होने वाला है. अब चारों तरफ स्नेक्स ही स्नेक्स.

स्नेक्स हैं, अलग अलग तरह के स्नेक्स हैं। अब इनसे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, एक एक करके क्लू सॉल्व करें और बाहर निकले। पहला क्लू आपने सॉल्व किया, सही जवाब था रैटल स्नेक, वाइपर, खड़खड़ सांप, और दूसरा क्लू भी आपने सॉल्व कर लिया, दैट वॉज किंग कोबरा। अब ये दोनों क्लूज सॉल्व करने के बाद आप अब सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, लहरों के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। अगर आपने तीसरा क्लू सॉल्व किया तो रेस्क्यू बोट तक आसानी से पहुंच जाएंगे। आपने एक चीज़ नोटिस की कि ये जो सांप है सिर्फ आपको देख नहीं रहे हैं, ये हवा से आपको पहचान लेते हैं, इन्हें अंधेरे में भी पता होता है कि आप कहाँ हैं, क्योंकि इनके पास एक बहुत खास सेंसरी टूल है। ठीक है, तो क्लू नंबर 3 यही है जो आपको सॉल्व करना है, इस टूल को पहचानना है। इस टूल का नाम क्या है? मैं सांप का वो हिस्सा हूँ जो हवा को सूंघने और शिकार को ट्रैक करने के काम आता है। मैं लंबा हूँ, पतला हूँ और आखिर में दो हिस्सों में बट जाता हूँ। मैं क्या हूँ? हमारे लिसनर्स के मैसेज देख रही हूँ मैं, कुछ अलग अलग हिस्से ही सांप के बता रहे हैं। भाई सोचिए, ऐसा कौन सा हिस्सा है सांप का जो दो भागों में बट जाता है? थिंक अबाउट इट गाइज, जवाब आपके पास है। 666-22-107, 666-22-107, एंड लेट मी सी आप में से कितने लोग सही जवाब देते हैं। अपने नाम के साथ सही जवाब दीजिए और इस क्लू नंबर 3 को सॉल्व कीजिए, क्योंकि हमें इस ट्रॉपिकल जहरीले आइलैंड से अब बाहर निकलना है। और भाई अभी थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश करते हैं विशाल मिश्रा के बेहतरीन आवाज में, ये गाना स्टेडियम टू FM 107, दिल से देसी।

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे। सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ, एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक पूर

तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल

0: एस्केप रूम, ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: यस वेलकम वंस अगेन, एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। एस्केप रूम का बिल्कुल आखिरी पड़ाव चल रहा है और कहा आपका परफेक्ट वेकेशन एक नाइटमेयर में तब्दील हो गया, जहां हर तरफ आप स्नेक्स की, सांपों की सरसराहट, थरथराहट बस यही महसूस कर रहे हैं। वेल आपको तीन क्लू सॉल्व करने थे। पहला क्लू आपने सॉल्व किया, सही जवाब था रैटल स्नेक, वाइपर, खड़खड़ सांप। दूसरे का जवाब किंग कोबरा। तीसरे में आके थोड़ा सा अटक गए हमारे लिसनर्स और क्लू था कि मैं सांप का वो हिस्सा हूँ जो हवा को सूंघने और शिकार को ट्रैक करने के काम आता है। मैं लंबा हूँ, पतला हूँ और आखिर में दो हिस्सों में बट जाता हूँ, तो मेरा नाम क्या है, मैं क्या हूँ? ये बहुत सिंपल था भाई, बहुत ज़्यादा सिंपल, लेकिन हमारे कुछ लिसनर्स कह रहे हैं दिस इज नोज। ओके, सांपों की नाक होती है। ओके, सो सम आर सेइंग नोज, कुछ ने कहा है स्नेक की स्किन, कुछ ने पिट वाइपर्स, पाइथन्स, मतलब स्नेक्स के नाम भी दे दिए हैं। जनाब सांप के शरीर का एक हिस्सा है, ठीक है। चलिए आपको बता देते हैं, सही जवाब इज फोक्ड टंग, स्नेक की टंग, ठीक है। तो अब समझ में आया, जिन्होंने सही जवाब दिया है उन्हें क्या मिलेगा? जोरदार तालियां, क्या बात है। आप सब ने बिल्कुल सही जवाब दिया, आखिरी पड़ाव भी पार कर लिया। आइए जल्दी जल्दी बताते हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है और आज इस सिचुएशन से एस्केप किया है। उनके नाम है अकबर, जैद, इशार, मोहम्मद, मोहम्मद यूसुफ खान, और कौन कौन है भाई जिन्होंने सही जवाब दिया है? रमेश ने सही जवाब दिया है, हुसैन ने सही जवाब दिया है, ईशान, एहसान ने सही जवाब दिया है, यूसुफ ने भी सही जवाब दिया है, मिस्टर नितुरम ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, सैमुअल ने भी सही जवाब दिया है, क्या बात है। और इसी के साथ आपने इस जहरीले आइलैंड से एस्केप कर लिया है। जैसे ही आपने क्लू नंबर 3 सॉल्व किया, आप आराम से आपकी जो रेस्क्यू बोट है वहां तक पहुंचे, और उसके बाद जब ये बोट चल पड़ी तो जो ये स्नेक का जहरीला आइलैंड था बिल्कुल छोटा से एक डॉट की तरह आप दिखने लग गया और आपने एक चैन की सांस ली, क्या बात है। चलिए इसी बात पे आज के लकी विनर का नाम बता देते हैं। आज के लकी विनर है जैद भाई, मुबारका मुबारका, बिल्कुल सही जवाब दिया नॉन स्टॉप, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आपके लिए और हमारे उन सारे लिसनर्स के लिए जो नॉन स्टॉप हमारे साथ जुड़ते रहे और एस्केप रूम को खास हम खास शो बनाया है कि नहीं। और कल आपकी मेरी मुलाकात फिर होगी दोपहर 1:30 बजे, तो बिल्कुल सुनना ना भूलें हमारा एस्केप रूम। और फिलहाल अगर हमसे जुड़ना है तो हमारे एफएम 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, अपनी आरजीवी तक को भी आप सोशल मीडिया पर ढूंढ सकते हैं, और कल की तैयारी थोड़ी कर लें क्योंकि कल दिमाग को ज़्यादा लगाना पड़ेगा। हाँ कैसे, बस कल का चैलेंज कल दोपहर 1:30 बजे पता चलेगा, बस आंख खोल के नहीं आंखें बंद करके करना पड़ेगा। चलिए ये नया चैलेंज है जिसका हम जिक्र कल करेंगे, बट अभी जाने से पहले कहना बनता है कि हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। और एस्केप रूम का ये चैलेंज बस बरकरार रहेगा, ये मुकाबला चलता रहेगा। फिलहाल एंजॉय द सॉन्ग, स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी।

0: अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम बैक टू इको स्विच विद सफा ऑन FM 107, जहां हम बात करते हैं उन सिंपल आइडियाज की जो हमारी डेली लाइफ को ज्यादा सस्टेनेबल बना सकते हैं। भाई देखें, आज का टॉपिक है यूजिंग रिफिलिंग स्टेशंस, यानी के एक ही कंटेनर को बार बार रिफिल करना इंस्टेड ऑफ हर बार नई बॉटल या पैकेजिंग खरीदना। देखें, हम अक्सर सुपरमार्केट जाते हैं और शैम्पू, हैंड वॉश, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स या वाटर बॉटल्स खरीदते ही हैं, है कि नहीं? ये तो डेली लाइफ की चीजें, प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, बॉटल डस्टबिन में चली जाती है और हम फिर से क्या करते हैं, एक नई बोतल खरीद लाते हैं। अच्छा, इको स्विच हमें एक सिंपल सवाल पूछता है, अगर सिर्फ अंदर का प्रोडक्ट खत्म हुआ है तो भाई पूरी पूरी बॉटल क्यों दोबारा खरीदनी? अच्छा जरा सोचिए, दोहा में एक फैमिली है जहां हर महीने शैम्पू, डिश वॉशिंग लिक्विड, हैंड सोप और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स खत्म हो जाते हैं। ये तो नॉर्मल सी चीज है, हर बार नई प्लास्टिक बॉटल्स घर आती हैं और पुरानी बॉटल्स ये जा डस्टबिन के अंदर। साल के एंड तक अगर देखा जाए तो एक ही घर से डजंस ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स कलेक्ट किए जा सकते हैं। अब आप इमेजिन करें कि अगर वही फैमिली एक स्ट्रॉन्ग रीयूजेबल बॉटल रखे और सिर्फ प्रोडक्ट रिफिल करवाए, तो भाई प्रोडक्ट भी मिल गया, पैकेजिंग वेस्ट भी कम हो गया। ये है इको स्विच का सिंपल सा आइडिया, यानी कंज्यूम करें लेकिन अननेसेसरी वेस्ट क्रिएट ना करें। अच्छा भाई, अब आपको ना चलते चलते कुछ इंटरेस्टिंग सरप्राइजिंग से फैक्ट्स बता देती हूँ। देखिए, दुनिया भर में हर साल आप कह लें कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ टन्स प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है और सिंगल यूज पैकेजिंग इसी का बड़ा हिस्सा है। अच्छा, एक प्लास्टिक बॉटल या कंटेनर को बनाने में रॉ मटेरियल्स, एनर्जी और वाटर, जो पानी होता है ना, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर एक ही कंटेनर को मल्टीपल टाइम्स यूज किया जाए तो भाई हर रिफिल के साथ नई पैकेजिंग की जरूरत कम हो जाती है। अच्छा, रिसर्च के मुताबिक रीयूजेबल कंटेनर्स अगर प्रॉपरली मेंटेन किए जाएं तो डजंस या हंड्रेड्स ऑफ सिंगल यूज कंटेनर्स रिप्लेस किए जा सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिफिल सिस्टम सिर्फ प्लास्टिक कम नहीं करते बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन इमिशन भी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अच्छा साथियों, कतर में रिफिल कल्चर अभी कुछ कंट्रीज की तरह वाइड स्प्रेड नहीं हुआ, ये मैं मानती हूँ, लेकिन सस्टेनेबिलिटी अवेयरनेस के साथ साथ ये कॉन्सेप्ट ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है। कुछ सुपरमार्केट्स इको कॉन्शियस स्टोर्स और क्लीनिंग प्रोडक्ट सप्लाईज, रिफिल ऑप्शंस और रीयूजेबल सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं। कतर में कुछ लोग पानी रिफिल स्टेशन का भी यूज करते हैं स्पेशली रीयूजेबल बॉटल्स के लिए, साथ ही क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के लिए कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूलाज और रिफिल पैकेजिंग्स भी अवेलेबल होती हैं, जो कि पैकेजिंग वेस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। अच्छा, इको स्विच का मैसेज ये है कि हम सिर्फ ये देखें कि भाई हमारे एरिया में कौन सा रिफिल ऑप्शन अवेलेबल है और उन्हें डेली रूटीन का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है। साथियों, रिफिल स्टेशंस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पैकेजिंग वेस्ट रिड्यूस करते हैं जबकि बॉटल्स बार बार यूज होती हैं, तो भाई नए प्लास्टिक कंटेनर्स की डिमांड भी कम हो जाती है इससे। तो भाई इसका इम्पैक्ट सिर्फ वेस्ट तक लिमिटेड नहीं रहता, कम पैकेजिंग का मतलब होता है कम मैन्युफैक्चरिंग, कम ट्रांसपोर्टेशन और कम रिसोर्स का यूज, यानी एक छोटी सी रिफिल हैबिट एनवायरमेंट के लिए मल्टीपल बेनिफिट्स क्रिएट कर सकती है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक ऑफिस या फैमिली रेगुलर क्लीनिंग प्रोडक्ट बॉटल्स रिफिल कराना स्टार्ट करे तो महीने में कई प्लास्टिक बॉटल वेस्ट होने से बच सकती हैं। अच्छा चलिए, आपको एक रिलेटेबल एग्जाम्पल देती हूँ। आप जरा सोचिए कि आप रोज काम पर जाते हैं या बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जाते हैं तो एक वाटर बॉटल ले लेते हैं। एक दिन की बॉटल छोटी लगती है ना आपको, आप कहते हैं कि भाई एक ही तो बॉटल है, क्या ही फर्क पड़ेगा एक दिन में किसी बॉटल का एक। लेकिन अगर एक साल के अंदर आप उसे कैलकुलेट करें तो वो टर्न आउट टू बी हंड्रेड्स ऑफ बॉटल्स बन जाती है। अब अगर आप एक अच्छी क्वालिटी रीयूजेबल बॉटल यूज करें और उसे रिफिल करते रहें तो आप अपनी डेली हैबिट्स को इको फ्रेंडली बना सकते हैं। देखिए, कतर के वार्म क्लाइमेट में हाइड्रेशन जरूरी होती है, इसलिए रीयूजेबल वाटर बॉटल कैरी करना एक प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल हैबिट है। अच्छा, इसी के साथ आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दे देती हूँ जो आप बहुत आराम से फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि भाई घर में अच्छी क्वालिटी वाली रीयूजेबल कंटेनर रखें जो रिफिल के लिए सूटेबल हो। दूसरा, सुपरमार्केट में शॉपिंग करते वक्त रिफिल पैकेट्स या कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट्स को प्रेफर करें। तीसरा, पानी के लिए डिस्पोजेबल वाटर की जगह आप रीयूजेबल बॉटल्स कैरी करें। चौथा, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के लिए रीफिल ऑप्शंस एक्सप्लोर करें जहां ये चीज अवेलेबल हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑफिस या फैमिली के साथ रीफिल कल्चर प्रमोट करें ताकि ज्यादा लोग इस हैबिट को अडॉप्ट करें। साथियों, इकोस्विच का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि रीफिल का मतलब ये नहीं है कि हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करें। रीफिल का मतलब है स्मार्ट कंजम्पशन। देखिए भाई, आज के जमाने में ना सस्टेनेबिलिटी का मतलब सिर्फ चीजें कम खरीदना नहीं है बल्कि उन्हें इंटेलिजेंटली यूज करना है। रिफिल हैबिट्स हमें सिखाती हैं कि हर प्रोडक्ट के साथ एक्स्ट्रा पैकेजिंग लेना जरूरी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई जो लोग रिफिल हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं ना, वो अक्सर अपनी शॉपिंग हैबिट्स को भी ज्यादा माइंडफुल बना लेते हैं। तो भाई कंक्लूजन ये है, यानी कि आखिर में इको स्विच का सिंपल मैसेज ये है कि हर बार नई बॉटल लेना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे सस्टेनेबल चॉइस यही होती है जो हम पहले से यूज की हुई चीज होती है उसे दोबारा से इस्तेमाल कर सके। तो भाई अगली बार जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदें तो एक छोटा सा इको स्विच जरूर ऑन कर लीजिएगा। क्या मैं इसे रिफिल कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग द होल कंटेनर? क्या मैं इसे रिफिल कर सकता हूँ? इसी नोट के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107, जहाँ हर छोटी सस्टेनेबल हैबिट एक बड़े पॉजिटिव चेंज की तरफ ले जाती है। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी RJ माविश खान और आज हम बात करेंगे बुजुर्गों के एहतराम की अहमियत के बारे में। बुजुर्ग हमारे माशरे का कीमती हिस्सा होते हैं, उनके तजुर्बे और नसीहत हमारी जिंदगी के लिए रहनुमाई का जरिया बनती हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि बुजुर्गों की इज्जत करें और उनके साथ नरमी और अदब से पेश आए। अक्सर हम अपनी बिजी जिंदगी उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उनके अल्फाज में जिंदगी का गहरा तजुर्बा होता है। उनकी खिदमत और इज्जत करना सिर्फ एक सोशल ड्यूटी नहीं बल्कि सवाब का जरिया भी है। जब हम बुजुर्गों का एहतराम करते हैं तो हम अपने आने वाली नस्ल को भी यही तर्ज देते हैं कि अदब और इज्जत कितनी जरूरी है। आज का अमल ये है कि किसी बुजुर्ग से मोहब्बत से बात करें, उनका हाल पूछें और उनकी किसी बात को तवज्जो से सुने। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ RJ महावश, फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना 2026 का

0: पूरा कैलेंडर उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे सो नो फोमो एवर अगेन सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी
2: One step to 2030
3: Welcome to our segment called One Step to 2030 मैं हूं आपकी होस्ट नाजिया
2: Step to 2030.
3: दोस्तों आज हम बात करेंगे ह्यूमंस प्लस मशीन जिसे कहते हैं ह्यूमन ऑगमेंटेशन आज हम सिर्फ स्मार्ट वॉच पहनते हैं लेकिन फ्यूचर में टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा स्मार्ट हो जाएगी हमारी बॉडी का हिस्सा बन सकती है ह्यूमन ऑगमेंटेशन का मतलब है टेक्नोलॉजी इंसान की एबिलिटीज को एनहांस करे चाहे फिजिकल हो या फिर मेंटल इसमें वेयरेबल डिवाइसेस भी शामिल हैं जैसे स्मार्ट ग्लासेस जो आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर ऐसे सूट्स जो इंसान की स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं और भी एडवांस चीजें हैं जैसे ब्रेन इम्प्लांट्स जैसे इंसान मशीन को सिर्फ सोच से कंट्रोल कर सकता है मेडिकल फील्ड में ये टेक्नोलॉजी डिसेबल्ड लोगों की लाइफ चेंज कर रही है फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल लिम्स जो बिल्कुल रियल जैसे मूव करते हैं फ्यूचर में हो सकता है कि इंसान ज्यादा फास्ट सोच सके ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मशीन्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए लेकिन यहाँ एथिकल सवाल भी है क्या इंसान और मशीन का फर्क खत्म हो जाएगा क्या ये सेफ है पता नहीं ह्यूमन प्लस मशीन फ्यूचर का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट ये लाइफ को आसान और बेहतर बना सकता है लेकिन इसे रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना होगा दोस्तों एक बात तो क्लियर है 2030 यानी 2030 का फ्यूचर सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है बल्कि इंसान और टेक्नोलॉजी की पार्टनरशिप का है चाहे फार्मिंग हो एनवायरमेंट हो जॉब्स हो या फिर ह्यूमन एबिलिटीज हर जगह इनोवेशन हमें एक नई दुनिया की तरफ ले जा रहा है सवाल ये नहीं है कि फ्यूचर आएगा किस तरह से आएगा किस तरह से हमें उसको अडॉप्ट करना है सवाल ये है कि हम उसके लिए कितना तैयार है क्या हम उस तरह से तैयार हैं कि नहीं ये चीज जानना और समझना बहुत इम्पोर्टेंट है वेल चलिए ये सवाल मैं आपकी तरफ ही इसको थ्रो कर रही हूँ छोड़ रही हूँ सोचिएगा बताइएगा कि आप क्या उस तरीके से तैयार हैं क्या मेंटली फिजिकली आपने अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया है इस लर्निंग का हिस्सा बन चुके हैं कि नहीं फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी
2: One step to 2030.
4: आप सुन रहे हैं FM 107
5: FM 107
1: दिल से देसी

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है। क्रिकेट हो,
1: And he's hooked that away. That's four runs.
0: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
2: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
0: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM।
2: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।

विरासत, लेगेसी है, हमारा शील्ड है और एक बेहतर फ्यूचर की उम्मीद है। तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज हम द डेजर्ट शील्ड की गहराइयों में उतरेंगे। तो जनाब, कतर की मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने एक ऐसा टारगेट सेट किया है जो शायद सुनने में नामुमकिन लगे, पर हमारा डिटर्मिनेशन टोटली स्ट्रॉन्ग है, बुलंद है। प्लांट अ ट्री इनिशिएटिव के तहत साल 2030 तक पूरे कतर में 10 मिलियन पेड़ लगाने का विजनरी गोल रखा गया है। अब आप सोचेंगे कि अमिता, इतने सारे पेड़ आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ पार्क्स को सुंदर बनाने के लिए है? क्योंकि ज्यादातर हमारा दिमाग वही दौड़ के जाता है। बिल्कुल नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक जंग है डेजर्टिफिकेशन के खिलाफ। जब हम अपनी मिट्टी में यहाँ के नेटिव स्पीशीज लगाते हैं तो हम सिर्फ ग्रीनरी नहीं बढ़ा रहे बल्कि कार्बन को कैप्चर कर रहे हैं और अपनी नेशन की हवा को ठंडा कर रहे हैं। हर एक सैपलिंग, यूं कहें हर एक पौधा जो आज मिट्टी में जा रहा है, वो हमारे क्लाइमेट के लिए एक डिफेंस सिस्टम बनेगा। हम सिर्फ बीज नहीं बो रहे, हम आने वाली नस्लों के लिए एक सांस लेने लायक कतर तैयार कर रहे हैं। तो जनाब, आज के हमारे कतर ग्रीन बीज के इस

0: वाले हैं स्टार की। यस, ये स्टार कोई इंसान नहीं है बल्कि एक ऐसी शख्सियत है जिसने कतर की मिट्टी को सदियों से थामा हुआ है। आज बात होगी द गाफ ट्री, जिसे साइंटिफिक जुबान में प्रोसिपस सिनेरेरिया कहते हैं। जब आप कतर के हाईवे पर गाड़ी चला रहे होते हैं या फिर किसी डेजर्ट सफारी पर निकलते हैं, तो आपको दूर कहीं एक अकेला पेड़ खड़ा नजर आता है। तपती धूप है, चारों तरफ रेत है, ना कोई पानी का जरिया है, ना कोई सहारा है, फिर भी वो पेड़ वहां मुस्कुरा रहा होता है। कभी सोचा है कैसे? हाँ, तो आज हम इस डेजर्ट किंग की जो वो कहते हैं ना कि राज है, सीक्रेट्स, वो हम जानेंगे कि कैसे ये लिविंग लेजेंड अपने आप में एक लिविंग लेजेंड बना है।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
0: कतर ग्रीन बीट। तो जनाब, अगर आप एक गाफ ट्री या गाफ का पेड़ इसे देखेंगे, तो आप उसकी असली ताकत का एक छोटा सा हिस्सा ही देख पा रहे हैं। यस, ऊपर से ये पेड़ शायद उतना बड़ा ना लगे, पर इसका असली जो एम्पायर है वो जमीन के नीचे छिपा होता है। यस, कुरानिक बोटानिक गार्डन और भी जो वर्चुअल नर्सरी के माहिरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो बताते हैं कि गाफ की जो जड़ें हैं वो जमीन में 30 मीटर्स तक नीचे जा सकती हैं। समझ रहे हैं? एक बार आंखें बंद करके तसव्वुर कीजिए, 30 मीटर्स कितना होगा, यानी एक 10 मंजिल, हाँ 10 स्टोरी जो इमारत होती है, 10 मंजिल की जो बिल्डिंग होती है, उतनी गहराई। जितना ये पेड़ ऊपर है उससे कहीं ज्यादा ये जमीन के अंदर समाया हुआ होता है। इन गहरी जड़ों का मकसद सिर्फ पानी ढूंढना नहीं है। बेशक ये उस गहराई से पानी निकाल लेता है जहाँ कोई और पौधा या पेड़ नहीं पहुंच पाते, लेकिन इसका असली मकसद बहुत बड़ा है, दैट इज सॉइल स्टेबलाइजेशन। ये जड़ें कतर की मिट्टी को एक मजबूत पकड़ देती हैं। ये एक एंकर की तरह काम करती है ताकि रेगिस्तान की चलती हुई रेत हमारी सड़कों और हमारे शहरों को निगल ना ले। ये पेड़ हमें सिखाता है कि अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत है तो दुनिया का कोई भी तूफान आपका वजूद नहीं मिटा सकता। चलिए अब बात करते हैं कतर में उस चीज की जिसकी सबसे ज्यादा यहाँ जरूरत होती है, एंड दैट इज कूलिंग। जब जुलाई अगस्त की गर्मी अपने शबाब पर होती है और टेम्परेचर 50 डिग्रीज को छूने लगता है, तब हम सब अपने घरों में एसी फुल करके बैठ जाते हैं। लेकिन घाव तब रेगिस्तान में सीना तान कर खड़ा होता है। क्या आपको पता है कि घाव ट्री को नेचुरल एयर कंडीशनर कहा जाता है? इसके घने पत्तों की छांव, यस, इसके नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो बाहर के टेम्परेचर से कई डिग्री कम होता है। पुराने जमाने में जो बेडविंस होते थे वो इसी पेड़ के नीचे पनाह लेते थे। ये सिर्फ छांव नहीं देता बल्कि हवा को ठंडा भी करता है। इसके पत्ते सुबह की ओस को कैप्चर करते हैं और एक ऐसा माइक्रो क्लाइमेट बनाते हैं जहाँ जिंदगी पनप सके। ये कुदरत की सबसे सोफिस्टिकेटेड, वो कहते हैं ना, डेजर्ट टेक है। हाँ, इंसान ने तो एसी अब बना लिया है, लेकिन गाफ तो सदियों से हमारी नेशन को कूल रख रहा है। वैसे गाफ सिर्फ एक बायोलॉजिकल अजूबा नहीं है, इसका एक गहरा कल्चरल और स्पिरिचुअल रिश्ता भी है हमारी सरजमीन से। एक्सपो 2023 दोहा में जब हम ग्रीन डेजर्ट बेटर एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे, तो घाव वहाँ एक मिसाल बनकर उभरा था। यस, ये पेड़ हमें रेजिलियंस सिखाता है। रेजिलियंस का मतलब है हर मुश्किल के बावजूद टिके रहना। घाव की एक और खासियत है, इसकी सौंफ जैसी खुशबू है और इसके जो फल हैं, पुराने वक्त में लोग अपने ऊँटों के लिए खुराक के लिए इस्तेमाल करते थे। ये एक गिवर है, ये लेता कम है और देता बहुत ज्यादा है। कम पानी में गुजारा करता है, लेकिन बदले में ऑक्सीजन, ठंडक और मिट्टी को हिफाजत देता है। हमें आज अपने आप से ना एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हम घाव की तरह बन रहे हैं? क्या हम अपने इकोसिस्टम को कुछ दे रहे हैं या सिर्फ ले ही रहे हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि अमिता, हम इस घाव ट्री की हिफाजत कैसे करें? यहाँ रोल आता है

0: हमारे बड़े इंस्टीट्यूशंस का, मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी और कतर फाउंडेशन के तहत जो पुरानिक बोटानिक गार्डन है, वो इस पेड़ की बायोलॉजी पर दिन रात रिसर्च कर रहे हैं। उनका मकसद है कि कैसे हम इस नेटिव स्पीशी को हर गली हर पार्क में वापस ला सकें। और जनाब, आपने वर्चुअल नर्सरी के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक ऐसे कमाल का प्लेटफॉर्म है जो नेटिव कतरी फ्लोरा को प्रमोट करता है। जब हम अपने घरों में घाफ लगाते हैं तो हम कतर की असली पहचान को जिंदा रखते हैं। हमें विदेशी पेड़ों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पानी मांगते हैं, पानी पीते हैं। हमें चाहिए घाफ जो कम में ज्यादा करना जानता है। हाँ जी, जब हम 10 मिलियन ट्रीज की बात करते हैं तो उसमें घाफ का किरदार सबसे बड़ा है। ये हमारा क्लाइमेट शील्ड है, हमारा ग्रीन गार्जियन है। तो जनाब, अब इस प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट का सबसे बड़ा सबक, हाँ वो क्या है कि घाफ की तरह बनो। हाँ जी, अपनी जड़ें इतनी गहरी रखो कि कोई भी मुसीबत आपको हिला ना सके, और अपना वजूद, अपना प्रेजेंस ऐसा रखो कि आपके होने से चारों तरफ सुकून की ठंडक फैल जाए। घाफ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, कतर का एक लिविंग मॉन्यूमेंट है। अगली बार जब आप रेगिस्तान का सफर करें तो एक घाफ के पेड़ को देखें तो थोड़ा रुक के ना उसे सलाम जरूर करें, क्योंकि वो सदियों से हमारी मिट्टी का पहरेदार बना हुआ है। वेल, कतर ग्रीन बीच में अभी आगे हमारी बातों को हम और कंटिन्यू करेंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहना हमारे साथ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
2: कतर ग्रीन बीट।
0: वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं अमिता आपके साथ, और आज कतर ग्रीन बीट में हम बातें कर रहे हैं डेजर्ट शील्ड यानी घाफ ट्री की। वेल, घाफ ट्री की महानता के बारे में तो हमने काफी डिस्कशन किया, लेकिन सिर्फ तारीफ करने से या उसकी मजबूती के किस्से सुनने से बात नहीं बनेगी। घाफ ने सदियों से हमारी हिफाजत की है, कड़कती धूप में साया दिया, हमारी मिट्टी को थामे रखा, लेकिन आज वक्त का पहिया ना घूम रहा है, और आज हमारी बारी है कि उसकी हिफाजत हमें करनी है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि अमिता, हम जो आम इंसान हैं, हम इस बड़े ग्रीन मूवमेंट का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? पर बदलाव हमेशा बड़े कदमों से नहीं, बल्कि सही दिशा में उठाए छोटे छोटे कदमों से होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो रास्ते कौन से हैं जिससे आप कतर की इस ग्रीन लेगेसी के हिस्सेदार बन सकते हैं। तो जनाब, कतर में हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत इंस्टीट्यूशन है, खुरानिक बोटैनिक गार्डन, जो कतर फाउंडेशन के तहत आता है। ये सिर्फ एक गार्डन नहीं है, ये एक नॉलेज का खजाना है, और यहाँ अक्सर कम्युनिटी प्लांटिंग डेज आयोजित किए जाते हैं या ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। मेरा यकीन मानिए, अपनी बिजी लाइफ से बस 2 घंटे निकाल लीजिए, ठीक है, और वहां जाइए। जब आप अपने हाथों से उस ठंडी मिट्टी को छूते हैं और छोटे से पौधे के लिए एक गड्ढा खोदते हैं और उसे बड़े प्यार से वहां लगाते हैं, या कह सकते हैं रोपते हैं, तो वो एहसास शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। आप सिर्फ एक पेड़ नहीं लगा रहे हैं, आप कतर की हिस्ट्री में एक हिस्सा जमीन में बो रहे हैं। वो पौधा जब बड़ा होगा तो वो आपकी मेहनत की गवाही देगा। हाँ, तो अगली बार जब आपको कुरानिक बोटैनिक गार्डन का कॉल आए तो पीछे मत हटिए, मिट्टी में हाथ डालिए, क्योंकि वहीं से जिंदगी शुरू हुई है। हम अक्सर अपने घरों के गार्डन या बालकनी को सजाने के लिए कुछ विदेशी या यूं कहें एग्जॉटिक पौधे ले आते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। कतर जैसे देश में जहाँ पानी की एक एक बूंद कीमती है, वहाँ हमें स्मार्ट होना पड़ेगा। यह रोल आता है वर्चुअल नर्सरी का, ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ये लोग कतर के नेटिव फ्लोरा यानी यहाँ की अपनी मिट्टी के पौधों को प्रमोट करते हैं। जब आप अपने घर के लिए घाव, सिद्रा या कोई और लोकल पौधा चुनते हैं तो आप 2 बड़े काम करते हैं। पहला, आप पानी बचाते हैं, क्योंकि इन पौधों को यहाँ के माहौल की आदत है, और दूसरा, आप यहाँ के लोकल इकोसिस्टम की मदद करते हैं। देसी

0: पौधे लगाने का मतलब है हम मेहनत, कम पानी और एक खुशहाल पर्यावरण या एनवायरनमेंट, या फिर यूं कह सकते हैं एटमॉस्फेयर, हाँ उसे प्रमोट करते हैं। तो जब आप अगली बार नर्सरी जाएं, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि हम पेड़ पौधों के बड़े शौकीन होते हैं, तो यहाँ के लोकल प्लांट्स को चुनें। और अब अगली सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये हमारे लिए एक अहम कदम भी हो सकता है कि रिस्पेक्ट द वाइल्ड घाफ। हाँ, सर्दियों का मौसम आते ही जब हम अपनी गाड़ियां उठाकर निकल जाते हैं कैंपिंग या ड्यून बैशिंग के लिए, तो ये हमारी लाइफस्टाइल का ना एक बड़ा खूबसूरत हिस्सा बन चुका है, हम इसे बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन एक चीज है जो मैंने अक्सर नोटिस की है, इस मस्ती के बीच हम अक्सर अपने साइलेंट गार्जियंस को ना भूल जाते हैं। याद रखिए, रेगिस्तान में खड़ा हर एक पुराना घाफ का पेड़ अपने आप में एक हेरिटेज साइट है, वो सदियों के एफर्ट से, यूं कह सकते ना, तपस्या के बाद हमको मिला है। अब आप कैंपिंग करें तो ध्यान रखें कि उनकी जड़ों को ना नुकसान ना पहुंचे, पेड़ के नीचे कचरा ना छोड़ें, ये प्लास्टिक की बॉटल्स, स्टील के डिब्बे मिट्टी को ना बीमार कर देते हैं जिसने हमें सहारा दिया है, तो हमें थोड़ी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। घाफ का वो शील्ड तभी मजबूत रहेगा जब हम उसकी इज्जत करेंगे। वो कतर की पहचान है, उसे मैला मत होने दीजिएगा, ठीक है? तो जनाब, हमारा जो कतर ग्रीन बीट है वो अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है, और जब आखिरी मुकाम पे पहुंचा है तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि एक पुरानी कहावत है, एक पेड़ लगाने का सबसे अच्छा वक्त 20 साल पहले था, लेकिन दूसरा सबसे अच्छा वक्त अभी है। हाँ, आज आप जो घाव का पेड़ लगाएंगे वो शायद आज आपको फल ना दे, शायद आज आपको पूरी तरह से साया ना दे, लेकिन याद रखिए वो आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए एक ताजी सांस बनेगा। ये एक वादा है जो हम अपने आने वाली नस्लों से करते हैं। हम उन्हें सिर्फ कंक्रीट के जंगल नहीं देना चाहते, हम उन्हें एक ऐसा रेगिस्तान भी देना चाहते हैं जहां रेत का ढेर भी हो लेकिन जिंदगी से भरपूर हो। वेल, कतर नेशनल विजन 2030 की तरफ कदम बढ़ाते हुए हमें इस घाव के पेड़ से तीन बातें सीखनी है। रेजिलियंस यानी हर मुश्किल हालत में लड़ने की ताकत, डेप्थ यानी अपनी जड़ों को अपने कल्चर से, अपनी बातों से, अपने पुरखों की चीजों से हमेशा जुड़े रखना, वो भी गहराई से, और करेज यानी हर तूफान के सामने मुस्कुराकर खड़े रहना। वेल, अब वक्त हो गया है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और थोड़ी मिट्टी हाथ में लेते हैं, अपनी इस सर जमीन को और भी हरा भरा बनाते हैं, क्योंकि याद रखिए ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये हमारी लेगेसी है। तो उम्मीद है कि आज का हमारा जो एपिसोड, जो कि घाव ट्री के नाम था, द डेजर्ट शील्ड, आपको जरूर पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो आप हमसे अपने व्यूज, अपने सजेशंस शेयर कर सकते हैं 666-22-107 पर, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ, और आपके मैसेजेस को जरूर नोट किया जाएगा। और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि वक्त है मेरे जाने का। अब अगले हफ्ते आपकी मेरी मुलाकात होगी कतर ग्रीन बीट्स में, एक नए नवेले एपिसोड के साथ, एक नए नवेले प्रॉमिस के साथ। तो फिर हमारे साथ बने रहना है, FM 107 सुनते रहना है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आप जुड़ सकते हैं FM 107 की, और अपनी आर जमीता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं। फिलहाल अपना खूब सारा ख्याल रखें और स्टे ट्यून टू FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर, दिल से देसी।

0: FM 107. Time check.
1: हाँ जी हबीबी, टाइम फॉर टाइम चेक एफएम 107 के स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 4:01।
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
1: हाँ जी, एफएम 107 दिल से देसी, चार बजे हमारा और आपका मिलन हो जाता है, जहां पर आपकी अपने मर्जी के गाने चलते हैं इस शो में, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। और हर रोज एक नई थीम होती है और आज भी एक लाजवाब थीम है। एक ऐसे सिंगर के गाने हम सुनने वाले हैं जिन्होंने पिछले कुछ 10 साल में हमें बहुत लाजवाब हिट दिए हैं। ऑल दो मोस्टली 95% गाने उन्होंने रोमांटिक गाए हैं, स्लो गाए हैं, लेकिन बावजूद जबरदस्त गाए। जेन ज़ी को आजकल क्या पसंद है, मिलेनियल्स को क्या पसंद है? तेज गाने, अच्छे बीट वाले और जिसमें रैप शैप हो थोड़ा सा, वो गाने पसंद है। लेकिन वो भी जनता बहुत बड़ी है जिसको थोड़े लव सॉन्ग, थोड़े मोहब्बत के स्लो सॉन्ग, अच्छी कंपोजिशन के लव्स अच्छे हों जिनके, वो गाने भी जेन ज़ी मिलेनियल्स पसंद करते हैं और ट्रेंड में रहे हैं, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे ट्रेंड में रहे हैं। लोगों ने अपने रील्स में बनाए हैं, अपने पोस्ट पे उन गानों को लगाए हैं। और आज जिस ऐसे शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनका नाम है जुबिन नौटियाल। हाँ जी दोस्तों, जुबिन नौटियाल के एक से बढ़कर एक गाने हैं। ऑल दो हो सकता है कि कई लोग जो हैं उनको नाम से ना जानते हो, लेकिन उनके गाने आपने सुने हैं, इसकी गारंटी मेरी है। हो सकता है नाम से आप इतना ज्यादा ना पहचानते हो, क्योंकि अभी कुछ 10 सालों में लोग ना गाने पर ज्यादा फोकस करने लग गए हैं, बजाय इनके कि यार इसका सिंगर कौन है, है ना। आप शान को जानते होंगे, जब शान गाया करते थे, सोनू निगम की आवाज़ पहचान लिया करते थे लोग, लता जी की आवाज़, कुमार सानू की आवाज़, उदित नारायण की आवाज़, जैसे कल भाई ये कह रहे थे शब्बीर की आवाज़, तो ये जो सिंगर थे ना, जब ये गाया करते थे लोग इनको आसानी से पहचान लिया करते थे, राहत फतेह खान, नुसरत फतेह खान साहब। लेकिन आज का दौर थोड़ा ऐसा है कि यार गाना सुनो, मज़े का गाना है, मज़ा आ जाता है। तो पिछले कुछ 10-15 साल में ऐसा ही हुआ। बट एक बात और भी है, जुबिन नौटियाल जो अभी नए ज़माने के हैं, बादशाह को, हनी सिंह को लोग इसलिए नाम से पहचान लेते हैं, या जिनकी अगर हम बात करें दिलजीत को, और कुछ ऐसे जो स्टार सिंगर हैं उनको लोग इसलिए पहचान लेते हैं क्योंकि ये कॉन्सर्ट भी करते हैं, ये सोशल मीडिया पर भी हैं। लेकिन कुमार सानू, उदित नारायण, उस ज़माने में कोई सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, लोग आवाज़ों से पहचाना करते थे। आज सोशल मीडिया है, फेस जो है लोग अपना दिखाने लग गए हैं, लोग सिर्फ आवाज़ से नहीं, चेहरे से भी लोग पहचानने लग गए। जुबिन नौटियाल के अगर हम बारे में बात करें तो जुबिन नौटियाल बहुत ज़्यादा वेल नोन फेस नहीं है, लेकिन उनके गाने ज़बरदस्त रहे हैं। तुम्हें दिल लगी भुलानी पड़ेगी, ये गाना उन्होंने गाया है, याद है ना, राज रिबूट 2016 में एक गाना गाया था, वो जुबिन नौटियाल ने गाया है। तुम ही से प्यार है, तुम ही आना, है ना, वो जो मर जावा का 2019 का, कबीर सिंह का तुझे कितना चाहने लगे हम, कितना ज़बरदस्त ये वायरल हुआ था। तो उस दौर से आते हैं जुबिन नौटियाल, जिस दौर में बहुत ज़्यादा लोग अगर पहचानते हैं सिंगर को तो उनकी फेस वैल्यू उस पर भी डिपेंड करती है कि असल में वो सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हैं। उसके अलावा और भी ऐसे कुछ गाने भी गाए हैं उन्होंने कि थोड़े अपबीटू वर्जन के, जैसे थोड़ा गलत ये गाना है, फिर और भी ऐसे गाने हैं जो तेरा जुनून, थोड़े से हाई नोट के रहे हैं। फिर उनके, लेकिन अगर गाने के बारे में बात करें तो ऐसे मुझे लगता है 3-4 घंटा आराम से निकल जाएगा। तो चले ज्यादा और बातें ना करते हुए जुबिन नौटियाल के गानों की तरफ हम बढ़ेंगे। आपको रिक्वेस्ट करनी है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6622107। आज का थीम जुबिन नौटियाल के गाने।
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: दिल सदेसी। और अब मैसेज की तरफ बढ़ते हैं हल्के हाथ से। हाँ, तो सबसे पहले जो शुरुआत करी है मैसेज की, सुबह सलाम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी ट्यूसडे इवनिंग। सॉन्ग है आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ। क्या बात है, क्या लाइन है ये, है ना। तो ये इस तरह के गाने उन्होंने गाए और ज़बरदस्त है। रमेश कहते हैं तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर। ये इस गाने में ना, ये तो आपने शायद लिरिक्स लिखी है, गाने का नाम अगर हो जाता तो आसान हो जाता। वेल, एक और गाना है तुम ही आना सॉन्ग, ये कहा है मिस्टर खान साहब ने। ओके, ये गाना भी अपन प्ले करेंगे। फिर खादिम भाई का मैसेज है और हम नवा गाना कहा है प्ले करने को, इंशाल्लाह बिल्कुल। फिर एक और है जिहाल मस्की, हाँ ये भी बहुत ही

लाजवाब गाना है मोहम्मद अशफाक की रिक्वेस्ट पे। लेकिन सबसे पहले आते हैं हम आंख उठी आंख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, ये गाना ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मसला ये है कि यहां मैं जो लिखता हूं उसके हिसाब से वो गाना ही आता है कि नहीं जो मैं यहां लिख रहा हूं। आंख उठे तेरे लिए खुलते हैं तो ये वाला गाना आया है। हाँ, डबल ए के एच, इससे आएगा क्या? नहीं आएगा। थोड़ा और रिसर्च कर लेंगे तब इस गाने को प्ले करेंगे सुबह। अभी फिलहाल तुम ही आना एक गाना कहा था, तुम ही आना। तो ये भी अच्छा गाना है यार वैसे तो। मुझे ढूंढना पड़ेगा तुम ही आना, किस मूवी का था ये? एनी आइडिया? अभी अभी मैंने बोला भी ना यार स्पेस बहुत देना पड़ता है मेरा भाई। हाँ चलो, ये मरजावा का है ना 2000। हाँ वही। अच्छा, इसमें दो चार आ रहे हैं अपने पास। जुबिन नौटियाल वाला 3 अपने पास पड़ेला है। सैड वर्जन, हैप्पी वर्जन, अपने को हैप्पी वर्जन प्ले करने का। तो सबसे पहले हैप्पी वर्जन जुबिन नौटियाल की आवाज में, मर जावा 2019 का ट्रैक। FM 107 पे जुबिन नौटियाल का ये गाना एंजॉय करें जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है। आज का थीम जुबिन नौटियाल के गाने, दिल से तेजी।

0: आखिर में मूवी का नाम भी बता दिया, ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक तुम ही आना सुना आपने FM 107 पे। हाला हबीबी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, क्या है हाल चाल। चलो तो भाई अब लगातार अपन गाने प्ले कर देंगे और बाकी के वो गाने मिल गए हैं जुबिन नौटियाल का लुट गए मूवी का ये ट्रैक, एक्चुअली लुट गए गाने का नाम, और फिर दूसरा गाना है रात अलंबिया जुबिन नौटियाल असीस कौर की आवाज़ में। रिक्वेस्ट किसकी है ये बताना पड़ेगा, रमेश भाई ने जो लाइन बोली है तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, वो गाना मैंने लगा दिया है। और फिर एक और ये रिक्वेस्ट आंखुट्टी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, वो गाना भी आ गया है। दोनों ये दोनों गाने अपने पास आ गए हैं FM 107 पे। जो लोग अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ताज़ा तरीन होकर आ रहे हैं, उनकी रिक्वेस्ट पर भी अपन नज़र डाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, वालेकुम अस्सलाम। सॉन्ग का नाम बताया है लुट गए, ओके तो चले लुट गए नेक्स्ट गाना ही मैं प्ले कर देता हूँ। दो लोगों की एक साथ रिक्वेस्ट आ गई है, अबू सिद्रा ने भी ये रिक्वेस्ट कर ली है। फिर एक और सॉन्ग है जिसका नाम है दिल गलती कर बैठा है, बहुत ही उम्दा। ये देखो ऐसे होते हैं, कतर में रहने वाले भाई ने नाम अनुज लिखा है, ओके अनुज भाई की रिक्वेस्ट पे ये गाना प्ले होगा। अस्सलाम वालेकुम, एक तू ही है इमरान खान की रिक्वेस्ट पे, लेकिन ये कौन से मूवी का गाना है ये भी बता दे। फिर फैसल भाई का है रिक्वेस्ट, क्या हाल है फजल भाई, दिल गलती कर बैठा है, ओके तो दो लोग हो गए ना दिल गलती वाले। हाँ दिल गलती वाले एक तो हो गए फैसल और दूसरे हो गए अनुज भाई, ठीक है। तो अपने पास रिक्वेस्ट तो आ रही लगातार, इश्क मेरा ये कौन सा गाना है, कौन सी मूवी का, थोड़ा सा अगर बताएं तो बढ़िया, नहीं अगर बता पा रहे तो कोई मसला नहीं, थोड़े लिरिक्स लिख दे तो मैं सर्च कर लूँगा। मोहम्मद हुसैन ने कहा है इश्क मेरा, ये गाना प्ले कर रहा हूँ। अब्दुल्ला कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, क्या हाल है आदिल भाई, क्या हाल है, अच्छा एफ लगाना भूल गया था, कोई बात नहीं। अच्छा फजल भाई यार आज तो मेरी वॉइस के मुताबिक के गाने तो प्ले कर दे सलमान खान, सलमान खान। अब्दुल्ला भाई क्या किए ना चाह रही हो, मैं समझ नहीं पा रही, थोड़ा मतलब ऐसे इसमें कॉन्टेक्स्ट डालो। और हाल तो मेरा ठीक है, ये मैसेज पढ़ने के बाद थोड़ा सा बेहाल सा हो गया हूँ मैं। आप गाने का नाम बता दे अब डायरेक्ट वो चल जाएगा, भाई रुलाओगे क्या, अरे मेरा भाई ऐसी कैसे, तुम कहाँ रोओगे यार, ये गाने उनके ऐसे हैं कि आपको कुछ याद आ जाता है, ठीक है, आपको अपने दोस्त याद आते हैं, आपको अपने मोहल्ले याद आते हैं, गांव याद आते हैं, ऐसा थोड़ी है कि यार इंसान रो जाएगा। ये ख्वाब है, ये क्या है, ये ख्वाब है या क्या है, जुबिन नौटियाल का है तो मैं प्ले कर दूंगा हुसैन साहब, बाकी मसला कोई नहीं है अपन ढूंढ लेंगे। फिर उसके बाद ये मैसेज है चौधरी, चौधरी प्लीज भाई, महफूज भाई ये क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ये गाना क्या गाया किसी ने चौधरी, ये कोई बात है। चलो तो आप बताते रहो FM 107 के व्हाट्सएप नंबर पे, और जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ये बताएं कि जो भी नौटियाल ने गाया ऑब्वियसली बात है, लेकिन थोड़ा सा मूवी या फिर लिरिक्स भी अगर आप बोल दे तो, बाकी मैं मेहनत कर लूँगा यार, अपना काम ही मेहनत करने का। दो गाने अभी फिलहाल इन्जॉय करें, लुट गए जुबिन नौटियाल की आवाज़ में और फिर रात अलंबिया, ये दो गाने के बाद वापस आएंगे तो बाकी लोगों की रिक्वेस्ट पर भी नज़र डाली जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: अब बताओ पूरा रास्ता इन गानों से कट नहीं जाएगा, मतलब ये वो गाने हैं कि आप घर पर भी जाएं तो आपका मूड अच्छा रहेगा, ऑफिस में आपने ऐसे ही उन लोगों का सामना किया है जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको शक्ल पसंद नहीं आ रही, लेकिन ये गाना सुनने के बाद आप घर जाएंगे तो आपका दिल खुश होगा, घर ना भी जाएं तो आप कार चलाते हुए एंजॉय तो करेंगे, कम से कम लोगों को देखकर हंसेंगे, आप मुस्कुराएंगे, एंजॉय करें इस गाने को FM 107 फजील के साथ है आप दिल से देश।

0: जुबिन नौटियाल और असीज कौर की आवाज में गाना सुना आपने FM 107 पे, और इसी तरह के गाने आज प्ले होने वाले हैं जहां पर आपको मोहब्बत याद आ जाएगी अपने अपने मुल्क से, अपने शहर से, अपने गांव से।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: जी हबीबी, दिल से देसी। और अब जल्दी से आ जाते हैं बाकी लोगों के मैसेज की तरफ। और फैसल भाई ने रिक्वेस्ट करी थी दिल गलती कर बैठा है, तो हमारे पास ये गाना आ गया है जिसे गाया है जुबिन नौटियाल, शार्दुल राठौड़ और मीत ब्रदर्स ने। ये गाना दो लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, अनुज भाई ने, इनकी रिक्वेस्ट पर भी ये गाना हमने तैयार कर लिया है। और फिर एक गाना जो हमें मिला नहीं, और ये इमरान खान भाई ने कहा था, इमरान भाई कोई और गाना अगर आपको याद हो तो वो गाना रिक्वेस्ट कर लो। बाकी दो और गाने, एक तो है ये गाना बर्बाद, नहीं मतलब बर्बाद गाना नहीं है, बर्बाद गाने का नाम है जिसे गाया है जुबिन नौटियाल ने और रिक्वेस्ट किया है शिराज अंजाम ने। ओके, अंजाम है अंजुम है, खैर आगे एक और मैसेज है। अमित त्रिवेदी, जुबिन नौटियाल, योहानी का गाया हुआ लाजवाब गाना चौधरी, मैंने नहीं सुना था तो मैंने वही कहा यार ये कौन सा गाना, ये गाया भी है। तो ये दो गाने भी दिल गलती कर बैठा है के बाद प्ले किया जाएगा। और ये जो गाना है सैयारा का है, बर्बाद, जो बिल्कुल सही लिखा भी है, किस भाई ने लिखा है, सुफियान साहब। हाँ यार सुफियान, मैं थोड़ा सा लेट हो जाता ना कभी कभार, तो मैंने नहीं सुना ये गाना, बाकी गाने मैंने सुने।

11 के, बस अकेला ये गाना नहीं सुना। ये मैसेज लिखा है, मैंने इसकी वो वीडियो भी देखी है जब ये फर्स्ट टाइम ऑडिशन में रिजेक्ट हो गया था, फिर भी इसने गाया। उफ, अच्छा हाँ यार, मतलब ये वाली वीडियो मुझे याद आ रहा है, शायद अंगोछा बांधा हुआ था या हाथ में पैर में रखा हुआ था जो मैंने, और वो वीडियो वायरल बहुत ज़्यादा हुई थी। फजिल भाई, स्पीड का पता नहीं चलता। अरे नहीं मेरा भाई, कुछ याद आ जाए तो स्पीड और धीमी कर लेना है ना, रिक्स बिल्कुल नहीं लेने का, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। अरे वाह वाह, हल्के हल्के पैडल, हल्के हल्के एक्सेलरेशन पे पांव रखने का है, ज्यादा तेज करा है बहुत तेजी से ऊपर, ठीक है। देखो कुछ चीजें ना खुले तो अच्छा है ना, एक किसी का राज और एक कार का एयरबैग नहीं अच्छा लगता। सब्जी कटी हुई अच्छी लगती है, कार कटी हुई और इंसान कटा हुआ ना ना ना ना ना ना ना, ना, ना। नहीं भाई बिल्कुल नहीं। देखो अच्छा लगता है जब आप नारियल को तोड़ के नारियल निकाले ना, वैसे मजबूत सख्त जो एरिया होता है उसको तोड़ के आप नारियल निकाले, गाड़ी को काट पीट के इंसान को निकाले तो इसलिए ना बाबा ना। ए बाबू 80 चलाओ बाबू, तुम 100 कहां भगा रहे हो, धीरे करो गाड़ी, धीरे करो, 80 की लिमिट है, चमक जाएगा भी, एक कैमरा भी आता, मैं देखता हूँ तुम 90 ही खींचते हो, क्योंकि कैमरा जो है वो सेट थोड़ा सा ऊपर पे होता है, तुम देखता हूँ मैं, कैमरे आने के बाद भी तुम 85-90 अपनी कार की स्पीड के हिसाब से खींच रहे हो, धीमे कर लो, काहे की जल्दी है, कितना ही बड़ा है कतर भाई, पहुंच जाओगे, हल्लू हल्लू, ठीक है खान साहब धीमे करो। गाने पे आते हैं, और ये जो हमारे पास 3 गाने हैं, दिल गलती कर बैठा है ये गाना, फिर चौधरी और फिर बर्बाद सैयारा मूवी का ट्रैक, और ये तीनों गाया है जुबिन नौटियाल ने। लाजवाब ये ट्रैक FM 107 पे आपके लिए प्ले करने जा रहा हूँ। अब्दुल्ला भाई थोड़ा सा करेक्शन कर दूँ, आज जो थीम है वो थीम है जुबिन नौटियाल की, सलमान खान का गाना नो एंट्री नहीं प्ले कर सकता मैं। बाकी अगर आपकी लिस्ट में जुबिन नौटियाल के गाने हैं तो जरूर हमें बताएं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6662211007। फजील के साथ हैं आप, एंजॉय करो, गाड़ी की स्पीड हल्लू हल्लू।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

जुबिन नौटियाल की आवाज में गाना सुना आपने एफएम 107 पे। फिलहाल 4:40। हाँ जी, अभी भी इस्तकबाल है आप सभी का इस शो में जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। अभी फिलहाल दो और गाने हैं जो प्ले होने बाकी हैं, इसलिए जल्दी से इनको प्ले करते हैं और फिर हम गेम खेलेंगे पहचान कौन, जिसके लिए तैयारी तो मैंने कर ली है। फिलहाल दो गाने जो हैं वो आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे आएगा वो गाना है मेरी जिंदगी है तू, और ये रिक्वेस्ट किया है मुमताज भाई ने, जुबिन नौटियाल का ये गाना है जिसमें नीति मोहन है, रोचक कोहली है और नुसरत फतेह खान साहब हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी जिंदगी है तू। वाह क्या बात है। उसके बाद इमरान भाई ने एक ऐसा गाना कहा है प्ले करने को जो ऑब्वियसली है मेरे पास, क्योंकि एक गाना उन्होंने रिक्वेस्ट किया जो हमारे पास नहीं था। वो तंग आ गए कि अरे ऐसे कैसे, लो सफ़र गाना जो है वो प्ले करने को कहा है, तो मैं कहा क्यों नहीं। ये गाना भी जो है 4 मिनट का है जो कि जुबिन नौटियाल ने गाया है, और ये ट्रैक है बागी 2 मूवी का, 2018 में जो मूवी आई थी। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले जो गाना आ रहा है वो है लो सफ़र, और फिर है मेरी ज़िंदगी है तू। ये दो गाने के बाद अपन खेलेंगे गेम पहचान कौन। रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा, देखते हैं आज जुबिन नौटियाल के कितने फैन हमें सुन रहे हैं।

जुबिन नौटियाल और निधि मोहन की आवाज में ये गाना सुना आपने, जिसमें रोचक कोहली और ऑब्वियसली नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, और खूबसूरत ये ट्रैक एफएम 107 पे। फिलहाल 4:49 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और वक्त है गेम खेलने का जिसका नाम है पहचान कौन। नए लोगों के लिए बता दें ये गेम कैसे खेला जाता है, बड़ा ही सिंपल है। गाने के लिरिक्स बीच से कहीं प्ले कर दी जाती है और आपको गेस करना होता है गाने का नाम। गाने का नाम गेस करने के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि इस गाने को गाया किसने है, जो कि आज आपको ऑब्वियसली पता ही होगा क्योंकि आज की थीम है जुबिन नौटियाल के गाने। तो इस वक्त पहचान कौन में जितने भी गाने मैं प्ले करूंगा वो जुबिन नौटियाल ने गाया ही गाया होगा। ये 3 गाने बीच से लिरिक्स कट गई हैं कहीं से, मैं ये गाना प्ले करूंगा। म्यूजिक, टोन, लिरिक्स, ये सब कॉम्पोजिशन, ये सब सुनकर आप गेस कर सकते हैं कि गाने का असली नाम क्या है। आज थोड़ा आसान है मुझे लगता है, एक गाना हो सकता है कि आपके लिए टफ हो, बट लेट्स सी। पता तो हमें तभी चलेगा जब आप जवाब देंगे कि आप कितने बड़े फैन हैं जुबिन नौटियाल के। सबसे पहला गाना आ रहा है जुबिन नौटियाल का, वो है ये।

ब्रेक लगा दो भाई। जुबिन नौटियाल का ये कौन सा गाना है आपको बताना है, नंबर 666-221-07। हाँ जी, तो गाने का नाम बताइए और ये मैसेज है दानिश का, आज गेम नहीं खेल सकता, फैमिली कॉल है। ओके, कोई मसला नहीं मेरा भाई, आप कल आ जाइएगा, कल भी चलेगा। सलाम यूसुफ भाई, रेडी रहो। लोग एक दूसरे को पहचानने लग गए भाई, दूर से पहचानने लगे। यूसुफ भाई कहाँ, यूसुफ भाई अरे जल्दी आओ है, अरे बर्गर बाद में खाना भाई, जल्दी आओ, फजील गाना लगाने वाले हैं। दूर से ही चलना ठीक है। बर्गर खा लिया कि नहीं? खा ही लिया होगा। एमके भाई ने ये रिक्वेस्ट करी थी, यूसुफ भाई आ भी गए और कह रहे हैं, अच्छा रिक्वेस्ट ये अलग चीज है। ओके, यूसुफ भाई ने गलत जवाब दे भी दिया है। यूसुफ भाई बर्गर खा लो वापस, कोई मसला नहीं। एक तो बर्गर छोड़कर आए, ऊपर से गलत जवाब भी दे दिया। देख रहा है एमके भाई क्या हो रहा है, ये आपके राज में नजर लग गई है एमके भाई की। अरे यार अच्छा खासा बर्गर खा रही थी। इमरान खान भाई ने फिलहाल जो जवाब दिया बिल्कुल सही दिया, सबसे पहला जवाब इमरान भाई का था और मुमताज भाई ने भी बिल्कुल सही पहचाना है। हाय हाय मेरा भाई, द सॉन्ग इज बिल्कुल सही, इनका नाम है सैयद। ओके सैयद साहब ने बिल्कुल सही बताया, हमजा इनका नाम है। फिर उसके बाद सही में नजर लग गई है। यूसुफ भाई कह रहे हैं बर्गर भेजिए तो सही है, आपके हाथों में नहीं था, कोई बात नहीं। हिशाम भाई ने बिल्कुल सही जवाब बताया है, बहुत ही उम्दा। लेकिन जिस दिन आप 3-3 सही जवाब दे देंगे यूसुफ भाई, आपको बर्गर मेरी तरफ से। फिर कौन है, सलाम वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, आपने भी जवाब बिल्कुल सही दिया है और आपका नाम है, नाम लिख दिया करो यार, एस ए लिखा हुआ है ऊपर, मुझे प्रोफाइल में जाना पड़ता है ढूंढने के लिए, प्रोफाइल नहीं लिखा है ठीक है। यार नहीं बर्गर यूसुफ भाई, क्या नहीं जुर ना था बर्गर, ये नहीं छोड़ना था बर्गर। बर्गर के साथ जवाब बता सकते हैं। फिलहाल अब्दुल अजीज का मैसेज आया कि क्वेश्चन क्या था, सवाल ये है कि आपको ये गाने का नाम बताना है।

बस जुबिन नौटियाल ने ये गाना गाया है FM 107 पे. अब जो दूसरा गाना आ रहा है उसमें तो कुछ तो आपको बताना पड़ेगा यार कि गाने का नाम क्या है. बड़ा आसान है वो मेरे हिसाब से. इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि यार मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ, सामने मेरे को पता है, म्यूज़िक इतना सुनता हूँ तो कहीं ना कहीं पता होता. बट आपको भी बहुत आसानी से पता होगा जुबिन नौटियाल का गाया हुआ ये दूसरा गाना पहचान कौन में. पहचानिए और गाने का नाम बताइए.

बताइए गाने का नाम, और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी मैसेज में टाइपिंग लिखता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है व्हाट्सएप पे सामने खुला हुआ है, लेकिन आ गया इमरान भाई का आ गया ये मैसेज इमरान साहब का, बिल्कुल सही जवाब है। ओके फिर एक और ये सही जवाब है हुसैन साहब का, बिल्कुल सही है। फिर शिराज अंजाम का बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है। हिशाम भाई ने भी सही जवाब, यार मैं तो सोच रहा था किसी का टाइपिंग नहीं आ रहा है, या तो फिर नेट नहीं चल रहा था उस वक्त तारोरी रात यूसुफ भाई मैं कहता हूँ गाने एग्जैक्ट नाम तो ये नहीं है, लेकिन आप लाइन पर पहुंच गए, लाइन तो फिर ये भी है ना, ये थोड़ी होता है कि जो मैंने प्ले करा वही लिख कर दे दो आपको तो गेम का आइडिया है, आपको नाम बताना है। बट मुमताज भाई ने इसमें जवाब दिया है बिल्कुल सही है, और पहली लाइन याद नहीं आ रही है। यूसुफ भाई मैं क्या कहता हूँ, वो मिर्चा होता ना मिर्चा, उससे नजर उतार लो भाई और देखो बर्गर में लगा होगा है ना, उससे निकालो लाल वाली मिर्चा अगर हो घर पे है, और उसको चारों तरफ अपने घुमाओ फिर गैस में जला दो भाई ये हवा हवाई बात मेरी अम्मी दसी उतारती थी, नजर लग गई है, अगर ना हो सिलबट्टा होगा है, सिलबट्टा नहीं पता आपको, अरे जिससे वो यार मसाला पीसते थे ना बचपन में, हम नहीं मतलब हमारी अम्मी हमारी बहनें पीसा करती थी ना, वो सिलबट्टा उठाओ चारों तरफ सर की घुमाओ, अगर भारी हो गया तो लगी है बहुत बुरी लगी है मेरी अम्मी कहती थी अरे संभल नहीं रहा बहुत भारी है, अम्मी खैर आगे बढ़ते हैं। और कौन है, फलक ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, यूसुफ भाई कहते हैं मिर्चा होता है मिर्चा, मिर्चा नहीं पता, अरे यार वो हरी हरी जो होती है लंबी लंबी, अरे जो खानों में डलती है यार, किसी को मिर्चा नहीं पता, नहीं यार नहीं नहीं ये तो गलत बात है, मिर्ची होती है, अरे यार मिर्चा भी होता, मिर्चा लग रहा है ऐसा नहीं बोलते लोग। खैर खादिर भाई कहते हैं बजरंगी भाई, बहुत ही उम्दा खादिर भाई, खादिर भाई आपको नजर लगी है, मुझे लगता है आपको भी मिर्चा जलानी चाहिए मिर्चा खुद खासने लगेगा। गाने का नाम, गाने का नाम दोस्तों जो लोगों ने बताया है मोस्टली सही जवाब है, और गाने का नाम है

तो दोस्तों जो आखिरी गाना आने वाला है इसमें मुझे लगता है 80% लोग गलत जवाब देंगे। गाने का नाम बताना है इस लिरिक्स को सुनने के बाद।

हाँ जी, नाम बताओ गाने का, कि गाने का नाम क्या है। थोड़ा सा टफ जरूर है मेरे हिसाब से, लेकिन एक जवाब आ गया है बहुत ही उम्दा। नौशाद भाई का मैसेज है, सलाम वालेकुम। अस्सलाम मेरा भाई। मुमताज कहते हैं, अरे फजील भाई, आप तो यूसुफ भाई के पीछे पड़ गए हो। फजील भाई मैं निकल, अरे यार यूसुफ भाई मैं मजाक कर रहा था यार। देखो एक जवाब आ गया खादिर का, मिर्ची को लेकर कह रहे हैं मिर्ची का दादा मिर्चा। एक जवाब आया है शिराज इंजाम का, बिल्कुल सही है। एक ही जवाब आया, जैसे कि मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा टफ हो सकता है लोगों के लिए। फलक ने सही जवाब दिया है, तो दो ही जवाब सही हैं। एक बार फिर से

कब्जा कर जाए। हाँ जी बताइए गाने का नाम क्या है, अगर आप बता लेते हैं तो बर्गर मेरी तरफ से। मतलब ऐसे थोड़ी बर्गर की बस फजील ने कहा है तो बर्गर मिल जाएगा, तीनों सही होने चाहिए। बताइए गाने का नाम और लोग हैं जो सही बता रहे हैं। हिशाम ने भी बिल्कुल सही बताया, बहुत ही उम्दा। कुछ तो लोग हैं जो सही बता रहे हैं और फिर बाकी तो फिर सलाम दुआ ही है। वालेकुम अस्सलाम। गाने का असली नाम सही नाम क्या है

बिल्कुल सही बताया है, फलक ने सही बताया है और फिर बताया है शिराज अंजाम ने बिल्कुल सही। बहुत ही उम्दा खेल का मुजाहरा किया है, बहुत ही मुबारक। और पता चल गया कि आज जुबिन नौटियाल के फैन

सुन रहे थे हमें। इसी के साथ आपके लिए इस गाने को छोड़े जा रहा हूँ। आशा रूजो जुबिन और जोनिता ने ये खूबसूरत ट्रैक गाया FM 107 पे आपके लिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल शाम 4 बजे आपके अपने मर्जी के गानों के साथ। तब तक सुनते रहें FM 107 दिल से।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतरिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: नहीं यार, 5 बजे तो क्या हो गया? रो अब बैठ के। ये देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं इसकी बातें? इसने व्हाट्सएप नहीं किया मेरे शो में, मैंने इसकी गाड़ी के पहिए निकाल लिए। नहीं भाई, मैं नहीं दूंगा। अब गए, अब कुछ नहीं। देख लो भाई आपको क्या करना है, मैं बता रहा हूँ। एकदम चुप। देख रहे हैं आप, बाकी आप पे छोड़ रहा हूँ मैं।

0: शाबाश शाबाश, चेनो से कहना कि कबीर हाजिर है। एंटरटेनमेंट का आपको सिक्योरिटी गार्ड हाजिर है। वर्जी बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया शानदार। भाई साहब क्या हाल है आपके?
1: बेटा मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं दूंगा टायर एक भी। मैंने मना किया ना व्हाट्सएप करने का, गुस्सा जाता है मेरे को। ये देख लियो, मैं भी एग्जांपल देता हूं।
0: अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ये कह रहा था कि स्वागत है आपका, व्हाट्सएप जरूर इस्तेमाल करें, बड़ी कमाल की चीज है। 666-22-107 पे जरूर जरूर आइएगा। क्या है कि मैं बताऊं, लोग नोट गिन रहे होते हैं, मैं व्हाट्सएप गिन रहा होता हूं। यही मेरी करेंसी है, मैं क्या करूं। अच्छा मुझे पता है, मुझे क्या पता है, आपको पता है, मेरे घर में भाई साहब एक मक्खी ने गलती कर दी, मेरे घर में मार ली उसने एंट्री, ना जाने कौन सी खिड़की से अंदर आ गई भाई वो मक्खी। फिर उसने अपना खानदान बना लिया, उसके जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे पैदा हुए वो भी घूमने लगे। अब खिड़की में खोल नहीं रहा, गर्मी है तो बाहर जाने का रास्ता नहीं है। भाई साहब मान के नहीं दे रहे, मान के नहीं दे रहे। मैं लाया बाहर से, वो नहीं होता वो करंट मारने वाला रैकेट, वो लेके आया भाई मैं। पहले तो मुझे समझ नहीं आया इस रैकेट को कहते क्या है। मैंने AI से पूछा, मैंने कहा ये मक्खी मारने के लिए रैकेट जो है अंग्रेजी में क्या कहते हैं। फिर उसने बताया, फिर मैं लेके आया, अभी भी मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं भाई। उस रैकेट आपका भाई सुबह से दौड़ रहा है, मैंने उसके खानदान की तमाम लोगों को निपटा दिया, एक मक्खी बची बस। घर जाके जो उसका बुरा हाल करूंगा भाई साहब, ओ हो रैकेट लेके आपका भाई दौड़ेगा। आज मेरा मिशन ही यही है, दैट इज माई सोल मिशन। बाकी मैं जरा मैसेज देख लेता हूँ, एंड यू कैन विश मी ऑल द बेस्ट। यूसुफ भाई वालेकुम अस्सलाम। मैं बढ़िया भाई, एक मैसेज आया भाई, क्या कमाल की एंट्री भाई। सलमान भाई बहुत सारा प्यार। एक मैसेज है कबीर भाई, मैं का तो क्राइ, मैं नहीं रोया पर ही मकसूद भाई, आप मेरा पूरा एंट्री की अपने बैंड बजा दी। तब उससे मैंने कहती है वेलकम, नाइस एंट्री, हंसने पर मजबूर। वालेकुम अस्सलाम मेरे बहन, क्या हाल है। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई कबीर, वेलकम बैक मोहम्मद फैयाज, फैयाज चक्कर आपका नाम होना चाहिए। एम के भाई वालेकुम अस्सलाम, नियाज भाई वालेकुम अस्सलाम, प्रेजेंट लिख रहे हैं। एंड इनके बाद अस्सलाम वालेकुम, मैं जी बढ़िया, आके अब्बासी भाई और सईद हमजा भाई लिखा है, आपके आपके पीछे पीछे आ जाते हैं हम भी आपको ज्वाइन करने के लिए। मेरा भाई बहुत सारा प्यार भाई को गया। हिजाम भाई वालेकुम अस्सलाम, जकी साहब वालेकुम अस्सलाम, होपफुली फर्स्ट मैसेज ऑफ द डे। यस यू आर, यू एक्चुअली यू टेक्स्टेड मी द वेरी वेरी फर्स्ट ऑन द गो, पहला मैसेज आपका ही है। एक मैसेज है, उसे क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता बहन यार, वो पता नहीं, वो रैकेट जो होता है मक्खियां मारने वाला, क्या कहते हैं उसको, इसमें करंट आता ना भाई बटन दबा के। बहन मैं आज उस मक्खी को छोड़ूंगा नहीं, मैं घर जाती उसका शिकार जरूर करूंगा। उसने अपने परिवार को पैदा कर लिया, 3-4 मक्खियां हो गई। आपके भाई ने वो करंट मारने वाला रैकेट लिया, जो दौड़ाया है मैंने मक्खियों को, जो दौड़ाया है हवा में, निपटा दिया भाई साहब सबको, चिर चिर ऐसी आवाज यहीं टकराने के बाद। एक लास्ट मक्खी रह गई है बस, आज उसका काम तमाम कर देगा आपका भाई। बाकी अब्दुल करीम भाई वालेकुम अस्सलाम, और मैं मुझे नहीं पता उस रैकेट को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं उसे, पता नहीं कुछ तो कहते हैं, मैं तो करंट वाला रैकेट वो आया था वो मिल गया मुझे। अच्छा मैं आज की कहानी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि आई एम रियली रियली नर्वस। आप बोलेंगे हर रोज का इसका यही जो चला है, नर्वस हूँ नर्वस हूँ। बट आज मैं सच में नर्वस हूँ, मुझे पता है आज की कहानी को बोर लगने वाली है। मैं खुलेआम भाई सीना ढोक के कह रहा हूँ, आज की कहानी बहुत लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ेगी, लोग बोलेंगे हमारे मतलब की नहीं है भाई, पर आज की कहानी बेहद ज़रूरी है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, आप इवन खुद, तो ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिएगा। आज की कहानी आपको बहुत बहुत हैरान कर देने वाली है, अगर आपने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये मतलब अज्यूम, आर्टिस्ट क्या करता है अजम्पशन पे चलता है, तो 80% मैं मान के चल रहा हूँ कि लोगों को आज के किस्से के बारे में नुक्ता भी नहीं पता होगा। इसलिए आज मैं ये किस्सा सुनाऊँगा आपको, इट्स गोना टेक अ वाइल, बहुत कुछ चीज़ें समझानी पड़ेंगी, बट होपफुली इसका इम्पैक्ट रहेगा। कामरान भाई वालेकुम अस्सलाम, भाई के क्या हाल हैं, बढ़िया। और एक भाई ने मैसेज किया है, ये हमारे भाई मोहम्मद भाई, मोहम्मद भाई थैंक यू सो मच, क्या मोहम्मद भाई को बहुत सारा प्यार। क्या एक दो वॉइस नोट्स आए भाई, थैंक यू सो मच। और ये कह रहे हैं कि क्या आरजेज भी एक दूसरे को सुनते हैं, वकील भाई पूछ रहे हैं। आरजेज भी एक दूसरे को सुनते तो होंगे यार पर कोई किसी की बुराई नहीं करता, सबकी हालत टाइट हो जाती है। कोई पूछे भाई मेरा शो, अरे भाई एकदम बढ़िया शो है तुम्हारा, तो एकदम बढ़िया। तो ये चलता रहता भाई, कोई किसी के मुंह पे नहीं कहता, स्पेशली अगर कंपटीशन हो ना तो। सुनो राज की बात बताता हूँ, कोई किसी की बुराई नहीं करता भाई, सब कहते हैं अरे तुमसे बढ़िया तो शो ही कोई नहीं करता। बाकी 11 मिनट 2 सेकंड के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह शाम के अधिकार, और फिर होगी आपसे मुलाकात। जाने का न्याय आज की कहानी इला डालेगी, और बाकी ऑल द बेस्ट कर दीजिएगा मुझे, बिकॉज उस मक्खी को मुझे निपटाना सच में बहुत जरूरी है, बहुत इरिटेट कर दिया यार। स्टे ट्यून्ड।
2: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله.

0: पुत्र आए थे?
1: बगावत में मतलब पापा का कहना था कि मतलब ऐसा ना, हम लोगों की जैसे मतलब थोड़ी सी सोच आजकल मॉडर्न हो गई है कि कास्ट में इन सब चीजों को हम लोग बिलीव नहीं करते जो जनरेशन है, खासकर जेन जी जो है वो तो बिल्कुल ही, उनकी तो थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट है। हम लोगों की भी थोड़े से जेन जी से जो पाते मिलेनियम, क्या क्या बोलते हैं हम लोग,
0: मिलेनियल्स, ठीक है।
1: तो थोड़ा कास्ट का इशू था।
0: अच्छा,
1: तो पापा ने कहा था कि मतलब हमारे यहाँ मतलब अभी तक खानदान में पहली शादी हुई थी जब मतलब सैयद से मिलके अलग कहीं की लड़की आई थी,
0: ठीक है,
1: उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मतलब कि जैसे किसी की दूर दूर तक रिश्तेदारी में भी कि मतलब जैसे कि किसी और कास्ट में शादी हुई हो।
0: अच्छा,
1: तो पापा इसके खिलाफ बहुत थे, मतलब पापा बहुत मॉडर्न जमाना है, कहाँ चक्कर चिल करो। लेकिन मैं एक मेरा एक्सपीरियंस ये है, वैसे पहले भी कितना ही मॉडर्न जमाना हो गया लेकिन थिंकिंग मैच नहीं हो पाती है कबीर भाई।
0: अच्छा, तो फाइनली हो गई शादी, ब्याह हो गया?
1: शादी तो हो गई है, वो फिर, सब ठीक है, फिर, मैं एक बात बता रहा हूँ,
0: नहीं वो तो कभी मैच नहीं होगी, वो तो नहीं होगी, वो तो दुनिया का निजाम है ना। पर उसके बाद क्या हुआ, अब्बा मान गए उसके बाद?
1: अब्बा मान गए, सब मान गए, लेकिन आज अब जो है ना मतलब जिस तरह का माहौल हो जाता है कभी कभी घर में, तो अब्बा बोलते तेरे पहले ही समझाया था मैंने, अब क्या अब तो बस अब फिर उसके बाद मैं चुप हो जाता हूँ, मतलब मैंने हाँ बस जो भी कहा ठीक है, मतलब अभी वो जो फैसला जो था ना मतलब कभी कभी ऐसा घर वालों की सुन लेनी चाहिए।
0: अच्छा ठीक पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई को पछतावा हो रहा है अपने फैसले पे। समझ में आ रहा है, छुपा नहीं पाओगे हमसे। अच्छा ठीक है, ठीक है,
1: छुपा नहीं रहा हूँ यार, सही बता रहा हूँ, थिंकिंग मैच नहीं हो पाती है।
0: तो आपके एक वकास भाई ने मैसेज किया, कह रहे हैं गर्मी और बेइज्जती जितनी करोगे उतनी ही लगती है, तो जितना फील करोगे उतनी ही लगती है, तो ये कह रहे हैं वो
1: लगती है भाई, सही बात है।
0: वाह वाह वाह वाह, ठीक है शोएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, देखते हैं कि लोगों ने कितने खिलाफ जाकर क्या किया है, पर आपका पॉइंट टू बी टेकन, थैंक यू सो मच मेरे भाई।
1: ओके
0: भाई, थैंक यू मेरे भाई, हाफिज। शोएब भाई के बाद एक मैसेज आया है, मैंने डंकी लगाई थी यूरोप की, है सीरियसली डंकी मारी थी क्या चाली भाई? भाई क्या बात कर रहे हो यार, नहीं चाली भाई नहीं है, कोई और है, इन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया मेरे भाई, आपका नाम क्या है, नाम तो बता दीजिए मुझे। सफ़ीर अहमद साहब, सफ़ीर भाई ने मैसेज किया है, राशिद भाई वालेकुम अस्सलाम, और एक मैसेज, थैंक यू, नो प्रॉब्लम मेरे भाई। और एक मैसेज आया है, तबस्सुम बहन ने बता दिया फाइनली उस चीज़ को क्या कहते हैं जिससे मक्खियाँ मारते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लाई स्वाटा, प्रोनाउंस इन जेन जी एक्सेंट, स्वाटा, इट्स अ स्वाटा। एक कॉल हो रही है कॉल उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, कैसा मेरा भाई?
0: बढ़िया भाई, भाई की क्या हाल है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, क्या कहते हैं उसको?
0: उसे कहते हैं भाई, मैं बताता हूँ रुको, अभी दोबारा पढ़ना पड़ेगा मुझे, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लाई स्वाटा। इलेक्ट्रिक फ्लाई स्वाटर यो कह रहे हैं इसे, हाँ समझे,
2: जमाने में स्वाटर तो उसको कहा करते थे जो वो माइयां बुनती नहीं, जर्सी टाइप पहनते थे अपने।
0: अरे जनाब क्या जमाना, अभी तो देखो मक्खी मारने की नौ बता गई, पूरा दिन इसी में निकल गया मेरा, आप बताइए।
2: वैसे ये एक्टिविटी आपने ढूंढी कहाँ से?
0: ये भाई जान बस मेरे, मैंने चार मक्खियाँ देखी, मेरे अंदर का वो जो है एक्टिविस्ट जाग गया, मैंने कहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा नहीं, तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं तो जाग गया, मैंने मेरा इंतकाम देखेगी, फिर मैं चढ़ गया भाई, फिर मैंने किसी को नहीं छोड़ा। तो बस सवाल ये है मेरा मेरे भाई कि कभी खानदान वालों के खिलाफ जाके आपने कोई फैसला लिया हो, भारी पड़ा हो, हल्का पड़ा हो, मुझे नहीं पता, वो आप बताएंगे, पर ऐसा कुछ किया है जो खानदान वाले कह रहे हैं नहीं तुम्हें कसम है मेरी, पर तुमने फिर भी किया?
2: भाई ये मेरी आवाज सुन पा रहे हो?
0: बिल्कुल सुन पा रहा हूँ,
2: ये बस यही नतीजा है,
0: यही नतीजा है, मतलब
2: कतर में आया हूं मैं।
0: अच्छा,
2: पाकिस्तान में रहता ही नहीं जाऊँ।
0: अरे भाई साहब, अच्छा वाजी वाह, क्या बात है यार, अपनी एयरलाइंस क्यों नहीं खोल लेते भाई, आप तो मुकम्मल जहाज है मेरे भाई, कहीं रुकना ही नहीं है, क्या बात है।
2: इससे पहले की एक बात बताओ, ये जो शो के स्टार्टिंग लाया ये बच्चा कौन?
0: ये भाई ये मैंने बहुत सस्ता सा साउंड इफेक्ट निकाला था भाई।
2: भाई ये कल से ना मुझे कल से गाड़ी की वाइब्स आ रही है।
0: अच्छा,
2: आपने निकाली भी तो गाड़ी की चीज।
0: थैंक यू मेरा भाई, ये तो मेरा फर्ज है।

0: पता है क्यों आ रही है?
1: क्यों?
0: कि तला भाई कहा है, तला भाई को आ जाओ।
1: तला भाई पता नहीं कहा है, अभी गुमशुदगी के इश्तिहार उनके लगाए हैं मैंने गलियों में, तो आ ही जाएंगे वो।
0: ये बात अगर तला भाई सुन ले
1: वैसे आई डोंट नो, आपको पता ही नहीं पता, मैं भी ये बगावत करके यहाँ पे आया हूँ, मैं घर वाले राजी नहीं थे, मैं भी भाग के आया हूँ भाई।
0: मैंने शुरू में बोला था मैं मेरी और आपकी कहानी मिलती जुलती है।
1: हाँ तो मैं भी भाग के आया था भाई, घर वाले कह रहे नहीं नहीं नहीं नहीं मैं जहाज में बैठा भाई
0: हो रहे हैं।
1: बेशक बेशक बेशक बेशक मेरे भाई, इसलिए तो
0: लेकिन ये था कि मेरा ये फैसला अभी तक बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं।
1: बाद में मान गए, बाद में झाड़ वाड़ पड़ी, क्या हुआ बाद में, क्या हुआ?
0: नहीं कुछ नहीं, मैं बता के आया था, ये नहीं कि मैं, आप तो चलो आपने तो बताया था ना, आपने इधर आके बताया कि
1: मैंने इधर आके बताया। हाँ
0: मेरा पैसा वहीं पे हुआ था कि भाई मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, खत्म।
1: अच्छा वैसा जिद करके आया, बिल्कुल खिलाफ
0: करने का, बस
1: करने का तो करने का, सही बात है, ये भी सही है, ठीक है।
0: वाली कहानी, घर वालों ने मुंह बनाया, फिर बाद में ठीक हो गए, बट अभी भी कभी कभी सुनने का, हाँ कौन से पहाड़ तोड़ लिए तुमने उधर जाके।
1: अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, ऐसे बस जीते रहो और खुश रहो, यही दुआ है मेरी जान, बहुत सारा प्यार आपको मेरे भाई।
0: तला भाई को बोलना अपनी गाड़ी उधर वगैरह उतार के रखें,
1: मैं अभी अभी तुरंत तुरंत
0: चीजें निकाल लूं। तला है
1: अभी बोलता हूं
0: मैं,
1: डन
0: करा,
1: जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, ओके डन मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: ओके
1: भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और भाई के बाद सर कुछ मैसेज फिर कॉल करें। नाज़िम बहन वालेकुम अस्सलाम, सलाम जी सर, हाउ आर यू? मैं जी बढ़िया, अबू साद साहब। और एक भाई ने मैसेज किया, इलेक्ट्रिकल फ्लाई स्लैपर कहते हैं उसे, स्लैपर फयाज भाई, उसे मैं बताऊं क्या कहते हैं, टीचर ने बताया, मैं सुम्बुल बहन लिखती है, बग जैपर भी बोलते हैं उसे। ज्यादा मत बनिए बहन, ठीक है, आई एम बढ़िया अंग्रेजी की टीचर, करिए बग जैपर बोलते हैं उसे। मैं तो ये मक्खी मारने की इलेक्ट्रिक जूती कहता हूँ उसको। एक मैसेज है, मच्छर मारने वाली गन, ये देखो एक और नया है। मोहम्मद भाई थैंक यू सो मच, आप तो मुझसे भी एक कदम आगे निकले। मैसेज है, सॉरी भाई प्लीज 10 रियाल के ढोल बजा, मैं बजा दूँ, मैं रुको एक सेकंड। भाई ने बोला करने का तो करने का, कह रहे हैं थोड़ा सा ढोल बजा, किधर गया ढोल, कहाँ गया ढोली, खो गए मेरे, एक सेकंड, एक कॉल आ रही है, कॉल ले लूँ मेरा, एक सेकंड को, एक सेकंड भाई, कहाँ से कॉल आ रही है, एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, क्या हाल है?
1: क्या हाल है भाई के? मैं बढ़िया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम, आप सुनाएं।
2: ठीक ठाक कबीर भाई, कल की मैंने आपकी स्टोरी सुनी, क्या मजे की स्टोरी थी। मैं जो अपनी इमेजिनेशन मैंने की ना
1: जी
2: उस स्टोरी की, मैं वो ये अभी आज मैंने सुबह सुनी, तो मैंने ऑन एयर नहीं सुनी थी। उसका तो ये सीन था, वो आपने बताया ना कि भाई वो बंदा इस तरह वो मेंटल हेल्थ में था, मुझे लग कारण अपनी बीवी को खुद ही मारा उसने, लेकिन बस वो वैसे नहीं हुआ यकीनन, इस तरह ही था ना।
1: वो अलग था भाई, अलग सीन था।
2: वो अलग था कुछ ना।
1: जैसा सोचोगे वैसे होने नहीं दूंगा मैं कहानी में, समझे?
2: वैसा नहीं हुआ वो, वैसा नहीं हुआ, वही तो। और सुनाए क्या हाल है?
1: बस अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कभी क्या कहना है इस पे? मैं ये पूछ रहा हूँ लोगों से कि कभी खानदान के खिलाफ के बाद जाके कुछ आपने किया हो, कोई फैसला लिया हो।
2: मैं आपको बताता हूँ, मैंने कभी किसी के भी नहीं सुनी, ना घर वालों ना खानदान वालों की, करता मैं वही हूँ जो मुझे पसंद है।
1: अच्छा तो कुछ ऐसा
2: ये होगा, हाँ मैं बताता हूँ। दूसरा तो ये होगा कि भाई वो मेरे पास वो जस्टिफाई करने का तरीके इतने ज्यादा ना कि मैं अगले बंदे को समझा ही लेता हूँ कि भाई ये चीज सही है, ये चीज करनी है, इसमें कुछ हर्ज नहीं, हम लोग ये चीज कर सकते हैं। तो एक तो ये फैसला था कतर आने का, हमारी एक तो फैमिली में ये चीज थी कि भाई बाहर नहीं जाना, बाहर ये होता है वो होता है फलाना है ढिमकाना है ये सब कुछ है। तो एक तो सबसे पहला बंदा ही मैं था, जब मैं लड़ झगड़ के या जैसे भी मैं इधर आ गया कतर में, भाई बस मुझे तो जाना ही जाना है। इसके अलावा हालांकि मुझे काफी ज्यादा इसके बारे में फीडबैक मिले थे कि हाँ मुबशर तो पहले ही बहुत ज्यादा आजाद है, उधर जाएगा और ज्यादा आजाद रहेगा।
1: तो पहली अपनी इमेज इतनी खराब कर रखी है कि लोगों को भरोसा ही नहीं है क्या हमारी सुनने का?
2: बहुत ज्यादा, बहुत है कबीर, क्या ही बात करेंगे यार।
1: ओके
2: और दूसरी ये चीज हो गई कि भाई मैंने अभी मैं पाकिस्तान गया हुआ था, तो अभी मेरी एंगेजमेंट भी हो गई है,
1: माशाल्लाह माशाल्लाह।
2: हाँ जी, और वो भी हालांकि काफी सारी चीजें थी, जिस तरह वो भी भाई एक और बता रहे थे कि भाई वो कास्ट का होता है और ये सब कुछ, तो वो खैर हमारी तरफ तो नहीं था लेकिन उनकी तरफ था, लेकिन फिर हमने बोला कि भाई हम तो ले करेंगे,
1: हम तो दुल्हनिया लेके जाएंगे, मेरा भाई
2: तो लेके जाएंगे।
1: क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह।
2: तो वो अपने घर में ही मुझे काफी सारी चीजें समझानी पड़ी, नहीं नहीं ये मैंने बताया ना, मैं समझा लेता हूँ अपने बंदे को।
1: नहीं भाई को बहुत सारा प्यार, भाई मेरी दुआ है आपकी शादी।

0: कामयाब रहे, जोड़ी सलामत रहे।
1: आमीन आमीन।
0: जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, बड़ा अच्छा लगा ये जान के, खुश रहा मेरे भाई।
1: आमीन आमीन।
0: ठीक है मेरा भाई, स्टोरी जरूर सुनना आज की। अल्हम्दुलिल्लाह भाई,
1: स्टोरी जरूर
0: जरूर सुनिएगा। ठीक है, ओके मेरा भाई, ख्याल रखिए मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़। और एक जरा कॉल और उठा लेते हैं, फिर जरा आगे बढ़ेंगे कहानी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम।
2: सलाम, क्या हाल है कैप्टन साहब?
0: बढ़िया भाई मेरा भाई, कैप्टन साहब पे तो जहाज उड़ रहा है, जमा जहाज बना दिया है सो को हमने। आप सुनाइए क्या हाल है?
2: ये भी जहाज जाएगा कड़ा कैप्टन भाई।
0: दोहा से दूर, दोहा की दूरी तय करेगा भाई 2 घंटे की। आप बताइए भाई, क्या चल रहा है भाई, क्या सीन है
2: भाई? एक बार आपकी आवाज में अनाउंसमेंट हो जाए।
0: कौन
2: जो आपने पहले की थी?
0: कड़ी अनाउंसमेंट भाई,
2: पायलट वाली भाई साहब।
0: अरे भाई वो तो कदम से, मैं पता है वो अचानक से निकला था पहली मरतबा, वो उसके बाद फिर वो चलते गया, वो रिचुअलिस्टिक बन गया वो। उसमें तो मजा
2: ही निकला था, बट बढ़िया था।
0: थैंक यू सो मच यार। गावा भाई आप इतने स्वीट हो यार, आपके लिए सवाल पता नहीं है कि नहीं। गावा भाई कभी खानदान के खिलाफ गए हैं? आपके खानदान ने कहा गावा तुम्हें ये नहीं करना?
2: बिल्कुल गए हैं। आपको रियल बात बताता हूँ कबीर भाई।
0: बताओ
2: कबीर भाई, आपको तो पता है अपने वहाँ पे डोरी सिस्टम बहुत चलता है,
0: बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा भाई।
2: तो कभी कभी पेरेंट्स पे ऐसी कंडीशन हो जाती है ना, उनको रिश्तेदारों की बात माननी पड़ती है कबीर भाई। तो हमारे वहाँ पे क्या है, हमारे वहाँ पे एक तो शादी का रिवाज बहुत है, और कपड़े देने का, जो भी रिश्तेदार आए हैं सगे,
0: अच्छा
2: उनको शादी में कपड़े देने ही देने हैं।
0: हाँ हाँ, उधर रहते हैं। हाँ
2: जी। तो मेरे यार कबीर भाई, अब की बार दिमाग में बात आई यार, एक तो हम लोग यार इतना खर्चा कर रहे हैं, ऊपर से घर वाले इस चीज पे पैसा देंगे, वो अच्छी बात नहीं है ना। जी
0: तो अब तो आपने मतलब कुछ रोका टोका उन्हें कि क्या खिलाफ कैसे गए?
2: जी बिल्कुल रोका टोका, उन्होंने भी बहुत बोला, क्योंकि रिश्तेदारों का प्रेशर होता है ना फैमिली के ऊपर भी, वो भी क्या करें बेचारे।
0: हाँ बात भी।
2: तो बिल्कुल बस कबीर भाई लड़ाई झगड़ा करके उनसे प्यार से, यानी कि वो वाली लड़ाई नहीं,
0: जीत जीत किसकी हुई आखिर में? आपकी जीत हो गई, होगी प्यार
2: जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल कबीर भाई, बस घर वाले मान गए फिर।
0: अरे क्या
2: पूरा टाइम नाराज रहे फिर। ओके
0: बहुत बढ़िया
2: रिपोर्ट। ओके
0: ऐसे हर किसी को डिसीजन लेना चाहिए, बहुत बढ़िया फैसला किया भाई आपने, शानदार शानदार फैसला मेरे भाई। और गावा जी बाकी गर्मी गुर्मी में क्या सीन चल रहा है भाई, इधर घूमना फिरना चल रहा है, क्या सीन है?
2: गर्मी में तो गर्मी के तो मजे ले रहे हैं भाई। आप
0: कम
2: बताओ
0: भाई, कम कराओ भाई,
2: कड़ा
0: भाई घर में मक्खियां मार रहे हैं हम तो, बढ़िया।
2: यार कबीर भाई जब आप ऐसे बोलते हो ना यार, मम तो फर्नीचर की तरह पड़े रहा घर में। यार कबीर भाई अच्छा नहीं लगता यार, कसम से यार आपकी एनर्जी देखिए।
0: अरे नहीं नहीं नहीं भाई, भाई कुछ भी से बुरा नहीं है, सब अच्छा एकदम, सब चंगा सीखा, सब बढ़िया।
2: या तो वो कबीर भाई आपने यार पूरा घूम फिर के पूरा सिस्टम देख के अपना कोटा पूरा कर लिया है, आपको भी समझ आ गई है दुनियादारी की, यही हो सकता है।
0: ज्यादा ही समझ में आ गई है भाई दुनियादारी, ज्यादा ही समझ में आ गई, इसलिए भी
2: वो भी बंदे ने हर कुछ देखा है, दिल्ली में भी देखा है, यहाँ पे भी देखा है, यही समझ सकते हैं इसको।
0: ये तो आपने गिरेवान में झांक लिया मेरी जान, क्या बात है। जी भाई सब बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसीलिए थोड़ा सा है बस, शुरुआत से है वो, ऐसा नहीं है कभी नया नया पैदा हुआ या हालातों ने ऐसा पैदा, ऐसा कुछ नहीं, कोई सैड स्टोरी नहीं है, पर ऐसे ही है ना मामला। दैट्स व्हाई
2: यार ठीक है कबीर भाई, जो भी है बंदा ऐसे सामने साफ सुथरा रहे यार, वो चीज अच्छी लगती है यार,
0: बेशक मेरे
2: भाई लगो सही है ना।
0: हाँ बस वही जरूरी है भाई,
2: साफ सुथरे रहो यार, वो
0: जरूरी
2: सही रहता है,
0: वो जरूरी है मेरी जान, बिल्कुल।
2: अच्छा कबीर भाई चाय भी यार अभी ठंडी होगी,
0: पियो पियो चाय पियो भाई, चाय के साथ मजाक नहीं भाई, चाय पियो आराम से पियो। और
2: वो तो अभी पी लूंगा जो 2-3 हफ्ते से आपका वेट कर रही है।
0: अरे नहीं वो वाली वो ही पूरी करेंगे भाई, बस इस हफ्ता थोड़ा सा केड़ा मामला है, उसके बाद एकदम फ्री है भाई आपका, उसके बाद लाइन से
2: मिर्जा भाई के आने के बाद।
0: हाँ मिर्जा भाई के आने के पहले, उनके आने से जाने से कोई बात नहीं है, पर इस हफ्ते थोड़ा सा है मामला, इधर उधर जाने का है, थोड़ी सी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद फिर फ्री है आपका भाई। ठीक है
2: भाई, आप बताना कबीर भाई, आप अकेले ही बताना शाम को, फिर दोस्तों के साथ बैठ जाएंगे, ज्यादा नहीं है, बस एक ही दोस्त होगा मेरा, आप और मैं, बस चाय पे फिर चर्चा चलेगी खुली।
0: ठीक है मेरा भाई, जरूर जरूर मेरा भाई, जरूर। थैंक यू भाई।
2: ठीक है भाई, आपके लिए बात करके यार कसम से मजा आ गया भाई, लव यू फॉरएवर,
0: लॉट्स ऑफ लव मेरे भाई को। थैंक यू सो मच गावा जी, ख्याल रखिए अपना।
2: ओके भाई,
0: ओके भाई, थैंक यू थैंक यू। गावा जी के बाद एक और कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलामुअलैकुम।
0: अरे क्या बात है सामने, ये कौन आया बंद, क्या हाल है आपके? अस्सलामुअलैकुम।
3: क्या बोला आपने?
0: मैंने कहा सामने ये कौन आया इतने टाइम बाद, कैसे याद कर लिया आपने हमारे गरीब खाने में, कैसे आ गई आप?
3: अगर आपका गरीब खाना है तो हम तो फिर बहुत पीछे हैं।
0: अरे नहीं तो बड़े साहब हैं आप, तो बड़े साहब हैं आप, बड़ी साहब।

0: और क्या?
1: अरे कहाँ भूले भटके आ गए आज आप शो में, ऐसा तो होता नहीं है। पता नहीं आज क्या हो गया, कैसे इत्तेफाक हो गया है?
0: क्या करें, जब आपकी याद आ गई तो आ गई मैं।
1: अरे बहन बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और जो आपने अंग्रेजी में बताया है हमें मक्खी मारने के लिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। काश पहले ही मैंने आपसे पूछ लिया होता। थैंक यू।
0: लेकिन आपने चीज गलत बोली, मैं इंग्लिश की टीचर नहीं हूँ।
1: क्या चीज, क्या चीज?
0: मैं इंग्लिश की टीचर नहीं हूँ, आपने गलत है।
1: वो तो मैंने आप पे इल्जाम लगाया कि आप इंग्लिश की टीचर है, आप है नहीं, मुझे भी पता है। ये इल्जाम है आप पे। हाँ हाँ
0: अब क्या करें भाई, बच्चों को पालने के लिए यही करना पड़ता है।
1: हाँ।
0: माओ को जल्दी बन जाना पड़ता है। एक मिलेनियल हम है, एक जन अल्फा, एक जन बीटा, सारे आ रहे हैं।
1: अरे आप तो आप जेंजी हैं, आप जेंजी ही हैं, आप जेंजीज को पाल नहीं रहे हैं। बताऊं आपको, आपके अंदर जेंजी है, मिलेनियल नहीं है। आप 2000 के बाद की पैदाइश लगती है मुझे आपकी, मुझे लगता है। हाँ
0: कुछ भी
1: तो बताइए बहन, आपका आपका क्या कहना है? कभी खानदान के खिलाफ गई हैं, कोई फैसला ने लिया हो कि नहीं यही करूंगी?
0: शादी का टॉपिक आ रहा है।
1: अरे तो लड़कों से, लड़के बेचारे एक ही जगह तो थोड़ा खिलाफ जाते हैं, जाने दो ना बेचारों को। जा सकती हैं, बिल्कुल जा सकती हैं, ये मासूम लोग हैं बेचारे, जाने दो इन्हें। बेचारों की मोहब्बत मुकम्मल हो रही है, दिक्कत क्या है?
0: आप बोलोगे तुम्हारा भी शादी से रिलेटेड टॉपिक चलता है, बट मेरा कुछ डिफरेंट है।
1: क्या डिफरेंस है बताइए?
0: मतलब मेरी अरेंज मैरिज है, तो जब प्रपोजल आया ना तो बस मेरी अम्मा बन भी एक ही बार में हाँ कह दी, और मेरे जो लॉज है उन्होंने भी एक बार में हाँ कह दी। भाई बन भी ब्रांडेड है तो एक बार में हाँ करनी है।
1: अच्छा। ओहो ओहो, महल महल। तो फिर क्या किया आपने?
0: उसके बाद फिर ना मतलब मेरे रिश्तेदारों को ये बात हजम नहीं हुई के बंदा कतर में आपने शादी का डिसीजन, वो अभी बैचलर्स कर रही है, आप कैसे इतनी जल्दी डिसीजन ले सकते हैं? ये वो बहुत सारी हुई तो अच्छा भाई मेरा बंदा भी बहुत अलग तरीके का। हमने ना हमारी शादी 6 महीने में हो गई, जबकि अरेंज मैरिज, सबको लगा लव मैरिज है ये। बहुत लोगों ने बताया नहीं उसकी तो कतर में दूसरी शादी हो रखी है, ये है। मैंने कहा मैं दूसरी शादी वाले से ही शादी
1: करूंगी,
0: मुझे दूसरी है। मतलब बहुत मेरे अम्मा अब्बा का बाद में ये फैसला चेंज हो गया, नहीं मुझे अब वहाँ शादी नहीं। मैंने कहा नहीं अब मुझे वही शादी करनी है। ये तो मेरी क्या अना के खिलाफ हो जाएगा कि भाई पहला प्रपोजल आया और मैं इनकार कर दूं और बंदा कतर में है।
1: क्या बात है यार, क्या बात है।
0: दूसरी भी हुई तो भी मैं हाजिर हूँ।
1: तो फिर आपने फाइनली जीत हासिल कर ली, उसके बाद सुनने को मिला कुछ? मतलब क्योंकि शादी के दौरान लोग नाराज हो जाते हैं ना, फिर शरीक नहीं होते?
0: नहीं लोग आए, आपको पता है मतलब बकायदा लोग शादी में ये आए कि मुझे देखना है कि कैसे क्या हुआ। और रही बात डाउरी की तो वो भी नहीं लिया कुछ भी,
1: मतलब
0: बहुत अलग तरीके से शादी है। तो और इनकेस डोली और घोड़े वाला कंसेप्ट था,
1: मुझे पक्का अब शक हो रहा है कि ये कोई अरेंज मैरिज नहीं है। यू कैन नॉट कन्विंस मी अदरवाइज।
0: मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब मेरे मतलब मुंबई का, अगर कोई मुंबई वाला होगा तो उसको पता होगा वहाँ पे ना मस्जिद में निकाह होता है।
1: हाँ।
0: बाकी और भी जगह पे होता है ना,
1: और जगह होता है।
0: हमारा मॉल मेरे एरिया में, मतलब मेरे पूरे मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे पहला निकाह ऐसा हुआ जो मस्जिद में हुआ, और सुबह में। अब तो लोगों का शक, और ऐसा क्यों निकाह में किसी को बुलाया नहीं है? रात के फंक्शन में बुलाया है। अब तो जरूर कुछ गड़बड़ है भाई। हमने जिन्हें एक लोगों का इनविटेशन दिया वो भी फैमिली आए हैं।
1: अच्छा
0: अब हम देखेंगे इस बंदी ने। अच्छा फिर उसके बाद नहीं इसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी? नहीं मैंने कहा कुछ भी वो खत्म नहीं होगा, जो मैंने सोचा है वो मैं अपने सारे ख्वाब जरूर पूरे करूंगी।
1: इतना इतना क्या मतलब, वो भाई ने, हमारे भाई ने कतर में बैठे बैठे कोई धनिया बोलता, लोगों की जिंदगी में इतने क्यों खिलाफ हो रहे थे लोग?
0: बहुत खिलाफ है लोग, जलन सबसे ज्यादा सुधारी तो होते हैं सांप। आते हैं खाने कम आते हैं, ढसने ज्यादा आते हैं।
1: तो जीत गई ना आप कुल मिला के माशाल्लाह, ये बात में खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह।
0: और अभी भी लोगों को यही शक होता है कि नहीं इस बंदी की अरेंज नहीं है, इससे लव मैरिज।
1: हाँ वो तो शक हमें भी है, मुझे तो यकीन है, मुझे यकीन है, मुझे यकीन है।
0: क्या यकीन है आपको?
1: मुझे यकीन है अरेंज मैरिज नहीं, वो पूरा यकीन है मुझे। You cannot convince me otherwise. नहीं भाई मैं मान नहीं सकता।
0: मैं आपको कर सकती हूँ।
1: अच्छा ऐसा है क्या? आप उनसे बोल देंगे, बोल दीजिए बेचारे वो तो मासूम।

0: में वो तो मान जाएंगे कि ये तो कह रही थी, मुझसे कहना पड़ेगा।
1: मैं आपको बता रही हूँ ना कि मतलब किसी को भी मैं बताती हूँ तो वो यकीन नहीं करता है कि मेरी अरेंज मैरिज है।
0: हम भी नहीं कर रहे।
1: अरे भाई मैं कैसे बताऊंगी, तो मेरी दुआओं का असर।
0: ओ ये सही है भाई साहब, लव मैरिज कर लो, मैं कहता हूँ दुआओं का असर है ये तो। सही है भाई साहब, सही खेल गई, सही है सही है। लेकिन हम आपके साथ हैं और अल्लाह ताला से दुआ आपकी ऐसी जोड़ी सलामत रहे और बहुत सारी खुशियां भी हो रहे हैं। जज़ाकअल्लाह बहनों, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अब तो लोगों को ये भी जलन होती है कि भाई बंदी वहाँ रह के जॉब भी कर ली, अब तो जरूर पक्का है कि दूसरी बीवी वो घर संभालती, बच्चे संभालती है, जॉब पे जाती है।
0: अब तो इतना इतना जला दिया है आपने, भुट्टे सेक लेंगे वो, इतना जला दिया भुट्टे सेक लेंगे अब तो। बहुत बढ़िया, ये भी सही तरीका है, ये भी सही तरीका है। बट आई एम रियली रियली हैप्पी कि टर्न्स आउट टू बी गुड और सब चीज अच्छी रही। अब आप आ ही गई हैं तो आज कहानी सुन के जाइएगा आप। आपकी बात सुनाऊंगा ना। थैंक यू सो मच मैन, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाई, मैं जल्दी से मैसेजेस पढ़ दूँ सारे के सारे, उसके बाद जो है कहानी की तरफ जल्दी से पढ़ते हैं। तो एक मैसेज है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे भाई अमन भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैसेज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक भाई लगातार कॉल कर रहे हैं लेकिन व्हाट्सएप पे क्यों कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और ये मैसेज क्या है, जुमेरा थी रैन भाई ने, इनके बाद मैसेज किया है विवेक भाई, लिखते हैं गुड इवनिंग कबीर भाई, बहुत टाइम हो गया आपको सुने, आजकल अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट पे हूँ 4 से 3 बजे तक और लंच करके सो जाता हूँ, सॉरी आपका शो मिस हो जाता है, प्लीज सेंड मी, मैं ज़रूर भेजूंगा मेरे भाई। हमारी वैली गई ना फैमिली के खिलाफ ही, मुबीन भाई कह रहे हैं। बाकी अस्सलाम वालेकुम फलक भाई। और एक भाई ने मैसेज किया है, इनका नाम है जाकिर हुसैन नूरी। जाकिर भाई लिखते हैं सलाम कबीर भाई, वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं मैंने ज़िंदगी में बस एक बार घर वालों के खिलाफ जाकर फैसला लिया था, कतर आ गया था। वो मिर्ज़ापुर के गुड्डू भाई का डायलॉग है ना कि मजबूरी में शुरू किए थे अब मज़ा आने लगा है। बस यही है अपने साथ, यही अब तो भाग के आ गया मजबूरी में, अब मज़ा आने लगा है। एक मैसेज है, मैं शादी किया हूँ घर वाले के अगेंस्ट जाके। भाई भाई भाई अलग ही जा रहे हैं लोग। ये कामरान अब्बास ने भी यही किया है और टू हैंड स्लैप कह रहे हैं मशीन को। ये फवाद भाई आप तो मज़े करके आ गए, आपसे हम बात नहीं करेंगे। खलील भाई कह रहे हैं सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। और नाजिम बहन वालेकुम अस्सलाम। तो ये कुछ मैसेज भाई आ गए ना, सब भाई आ गए, चलो सब इकट्ठे हो गए। भाई ने एक बस का फोटो लगाया जिसमें जो कंडक्टर की तरह बाहर निकला हुआ लाउड स्पीकर लेके कह रहा है कि कम ऑन एवरीबॉडी, कबीर भाई हैज़ अराइव्ड, कम रजिस्टर योर अटेंडेंस। ये मुझे बहुत ही स्वीटली अशफाक भाई ने भेजा, अशफाक भाई को बहुत सारा प्यार। ओके तो आज की कहानी के पहले फेयर वार्निंग भाई, देखो आज की कहानी हो सकता है बहुत सारे लोगों को बोर लगे लेकिन मुझे कहानी सुनाना ज़रूरी है बिकॉज ये कहानी ज़रूरी है। और प्लीज़ अगर आपके घर में बच्चे टीनेजर्स हैं, कहीं भी रहते हो, यहाँ रहते हो, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका, सेंड देम द स्टोरी बिकॉज आई विल मेक श्योर यू सेंड इट। एक मैसेज आया था वसुम बहन का, कैसे कैसे लोग रहते हैं बीवी के खिलाफ। हाँ अरे लोग क्या नहीं करते मैन। वालेकुम अस्सलाम, इन्होंने लिखा ऐसा ही होता है, अस्सलाम वालेकुम पर अपना नाम नहीं लिखा आपने। ओके तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ और एक्साइटेड दोनों हूँ। और
2: इसी खुशी में कहानी के जश्न में मकसूद भाई के लिए 10 रियाल के ढोल बजाते हुए दोहा वाले कबीर बांध बज के मिनट पे
0: बस बज गए 10 रियाल के बोले थे। एक छोटे से प्रोमो के बाद मिल रहे हैं एंड फिर शुरू हो जाएगी आज की कहानी। एंड स्टे ट्यून्ड
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: सी।
1: ठीक है जी, अब कहानी सुनने अब आई गए हैं। मैंने पहले ही वार्निंग दे दी है, मुझे पता है इसके बाद मुझे बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिलेगा, क्योंकि आपको आदत जो लग गई है थ्रिलर्स और मिस्टीरियस कहानी सुनने की, ये उन सबसे बहुत हटके है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी की जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडा को प्रमोट नहीं करती है। FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा। आज का किस्सा एकदम असली है एंड काफी हैरत अंगेज है। जिनको उनके बारे में नहीं पता है उन्हें बहुत सारा शौक लगने वाला है। ठीक है, सो आर यू रेडी?
2: आर यू रेडी?
1: ओके, शुरू करते हैं आज का किस्सा। समय दोहा वाला पीर FM 107 पे, एंड आज की कहानी स्लोली प्रोग्रेस करेगी तो मेरे साथ रहेगा, क्योंकि आखिर में इसके बहुत बहुत जरूरी चीज है सबके लिए। ओके, तो ये कहानी शुरू होती है 1920 से, 1920 एक अगस्त की तारीख थी, और इस वक्त एक खातून जिनका नाम था अलीजा लेक्स, अलीजा ने एक बच्चे को जन्म दिया।

ये एक बेबी गर्ल थी जिसका नाम उन्होंने रखा लोरेटा, और जहां पे उसका जन्म हुआ इट वॉज नॉट अ हॉस्पिटल, ये एक शैक बना हुआ था एंड ऑफ द रोड, बिल्कुल एक जगह पे जहां पर बहुत सारे लोग रहते थे, मजबूरी में रह रहे थे, और ये वर्जीनिया में जगह थी। लोरेटा नाम उसका पैदाइश के बाद रख दिया था, लेकिन किसी वजह से जो किसी को नहीं पता उसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया और हेनरियटा कर दिया। सो हेनरियटा जो थी उसका नाम क्यों हेनरियटा पड़ा नोबडी नोज, अपेरेंटली उसका नाम तीन चार दिनों में चेंज कर दिया गया था। अब ये जहां पर इसकी पैदाइश हुई, जैसे मैंने कहा कि शैक बना हुआ था, ये ट्रेन डिपो के बिल्कुल पास में था, मतलब आप अगर घर से बाहर निकलेंगे बिल्कुल सामने आपको पटरी दिखेगी और पूरा का पूरा ट्रेन डिपो दिखेगा। और इस इलाके में बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे, जो ये शैक और छोटा सा एक घर बना हुआ था ये एलिजे का ही था, जब तक वो जिंदा रही तब तक यहीं रही, क्योंकि जब हेनरियटा 4 साल की हो गई थी तो एलिजा उनकी दुनिया से रुखसती हो गई। एलिजा जो थी जब उनका इंतकाल हुआ तो उसकी वजह थी चाइल्ड बर्थ, बिकॉज उनका 10वां बच्चा जब पैदा हुआ उसके तुरंत बाद उनका इंतकाल हो गया। अब पीछे वो जो दुनिया छोड़ के गई थी वो कोई छोटी दुनिया नहीं थी, पीछे बच्चे और उनके हस्बैंड थे, हस्बैंड का नाम था जॉनी। जॉनी अब बचे थे और उनके साथ 10 बच्चे थे, सो इट वॉज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर हिम कि वो सब को संभाल सकें, तो बहुत मुश्किल थी। तो उन्होंने एक काम, उनके जहन में एक चीज़ आई कि मैं काम करता हूँ, बच्चों को फैमिली के पास भेज देता हूँ। तो वो सारे के सारे बच्चों को जैसे तैसे 220 किलोमीटर साउथ ईस्ट में ले गए, साउथ वर्जीनिया। अब यहां पे जो लैक्स फैमिली थी, इनका सरनेम लैक्स था, वो सारे के सारे यहां पर रहते थे एक टाउन में जिसका नाम था टाउन ऑफ क्लोवर, और जहां पे रिवर बहती थी उसके पास में उसे कहते थे रिवर ऑफ डेथ, सो आयरोनिकली उसका नाम भी ये था। बहरहाल इस पूरे इलाके में जहां पर लैक्स फैमिली रहा करती थी, यहां पे तंबाकू की बहुत सारी फील्ड्स थी, आउटस्कर्ट एरिया में सब कुछ मौजूद था, भीड़ ही भीड़ थी, एक छोटा सा मूवी थिएटर भी था, ग्रोसरी स्टोर थी, ट्रेन डिपो था, हर एक चीज आसपास थी। और जॉनी यहां पहुंचा 1924 में, उसके साथ थी हेनरियटा और 9 भाई बहन उसके। अब बच्चे जब क्योंकि इतने सारे थे 10, तो एक रिश्तेदार को देना बहुत मुश्किल थे, तो उन्होंने क्या किया, इन 10 बच्चों को खानदान में डिवाइड कर दिया, और हेनरियटा के हिस्से में आए दादाजी। तो जो हेनरियटा के ग्रैंडफादर थे उन्होंने उसे अपना लिया, और ऑलरेडी वो कजन को पाल रहे थे जिसका नाम था टॉमी। अब टॉमी और हेनरियटा, उनको एक कैबिन में दादा के साथ रहने के लिए कहा गया, बाकी भाई बहनों को जुदा कर दिया गया एक दूसरे से, अलग अलग रिश्तेदारों के पास थे, और इस कैबिन का नाम था होम हाउस। इस जगह पर जहां पे दादा रह रहे थे और हेनरियटा रह रही थी, यहां पर लैक्स फैमिली के कई सारे लोग रहे और दुनिया से गए, और यहीं पास में एक प्लॉट में दफनाए गए। तो काफी लेजेंडरी, काफी जाना माना खानदान उसका ये घर, पैसे नहीं थे मगर उनकी जो लेगेसी थी वो यही घर था। घर भी क्या कहूं, फॉर्मेलिटी के हिसाब से बताऊं तो एक स्लेव क्वार्टर ही था, एक सिंपल सा छोटा सा स्ट्रक्चर, और जहाँ पे हेनरियटा को रहने का मौका मिला अपनी दादा के साथ, ये कोई लग्जरियस जगह नहीं थी। यहाँ पे कोई बिजली नहीं थी, इंडोर कोई प्लम्बिंग सिस्टम नहीं था, अंदर इस छोटे से कैबिन के गैस के वो लैंटर्न्स थे, लालटेन थी, और जो पानी था वो हेनरियटा को, छोटी सी नन्ही सी हेनरियटा को बाहर जाके दादाजी के साथ लाना पड़ता था क्रीक से निकाल के। और ये बहुत मुश्किल वक्त था, मगर ये लोग इसके आदी हो चुके थे, बिल्कुल आदी हो चुके थे। वो कहते ना कि गम सहने की इतनी आदत है कि जब गम नहीं मिलता तो बहुत गम होता है, बिल्कुल वैसा ही सीन हो गया था इनके साथ। दे वर रियली रियली यूज्ड टू इट, और ये जमाना स्लेवरी का था। अब हेनरियटा अपने कजन के साथ रहती थी, टॉमी के साथ, और उसी के साथ वो जाती थी, प्लांटिंग में मदद करती थी, हार्वेस्टिंग में मदद करती थी, टोबैको फील्ड में काम करने लगी थी, और उसके साथ साथ जो छोटी खेती बाड़ी थी जो ये लोग करते थे लैक्स फैमिली, उसमें हेनरियटा जानवरों को खिलाना, गार्डन में काम करना, फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद रात में कजन्स के साथ पानी में खेलना, रात को बॉन्ड फायर में, और फिर रिंग अराउंड द रोज़ी खेलना, और फिर खेल खाल के घर में जाके थक के सो जाना। और महीने का एक दिन ऐसा होता था जब हेनरियटा के दादा और वो और उसके कजन्स जाया करते थे साउथ बोस्टन में। साउथ बोस्टन उस वक्त, इस दौर में 1920s में,
लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट टोबैको मार्केट थी पूरे नेशन के लिए, और यहाँ पर वो अपनी खेती बाड़ी से जो भी उगाते थे वो सारा लेन देन करने के लिए जाते थे, जाना ही पड़ता था, मजबूरी थी, और यहाँ बच्चों को साथ में ले जाना भी ज़रूरी था ताकि वो समझे कि उनका काम क्या है। मगर प्रॉब्लम ये थी कि ये मार्केट कोई सेफ मार्केट नहीं थी, इट वॉज अ वेरी डेंजरस मार्केट, और वो रोग ईयर था, लोग कुछ नहीं सोचते थे, चोरी चकारी किडनैपिंग किलिंग सब कुछ, पर आदि हो चुके थे लोग इस चीज के। और बाकी काम, बाकी जो जिंदगी थी हेनरियटा की वो ऐसी थी। हेनरियटा ये बच्ची सुबह उठती थी 4 बजे, और फिर जब भी थोड़ी बड़ी हो गई तो उसको 4 बजे ड्यूटी दी गई कि सुबह उठो गाय का दूध निकालो, उसके बाद जो है चारा डालो जानवरों को, और उसके बाद ये बच्ची 3 किलोमीटर चल के जाती थी स्कूल, और रास्ते में इसे पड़ते थे पत्थर। आप कहेंगे पत्थर क्यों पड़ रहे हैं बच्ची को, ये क्या बात हुई? उसे रास्ते में पत्थर इसलिए पड़ते थे क्योंकि जिस स्कूल जाती थी वो कलर्ड चिल्ड्रन स्कूल कहलाता था, वहाँ पर वाइट बच्चे ज़्यादा पढ़ते थे, और अगर कोई दूसरे रंग का आ जाए तो फिर उसे लोग बहुत ज़्यादा गलत ट्रीट करते थे, और काफ़ी ब्लैक और वाइट उस ज़माने में हुआ करता था। इस सब का जिम्मेदार था एक जिम क्रोज नाम का बंदा जिसने सेग्रीगेशन किया था ब्लैक और वाइट का। बैरल जब 6th क्लास में थी हेनरियटा, तो हेनरियटा की हिम्मत ने जवाब दे दिया, उसने कहा मैं और स्कूल नहीं जा सकती और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती, एंड शी ड्रॉप्ड आउट। उसके बाद उसने फैसला किया कि वो फील्ड्स में ही काम करेगी। हेनरियटा जैसे जैसे बड़ी हो रही थी लोग देख पा रहे थे हेनरियटा वॉज रियली रियली ब्यूटिफुल, काफ़ी कॉन्फिडेंट, काफ़ी अट्रैक्टिव। इनफैक्ट उसकी कज़न थी, क्यूटी नाम था उसका, और वो कहती थी कि हेनरियटा को देख के लवी डवी वर्ड्स जहन में आते, दिल की बहुत अच्छी थी और बेहद खूबसूरत, और सबसे आगे मदद करने के लिए। इनफैक्ट जब उसकी कज़न को पोलियो हो गया था, उस ज़माने में पोलियो का इलाज कोई आसान चीज़ नहीं थी, उस टाइम भी हेनरियटा उसका पूरा पूरा ख्याल रखती थी अपनी बिना फिक्र के। और जिस हिसाब से हेनरियटा की ज़िंदगी चल रही थी, और उस ज़माने में होता नहीं कि रिश्तेदारों में कोई देख लो लड़का अच्छा सा ढूंढ के शादी करा लो, बिल्कुल वैसा ही हुआ। हेनरियटा की शादी टॉमी से करा दी गई, और टॉमी डे उसका पूरा नाम था, तो मिस्टर डे उन्हें लोग जानते थे, और उनसे शादी करा दी गई। जब हेनरियटा पहली मर्तबा मां बनी तो हेनरियटा की उम्र थी 14 साल, महज 14 साल। ये बच्चा होम हाउस में पैदा हुआ था जहां पे दादाजी रहते थे। फिर उसके बाद उनकी एक और बच्ची हुई एलसी 4 साल बाद, और उसके बाद एक पूरी जो उन्होंने छोटी सी सेरेमनी रखी शादी की वो 1941 में रख पाए, जब थोड़ा बहुत इन्होंने जमा कर लिया था। सो जब पूरी मुकम्मल शादी की सेरेमनी हुई तो उस वक्त हेनरियटा 21 की थी और उनके हस्बैंड 25 के थे। ये लोग जो थे 1941 की सर्दियों में बहुत परेशान थे, सिर्फ सर्दी से नहीं मगर कंट्री की सिचुएशन से। सर्दियां तो थीं लेकिन हालात बहुत ख़राब थे, वॉर सिचुएशन बन रही थी, जो छोटी छोटी फील्ड्स थीं, जो खेती बाड़ी थी टोबैको की, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह थी, कमाई हो नहीं रही थी, मर रहे थे, परेशानी थी। इसलिए इन लोगों ने फैसला किया कि ये लोग शहर की तरफ जाएंगे। इनको किसी ने बताया कि नॉर्थ साइड चले जाओ, वहां पे टर्नर स्टेशन है, वहां पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, स्टील की बहुत डिमांड है, वहां चले जाओ। और बहुत सारी ब्लैक कम्युनिटी के लोग, ब्लैक फैमिलीज, वो टर्नर स्टेशन पहुंचे इन मैरीलैंड, खेती बाड़ी सब छोड़ के। उस वक्त 80 सेंट्स पर आवर मिलते थे फैक्ट्रीज में काम करने के, और ये बहुत बड़ी रकम थी उन लोगों के लिए क्योंकि इतना तो कभी देखा ही नहीं था इन लोगों ने। दरअसल स्टील फैक्ट्री में वो काम होते थे जो वाइट्स, जो गोरे लोग थे वो करने से मना कर देते थे, वो इन ब्लैक कम्युनिटी के लोगों को मिलते थे। ये सारे काम खतरे वाले थे, इसमें केमिकल्स टॉक्सिन्स शामिल थे जैसे कि एस्बेस्टोस जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और रूटीन इन सब का बहुत ख़राब हो चुका था। दिन भर फैक्ट्री में काम करते थे इन हार्मफुल टॉक्सिक चीज़ों के बीच में, उसके बाद यही टॉक्सिक चीज़ों के साथ घर जाते थे जो कपड़ों में होते थे, और फिर कपड़ों से अपने रिश्तेदारों को दे देते थे ये लोग। हेनरियटा भी टर्नर स्टेशन पहुंची, एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही थी, उनके साथ उनकी दोस्त सैडी भी आई थी। क्लीनिंग

कुकिंग, बच्चों का ख्याल रखना, ये सब हेनरिएटा करती थी। और फिर सब बच्चे जब सो जाते तो अपनी दोस्त के साथ कुछ पल चुरा के डांसिंग शूज पहन के वो निकल जाती थी घर से थोड़ा सा टाइम बिताने के लिए, और कभी कभार अपने दोस्तों को बुलाती अपने घर में, छोटे से घर में, और बिंगो खेलती थी लिविंग रूम में। उसकी बहन मार्गरेटा, हेनरिएटा और सैडी सब साथ में थे। हालांकि वो शहर में आ गई थी अभी, मगर वो बोल्ड नहीं थी। लोग कहते हैं ना शहर में आके लोग बदल जाते हैं, हेनरिएटा नहीं बदलती, उसे कंट्री साइड पे रहना पसंद था। मगर एक और मसला था, उसकी जो दूसरी बच्ची थी एलसी वो भी उसी की तरह थी। और एक और परेशानी थी, एलसी जो थी वो हालांकि अपनी माँ की तरह खूबसूरत तो थी, बहुत प्यारी थी, लेकिन बेचारी एक स्पेशल चाइल्ड थी। वो बोल नहीं पाती थी, इशारों से बात करती थी और आवाजें निकालती थी। शी हैड एपिलेप्सी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिलेज। कभी कभार होता था कि घर से एलसी भाग जाती थी रोते हुए, चिल्लाने की कोशिश करती थी, बट शी कुड नॉट। और हेनरिएटा बहुत परेशान थी। हेनरिएटा के जब हेनरिएटा का पांचवा बच्चा हुआ, तब तक एलसी जो बोल नहीं पाती थी, ये बच्चा काफी स्ट्रांग हो चुका था, अब इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। और फिर डॉक्टर्स ने कहा काम करो, जो आपकी बच्ची जो बेचारी बोल नहीं पाती, इसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, हम देख लेंगे। तो उस वक्त एक टी से रन होने वाला हॉस्पिटल था, क्राउन्सविल स्टेट हॉस्पिटल फॉर द इनसेन। फैमिली वालों के प्रेशर में आके हेनरिएटा ने माँ होने के नाते ये बहुत मुश्किल फैसला लिया, अपनी बेटी को हॉस्पिटल तो भेज दिया, लेकिन बहुत तड़पने लगी। उसे मिलने हर रोज जाया करती थी, मगर वो ये भी जानती थी कि इसके लिए सही फैसला है। मगर आफ्टर द फिफ्थ चाइल्ड, जब ये पांचवा बच्चा पैदा हुआ, तो हेनरिएटा को कुछ महसूस होने लगा अपनी बॉडी में, विच वॉज कंप्लीटली स्ट्रेंज, क्योंकि उस वक्त जो हेनरिएटा के साथ हो रहा था वो कॉन्सेप्ट बहुत नया नया था। तो अपनी उसने महसूस किया कि पता नहीं उसके पेट के पास इतना दर्द क्यों हो रहा है। एंड उसने अपनी बहन को बताया, अपनी दोस्त सैडी को बताया, सबने कहा अरे कुछ नहीं है, इट बी फाइन, खामखा सोच रही तू भी, काम नहीं करना ना तो बहान कर रही है। और इस चक्कर में वो डॉक्टर के पास नहीं गई। पर हेनरिएटा को शक था कुछ तो गड़बड़ है उसके साथ, कुछ तो महसूस हो रहा है उसे। और वो कहती थी मेरे पेट में नॉट्स से लग रहे हैं। और उसने कहा मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं बताऊंगी, मैं निकल जाऊंगी। और वो पहुंची जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल, तीन बच्चों के साथ यहां पर पहुंची जनवरी 29, 1951 में। इस हॉस्पिटल की एक खास और बुरी अच्छी बात यह थी कि यहां पर एक रिसर्च सेंटर भी था और एक पब्लिक वार्ड भी था। पब्लिक वार्ड क्यों था जानते हैं? पब्लिक वार्ड था कि गरीबों का इलाज हो सके, प्राइमरीली जो ब्लैक्स हैं उनका इलाज हो सके, क्योंकि बाकी जगहों पे ब्लैक कम्युनिटी को अलाउड नहीं था, सिर्फ यहीं पे उनका इलाज हो सकता था अगर हो पाता। बहरहाल हेनरिएटा जब इस हॉस्पिटल में पहुंची, उनकी मुलाकात डॉक्टर हॉवर्ड जोन्स से हुई, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट थे ऑन ड्यूटी। उन्होंने सुना डॉक्टर ने कि हेनरिएटा बता रही कि उसके पेट में से ऐसा लग रहा है कि मरोड़ सी पड़ रही है। डॉक्टर जोन्स ने चेक किया और फिर उन्होंने जब आइडेंटिफाई किया तो कुछ बहुत हैरान कर देने वाली चीज सामने आई। उनको पता लगा कि हेनरिएटा के अंदर एक ट्यूमर है। ट्यूमर जो था उसका रंग बड़ा अजीब था, इट वॉज पर्पलिश इन कलर और जेलो टाइप का था। और हेनरिएटा ने जिधर हाथ रखे उन्हें जैसे बताया, ट्यूमर एग्जैक्टली वहीं था। डॉक्टर जोन्स ने कहा कि तुम घर जाओ, टेस्ट करके मैं तुम्हें बताता हूं। टर्नर स्टेशन वो वापस लौट रही थी और फिर रिजल्ट का टाइम आया। जब वो वापस हॉस्पिटल आई तीन चार दिन बाद, रिजल्ट में डॉक्टर जोन्स ने बताया कि हेनरिएटा तुम्हें एपिडर्मोइड कार्सिनोमा स्टेज वन है, विच इज सर्वाइकल कैंसर, और वो तेजी से बढ़ रहा है। हेनरिएटा वॉज रियली रियली शॉक्ड और उसके चक्कर बहुत लग रहे थे हॉस्पिटल के, घर के। तो उसने फैसला किया कि वो कुछ बहाना बनाएगी शुरुआत में और बाकी छुप के हॉस्पिटल रहेगी ताकि लोग परेशान ना हो। पब्लिक वार्ड में उसको एडमिट

किया गया। और उस जमाने में पेशेंट्स पे एक्सपेरिमेंट करना बहुत आम बात थी, डॉक्टर्स पूछा नहीं करते थे। और ये जो रूल था ये हॉस्पिटल के जो मालिक थे रिचर्ड उन्होंने बनाया था। वो कहते थे कि हम मरीजों का फ्री में इलाज कर रहे हैं, तो यूं समझ लीजिए कि उन पर रचना एक्सपेरिमेंट करना ये किस्म की फीस है जो हमें दे रहे हैं। तो ये रूल कुछ लोगों के लिए गलत हो सकता है, कुछ लोग इसे सही मान सकते हैं, बट दैट वॉज इट। तो जो ट्यूमर का सैंपल था जो बहुत अजीब सा लग रहा था, वो ट्यूमर का सैंपल हेनरिएटा का स्लाइस करके लैब में भेजा गया, जॉर्ज गे लैब में। और ये जो लैब में भेजा गया सैंपल, इसके बारे में हेनरिएटा को कुछ नहीं पता था। शी हैड नो क्लू कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो तो बस अपने ख्यालों में थी और बस सोच रही थी कि सब खत्म होगा या मैं खत्म होंगी। ये भेजा टिश्यू कल्चर रिसर्च में एट हॉपकिंस। एक कॉन्सेप्ट है साइंस का कि जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, मैं जितना आसान समझाने की कोशिश करूंगा प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा, इससे आसान मैं कर नहीं सकता। हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं जो अगर हमारी बॉडी के बाहर हों तो नहीं जी सकते, मर जाएंगे। सेल का क्या होता है कि उन्हें उन पर टेस्टिंग करने का तरीका, बढ़ाने का, जिंदा रखने का तरीका, ताकि उन पर तमाम बीमारियां दवाइयां टेस्ट की जा सके। अब जब ये सैंपल हेनरिएटा का पहुंचा लैब में, तो उनकी असिस्टेंट थी डॉक्टर साहब की वहां पे, उनका नाम था मैरी। वो सैंपल उन्हें मिला, टिश्यू सैंपल उन्होंने लिया और सेल को जैसे केमिकल से मिला के रखते हैं कि चलो देखते हैं कि क्या होगा, वो कैजुअली अपने लंच पे चली गई। उसे पता था कुछ होगा नहीं, सेल्स तो मर ही जाते हैं। लंच वंच किया और आराम से टहलती टहलती वो आई और उसने फिर देखा, मगर इस बार जो उसने देखा उसे यकीन नहीं हुआ। और ये इतना शॉकिंग था कि आज तक इसका शौक है लोगों को। मैरी ने नोटिस किया कि हेनरिएटा के सेल उसकी बॉडी से बाहर आने के बाद भी खत्म मर नहीं गए, वो सेल्स इनफैक्ट डिवाइड हो रहे हैं और बढ़ते ही चले जा रहे हैं। दे आर ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। शी वाज रियली रियली शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है, बिकॉज हेनरिएटा से पहले दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ। वो भागती हुई गई डॉक्टर के पास, उन्होंने बोला डॉक्टर साहब ये क्या है। डॉक्टर साहब ने बोला यार तुम खामखा कुछ भी बोल रही हो, जाके देखा तो ये बात एकदम सच थी। हेनरिएटा के इन सेल्स को नाम दिया गया हेला, मतलब हेनरिएटा का एच ई और ला लैक्स, हेनरिएटा लैक्स पूरा नाम, और उसके एब्रीवेशन यूज करके सेल को नाम दिया गया। उन्होंने देखा चलो अगले दिन देखते हैं, सेल्स डिवाइड होने लगे। इनफैक्ट ये सेल्स अपनी कॉपीज खुद ब खुद बनाने लगे और दुनिया में पहली मर्तबा ऐसा हुआ बायोमेडिकल रिसर्च की सबसे बड़ी चीज। डॉक्टर जॉर्ज गे जो थे उन्होंने इस सेल्स को नाम दिया और साइंटिस्ट को, दुनिया भर के साइंटिस्ट को इन्वाइट करने लगे कि आप आइए एक्सपेरिमेंट करना है तो कीजिए। अब इस टाइम क्या हो रहा था ये दुनिया में आपको समझाता हूं। 1920s 30s की लोग जो थे वो कैंसर का इलाज ढूंढ रहे थे और एक ही चीज से कैंसर के सेल्स को मारने की कोशिश करते थे, वो होता था रेडियम। रेडियम क्या होता है, रेडियम रेडियो एक्टिव अपने आप भी होता है, मतलब वो ऑलरेडी खतरनाक चीज है, ग्लो करता है, देखा ना अंधेरे में चमकता है। वो रेडियम ब्लू कलर का होता था जिससे ये इलाज करने की कोशिश करते थे, मगर ये रेडियम खुद टॉक्सिक है। इससे ये लोग जब सेल्स को जलाने की कोशिश करते थे तो बहुत मुश्किल होती थी। कैंसर के सेल को मार तो देता था पर खाल को जला देता था, राख कर देता था, और क्योंकि खुद भी रेडियो एक्टिव है तो इससे भी कैंसर हो सकता था। मतलब जो चीज कैंसर के सेल्स को मार रही है वही कैंसर की वजह भी बन सकती थी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता भी था। और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट थे, नौजिया, वॉमिटिंग, वीकनेस, अनीमिया तक हो जाता था। हेनरिएटा जो इस पूरी बात से अनजान है कि उसके सेल्स ग्रो कर रहे हैं वट एवर, वो इस बात से बिल्कुल अनजान है, उसे किसी ने नहीं बताया। वो डेली चक्कर काटती थी जॉन हॉपकिंस अस्पताल के, ट्रीटमेंट चल रही थी उसकी, उसका ट्यूमर कुछ दिन के लिए मिट गया लेकिन अचानक से वो ट्यूमर वापस लौट आया। उसका जब डोमिन था वो ब्राउन से ब्लैक हो गया, रेडियम की ट्रीटमेंट काम नहीं आई एंड वो ट्यूमर उसकी बॉडी में हर जगह फैल गया। किडनीज काम नहीं कर पा रही थी, मॉर्फिन की डोज उसके दर्द को छू भी नहीं पा रही थी, उसके नसों में अल्कोहल भी डाला गया मगर कुछ भी काम नहीं आया। आखिरी सांस में उन्होंने बोला कि मेरे बच्चों का बस

ख्याल रखना। और 14 और 4 अक्टूबर 1951 पे रात को 12:15 हेनरिएटा लैक्स ने आखिरी सांस ली। उनकी बॉडी को क्लोवर भेजा गया जहां पे उनकी फैमिली वाले रहते थे, और वहीं पे एक प्लॉट में एक अनमार्क्ड ग्रेव बिना किसी रूम स्टोन के उन्हें दफना दिया गया अपनी मां के बिल्कुल साइड में। मगर उनके जो सेल्स थे, हेला सेल्स, वो मौजूद थे। उन पे मैपिंग हो रही थी, कैंसर रिसर्च एडवांस हो रही थी, ट्रीटमेंट्स बन रहे थे, बीमारियों में काम आने लगी थी। हेला सेल्स जो थे उन्हें स्पेस तक में भेजा गया, मिशंस पर, लिटरली मिशंस पर रशिया अमेरिका दोनों ने यूज किया। इन सेल्स पे ये भी देखा गया कि कौन से बॉम्ब्स इन पे काम करते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या असर आता है। और ये ह्यूमन सेल्स थे पहले इंसानी सेल इतिहास में आज तक जिनकी क्लोनिंग हुई। हेनरिएटा तो चली गई, पर उनके जाने के बाद भी बहुत कुछ होता रहा जो बिचारी के खानदान को ना उन्हें कभी पता लगा। सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या, हेनरिएटा लैक्स के जाने के बाद पोलियो एपिडेमिक आया, जिस तरीके से COVID-19 आया था वैसे ही ये वायरस फैल चुका था लोगों की रीढ़ की, जो ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें इफेक्ट करता है, फिर धीरे धीरे पैरालाइज कर देता है। सो इट वॉज इफेक्टिंग एवरीबडी। 1952 तक 60,000 से ज्यादा बच्चे इन्फेक्ट हो चुके थे, माँ बाप डरे हुए थे और कई हजार पैरालाइज हो चुके थे। और जोनस सेक नाम का एक बंदा था, उसने हेनरिएटा के सेल से ही वैक्सीन ट्राई करी और टस्की की यूनिवर्सिटी में इन सेल्स को भेजा गया। मास प्रोडक्शन हुई, एक इंडस्ट्री पैदा हुई, $multi-billion इंडस्ट्री। लेकिन किसी को ये नहीं पता, किसी को नहीं पता कि ये सेल्स जो है एक गरीब 31 साल की लड़की जिसे कैंसर था, ये उसकी बॉडी के सेल्स है, द हेला सेल्स। और इन डॉक्टर्स ने, इन रिसर्चर्स ने किसी को कुछ नहीं बताया। 20 साल बीत गए। एक जर्नलिस्ट ने जाके पूछा, डॉक्टर साहब ये बताइए ये हेला नाम क्यों रखा गया है, व्हाट इज द मीनिंग। डॉक्टर साहब एकदम चेक गए, उन्हें समझ में नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं। उन्होंने बोला हेलेन नाम था उनका। वो बहुत कांप रहा था क्योंकि उसे भी नहीं पता था या वो बताना नहीं चाहता था। जर्नलिस्ट ने इस बात को पकड़ लिया, उसे बहुत गुस्सा आया। 20 साल बाद ये पूरा का पूरा राज, जस्ट इमेजिन कि हेनरिएटा लैक्स की फैमिली को 20-22 साल बाद कॉल करके बताया जा रहा है कि सुनिए, जो आपकी बेटी थी जिसका कैंसर से इंतकाल हो गया, वो एक तरीके से हमारे लैब में जिंदा है, उसके सेल्स हमारे पास हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसकी वजह से पोलियो का इलाज हो चुका है। जहां हजारों लोग पोलियो से परेशान थे, जाने जा रही थी, वहां 10 साल में 10 केसेस आ रहे थे बिकॉज ऑफ हर। सब में बहुत गुस्सा था लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते थे। एक उनकी बेटी थी डेबरा, उसने बहुत कोशिश करी लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स छापे गए और हेनरिएटा लैक्स की फैमिली के पास इंश्योरेंस के भी पैसे नहीं थे। एक लड़की थी जो स्टोरी के लिए बहुत जरूरी, जिसका नाम था रेबेका, रेबेका सूट। वो एक मर्तबा यूनिवर्सिटी में थी और उसने नोटिस किया कि डॉक्टर साहब जो हैं, जो मेडिसिन की पढ़ाई करवा रहे हैं, प्रोफेसर साहब, वो बोर्ड पर नाम लिख रहे हैं हेनरिएटा लैक्स और कहते हैं कि ये नाम बहुत जरूरी है, साइंस की दुनिया में बहुत जरूरी नाम है। इतना ही बोल के और दो बातें करके हटा दिया। ही डिडंट मेंशन एनीथिंग, मगर रेबेका के माइंड में कुछ हुआ। उसने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब वो हेनरिएटा के बारे में मुझे थोड़ा और बताइए। लाइक व्हाई डू वांट टू नो अबाउट हर यार, हेला सेल्स हैं बस, उससे ये सब हो रहा है। नहीं, आई वांट टू नो अबाउट हर, हम क्यों नहीं पढ़ते उनके बारे में। डॉक्टर साहब पहले तो इग्नोर कर रहे थे बट उन्हें लगा कि जेन्युइनली ये लड़की जानना चाहती है, उन्हें भी शर्म आई। उन्होंने रेबेका की मुलाकात डेबरा से कराई, हेनरिएटा की बेटी से, और बहुत ही इंटरेस्टिंगली रेबेका ने सब पूछा। उन्होंने पूछा कि अपनी माँ के बारे में क्या जानती हो तुम, क्या पता है तुम्हें, उनका फेवरेट रंग क्या था, उन्हें क्या खाना पसंद था। एंड डेबरा के लिए पहली मर्तबा था कि कोई सुन रहा है, कोई जानना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल हेनरिएटा को लाल रंग पसंद था। एंड पूरी एक किताब छपी, रेबेका स्कूट ने ये किताब छापी। उसके बाद 2010 में बाकायदा एक मूवी बनी, इसमें ओपरा विनफ्रे भी है।
इन सेल्स को 6 trillion times क्लोन किया जा चुका है अभी तक, इनफैक्ट इससे भी कहीं गुना ज्यादा। इन सेल्स से कोविड 19 की वैक्सीन HVP

कि इनके बारे में किताबों में इतना क्यों मेंशन नहीं होता, अनटिल अनलेस यू रीच अ कॉलेज लेवल और आप मेडिसिन की पढ़ाई करेंगे तब जानते, बट शी इज द लेडी, आई थिंक सबको इनके बारे में पता होना चाहिए। उनके सेल्स आज भी जिंदा हैं और कई बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं आज भी। जब डॉक्टर साहब को लगा कि अब ज्यादा हो रहा है तो उन्होंने लिटरली एक टोमस्टोन गिफ्ट किया ताकि जो कब्र जहां पर उन्हें गाड़ा गया है कम से कम उस पर नाम तो हो, कोई जान तो पाए। आज की तारीख में हेनरिएटा लैक्स की कब्र पे वो टोमस्टोन है जो हॉस्पिटल ने उन्हें गिफ्ट किया। 75 साल हो चुके हैं, 75 साल उन्हें गए हुए, बट इन अ वे शी इज स्टिल अलाइव क्योंकि उनके सेल्स ओवर एंड ओवर एंड ओवर बढ़ते चले जा रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मेडिकल स्टोरीज आई हैव एवर कम अक्रॉस। आई डोंट नो आपका इस पर इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आई डू नॉट नो, मगर ये पता जरूर होना चाहिए कि ऐसे कुछ है, बिकॉज दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल। ये थी आज की कहानी और ये अब आपके हवाले। 666-222-107 नंबर है, 666-222-107, और मैं आपके मैसेजेस के इंतजार में। दोहा वाला कबीर, स्टे ट्यून्ड।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107
3: टाइम चेक। 6:15 हो चुके हैं एंड आई मतलब ऐसा कुछ हुआ है और किताबों में क्यों नहीं है। मुझे लगता है बच्चों को ये कहानी जितनी ज्यादा बताएं सुनाएं, खुद सुनाएं, मैं तो कह रहा हूँ लेट देम रीड अबाउट इट बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर मेजर डिस्कवरीज एवर। एक कॉल आ रही, उठा लेता हूँ पहले तो। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल चाल?
3: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं
4: भाई। मैं ये स्टोरी सुन के सोच रहा हूँ कि मैंने पहले क्यों नहीं सुनी ये स्टोरी कभी, मतलब मुझे ये सुननी चाहिए थी सबको यार।
3: हाँ वही ना भाई, ये कहानी पता नहीं कैसे कितनी हिडन क्यों है,
4: मतलब मेडिकल मेडिकल वाले इसमें कितना बड़ा योगदान हो गया ये
3: भाई। बहुत बहुत मेजर, आप समझ रहे, मेजर मेन चीज है ये। ऐसा भी नहीं कि एक एक बीमारी है तो उसका चलो इलाज मिल गया तो खत्म हो गई बात। दिस इज लाइक ह्यूज ब्रांड अपने आप में, मतलब वो जो 75 साल पहले चले गए जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके सेल्स कितने यूनिक हैं, पोलियो से लेकर COVID-19 तक हैज बीन यूज्ड। तो ये बहुत बड़ी बात है,
4: पूरे पूरे लोग उससे, आवाम उससे ठीक हुए उनके सेल्स से।
3: यस yes.
4: ये मामूली बात नहीं है यार, ये तो ये मेडिकल से भी ऊपर का है, ये इसका अनुमान हम लोग नहीं लगा सकते।
3: वही ना, मैं आई डोंट नो कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई, मुझे पता नहीं उसमें क्या पढ़ाया जाता है, बट आई होप ये बात पढ़ाई जाती हो। आई डोंट नो, कोई मेडिकल स्टूडेंट है तो हमारी बात सुन रहे प्लीज बताएगा, बिकॉज आई डोंट नो कि किताबें
4: हैं। मैं तो जरूर अपने कजन से सबसे पूछना चाहूंगा कि मेडिकल लाइन में क्या आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है या फिर इस वैक्सीन के बारे में जानते हैं।
3: हाँ ये जरूर जरूर पूछो,
4: ये बहुत मतलब, और वो उनसे कुदरत का निजाम देखो भाई, वो चीज उनके बॉडी के अंदर और वो नहीं ठीक हुई।
3: हाँ वो नहीं ठीक हुई बेचारी, वो बिल्कुल ठीक नहीं हुई,
4: लेकिन उनके सेंस ने कितने

0: लोगों को ठीक किया, कितना मतलब किस किस चीज का इलाज निकला, पोलियो yes. का, किसका उसका वैक्सीन पड़ता है, अभी भी सब बच्चों को पड़ता है, हम लोग को पड़ता
1: yes.
0: है
1: yes. आज तक क्योंकि वैक्सीन तो लगती है ना, एंड ये कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में उनके आज भी सेल्स जो है मल्टीप्लाई किए जाते हैं, डिवाइड किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, और क्योंकि पहले मुश्किल होता था ना मंकीज पे ट्राई करना ये सब, बट बिकॉज ऑफ हर सेल्स आसान हुआ, पोलियो का वैक्सीन तैयार हो चुकी है.
0: पहले तो चीजें वाकई में मुश्किल थी, क्योंकि उस हिसाब से इक्विपमेंट्स नहीं थे, उस हिसाब से नॉलेज नहीं था, लेकिन अभी अगर ये होता तो हाँ मशीनरी है, सब कुछ है, अभी इजली करता, लेकिन उस हिसाब से और उस जमाने में ये चीज कर लेना वो भी बहुत एक बड़ी बात है. और मेडिकल वालों को भी चाहिए था कि थोड़ा उनपे और उनके परिवार पे ध्यान.
1: हाँ बिल्कुल, मतलब ये सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज, जैसे एक भाई ने मुझसे पूछा कि स्टोरी यहाँ तक, पर इसके बाद फैमिली का क्या हुआ, फैमिली का भाई दे डिड नॉट गेट एनीथिंग, एक रुपया नहीं मिला उन्हें इस चीज़ का. इनफैक्ट बस वो जो हेनरिएटा लैक्स की जो कब्र है, जो टूम्बस्टोन है, बस उस पर नाम उन्हें लिख के दिया गया, वो भी आउट ऑफ गिल्ट. ये नाम भी बाहर नहीं आता अगर जर्नलिस्ट कोशिश ना करते, बट बिकॉज ऑफ द बुक वाज आउट. और
0: जैसे अपने अपने इंडिया में जैसे हिस्ट्री में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स है, मेन मेन लोगों को सब जानते हैं, लेकिन उनके साथ जो जो खड़े थे वो उन लोगों को स्टोरी सुनने के बाद लोग जान पाते हैं.
1: करेक्ट करेक्ट, वही सेम बात है भाई,
0: यही हाल इनका भी इसी हिसाब से हुआ. ये बहुत मतलब यार, और आप कैसे बोल रहे हो कि ये स्टोरी किसी को पसंद नहीं आएगी, भाई ये पसंद वाली बात नहीं, ये इतनी शॉकिंग स्टोरी थी यार, ये तो मेरी एक और फेवरेट स्टोरी हो गई.
1: थैंक यू सो मच भाई, मेरी फेवरेट स्टोरीज में से एक है भाई, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट भाई.
0: तो इसका मतलब यार ये एकदम रियलिस्टिक मेडिकल है, और मेडिकल में तो चमत्कार होते रहते, लेकिन इस कदर ये चमत्कार हुआ है, ह्यूमन के बॉडी से वो सेल्स निकला.
1: यस यस, ये पूरी लिस्ट है भाई उनके सेल्स, और उन्होंने कितनी वैक्सीनेशन बनाई है, बहुत कुछ है.
0: कितनी वैक्सीनें बनी, किस किस को पड़ी, हम लोग को भी पड़ी हो, शायद पड़ गई हो,
1: ऑफकोर्स
0: पड़ी होगी,
1: ऑफकोर्स
0: तो नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगी,
1: 10,000% भाई. तो वही है, मैं लिटरली अगर कोई हमें सुन रहा है, कोई मेडिकल स्टूडेंट है, तो प्लीज हमें बताएं कि आपकी किताबों में है ये नहीं, क्योंकि मुझे हैरानी होगी अगर ये मेडिकल की किताबों में नहीं है, तो आई विल बी रियली रियली शॉक्ड.
0: बिल्कुल शॉक, कोई भी शॉक हो जाए मैं तो जरूर पूछूंगा भाई, अगर इसके ऊपर कोई बुक है तो मैं मैसेज कर रहा हूँ, बताना, मैं इसके बारे में और पढ़ना चाहूंगा.
1: बिल्कुल पढ़िए भाई,
0: क्यूरियोसिटी है, मैं जानना चाहता हूँ और.
1: बिल्कुल पढ़िए, नाम हेनरिएटा लैक्स, प्लीज पढ़िए, हेनरिएटा लैक्स नाम है उनका, और मिल जाएगा.
0: बिल्कुल भाई, मैं और ये तो भाई मैं और शेयर करने वाला हूँ भाई, ये यहीं अब नहीं रुकेगा.
1: थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत बहुत खुशी हुई मुझे कि आप लोगों का.
0: बहुत बढ़िया स्टोरी भाई, बहुत बढ़िया,
1: जज़ाकअल्लाह मेरे भाई,
0: शुक्रिया भाई बताने के लिए, सो सो थैंक यू. सही में ये चीज से तो हम लोग अनजान थे भाई, पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है.
1: बिल्कुल,
0: अभी और क्या क्या चीज से अनजान है मालूम नहीं,
1: बहुत कुछ आएगा भाई अभी. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत
0: शुक्रिया
1: भाई. ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़. और भाई के बाद एक कॉल भी है, वो भी ले लेता हूँ मैं, एक सेकंड. अच्छा ओके, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम, हेलो.
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. और जनाब खैरियत से हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई, एकदम शानदार. आप सुनाइए.
2: अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया भाई. भाई अगर आप नहीं होते तो हमें तो किसी चीज के बारे में पता ही नहीं चलता.
1: तो भाई मैं क्या बताऊं, मैं खुद रिसर्च करके भी कहां तक पहुंच चुका हूं, मुझे ही पता है
2: भाई, तुम तो गलत फील्ड में हो.
1: नहीं भाई शुक्रिया भाई, जज़ाकअल्लाह. चलो काम आई कहानी, मुझे लगा था लोगों को बोरिंग लगेगी.
2: अरे नहीं बोरिंग नहीं, हम तो इस चीज में कंफ्यूज आ रहा है कि दूसरे का सेल्स हमारी बॉडी में घूम रहा है, हमें पता ही नहीं.
1: भाई ऐसा ही है, मैं खुद बड़ा शॉक था जब इनके बारे में मुझे पता लगा, फिर मैंने कि इनकी किताब की ऑडियो बुक सुनी, जो कि अच्छी खासी लंबी ऑडियो बुक है. बट आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, मैंने कहा ये तो मैं सुनाऊंगा जरूर. बड़ा मुश्किल था एक्चुअली, मैं 1 घंटे की डिटेल से पढ़ा टू चेक इट डाउन.
2: भाई हैट्स ऑफ टू यू, जो आप इतनी मेहनत करते हैं भाई, और जो जो अनदेखी अनसुनी चीजें आएंगी और जो हमें पता ही नहीं जिस चीज के बारे में, वो आप जो है ना प्रेजेंट करते हैं, लेकर आते हैं, बताते हैं,
1: थैंक यू सो मच.
2: हमें पता चलता है उस चीज के बारे में, नहीं तो हमें कहाँ पता है कि भाई दूसरे का सेल्स हमारी बॉडी के अंदर घूम रहा है.
1: नहीं भाई, थैंक यू सो मच मेरे भाई, मैं बहुत खुश हूँ कि आज इस चीज से कामयाबी मिली. और ये उम्मीद है,
2: बहुत बढ़िया यार. नहीं कबीर भाई बहुत बढ़िया स्टोरी, एकदम पॉइंट ब्लोइंग भाई, जबरदस्त.
1: जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भेजूंगा आपको.
2: टू यू मेरे भाई,
1: थैंक यू भाई, बहुत प्यार भाई को. भाई मैं बड़ा नर्वस था, मैंने कहा पता नहीं लोग लेगा बोरिंग कहानी है मेडिकल की, पर चलो अच्छी बात है.
2: ना ना अच्छी कहानी है, बढ़िया, बोरिंग नहीं है, जबरदस्त है भाई, क्योंकि दूसरों की जानकारी के लिए भी बहुत जरूरी है कि किस चीज से कहाँ से कहाँ चीज पहुंची है.
1: नहीं
2: भाई ये जरूरी कहानी है, बोरिंग नहीं है, बहुत एक्सीलेंट है, बहुत बढ़िया है.

0: 것인 경우야. 바이 파울로.
1: Thank you so much, brother. Bhai. Thank you so much, brother.
0: Okay, thank you,
1: brother.
0: Bhai.
1: Allah Hafiz. Allah Hafiz. और भाई का बहुत-बहुत शुक्रिया जयस भाई का. इनके बाद एक मेडिकल स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे मैसेज किया है. डॉक्टर अहमद सभी साहब हैं, वो लिखते हैं कि अमेजिंग स्टोरी ब्रो, वी नेवर हर्ड रेड इन दिस आर मेडिकल दिस इन एनी ऑफ आर मेडिकल बुक. सलूट टू यू फॉर स्प्रेडिंग द नॉलेज. भाई मेडिकल स्टूडेंट से तारीफ मिल गई है. मैं आज जंग जीत गया हूँ. सीरियसली मैं बता रहा हूँ, आज लिटरली लग रहा है मैंने ट्रॉफी उठा ली है. थैंक यू सो मच. दो तीन और मेडिकल स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया है एंड दिस इज सच अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी. थैंक यू सो मच कि आप लोगों की फील्ड की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी, ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है. आज तो आया होगा जश्न मनाएगा बाल्टे. बाकी बहुत सारे मैसेज आई एम गोना रीड देम ऑल. अभी अजान का वक्त है तो इंशाल्लाह उसके बाद मिलेंगे. क्या खूबसूरत वक्त है मगरिब का और भी इतने सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं. थैंक यू सो मच टू ऑल द मेडिकल फ्रटर्निटी जिन्होंने मैसेजेस किए. मुझे ग्रुप में भी मैसेज आया है, उन्होंने बना के मैसेज किया. हाउ स्वीट ऑफ यू. थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग बहुत बहुत प्यारे. मिलते हैं कुछ देर में, जाना नहीं है आपने. इंशाल्लाह अजान के बाद आपसे मुलाकात होगी और इस बारे में जरूर बात करेंगे. बट इंडीड इट वॉज वन ऑफ द शॉकिंग स्टोरीज एंड आई वॉज equally shocked, trust me on this. मैं तो हैरान था कि ऐसा भी कुछ है. खैर आप सबकी मुलाकात, जाना आपने ही नहीं. और 666-221-07 मैसेज करते रहिए बिकॉज आई एम गोइंग टू सेंड द स्टोरी एंड जब आपके पास पहुंचेगी तो उतने ही आगे पहुंचाइएगा. ओके, सो स्टे ट्यून्ड.

आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से

0: देसी।
1: भाई साहब इतना प्यार मिल रहा है आज की कहानी के बारे में, रियली रियली हैप्पी। एक बहुत स्वीट सी आवाज में मुझे मैसेज भी आया, बच्चों के भी मैसेजेस आए। आई एम सो ओवरवेल्म, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत सारा प्यार, आई जस्ट कैन नॉट, आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। थैंक यू, थैंक यू। अभी बहुत सारे आपके मैसेजेस हैं, आई एम गोना रीड देम। इसलिए खूबसूरत सा गाना, येलो डायरी, तेरे जैसा और दस्ता।

0: हाँ जी, सो 6:33 बाय द क्लॉक एंड आते के साथ ही कॉल्स आ रही हैं। मुझे एक कॉल अभी उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है मेरे भाई?
1: पहले वाला ही नाम है भाई, हमजा ही हूँ।
0: हाँ हमजा भाई, बताइए क्या कहना चाहते हैं पहले वाले?
1: ये दोस्त मेरा, उसका नंबर है
0: अच्छा बताओ।
1: तो इस वजह से।
0: हाँ भाई हमजा भाई, कहिए
1: भाई
0: क्या?
1: पहले तो सीरियस बात करने से पहले एक मैं आपसे थोड़ी सी जस्ट फॉर फन,
0: जी
1: ये क्या बात हुई ये आपके हवाले? ये तो वो वाला सीन है जिस वक्त वो विदाई नहीं हो रही थी लड़की की, तो उसके घर वाले बोलते हैं ये लड़की अब हमारी तुम्हारे हवाले।
0: हवाले हवाले कौन से कि अब आप देख लें भाई ये कहानी का क्या करना है, आपने शेयर करना है, पसंद करना
1: स्लो
0: है, क्या
1: मोशन
0: करना
1: में बोलते हैं वो वाली भाई बात की है यार कबीर भाई।
0: तो इस कहानी का हाथ आपके हाथ में दे दिया, बस ये समझ लीजिए जी। बताइए मेरे भाई।
1: यार कहानी बड़ी इंफॉर्मेटिव रही,
0: हाँ
1: लेकिन अफसोस ये रहा कि अभी तक जो है उनको जो है लेडी उनका कोई जाना आता पता या उनकी फैमिली को कुछ भी नहीं मिला,
0: कुछ भी
1: जहां से
0: नहीं।
1: इन्होंने इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए हैं,
0: हाँ
1: तो उनके साथ भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज चलना चाहिए था।
0: बस इन्होंने कम्युनिटी बनाई थी बाद
1: और
0: में कि जब भी कोई आगे जाएगा तो उनको उनसे परमिशन ले जाएगी, बट दैट इज ऑफ नो यूज। उनको इतना फायदा नहीं हुआ जितना फायदा पहुंचना चाहिए था। सो दैट इज द ओनली सैड पार्ट, मगर बहुत यूनिक स्टोरी
1: चलो,
0: है। यस
1: कुछ ना होने से होना बेहतर, उनको बोलो शुक्र अदा करो कुछ तो मिल
0: हाँ कुछ तो है,
1: रहा
0: क्योंकि बहुत
1: हाँ,
0: बड़ी
1: नहीं
0: बात
1: तो
0: है।
1: ये जालिम दुनिया कुछ भी नहीं लेने देती भाई।
0: बेशक भाई बेशक बेशक। सो
1: लेकिन
0: हाँ
1: मजा आया, इंफॉर्मेटिव चीज थी, आपने हमारे लिए मेहनत की, हमें बताया, हमें
0: थैंक यू
1: पता
0: मेरे
1: चला।
0: भाई भाई पूरे
1: सबसे मजे की बात ये पता चली कि
0: हाँ
1: बाकी वो जो मूवीज के मैंने कुछ एक क्लिप देखे थे, वो है ना साइंस की जाना रिसर्च चल रही थी, उसमें ना बहुत छोटी सी वो मक्खी सी होती है जो मेरे ख्याल से भालू उनको एक मिलता है तो उसमें लेके जाते हैं, और
0: हाँ
1: भालू अगले दिन पूरा मींस के खत्म हो जाता है, वो खा जाती है मक्खियां,
0: हाँ
1: तो मक्खियां थी वो इस तरह डिवाइड हो रही थी। तो आपकी कहानी स्टार्टिंग में ना शुरू में सुन के मेरे जहन में वही घूम रहे थे, यहाँ देखो यहाँ कैसे डिवाइड हो गया
0: कहाँ
1: भाई।
0: कनेक्ट किया है भाई, कहाँ कनेक्ट किया, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था भाई। वाह
1: यार
0: वाह।
1: मूवी का मैंने क्लिप देखा था, वो
0: हाँ
1: हॉलीवुड बोलते हैं बॉलीवुड बोलते हैं
0: हाँ
1: जो वो
0: हॉलीवुड।
1: अंग्रेजों की है, खुद
0: हाँ
1: की है
0: हाँ
1: हाँ
0: हॉलीवुड। हाँ
1: उनका, वो
0: अच्छा
1: उसमें दिखाते हैं कि उनको एक ना वो बियर मिलता है
0: हाँ
1: ठीक है बर्फ
0: हाँ
1: के, उसमें वो अपनी लैब में लेके जाते हैं, वो एक लड़के को उसके हाथ से जना जहाँ उसको चोट लगी होती है
0: हाँ
1: तो लड़के को कट कर लेता, तो कट करने के बाद वो लड़का बाद में जब देखता है उसका हाथ भी खराब हो रहा होता है,
0: हाँ
1: तो पहले तो ध्यान नहीं देता, बाद में फिर वो अपना इसके बिहाफ पे काटता जिस तरह, तो भालू के आला देखता है ना,
0: हाँ
1: नहीं भाई अपने को हाथ नहीं चाहिए जान चाहिए, तो हाथ को काटता
0: भाई लेकिन इस पे भी मूवी है, जरूर देखना। हेनरियटा लैक्स के नाम से ही है शायद, 2010 की मूवी है, ओपरा विनफ्रे की है। तो अगर देखना चाहो तो
1: चक्कर
0: देखना,
1: में।
0: अच्छी मूवी है, इस पूरे के पूरे उनके केस पे बनी हुई है।
1: चलो
0: ठीक है
1: अच्छा
0: मेरे
1: लगा, और आज मैंने बता दी ना कि वाइफ भी हमारी तुम्हारे हवाले, तो आपके
0: भाई
1: बोलने का अंदाज बड़ा मजे का, ये
0: थैंक यू,
1: लड़की अब हमारी तुम्हारे हवाले।
0: बिल्कुल तुम्हारे वाले मेरे भाई, ख्याल रखो इसका, भेजूंगा मैं जरूर।
1: ओके
0: ठीक
1: खुश
0: है मेरा भाई,
1: रहो, लेकिन मजा आया, थैंक यू फॉर
0: जजाक
1: द
0: अल्लाह मेरे भाई।
1: स्टोरीज,
0: हाँ
1: क्या आप इतनी मेहनत करते हो
0: थैंक यू
1: निकालते हो।
0: थैंक यू मेरी जान,
1: कुछ
0: बहुत बहुत
1: ऐसे लोग भी
0: शुक्रिया।
1: हैं जिनको बिल्कुल ही नहीं मीन्स के वो नेट की दुनिया से नहीं जुड़ते हैं, तो वो आपकी आवाज के जरिए सुनते हैं, तो वो उनके लिए
0: जजाकल्लाह
1: बहुत इंफॉर्मेटिव चीज होती है,
0: थैंक यू
1: और
0: मेरे
1: कुछ जो
0: भाई।
1: है वो रिसर्च पे चलते हैं, तो चलो वो तो फिर सही है कि ठीक है देख रहे हैं चीजें,
0: हाँ नहीं
1: लेकिन
0: बस
1: जिनको नहीं
0: शुक्रिया
1: पता उनके लिए बहुत बहुत फायदेमंद।
0: शुक्रिया मेरे।

0: भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया बात करी
1: आपने। जी खुश रहो।
0: खुश रहिए मेरे भाई।
1: ओके अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। और भाई के बाद एक मैसेज आया मेरे पास, इनफैक्ट एक कॉल भी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भजन क्या हाल है आपके?
0: अरे तला भाई क्या हाल, मैं तो बढ़िया, आप सुनाइए क्या हाल है?
2: भाई क्या करा तुमने आज?
0: क्या किया,
2: क्या किया तुमने आज?
0: क्या किया बताओ,
2: मतलब मजा ही नहीं आया।
0: आज मजा नहीं है, आज आज कोई वैसे नहीं टपका है। देखो मैं आज आज माहौल थोड़ा सा एकदम गुनगुना सा कर दिया इसलिए।
2: अरे नमक वाला कर दिया भाई,
0: है ना? सुनी आपने कहानी? नहीं सुनी
2: हमारे भाई, कहानी सुनी मैंने आज लकीरी में, पूरे रोड पे ही था तुम्हारे चक्कर में।
0: हाँ।
2: तो रोड सड़क पे आ गया हूँ, तुम्हारी दोस्ती सड़क पे आई है।
0: अच्छा अपनी नई गाड़ी में से निकले, पुरानी गाड़ी में निकले?
2: अरे नहीं यार, नहीं निकालती आपको भाई, नहीं पकड़े।
0: अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे ये कहानी मुझे
2: एस्टिमेट कर दो भाई को यार।
0: हैं अच्छी पहचान है, अच्छी पहचान है। पर मुझे सच में लगा आज की कहानी, मुझे लग रहा था, मैंने कहा पता नहीं लोग कहेंगे मेडिकल स्टोरी कहाँ से शुरू हो गई है, और तो थोड़ी सी वो ना हो जाए, ल्यूक वार्म ना हो जाए, क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ ज्यादा ही थ्रिलर सुना दी थी, तो एकदम से टेम्परेचर बदलना पड़ा मुझे।
2: क्या
0: मैं तो बड़ा शॉक था, मैंने कहा इनके बारे में मैंने पढ़ा कैसे नहीं, चलो मुझे छोड़ो मेडिकल स्टूडेंट से नहीं पढ़ा, ये कैसे हो गया यार?
2: बताऊँ एक चीज भाई, जैसे एविएशन के पीछे पढ़ा तो हाथ धोगे, अल्लाह का वास्ता है पीछे हाथ धो के नहीं पढ़ना।
0: क्यों डर लग रहा है डॉक्टर बन गया तो?
2: ये वंस इन अ ब्लू मून आई है ना, ये किक करके गई है, ये इसमें ये ध्यान पे रहेगी लोगों के जिन्होंने सुनी है। अगर भाईजान
0: एविएशन का तो भाई मैं बता रहा हूँ, जहाज को स्टार्ट करना बिल्कुल सीख गए, इतने बटन पता लग गया को भाई साहब, अब तो अंधाधुन गाने सुनाता हूँ, अंधाधुन, अब तो पूरा भरोसा है कि सही ही कह रहा हूँ मैं, वैसी वाली पीनी आने लगी है।
2: बताओ सही और गलत का नहीं है।
0: हाँ।
2: आप बोलते जिस कॉन्फिडेंस से ना,
0: हाँ,
2: वो सही लगता है।
0: अच्छा
2: समझ रहा बात को?
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
2: मतलब अभी समझ में आ जाए तो बड़ी बात है, लेकिन जो तरीके
0: लेकिन
2: मुझे मजा नहीं आया
0: माहौल थोड़ा सा हो गया,
2: समझ नहीं आ रहा मैं किस बात पे लूं, मतलब खिंचाई किस बात पे लूं।
0: वही ना, देखो यहाँ आज मैंने फंसा दिया भाई साहब, आज लूडो में 2-6 आ गए।
2: मतलब आज तुमने बताऊं क्या किया है?
0: क्या?
2: तुमने बंदी मार तो दी,
0: हाँ,
2: जिंदा रखा तुमने।
0: हाँ ये देखो उल्टा खेल गया मैं, कैसे बोलोगे आप मुझे बताओ।
2: तुमने जो ना ये गलत किया, ये तुमने ओनो रिवर्स कर दिया आज।
0: यही तो करना चाह रहा था मैं, थैंक यू। एग्जैक्टली। अच्छा ये अभी आपके लिए एक मैसेज आया, कह रहे हैं तला भाई को सलाम मेरा, ये आकिब साहब कह रहे हैं फ्रॉम कराची।
2: भाई बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया भाई। यार तुमने नंबर नहीं दिया बंदे को कल यार मेरा।
0: मैंने नंबर दे दिया उन्हें आपका, दे दिया मैंने।
2: कैसा आदमी है, टोपी वाला आदमी, उससे कॉल नहीं करी ना मैसेज
0: भाई, वो उन्होंने टोपी बनाई है, मैंने थोड़ी बनाई। मैंने तो दे दिया भाई,
2: उसी को बोलता
0: हूँ। हाँ वो करेंगे, करेंगे कॉल करेंगे, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। मुझे
2: भाई ये बताओ मेरा भाई, कब खिलाओगे?
0: खिलाएंगे। इस हफ्ते बस एक थोड़ा सा काम है, वो निपटा दें फिर खिलाते
2: हैं।
0: नहीं नहीं, इंशाल्लाह खिलाएंगे, बिरयानी जरूर खिलाएंगे।
2: मैंने मोजिन पकड़ लिया मैंने।
0: हाँ क्या?

0: नाम की बिरयानी।
1: नहीं नहीं नहीं ऐसे एजेंट एजेंटों के थ्रू मत कहो, मैं खिलाऊंगा मैं ही खिलाऊंगा। अरे
0: उनसे तो मैंने
1: दुआ लो, अभी पता लगा मैंने गलत इंसान को आपका नंबर दे दिया है तभी आपको कॉल ली। अरे रे रे ये क्या हो गया, अब आएगी कॉल, दे दिया अब सही आदमी का नंबर गया है।
0: ये बताओगे कहानी, ये पीछे सवाल ही, अरे तुम्हें वो बोल रहे क्या बोल रहे हैं,
1: क्या बोल रहे कौन है आप। अच्छा वो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ठीक है मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, तला भाई ख्याल रखे अपना, जितना सुना इससे पता चला कि दुनिया की सब भाग दौड़ पैसे की है। भाई अब्दुल रहमान भाई यही खेल है। तो सिगरेट और इकरम भाई लिखते हैं, उमीन भाई लिखते हैं कि कबीर भाई स्टोरी तो VIP है बट एक क्वेश्चन है मेरे से, किसी ने पूछा कि आप इन्फ्लुएंसर क्यों नहीं बन जाते, आप बताएं कि आप इतना अच्छा समझा भी लेते हैं बोल लेते तो आप इन्फ्लुएंसर क्यों नहीं करते। मोमिन भाई आई विल कम यार, आई हैव टू डू इट बिकॉज मेरे घर पे जो है बहुत ज़्यादा इस बात पे बवाल चल चुका है कि तुम वीडियो पे क्यों नहीं आते। ऐसा नहीं कि मैं कोई शर्मिला हूँ, मैं कोई शर्मिला नहीं हूँ, वीडियो पे आने मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आलस था बस आ जाऊँगा मैं। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ शेयर दिस वर्जन ऑफ द स्टोरी। एक भाई ने लिखा है कि दिस इज़ अ वेरी नाइस स्टोरी अलॉन्ग विद गुड नरेशन बट आई मिस द बिगिनिंग, नो प्रॉब्लम हो। एक मैसेज अमन भाई का, अमन भाई थैंक यू। फिर एक भाई लिखते हैं डॉक्टर आरजे कबीर। और एक मैसेज है, अमेजिंग स्टोरी, वी नेवर हर्ड रेड दिस इन एनी ऑफ आर मेडिकल बुक्स, थैंक यू सो मच। आपका भी उसमें मैंने मैसेज किया, इनफैक्ट उन्होंने अपनी अपने बच्चों से मैसेज करवाया, थैंक यू सो मच, इतनी स्वीट आवाज़ में। कलीम रैन साहब लिखते हैं नाइस स्टोरी, थैंक यू। एक बात भाई ने लिखी है कि अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, एक दिल है कितनी बार जीतोगे, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी। एक बात है कबीर जान, आपके प्रोग्राम में लगता है स्कूल की लाइफ में हूँ, सब्जेक्ट स्टोरी, टीचर कबीर, टीचर कबीर इकबाल भाई बहुत सारा प्यार भाई, थैंक यू सो मच, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। तौकीर अहमद भट्ट साहब लिखते हैं शॉकिंग स्टोरी, कमाल भाई, थैंक यू भाई। एक मैसेज है समीर भाई का, लिखते हैं हर एक को पता होनी चाहिए ये स्टोरी, थैंक यू सो मच भाई, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच। फलक भाई लिखते हैं जबरदस्त स्टोरी। इनके बाद कबू भाई सेड सेंड स्टोरी, स्टोरी डेली किसी और को सेंड करता हूँ और वो भी सुनती हैं, आए जरूर सेंड करूँगा भाई। कह रहे हैं डेली दानिश भाई, कह रहे हैं किसी को सेंड करता हूँ, ज़रूरी है, वो भेजूंगा भेजूंगा, क्यों नहीं भाई, आपके लिए ज़रूर। बिन के अस्सलाम वालेकुम, कहानी बच्चों को जानना बेहद ज़रूरी है भाई, बिल्कुल, ये जो मैं कहानी भेजूंगा बच्चों को ज़रूर भेजें। ये सैफुल्ला भाई ने मैसेज किया है, फरद भाई वालेकुम अस्सलाम, ड्यूटी चेंज हो गई आपकी, आई कैन अंडरस्टैंड। वेस साहब लिखते हैं थैंक्स फॉर प्रिपेयरिंग नरेटिंग स्टोरीज फॉर अस एंड देन शेयरिंग रिकॉर्डिंग एज वेल, बिल्कुल भाई मेरा तो फर्ज है। और एक मैसेज है व्हाट अ स्टोरी ब्रो, वेयर यू पिक दिस बिकॉज ऑफ यू नाउ वर्ल्ड विल गेट टू नो अबाउट हर, हाउ इज शी स्टिल हेल्पिंग द वर्ल्ड। ये आरिफ भाई कह रहे हैं कहाँ से ढूंढी स्टोरी, बाई इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी, मैं मेडिकल स्टोरीज बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, कुछ अच्छा कुछ मिले, देन दिस केम अप, और फिर एक किताब के बारे में मुझे पता लगा, देन आई हैड टू ऑडियो लिसन टू द होल बुक, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, परफेक्ट टाइमिंग भाई, थैंक यू सो मच। और जकी भाई ने लिखा है वॉट एन अमेजिंग स्टोरी, थैंक यू सो मच आप सभी का। अहमद अकरम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, तो इतने सारे मैसेज मैंने पढ़ने, कोई मिस हो गया हो तो मैं पहली माजरत चाहता हूँ, बट एम के साहब थैंक यू, नहीं मैं स्टोरी कुछ देर में भेज दूंगा, बेफिक्र हो जाए, अब ज़रा माहौल को चेंज किया जाए भाई। इस गाना जो मैं चलाने वाला हूँ उसमें एक लाइन है, मैं उसके लिए चलाता हूँ इसको, दुश्मन चाहे बेटी की हो मारे घर महफूज मिलेगी भाई, अंधी अंधी बचा दी भाई, अंधी ये लो 646 Dana Nioli Yala.

शाबाशी मिलेगी पूरी। भाई साहब एक खबर आ गई है बढ़िया वाली। ये कतर मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट वाले न्यू कह रहे हैं, सुनो म्यूजिक रुक दो, बहुत गहरी बात है। ये कह रहे हैं भाई साहब कतर मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट वाले कि 29 तारीख को और 30 तारीख को, बुध को जुमेरात को, कह रहे हैं कुछ जगहों पे बारिश हो सके है। भाई बताइए, भरी गर्मी में कितनी बढ़िया खबर दी मैंने आपको, बस इनकी प्रेडिक्शन सही हो जाए। तो डिपार्टमेंट जो है उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, उन्होंने बाकायदा बताया कि कंट्री में एक्सपेक्टेड है इस गर्म मौसम में, तपते मौसम में लोकल जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, वो टहलते टहलते आ सकते हैं और हो सकता है कि टेम्परेचर थोड़ा सा वेरी करे। तो ये दोहा में सईद और वकरा अलखोर इन तरफ थोड़ा 40 के आसपास रहेगा, बाकी वो समरा और दुखन के आसपास, दुखन के आसपास 2-3 डिग्री नीचे चला जाएगा टेम्परेचर। मगर कुछ कंडीशन ऐसी पैदा हो सकती है कि थोड़ी बहुत बारिश फारिश हो जाए, तो इसकी पूरी उम्मीद बना के रखिए। इसके अलावा कतर का जो 11th लोकल डेट फेस्टिवल है वो ऑलरेडी अपनी बज बना रहा है, दो इनफैक्ट 20 आर विजिटर्स और 41 टन लोकली ग्रोन डेट जो है वो 3 दिन में तैयार कर दिए गए हैं मार्केट में पहुँचाने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपैलिटी ने इसके बारे में बात करी है एंड तैयार हो जाइए इस चीज़ के लिए भी। इफ़ यू हैवन बीन टू अ लोकल डेट फेस्टिवल एवर इन कतर, ये आपके पास मौका है। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, और अभी मुझ पे इल्ज़ाम लगा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्यों नहीं बन जाते जब इतनी कहानियाँ सुना रहे हो, बन जाएंगे, मन नहीं पड़ेगा। आप लोग देखो, अब आपके चक्कर में हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो बनने निकल पड़े, सपोर्ट पूरा चाहिए भाई, साफ सीधी बात। तो 666-22-107 ही नंबर है, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, आप मुझे भी ढूंढ सकते हैं, दोहा वाला कबीर KABIR.FM107। दिस इज़ कबीर साइनिंग ऑफ, इंशाल्लाह अब आपसे कल मुलाकात होगी एक नए किस्से कहानी के साथ। और अभी वाली कहानी कुछ देर में आ रही है, चाय पीते पीते भेजते हैं। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मां सलामा।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी.
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम बैक टू इको स्विच विद सफा ऑन FM 107, जहां हम बात करते हैं उन सिंपल आइडियाज की जो हमारी डेली लाइफ को ज्यादा सस्टेनेबल बना सकते हैं. भाई देखिए, आज का टॉपिक है यूजिंग रिफिलिंग स्टेशंस, यानी के एक ही कंटेनर को बार बार रिफिल करना इंस्टेड ऑफ हर बार नई बॉटल या पैकेजिंग खरीदना. देखिए हम अक्सर सुपरमार्केट जाते हैं और शैम्पू, हैंड वॉश, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स या वाटर बॉटल्स खरीदते ही हैं, है कि नहीं? ये तो डेली लाइफ की चीजें. प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, बॉटल डस्टबिन में चली जाती है और हम फिर से क्या करते हैं, एक नई बोतल खरीद लाते हैं. अच्छा, इको स्विच हमें एक सिंपल सवाल पूछता है, अगर सिर्फ अंदर का प्रोडक्ट खत्म हुआ है तो भाई पूरी पूरी बॉटल क्यों दोबारा खरीदनी? अच्छा जरा सोचिए, दोहा में एक फैमिली है जहां हर महीने शैम्पू, डिश वॉशिंग लिक्विड, हैंड सोप और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स खत्म हो जाते हैं. ये तो नॉर्मल सी चीज है, हर बार नई प्लास्टिक बॉटल्स घर आती हैं और पुरानी बॉटल्स ये जा डस्टबिन के अंदर. साल के एंड तक अगर देखा जाए तो एक ही घर से डजंस ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स कलेक्ट किए जा सकते हैं. अब हम इमेजिन करें कि अगर वही फैमिली एक स्ट्रॉन्ग रीयूजेबल बॉटल रखे और प्रोडक्ट रिफिल करवाए, तो भाई प्रोडक्ट भी मिल गया, पैकेजिंग वेस्ट भी कम हो गया. ये है इको स्विच का सिंपल सा आइडिया, यानी कंज्यूम करें लेकिन अननेसेसरी वेस्ट क्रिएट ना करें. अच्छा भाई, अब आपको ना चलते चलते कुछ इंटरेस्टिंग सरप्राइजिंग से फैक्ट्स बता देती हूँ. देखिए दुनिया भर में हर साल आप कह लें कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ टन्स प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है और सिंगल यूज पैकेजिंग इसी का बड़ा हिस्सा है. अच्छा, एक प्लास्टिक बॉटल या कंटेनर को बनाने में रॉ मटेरियल्स, एनर्जी और वाटर, जो पानी होता है ना, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. अगर एक ही कंटेनर को मल्टीपल टाइम्स यूज किया जाए तो भाई हर रिफिल के साथ नई पैकेजिंग की जरूरत कम हो जाती है. अच्छा, रिसर्च के मुताबिक रीयूजेबल कंटेनर्स अगर प्रॉपरली मेंटेन किए जाएं तो डजंस या हंड्रेड्स ऑफ सिंगल यूज कंटेनर्स रिप्लेस किए जा सकते हैं. और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि रिफिल सिस्टम सिर्फ प्लास्टिक कम नहीं करते बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन इमिशन भी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं. अच्छा साथियों, कतर में रिफिल कल्चर अभी कुछ कंट्रीज की तरह वाइड स्प्रेड नहीं हुआ, ये मैं मानती हूँ, लेकिन सस्टेनेबिलिटी अवेयरनेस के साथ साथ ये कॉन्सेप्ट ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है. कुछ सुपरमार्केट्स इको कॉन्शियस स्टोर्स और क्लीनिंग प्रोडक्ट सप्लाइज रिफिल ऑप्शंस और रीयूजेबल सॉल्यूशंस करते हैं. कतर में कुछ लोग पानी रिफिल स्टेशन का भी यूज करते हैं स्पेशली रीयूजेबल बॉटल्स के लिए. साथ ही क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के लिए कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूलाज और रिफिल पैकेजिंग भी अवेलेबल होती हैं, जो कि पैकेजिंग वेस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं. अच्छा, इको स्विच का मैसेज ये है कि हम सिर्फ ये देखें कि भाई हमारे एरिया में कौन सा रिफिल ऑप्शन अवेलेबल है और उन्हें डेली रूटीन का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है. साथियों, रिफिल स्टेशंस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पैकेजिंग वेस्ट रिड्यूस करते हैं जबकि बॉटल्स बार बार यूज होती हैं, तो भाई नए प्लास्टिक कंटेनर्स की डिमांड भी कम हो जाती है इससे. तो भाई इसका इम्पैक्ट सिर्फ वेस्ट तक लिमिटेड नहीं रहता. कम पैकेजिंग का मतलब होता है कम मैन्युफैक्चरिंग, कम ट्रांसपोर्टेशन और कम रिसोर्स का यूज, यानी एक छोटी सी रिफिल हैबिट एनवायरमेंट के लिए मल्टीपल बेनिफिट्स क्रिएट कर सकती है. अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक ऑफिस या फैमिली रेगुलर क्लीनिंग प्रोडक्ट बॉटल्स रिफिल कराना स्टार्ट करे तो महीने में कई प्लास्टिक बॉटल वेस्ट होने से बच सकती हैं. अच्छा चलिए, आपको एक रिलेटेबल एग्जाम्पल देती हूँ. आप जरा सोचिए कि आप रोज काम पर जाते हैं या बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जाते हैं तो एक वाटर बॉटल ले लेते हैं. एक दिन की बॉटल छोटी लगती है ना आपको, आप कहते हैं कि भाई एक ही तो बॉटल है, क्या ही फर्क पड़ेगा एक दिन में किसी बॉटल का एक. लेकिन अगर एक साल के अंदर आप उसे कैलकुलेट करें तो वो टर्न आउट टू बी हंड्रेड्स ऑफ बॉटल्स बन जाती है. अब अगर आप एक अच्छी क्वालिटी रीयूजेबल बॉटल यूज करें और उसे रिफिल करते रहें तो आप अपनी डेली हैबिट्स को इको फ्रेंडली बना सकते हैं. देखिए, कतर के वार्म क्लाइमेट में हाइड्रेशन जरूरी होती है, इसलिए रीयूजेबल वाटर बॉटल कैरी करना एक प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल हैबिट है. अच्छा, इसी के साथ आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दे देती हूँ जो आप बहुत आराम से फॉलो कर सकते हैं. सबसे पहले तो ये कि भाई घर में अच्छी क्वालिटी वाली रीयूजेबल कंटेनर रखें जो रिफिल के लिए सूटेबल हो। दूसरा, सुपरमार्केट में शॉपिंग करते वक्त रिफिल पैकेट्स या कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट्स को प्रेफर करें। तीसरा, पानी के लिए डिस्पोजेबल वाटर की जगह आप रीयूजेबल बॉटल्स कैरी करें। चौथा, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के लिए रिफिल ऑप्शंस एक्सप्लोर करें जहां ये चीज अवेलेबल हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑफिस या फैमिली के साथ रिफिल कल्चर प्रमोट करें ताकि ज्यादा लोग इस हैबिट को अडॉप्ट करें। साथियों, इको स्विच का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि रिफिल का मतलब ये नहीं है कि हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करें। रिफिल का मतलब है स्मार्ट कंजम्पशन। देखिए भाई, आज के जमाने में ना सस्टेनेबिलिटी का मतलब सिर्फ चीजें कम खरीदना नहीं है बल्कि उन्हें इंटेलिजेंटली यूज करना है। रिफिल हैबिट्स हमें सिखाती हैं कि हर प्रोडक्ट के साथ एक्स्ट्रा पैकेजिंग लेना जरूरी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई जो लोग रिफिल हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं ना, वो अक्सर अपनी शॉपिंग हैबिट्स को भी ज्यादा माइंडफुल बना लेते हैं। तो भाई कंक्लूजन ये है, यानी कि आखिर में इको स्विच का सिंपल मैसेज ये है कि हर बार नई बॉटल लेना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे सस्टेनेबल चॉइस यही होती है जो हम पहले से यूज की हुई चीज होती है उसे दोबारा से इस्तेमाल कर सके। तो भाई अगली बार जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदें तो एक छोटा सा इको स्विच जरूर ऑन कर लीजिएगा। क्या मैं इसे रिफिल कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग द होल कंटेनर? क्या मैं इसे रिफिल कर सकता हूँ? इसी नोट के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107, जहाँ हर छोटी सस्टेनेबल हैबिट एक बड़े पॉजिटिव चेंज की तरफ ले जाती है। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, टनल से गुजरने के दौरान महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि ट्रैफिक कानून की सख्ती से पाबंदी की जाए। अंदर दाखिल होने से पहले, चाहे दिन का वक्त ही क्यों ना हो, अपनी हेडलाइट्स जरूर ऑन करें और तमाम ट्रैफिक साइंस पर खास तवज्जो दें। एंट्रेंस के करीब पहुंचते ही अपनी रफ्तार कम करें और मुकर्ररा हद की पाबंदी करें। सुरंग या टनल्स के अंदर अपनी लेन में रहें, राइट साइड पर ओवरटेक करने से गुरेज करें और अपने से आगे चलने वाली गाड़ी से हमेशा मुनासिब फासला बरकरार रखें। वजारत दाखिला का कहना है कि टनल्स या सुरंगों के अंदर ट्रैफिक कानून की पाबंदी न सिर्फ आपकी के सड़क पर मौजूद हर शख्स की हिफाजत को यकीनी बनाती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: एब्सोल्यूट सिनेमा,
5: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
6: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।
7: One step to 2030.
8: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
7: One step to 2030.
8: दोस्तों, आज हम बात करेंगे ह्यूमंस प्लस मशीन, जिसे कहते हैं ह्यूमन ऑगमेंटेशन। आज हम सिर्फ स्मार्ट वॉच पहनते हैं, लेकिन फ्यूचर में टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा स्मार्ट हो जाएगी, हमारी बॉडी का हिस्सा बन सकती है। ह्यूमन ऑगमेंटेशन का मतलब है टेक्नोलॉजी इंसान की एबिलिटीज को एनहांस करे, चाहे फिजिकल हो या फिर मेंटल। इसमें वेयरेबल डिवाइसेस भी शामिल हैं, जैसे स्मार्ट ग्लासेस जो आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन देते हैं, या फिर ऐसे सूट्स जो इंसान की स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। और भी एडवांस चीजें हैं, जैसे ब्रेन इम्प्लांट्स, जैसे इंसान मशीन को सिर्फ सोच से कंट्रोल कर सकता है। मेडिकल फील्ड में ये टेक्नोलॉजी डिसेबल्ड लोगों की लाइफ चेंज कर रही है। फॉर एग्जांपल, आर्टिफिशियल लिम्स जो बिल्कुल रियल जैसे मूव करते हैं। फ्यूचर में हो सकता है कि इंसान ज्यादा फास्ट सोच सके, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मशीन्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए। लेकिन यहाँ एथिकल सवाल भी है, क्या इंसान और मशीन का फर्क खत्म हो जाएगा? क्या ये सेफ है? पता नहीं। ह्यूमन प्लस मशीन फ्यूचर का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट। ये लाइफ को आसान और बेहतर बना सकता है, लेकिन इसे रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना होगा। दोस्तों, एक बात तो क्लियर है, 2030 यानी 2030 का फ्यूचर सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, बल्कि इंसान और टेक्नोलॉजी की पार्टनरशिप का है। चाहे फार्मिंग हो, एनवायरमेंट हो, जॉब्स हो या फिर ह्यूमन एबिलिटीज, हर जगह इनोवेशन हमें एक नई दुनिया की तरफ ले जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि फ्यूचर आएगा, किस तरह से आएगा, किस तरह से हमें उसको अडॉप्ट करना है। सवाल ये है कि हम उसके लिए कितना तैयार हैं, क्या हम उस तरह से तैयार हैं कि नहीं, ये चीज जानना और समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। वेल, चलिए ये सवाल मैं आपकी तरफ ही इसको थ्रो कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ। सोचिएगा, बताइएगा कि आप क्या उस तरीके से तैयार हैं, क्या मेंटली फिजिकली आपने अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया है, इस लर्निंग का हिस्सा बन चुके हैं कि नहीं। फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी.
7: One step to 2020.
0: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सामिने किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामने किराम, आज हम निहायत एक खूबसूरत सुन्नत के बारे में गुफ्तगू करेंगे। मौजू है जरूरत के वक्त बात को दोहराना और सलाम में सुन्नत की पैरवी करना। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का 10 साल से ज्यादा शरफ हासिल रहा, फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बात फरमाते तो उसे 3 मरतबा दोहराते ताकि लोग उसे अच्छी तरह समझ लें, और जब किसी कौम के पास तशरीफ ले जाते तो उन्हें 3 मरतबा सलाम करते। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद सिर्फ बात कहना नहीं था बल्कि बात को समझाना था। यानी जब कोई अहम बात होती या महसूस होता कि सुनने वालों को पूरी तरह समझाने की जरूरत है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दोहरा देते थे। सामने किराम, आज के दौर में हम तेजी से बोलने के आदि हो गए हैं। असातिज़ा जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं, कभी कोई मुकर्रर इतनी रफ्तार से गुफ्तगु करते हैं कि सामीन आधी बात समझ ही नहीं पाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका उसके बरक्स था।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
2: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ, फजील के साथ संडे से थर्सडे, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी।
3: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में, MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारते दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज न्यूज एंड मच मोर। डोंट मिस इट, डोंट मिस इट।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: स्कैम अलर्ट। दोस्तों, नए जमाने के नए स्कैम से बचाने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ। मेरा नाम है फजील और आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल स्कैम की दुनिया में एक नए स्कैम के बारे में। वेल, दोस्तों, ये स्कैम है टैप टू पे चैरिटी स्कैम। अर्बन एरियाज और क्राउडेड सिटी सेंटर्स में एक नया कॉन्टेक्ट लेस फ्रॉड सामने आया है जिसे टैप टू पे चैरिटी स्कैम कहा जाता है। इस फ्रॉड में स्कैमर्स शहर के बिजी लोकेशंस जैसे मेट्रो स्टेशंस, शॉपिंग मॉल्स या फिर टूरिस्ट स्पॉट्स पर खड़े होते हैं। ये लोग खुद को किसी फेक चैरिटी, ऑर्फनेज या एनिमल शेल्टर का वॉलंटियर बताते हैं। लोगों का इमोशनल ट्रस्ट जीतने के लिए इनके पास फेक वाउचर्स, बैनर्स और यूनिफॉर्म भी होती है। ये स्कैमर्स कैश मांगने के बजाय कहते हैं कि वो सिर्फ एक छोटी सी कॉन्टेक्ट लेस डोनेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपको ऐसे में लगता है कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। वो आपके सामने एक हैंड हेल्ड पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS मशीन या स्मार्टफोन आगे बढ़ाते हैं और सिर्फ एक टैप करने को कहते हैं। असल में ये मशीन्स प्रीसेट होती हैं जहां स्क्रीन्स पर छोटी अमाउंट दिखाकर बैकग्राउंड में मोटा अमाउंट चार्ज कर लिया जाता है। कुछ केसेस में चोर इतने शातिर होते हैं कि क्राउडेड बसेस या ट्रेन्स में बिना आपके पूछे आपकी पॉकेट या बैग के पास अपनी RFID या NFC डिवाइस लाते हैं और आपके वॉलेट में रखे कार्ड से कॉन्टेक्टलेस पेमेंट चुरा लेते हैं। अर्बन फास्ट पेस्ड लाइफ में लोग जल्दी में ट्रांजेक्शन थर्मल रिसीट चेक नहीं करते और बाद में बैंक अलर्ट देखकर शॉक हो जाते हैं। लेकिन इस तरह के स्कैम से बचने के लिए सॉल्यूशंस भी हैं। यूज RFID वॉलेट्स। कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट और RFID टेक्नोलॉजी का यूज करते वक्त इन बातों का खास ध्यान रखना है। अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को हमेशा एक RFID ब्लॉकिंग वॉलेट या पाउच में रखें ताकि कोई सिग्नल स्टील ना कर सके, और हमेशा कार्ड टैप करने से पहले रीडर स्क्रीन पर एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन अमाउंट जरूर चेक करें। किसी भी रास्ते पर खड़े अननोन वॉलंटियर को देने के बजाय हमेशा रजिस्टर्ड चैरिटी वेबसाइट पर डायरेक्ट डोनेट करें। उसके अलावा ट्रांजैक्शन की लिमिट भी रखें। अपने बैंकिंग ऐप में जाकर कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट की डेली लिमिट को लो सेट करें या उसे डिसेबल करें। दोस्तों, स्कैम से बचने के लिए ये था एक और एपिसोड और इस तरह के नए स्कैम्स के बारे में मैं आपको हर हफ्ते आगाह करता रहूंगा। तब तक सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम, आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं कि हर उम्र में एक्सरसाइज जो है वो होनी चाहिए और वो कैसे। एक्सरसाइज सेहतमंद जिंदगी की बुनियाद है, लेकिन हर उम्र में इसकी ज़रूरत और उसके फ़वाद मुख्तलिफ हो सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बच्चों और नौजवानों में एक्सरसाइज की अहमियत पर बात करेंगे। बचपन जिस्मानी और जहनी नशोनुमा का अहम दौर होता है। इस उम्र में दौड़ना, खेलना, साइकिल चलाना, स्विमिंग करना और इस तरह और बहुत सारी जो हमारी जिस्मानी एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चों की बोन्स को और उनके मसल्स को मजबूत बनाती हैं। एक्सरसाइज दिल और फेफड़ों की कारकर्दगी को बेहतर बनाती है और मोटापे खतरे को कम करती चली जाती है। और ये अब बहुत बड़ा एक पूरी दुनिया का एक इशू है कि मोटापा जो है बचपन में और जो टीनेजर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। आजकल बच्चों का ज़्यादा वक्त मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स और वीडियो गेम्स पर गुजरता है, जिससे जिस्मानी एक्टिविटी कम हो जाती है और इसी वजह से वज़न ज़्यादा होने लगता है, कमज़ोर जिस्मानी सेहत और इसी तरह जो तवज्जो में कमी जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। यंग एज में यानी नौजवानी में एक्सरसाइज की अहमियत और ज़्यादा हो जाती है। इस उम्र में हमारा जिस्म तेज़ी से ग्रोथ उसमें होती है, नशोनुमा पाता है और बाकायदा वर्जिश एतमाद, कुव्वत बर्दाश्त और जिस्मानी फिटनेस में इजाफा करती है। बहुत सारी जो रिसर्चेस की गई हैं और इन रिसर्च से मालूम हुआ है कि एक्सरसाइज जहनी सेहत के लिए बेहद मुफीद है। ये हमारे जहनी दबाव को कम करती है, मूड बेहतर बनाती है और तालीमी कारकर्दगी में मददगार साबित होती है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों और नौजवानों को रोज़ाना कम से कम एक घंटा जिस्मानी कोई भी एक्टिविटी एक्सरसाइज करने की तरकीब दें। और ये तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो खेल कूद, पैदल चलना, साइकिलिंग या किसी भी पसंदीदा खेल की सूरत में हो सकती हैं, यानी जो भी उन्हें खेल जो है वो पसंद हो आप उन्हें इनक्रेज कीजिए। याद रखिए, बचपन में अपनाई गई सेहतमंद आदत जिंदगी भर फायदा देती हैं।
3: Maximum music, maximum fun.
0: On FM 107, Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन, और आज हम बात करेंगे ईसा बाशिम के बारे में। ईसा बाशिम कतर के मशहूर एथलीट हैं, जो सिर्फ अपनी ज़ाती कामयाबियों की वजह से ही नहीं, बल्कि अपने बेटे और ओलंपिक हाई जंप चैम्पियन मुमताज़ बाशिम की तरबियत और हौसला अफजाई की वजह से भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत हिस्सा एथलेटिक्स को दिया और हमेशा सेहतमंद और एक्टिव जिंदगी का पैगाम दिया। हाल ही में ईसा बाशिम ने एक और काबिले तारीफ कामयाबी हासिल की, जब उन्होंने GCC गेम्स में 5000 मीटर रेस वॉक मुकाबले में मेडल जीता। दोस्तों, इस कामयाबी ने साबित किया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, और लगन, मेहनत और डिसिप्लिन के जरिए हर स्टेप्स पर बेहतरीन नतायज हासिल किए जा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि इसी टूर्नामेंट में, यानी इसी चैंपियनशिप में, बाप और बेटे यानी मुमताज़ बाशिम और उनके वालिद ईसा बाशिम ने कॉम्पीट किया, एंड दैट इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, जहाँ पे फादर एंड सन जो है अपने अपने मुख्तलिफ इवेंट्स में कॉम्पीट करते हुए सबको नजर आए। या दोस्तों, मुमताज़ बाशिम की कामयाबी के पीछे भी उनके वालिद का अहम किरदार रहा है। उन्होंने बचपन से ही अपने बेटे को स्पोर्ट्स की तरफ रागिब किया और उन्हें मेहनत, सब्र और अज़म की तालीम दी। आज मुमताज़ बाशिम दुनिया के अजीम तरीन हाई जंप एथलीट्स में शुमार होते हैं, जबकि उनके वालिद अपनी मिसाली ज़िंदगी और स्पोर्ट्स से वफादारी की वजह से लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने हुए हैं। ईसा बाशिम की कहानी ये पैगाम देती है कि खानदानी हिमायत, लगातार मेहनत और स्पोर्ट्स से मोहब्बत जनरेशन तक कामयाबी का जरिया बन सकती है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
3: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: FM 107 पर अपना business advertise करने के लिए आज ही राबता करें.
3: आज ही राबता करें
2: हमारी Qatar Media Corporation की marketing team से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.

0: दोस्तों अब कतर में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है। मैतराश 2 ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं और वो भी बिना किसी फिजिकल विजिट के। इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो। तीसरा, दोनों पार्टीज सेलर और बायर का मैतराश ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा, बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो। प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है, मैतराश 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज With RJ Sarwar Mirza. हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका आपके अपने प्रोग्राम में। भाई वो प्रोग्राम जहां रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे यादगार कहानियों में तब्दील हो जाते हैं, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, कभी शॉपिंग मॉल्स की रोशनियों में चमकती यादें, और कभी मेट्रो या दीगर सफर के एनकाउंटर्स जो दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं। भाई हर शख्स के पास एक कहानी होती है, एक एहसास, एक याद जो उसके अपनी वर्चुअल डायरी का हिस्सा होती है, और ये यादें ही हैं जो हमें रोजमर्रा की मसरूफ जिंदगी से थोड़ी देर के लिए दूर कहीं ले जाती हैं, एक सुकून, एक मुस्कुराहट और एक नई ताजगी देती है। तो आइए मिलकर सुनते हैं, महसूस करते हैं और शेयर करते हैं वो कहानियां जो हम सबको एक दूसरे के और भी करीब ले आती हैं। यह है आपका अपना प्रोग्राम जहां हर याद एक सफर है और हर सफर एक कहानी। और इसी सिलसिले से हमारे साथ इस प्रोग्राम में होते हैं एक मेहमान, जहां हम उनके

0: ज़रिए उनकी कहानी सुनते हैं, कुछ सवाल जवाब के ज़रिए से उनको जानते भी हैं और उन यादों से खुद को कनेक्ट भी करते हैं जो कि हमारे साथ भी चलते चली आ रही हैं या हमारी ज़िंदगी के सिलसिले में भी शामिल हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं, आप सीनियर एकेडमिक पैथोलॉजिस्ट हैं, आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेडिसिन की तालीम हासिल की है जबकि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग यूएस और यूके से मुकम्मल की है। यूके में आपने बार्ट्स हेल्थ एनएचएस ट्रस्ट में कंसल्टेंट के तौर पर काम किया और साथ ही क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन में क्लिनिकल हेड ऑफ पैथोलॉजी रहे। आप एनएचएस इंग्लैंड लंदन रीजन में क्लिनिकल लीड फॉर पैथोलॉजी और रॉयल कॉलेज ऑफ पैथोलॉजिस्ट में डायरेक्टर डिजिटल लर्निंग भी रह चुके हैं जहां आपने नेशनल अंडर ग्रेजुएट करिकुलम की तैयारी में अहम किरदार अदा किया है। ज़ाती तौर पर आप ज़हीन और फन परस्त शख्सियत के मालिक हैं। आप उर्दू शायरी पढ़ना और लिखना पसंद करते हैं, कव्वाली सुनना पसंद करते हैं, गिटार और पियानो भी बजाते हैं। इसके अलावा आप गोल्फ, बैडमिंटन और टेनिस भी खेलते हैं। आपकी स्पेशलाइजेशन हेमियोथोपैथोलॉजी और डर्मेटोपैथोलॉजी में है। फिलहाल आप हमद जनरल हॉस्पिटल एचएमसी में सीनियर कंसल्टेंट हैं, पैथोलॉजी रेसिडेंसी प्रोग्राम के प्रोग्राम डायरेक्टर और डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। सामीन, आइए अब उनके हुजूर चलते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हसन रिजवी। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूं सर, मोस्ट वेलकम। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और आज दोहा डायरीज का आप हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए।
1: अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया और प्रोग्राम का और रेडियो का जो आपने ये मौका दिया, और बहुत खुशी के साथ और दिली ताल्लुक है आपसे भी और इस रेडियो के प्रोग्राम को भी, और आपको भी खूब सुनते हैं।
0: अहलन वसहलन सर, तो आइए अब कुछ सवाल जवाब का सिलसिला अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप अपनी शख्सियत को तीन अल्फाज में बयान करें, क्योंकि माशाल्लाह से जैसे कि मैंने आपका तारुफ करवाया, मुझे लगता है इसमें बहुत सारी चीजें अभी रह गई हैं, आप माशाल्लाह से काफी कुछ और भी हैं, तो अगर तीन अल्फाज में बयान करें एक डॉक्टर के साथ साथ, तो किस तरीके से आप उसको बयान करेंगे?
1: सर, सब आदमी जो है वो सिर्फ अपने रिश्तों से पहचाना जाता है मेरे हिसाब से जिंदगी में। और तो मैं अपने आप को एक बेटा पहले, एक अब्बा और फिर दोस्त, जो हमारा सर्कल है सोशल, उसके आगे कुछ नहीं है, जो पैदा हुए थे वही वापस जाएंगे।
0: वाह वाह वाह डॉक्टर साहब, वाह क्या बात है, क्या कहने। सर, दोहा में आपके लिए एक आइडल या रिलैक्सिंग दिन कैसा होता है जब आप अपनी बिजी प्रोफेशनल रूटीन से ब्रेक लेते हैं, जो कि बड़ी मुश्किल से मिलता है मुझे पता है, फिर भी?
1: दोहा में बहुत चॉइसेस हैं, मतलब वी आर वेरी लकी के समंदर भी है, सहरा भी है और बहुत सारी खाने की पीने की दोस्तों की जगहें हैं, साथ रहने की, उठने की, बैठने की। तो इसमें सबसे पहले जो मैं कह रहा था, दोस्त और फैमिली शामिल होते हैं, अब उनके साथ बारबेक्यू करके खाना हो जाए या कोई खेल हो जाए या समंदर की तरफ जाए, डिपेंड करता है मौसम पे, अगर मौसम अलाउ करता है, या माशाल्लाह इतने म्यूजियम हैं और इंडोर मॉल्स हैं और जगहें हैं, तो कोई भी एक जगह, बस अपने साथ बैठने वाले लोग अच्छे हों, तो कहीं भी बहुत आइडियल दिन हो जाता है।
0: क्या बात है डॉक्टर साहब। समीन, मैं बता दूं आप माशाल्लाह दुनिया घूम चुके हैं और जिस तरह मैंने तारुफ में बताया कि आप यूके यूएस हर जगह देख चुके हैं, फिर भी दोहा आपके दिल में बसता है, बहुत खूब। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, अब सेकंड सेगमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मेडिकल जर्नी और कुछ जो दोहा आपका मूव होना हुआ उससे ताल्लुक रखते हुए कुछ सवाल थे मेरे। आपने दोहा आने का फैसला किस वजह से किया?
1: सर, सब देख चुके थे, अब उम्र के इस हिस्से में पहुंच गए कि वर्क लाइफ बैलेंस जैसी चीजें समझ में आने लगी। जवानी के जोश में तो आदमी बैल की तरह भागता है एक चीज के पीछे, फिर जब जरा उम्र होती है तो होश आता है, और मर्दों को थोड़ा देर में आता है होश, औरतों को थोड़ा पहले आ जाता है मेरे ख्याल से। तो वो होश आना शुरू हुआ कि भाई जिंदगी है तो बाकी सब है। वहाँ काम में बहुत मशगूल था, बहुत चीजें अटेन की, बहुत अच्छा रहा, लेकिन वेस्ट का लाइफस्टाइल हेक्टिक है और बहुत सी चीजें आप बैलेंस वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरा फिर दीनी ताल्लुक से यहाँ पे

0: ये ज्यादा मतलब मेरा जो कमरा है हम जनरल में उससे 10 कदम के फासले पे मस्जिद है, तो मैं मजाक में ये कहता हूँ कि अब ना पढ़ी तो बड़े मतलब फिर तो लिख जाएगा ना गुनाहगारों में। तो ये चीजें जो है ये सहूलतें अपने दीन की, अपने काम की, और काम माशाल्लाह वर्ल्ड क्लास काम है यहाँ। सेटअप एग्जैक्टली सेम है जो मैंने वेस्ट में काम किया है। कल्चर डिफरेंट है, आपको खाने पीने की जो सहूलतें हैं, रहने की, यहाँ से मैं निकलता हूँ अपने घर से और मुझे अगर ट्रैवल करना होता है तो मैं एरोप्लेन के दरवाजे पे 40 मिनट में खड़ा होता हूँ, जो दुनिया में बहुत कम जगह आपको ये, और ये आपकी जिंदगी की क्वालिटी बढ़ाती है ये चीजें। और उस वक्त जिस वक्त मैं आया 2022 में, तो एक बहुत बड़ी चीज फुटबॉल भी थी, फुटबॉल वर्ल्ड कप का पूरा मजा लिया था, और फिर दोस्त अहबाब जिंदगी सब चीज यहाँ अलीगढ़ के बहुत लोग मिले। तो आया था पहले मैं एक स्काउटिंग ट्रिप पे 2018 में, उसके बाद 2022 हो गया आते आते, बट कई सारी चीजें मिला के डिसीजन हुआ कि चला जाए।
1: क्या बात है सर, जब आप यहाँ आए उस वक्त आपके जहन में करियर और जिंदगी के हवाले से किस किस्म की एक्सपेक्टेशंस थी, मतलब अगर मैं जानना चाहूँ?
0: तो जिंदगी का ये था कि थोड़ा ठहराव आए, उस वक्त तक मैं बहुत काम में जिसे कहते हैं कि पूरी तरह से डूबा हुआ था, गर्क था, और बच्चों के साथ और इनमें वीकेंड मिलता था, किया बहुत सी चीजें करने की लंदन में भी वहाँ की, लेकिन यहाँ मेरा था कि थोड़ा स्टेप बैक, यहाँ आया हूँ तो मैं यहाँ 3 बजे काम खत्म हो जाता है, कॉल पे भी हैं तो 6-7 बजे, वहाँ मैं अमूमन 7-8 बजे घर पहुँचता था। तो वो वक्त जो मिला है उसमें बहुत सी चीजें बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के, खेल नया, मैंने गोल्फ यहाँ आके सीखा, गोल्फ वहाँ, हालांकि बहुत गोल्फ है वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है स्कॉटलैंड से, लेकिन सीखा यहाँ आके। और फिर काम के नौयत से यहाँ पे माशाल्लाह जो चीजें मेरी इंटरेस्ट है, मुझे पढ़ने पढ़ाने का शौक है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम का आते ही डायरेक्टर बना दिया, उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ 2 यूनिवर्सिटीज हैं, कतर यूनिवर्सिटी और वेल कॉर्नेल, वहाँ के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आते हैं, तो वो चीजें प्रोफेशनली फुलफिलिंग है, हर तरह का काम बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ हालांकि पॉपुलेशन 3 मिलियन के अतराफ में है, लेकिन यहाँ जो डाइवर्सिटी है पॉपुलेशन की, वो उसकी वजह से जो हमारे उससे काम के एतबार से जो केसेस देखने को मिलते हैं उनमें बहुत वैरायटी है, जो लंदन में देखता था उससे कुछ चीजें नई देखने को मिली, तो कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ बहुत से एनहांसमेंट्स हैं।
1: क्या बात है सर, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपका पहला इम्प्रेशन दोहा के बारे में क्या रहा?
0: सबसे पहले तो ये था कि गर्मी, मजा आ गया, और दूसरा इंग्लैंड में जो है वो सर्दी की आदत थी उससे पहले, अमेरिका में भी मैं रहा तो उधर रहा अपस्टेट उधर, तो वहाँ बहुत सर्दी होती है, तो यहाँ आके एक तो ये मजा आया मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बल्कि सब घर वाले अभी कहते हैं कि भाई थोड़ी देर बाहर निकलना चाहिए, और दूसरा मॉडर्न है बहुत ज्यादा, बहुत मतलब आप अब इंग्लैंड अमेरिका की सड़कों में हाईवेज पे जाइए तो आपको इस किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं मिलता, आप क्यूब में जाइए तो नहीं मिलता, जो यहाँ एकदम आती एक इम्प्रेशन होता है कि बहुत अच्छा मॉडर्न सेटअप है और बहुत ही बिल्कुल एकदम परफेक्ट लेवल पे है।
1: क्या बात है, क्या कोई चीज थी जो आपके लिए बिल्कुल नई या अनएक्सपेक्टेड थी, खासतौर पर हेल्थ केयर सिस्टम के हवाले से? धूप तो आपने बता ही दिया, मगर हेल्थ केयर सिस्टम के हवाले से अगर
0: यहाँ वहाँ पे भाई वेस्ट में अपने खुद करने का बहुत कल्चर है, तो सब चीज खुद करते थे, यहाँ देखा कि ये भी सहूलत है कि चाय की पत्ती भी कोई दे देता है, और अगर आप मांगे तो चाय भी कोई ला देता है, तो सर्विस इंडस्ट्री और जो सपोर्ट है यहाँ पे वो मुझे पुरानी 1980s की NHS में ये हुआ करता था इंग्लैंड में, अब तो नहीं है, टी क्लब हुआ करते थे जब हम पहुंचे 2000 में, वो सब खत्म हो गए, वो चीजें हैं। फिर यहाँ इंटरेस्टिंग है कि भाई जैसे कि VIP पेशेंट आता है तो प्रायोरिटी होती है, वहां उल्टा है कि अगर कोई इनकी बायोप्सी आएगी तो पता भी नहीं चलेगा कि आई कि नहीं आई, तो वो जो चीजें हैं कि कैसे काम में प्रायोरिटाइजेशन थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मोटा मोटी बहुत सी चीजें सेम है, कल्चरली जाहिर सी बात है डिफरेंट है, लोग बहुत अच्छे वैरायटी के डिफरेंट मिलते हैं यहाँ, वहाँ उतना अरब कल्चर से नहीं था, अरब खाने से, तो वो चीजें तो बहुत सी चीजें सीखने को मिली, जबान बिल्कुल नई है, अरबी मेरे लिए नई थी, हालांकि हम लोग पढ़ते हैं तो सिर्फ कुरान की अरबी पढ़ते हैं, बोलचाल वाली अरबी जो है वो अब धीरे धीरे सीखी।
1: सही, क्या बात है, क्या बात है। सर शुरू के दिनों में एक नए मुल्क में और नए मेडिकल एनवायरनमेंट में आना, जैसा आपने बताया कि एडजस्ट करना थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अरबी के हवाले से जैसे आपने बात करी या दूसरी चीजें आपने बताई, तो क्या कोई ऐसी चीज भी थी जो बहुत ज्यादा हावी भी हुई या कुछ इसमें मेंशन करना चाहते हैं?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि मुझे एक चीज

0: का भी, और तो उसमें चाय खाना तो एकदम पता ही नहीं चला, बल्कि ऐसा लगा जैसे वापस घर आ गया हूँ.
1: क्या बात है
0: वाकई में. मुझे लंदन में शायद थोड़ा बहुत गैरियत लगती थी, यहाँ आके एकदम लगा कह रहे यहाँ तो सब अपने लोग हैं.
1: क्या बात है. आगे आते हैं सर, अब दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं. कुछ हार्ड डेज स्ट्रॉन्ग डेज के हवाले से, इमोशंस और चैलेंजेस के हवाले से बात करते हैं. क्या कभी आपको दोहा में तन्हाई या होम सिकनेस महसूस हुई?
0: जैसे मैंने कहा कि शुक्र है हाँ घर वाले, ये हुआ कि शुरू के 3 साल नहीं थे, तो उस वजह से जाहिर सी बात है दोस्त अहबाब और काम एक तरफ आपका ध्यान बटाते हैं, लेकिन घर वालों की कमी बहरहाल महसूस हुई. शुक्र है कि घर वाले आते जाते रहे, मेरे खुद अपने बहन भाई वालदा आए और रहे यहाँ पिछले 3-3.5 साल में, और बीवी बच्चे, मैं जाता रहा लंदन ऑलमोस्ट 1 महीने पे. तो वो एक कमी थी जो कि अब पूरी हो गई है. पिछले तकरीबन 8 महीने से ये लोग साथ हैं, मामा की फैमिली आ गई है, वालदा आके रही उससे पहले 5-1 महीना एक साथ, तो माशाल्लाह लगा. भाई घर लोगों से बनता है, मैंने कहा जो आपसे पहले ही, कि जिंदगी जो है वो लोगों से बनती है.
1: सही सही.
0: सो वो घर में जब लोग आ गए तो घर घर हो गया, उससे पहले मकान था.
1: तो सर ये जब तक ये लोग का आना नहीं हुआ, फैमिली का आना नहीं हुआ, अगर मैं जानना चाहूँ जब घर की याद आती थी उस टाइम पे तो कैसे अपने आप को संभालते थे?
0: भाई सबसे पहला खटखटाते थे दोस्तों घर, और कहते थे कि घर की याद आ रही है, बच्चों को बुलाओ और खाना खिलाओ.
1: बहुत
0: और शुक्र है कि ऐसे बहुत से बेतकल्लुफ घर हैं जहाँ जाके ये कर सकते थे.
1: क्या बात है. नए एनवायरनमेंट में लॉन्ग शिफ्ट्स की बात करें और प्रोफेशनल प्रेशर को देखें तो मैनेज करना कैसा रहा?
0: मैनेज करना, शुरू में इतनी कॉल्स नहीं होती थी हमारे यूके में, यहाँ कॉल्स कभी कभी बिजी होती हैं तो बहुत होती हैं, आप रात के 8-9 बज जाते हैं सुबह से, तो वो चीज थोड़ा एडजस्ट करने में समझने में. लेकिन यहाँ एक चीज कहूंगा कि जो एक पार्ट ऑफ मेरे ख्याल से अरब कल्चर है उसमें हॉस्पिटैलिटी और दोस्ती बहुत है. एक बार जरा सा जान पहचान हुई तो लोगों ने ऐसे वेलकम किया और ऐसे हेल्प की चीजों में कि लगा ही नहीं. मतलब अलीगढ़ का जो फैक्टर था वो था, लेकिन माशाल्लाह जो यहाँ का कल्चर है, एट इज वेरी वेलकमिंग, पीपल आर वेरी हेल्पफुल, वेरी सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट में. कभी लगा ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे अलीगढ़ वाला कोई नहीं है डिपार्टमेंट में अपने, लेकिन जितने मेरे कोलीग्स हैं सब अलग अलग ममालिक के हैं, कोई जॉर्डन का है, कोई सीरिया का है, कोई अमेरिका से ट्रेंड है, और उन्होंने सबने बिल्कुल जैसे कहते हैं हाथ पकड़ के चलना सिखा दिया, तो जो मुश्किल काम थे वो सब आसान हो गए. बहुत बहुत वेरी लकी टू बी हियर.
1: क्या बात है. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सरवर मिर्जा आपके साथ. बस मैं यूं गया और यूं वापस आया. देखते और सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी.
2: आप सुन रहे हैं दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
1: तो सर अब इन सारी चीजों के हवाले से देखा जाए तो आपकी फैमिली का इस जर्नी में कितना रोल रहा, कितना साथ रहा, सभी का रहता है, कुछ मेंशन करना चाहिए? बिल्कुल
0: सर. देखिए सबसे पहले तो बेगम आती हैं किसी भी शरीफ आदमी की जिंदगी में, अगर उनका नहीं जिक्र किया तो घर जाना मुश्किल हो जाएगा.
1: बिल्कुल सर, उन्हीं के हवाले से मैंने सवाल भी किया.
0: तो बहुत बहुत सपोर्टिव रही. अगर देखिए उनकी सपोर्ट, मतलब मजाक अपनी जगह, अगर बीवी, क्योंकि वो बच्चों के साथ अकेली थी, बच्चे अलग अलग स्टेज पे थे, एक टीनेजर लड़के हैं, एक बेटी यूनिवर्सिटी में दाखिल हो रही थी, एक बहुत छोटी है 4 साल की, सबकी अपनी डिमांड है. अगर वो ये कहती कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ तो मैं भी यहाँ परेशान होता. एक वजह मेरे सेटल होने में शुरू में ये थी कि हालांकि हम लोग अलग थे, वो हमेशा बहुत माशाल्लाह नफ्से मुतमइन्ना है, वो अपने में सुकून में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. आई भी तो ये नहीं कि भाई गर्मी है सर्दी है क्या है, जो है बहुत अच्छा है, सुकून से रहे, जो चीजें हैं वो साथ करनी है, और उसमें वो बहुत ज्यादा बड़ा रोल रहा. और फिर उसके बाद मेरी अपनी फैमिली, भाई भाभी ये लोग सब, बहन आके गए, वालदा आके रही, तो जाहिर सी बात है जब घर वाले आते हैं वो जगह देखते हैं, वो लोगों का भी एक अप्रूवल होता है कि भाई अच्छी जगह हो, अच्छा कर रहे हो, उनको उनकी आंख में आप खुशी देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ भाई मैं, मेरा काम हो गया.
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत खूब बहुत खूब. डॉक्टर साहब आज पीछे देखते हुए या बात करूं कि दोहा के करियर में एक टर्निंग पॉइंट के हवाले से बात करें तो क्या शेयर करना चाहते हैं?
0: यहाँ पे आने के बाद शुरुआत में जो मुझे लगता है कि फुटबॉल का और इसका बिजी रहे शुरू शुरू में,

0: चीजें चलती रहीं, शुरू के काम हुए, लेकिन जब यहाँ जरा सेटल हुए और इन्होंने जिम्मेदारी दी, क्योंकि शुरू में आया था तब तो काम नहीं था, फिर ट्रेनिंग, तो वो और इन्वॉल्व, एक बार जब आप जिसे कहते हैं ना कि रज बस जाते हैं चीजों में, तब मजा आना सही से शुरू होता है. तो वो पॉइंट आया मेरे ख्याल से फुटबॉल के 6-8 महीने बाद, जब चीजें सेटल हो गई, काम शुरू हुआ और ये समझ में आया कि क्या चीजें हैं जो करनी है, क्या चीजें ऐसी हैं जो यहाँ लॉन्ग टर्म कर सकते हैं. तो वो फिर धीरे धीरे अपना दिमाग लगाया, अपने हिसाब से काम किया, वो सराहा गया, मौके दिए गए, तो फिर मजा आना शुरू हुआ. और अब ऐसा लगता है कि भाई इससे पहले तो काम नहीं किया, यही कर रहे हैं.
1: क्या बात है. अब आगे बढ़ते हैं सर. और कोई पेशेंट का इंटरेक्शन या वर्क प्लेस या डेली लाइफ का ऐसा कोई मोमेंट जो आज भी यादगार हो?
0: डेली लाइफ में देखिए, हम लोगों का पैथोलॉजी में पेशेंट का कम होता है, लेकिन जब एक बार एक डायग्नोसिस थी, वो पेशेंट उसकी वजह से उनको ट्रैवल करना था, वो डिपार्टमेंट में आई कि ये हो जाए, तो उनको फौरन जल्दी तौर पे उसको करके उनको जवाब दिया, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई. उन्होंने लाके कई तोहफे तहायर दिए. यहाँ ये बड़ा माशाल्लाह कल्चर है, उन्होंने कहा कि बहुत छोटी सी चीज दे रही हूँ, जो उनके लिए छोटी थी वो मेरे लिए इतनी बड़ी थी कि मैं बहुत कहते हैं कि ममनून हुआ उसके बाद. और जाती जिंदगी में जो एक बार हुआ कि वालदा मेरी अकेली आ रही थी, वो माशाल्लाह अब 90 की हैं,
1: माशाल्लाह,
0: वो एयरपोर्ट पे थी, तो उनको वीजा के लिए कुछ पेमेंट करना था, उनके पास एक कार्ड था जो नहीं चला, तो जो कैप्टन थे वहाँ इमिग्रेशन पे, उन्होंने अपना जाती कार्ड ऑफर किया और बोले कि ये दिया मैं. हालांकि उसके बाद मैंने कोशिश भी की कि मैं कुछ वापस करूं, तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि कोई जरूरत नहीं है, ये बुजुर्ग हैं और माँ की तरह हैं, और मतलब वो दिल को छू गई. अब ऐसी चीजें नहीं मिलती दुनिया में.
1: ये हमारा कतर है, ये हमारा दुआ है, माशाल्लाह. सर, क्या कभी किसी पेशेंट ने, या चलिए आप जैसे कह रहे हैं कि पेशेंट से कम इंटरेक्शन होते हैं, तो कलीग वगैरह ने आपको ऐसे कोई सीख दी, आपने उनसे कोई ऐसी सीख हासिल की, या कुछ ऐसी चीज जो आप भूल नहीं सके?
0: जी, ऐसे वाक़े हुए हैं. जब शुरू में आदमी जवान होता है तो काफी अपने आप में खुश रहता है और अपनी चीजों में उसको बड़ा भरोसा होता है और शक व शुबा नहीं होता. तो ऐसा एक साहब थे जिनके साथ मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, और मैं नया नया कंसल्टेंट हुआ था, मैंने उनको समझाना शुरू किया कि ये ऐसा है, मैं सीख के आया हूँ लंदन से, अमेरिका से. उन्होंने बड़ी खामोशी से सुना, उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ निकाल के दिया और बोले कि ये देख लो. तो वो पता चला कि वो जो चीज जिसके बारे में उनको बता रहा था, वो उन्होंने ही डिस्क्राइब की थी सन 78 में, जब मेरे ख्याल से 6 साल का था.
1: वाओ,
0: उसके बाद मैं ऐसा शर्मिंदा हुआ, मैंने कहा कि भाई अब कभी किसी के आगे मुंह खोलो तो पहले देख लेना दाएं बाएं.
1: सच्ची बात हो रही है, और क्या सादा इंसान है आप डॉक्टर हसन साहब, मजा आ रहा है आपसे बात करके.
0: नहीं नहीं
1: सर, दोहा में आपकी डेली रूटीन में सबसे फेवरेट चीज क्या है, अगर मैं पूछना चाहूँ तो?
0: सबसे ज्यादा मजा दोहा डिस्पाइट द गर्मी आता है चाय पिया. अलीगढ़ में चाय की ऐसी आदत लगती है कि यहाँ हम लोगों का एक डॉक्टरों का चाय क्लब है.
1: Okay.
0: तो जब वक्त मिल जाता है, अगर चाय मिल जाए तो, या घर पे अपनी एक दम करके चाय बनाते हैं. चाय का बड़ा एक बीमारी है हम लोगों को. तो चाय जो है वो हिंदुस्तान से मंगाई जाती है. तो वो चाय जो है वो कौन सी पत्ती होगी, और फर्स्ट फ्लश होगी कि दार्जिलिंग होगी कि फलाना होगी, एक तो ये चोच ले, वो चाय दम की जाएगी, उस पे टिकोजी लगाई जाएगी, वो एक पूरा एक टी सेरेमनी होती है. तो वो या तो हो जाए, या दोस्तों के साथ चाय मिल जाए. और काम पे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके पास वो अरबी और तुर्की कॉफी होती है, उसमें बहुत मजा आता है.
1: वाह,
0: वो मैं फरमाइश करके कभी कभी जाके बैठ के, और कमरों में है, तो वो दो चीजें ऐसी हैं दिन की. और काम तो जाहिर सी बात है हर जगह मजा आता है, पढ़ाने में मजा आता है, पढ़ने में, काम में. लेकिन ये जो दो चीजें हैं कि चाय अलीगढ़ वालों के साथ और कॉफी काम वालों के.
1: वाह वाह वाह, बहुत खूब. डॉक्टर साहब, इस सेगमेंट का आखिरी सवाल कि अगर आप अपनी जिंदगी की एक डायरी एंट्री लिखें तो उसका टाइटल क्या होगा?
0: देखिए, मैंने आपको बताया था कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान. अल्लाह के बाकी तो आप अपनी कोशिश करते हैं, बाकी जो देता है वो ऊपर वाला देता है, ये समझ में बाद में आता है.
1: क्या बात है.
0: आदमी सोचता है कि मैंने ले लिया, लेकिन वो मिलता आपको अपनी किस्मत से है. वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा, जब मौका है.
1: क्या बात.
0: तो ये बस ये रियलाइजेशन जब हुआ तो समझ में आया कि खुद तो खच्चर है, चलते जाना है, जो मिलेगा वो ऊपर वाले की मर्जी से मिलेगा और दुआओं से बुजुर्गों की।
1: वाह सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं सर, और अब कुछ ऐसे सवाल जो थोड़ा हंसी का भी सबब बने जिंदगी में। क्या आपके साथ कभी दुआ में कोई ऐसा फनी या अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुआ, हॉस्पिटल या डेली लाइफ के दौरान कुछ अगर हुआ है तो शेयर करना चाहते हैं?
0: अब इसमें जो है वो थोड़ा सा मजाक भी है और थोड़ा सा सीरियसनेस भी है,
1: इसीलिए मैंने सवाल किया।
0: तो ये जो है मेरा रंग काफी सांवला है, तो शुरू में जब मैं यहाँ आया तो काफी पहले तो सवाल होता था कि हिंदी और फिर केरला, तो मैं कहता था जी नहीं नॉर्थ इंडिया से हूँ। अब उसके बाद ये हुआ कि गाड़ी खरीदी, तो गाड़ी खुदा के फजल से कोई अच्छी ठीक गाड़ी थी। अब मैं गाड़ी जो है वो किसी होटल में किसी ने खाने पे बुलाया है या कहीं गए अच्छे होटल में या जगह पे, तो वहाँ गाड़ी में वैले के पास लेके जाता था तो कहता था साहब कहाँ हैं।
1: वेरी सॉरी,
0: सॉरी नहीं, मजा आता, मुझे खुद हंसी आती साहब। मैं कहता था ये जो आपके सामने खड़े हैं यही बेचारे साहब हैं, इनको मानिए ना मानिए
1: क्या गाड़ी खड़ी करी। शख्सियत है सर आपकी, बहुत बहुत
0: बड़ा मजा आता है।
1: बहुत खूब।
0: और एक बार ये हुआ कि मैं असल में रहा पिछले 30 साल तकरीबन लंदन और अमरीका, तो जाहिर सी बात है कल्चर वहाँ जहाँ आदमी रहता है वहाँ का कल्चर सीख जाता है।
1: सही।
0: तो यहाँ लिफ्ट में मैं एक बार, एक साहिबा थी अकेली, लिफ्ट रुकी और मैं घुसा तो वो फौरन बाहर निकल गई। तो मैंने कहा ये क्या हुआ भाई, मेरे कपड़ों में से कुछ बू आ रही है, क्या हो गया? तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि अगर ख्वातीन अकेली हों तो आप परहेज करें जाने से। और वो वैसी बात है हमारे इस्लाम में कल्चर में है, लेकिन की आदतें भूल जाता है,
1: हम भूल जाते हैं। क्या बात है डॉक्टर हसन, बहुत अच्छे, बहुत खूब। सर कभी कुछ ऐसा भी हुआ कि आप किसी रूट पे या लोकेशन पर कंफ्यूज हो गए हो, जो यूजुअली दुआ में होता है लोगों के साथ जब नए आते हैं, और फिर वो एक याद बन गया हो और किस तरीके से वापस ट्रैक पे आए फिर आप?
0: सर मतलब एक बार ये मैंने बताया कि मैं जब आया था तो फुटबॉल का दौर था, नया नया घर मिला हम लोगों को, हॉस्पिटल की तरफ से घर दिया जाता है, तो वो घर एलोकेट हुआ। मैं रात में कहीं दोस्तों से मिलके वापस आ रहा था, अकेला था, और फुटबॉल की वजह से क्लोजर्स हो गए। तो अब वो मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया, मुझे जो रास्ता पता था मैं आया वो बंद था, उसके बाद मैं चला गया। अब मैं घर के अतराफ कम से कम 5-7 मिनट घूमा हूँ, नहीं 5-7 नहीं कम से कम 15 मिनट घूम के पता चला कि मैं घर के बिल्कुल पीछे गलियों में टहल रहा था। फिर वापस जब मैप लगाया अकल आई कि भाई नहीं अपने ऊपर, वही है आदमी जो है अपने आप को समझने जब लगता है और ये नहीं सोचता कि मदद मांगी, तो फिर गूगल खोला वो देखा कि मैं घर के पिछवाड़े खड़ा हूँ, तो गाड़ी खड़ी की और मैं टहलता हुआ अंदर आ गया। वो आज तक याद है कि भाई
1: क्या बात है। सर सर यूजुअली ये भी हम देखते हैं यहाँ पे हमारे जितने भी कतरी भाई हैं और जो दूसरे ममालिक के लोग भी हैं, तो रोड वगैरह पे हमारे साथ कभी ऐसी कोई परेशानी आती है, कोई और बात होती है खुदा ना खास्ता, तो क्या कभी किसी स्ट्रेंजर ने कभी आपकी ऐसी कोई मदद करी, आपको जरूरत पड़ी हो रोड वगैरह पे, कभी ऐसा कुछ हुआ या आपने देखा?
0: जी मुझे एक तो जो मैंने आपसे अर्ज किया था कि वालदा को जब एयरपोर्ट पे कैप्टन ने हेल्प की तो मेरे लिए एकदम नई चीज थी। और दूसरा एक बार एक्सीडेंट हुआ खड़े गाड़ी में, किसी ने पीछे बच्चे थे साथ में, वालदा थी, एकदम लोग आके रुक के पूछ के गाड़ी कोने में लगवा के, ऐसा लगा जैसे हमें कुछ करने ही नहीं पड़ा। यहाँ देखा कि लोगों के मदद करने की जो जज्बा है, जो जो कल्चर है, वो ऐसा है कि एकदम मतलब ऐसा लगा जैसे कोई घर वाला या दोस्त आके उसने मदद कर दी। फौरन हुआ कि भाई पूछे, पुलिस स्टेशन गए तो उन्होंने कहा नहीं बच्चे बीवी साथ में, इनको कुछ चाहिए हो पानी खाना हर चीज पूछी गई। तो वो ऐसा यहाँ माशाल्लाह कल्चर है हेल्प का, ओपन आर्म्स के साथ आपको वेलकम करने का, कि वो लगता ही नहीं कि आप किसी उसमें आए हैं, और वो आदमी को सीखना चाहिए मेरे ख्याल से।
1: क्या बात है सर। सर दुहा को अगर आप एक खत लिखना चाहें, 2-3 लाइन अगर शेयर करना चाहते हैं तो कुछ है जहन में आ रही है?
0: दुहा को अगर खत लिखें तो मोहब्बतों का खत होगा।
1: वाह।
0: और
1: अगर आप कोई शेर भी, आप शेर भी कहते हैं, आप शायर भी हैं, तो अगर आप कुछ इसके हवाले से भी सुनाना चाहें जैसे आपकी मर्जी।
0: जी मेरे ख्याल से शेर तो इस वक्त बर्जस्ता नहीं आएगा, लेकिन वाकई में जो मोहब्बत, जो नई चीजें, जो देखने को, तो जो जगह है वो तो अपनी जगह है, जो बनी हुई है देखिए ढांचा और चीजें तो अपनी जगह होती है, लेकिन जो लोगों की मोहब्बत है यहाँ और वक्त है लोगों के पास आपको देने के लिए, वो चीज़ वैसे बहुत मुख्तलिफ। वैसे में आप गिर भी जाएं तो आधे लोग ये समझेंगे कि शायद नशा करके गिर गया, कोई समझेगा क्या हो गया। यहाँ पे एक आदमी अगर गिरेगा तो सबसे पहला जज्बा होगा कि मदद कर दें, देखा जाएगा बाद में है क्या, क्यों गिरा।
1: वाह वाह,
0: तो वो चीज जो मोहब्बत यहाँ और यहाँ सीखने को मिला जिंदगी के बारे में, चीजों के बारे में, लोगों के, वो दोहा

0: के लिए वो चीज हमेशा जिंदगी में याद रहेगी, वो बेबस्त हो गई है।
1: क्या बात,
0: तो दुआ में सिर्फ बस मोहब्बत मोहब्बत और मोहब्बत कहलावा।
1: क्या बात है सर, जो नए डॉक्टर्स या प्रोफेशनल्स दोहा आ रहे हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है?
0: सर ये पैगाम है कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, आए। कोई भी आपको परेशानी हो तो घर भी खुले हैं, हमारा दरवाजा है, नंबर है।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छी जगह है, आपको सपोर्ट मिलेगी, आए। और आपको काम में मजा आएगा, काम बहुत प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन है। जो सेटअप है वो बिल्कुल वेस्टर्न लेवल पे बेस्ट पॉसिबल हॉस्पिटल का सेटअप है। तो सब तरह से, और फिर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, यहाँ हर तरह से लोग बुलाए जाते हैं, बाहर से चीजें होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस, इतनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं दोहा में के अटेंड करना मुश्किल हो जाता है।
1: क्या बात है,
0: बाकी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और आदमी रियलाइज नहीं करता।
1: क्या बात है, आखिर में सर आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से दोहा ने आपकी शख्सियत में और चार चांद लगाए हैं, दोहा ने आपको ज्यादा बदला और किस तरह से बदला, कुछ मेंशन करना चाहते हैं?
0: सर देखिए, आपने शायर को छेड़ा है तो अब एक आपको नज़म सुनूं।
1: मैं इसी का इंतजार कर रहा था।
0: नज़म आपको सुननी पड़ेगी जो दोहा में ही लिखी गई है,
1: इरशाद,
0: और वो यहाँ के वक्त की वजह से है।
1: इरशाद,
0: तो बेहतर इंसान बने या नहीं वो अब आपके हाथ में है।
1: इरशाद,
0: तो उर्दू के ऊपर लिखी है, जो हमारी जबान है जिसे बोल रोज। तो रगो जां में बसी एक खुशबू है, मोहब्बत है, चाहत है, दिल की आवाज है, मेरी जबान ही नहीं मेरे तफक्कुर का बयान है ये, तहजीब का आईना है, जज्बात का पैकर है, जो खुमार दिल और जां में उतर जाए वो लफ्जों से बनी मैं है ये, कभी इजारे इश्क है तो कभी इंसानी जुर्रत का उबाल है ये, गर पिरो दूं अपने एहसासात को एक ताने बाने में, उसी श्रृंगार का नाम है ये, कुछ फूलों की खुशबू सी, कुछ रंगों से उभरती हुई एक तस्वीर सी है ये, एक सितारों भरा आसमान है, कई कहकशाओं सी फैलती हुई रोशनी है ये, इल्म भी है, उल्फत भी, जोश भी है, कभी बेजारी भी, पैगाम आवाम भी है, रूहानी बेदारी भी है ये, इंसानियत का पयाम है, मेरी जबान है, उर्दू है ये।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब डॉक्टर हसन, बहुत अच्छा लगा। और यकीन जानिए प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है, बट आपसे इजाज़त लेने का दिल नहीं कर रहा, इतनी प्यारी बातें, इतनी सच्ची बातें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी फैमिली को अच्छा रखे और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमें ज्वाइन करने के लिए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर भाई, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी प्रोग्राम के बाहर।
1: इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों आप सबसे भी बस इतना ही कहना है कि जिंदगी का हर सफर नया होता है, मंजिल नई होती है, बस हौसला जिंदा रखिए, अपनी पहचान को संभाल कर रखिए, क्योंकि कहानी सिर्फ शहर नहीं लिखता, कहानी आप लिखते हैं। इसी खूबसूरत सोच के साथ इजाजत चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और मुझे सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
2: दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
3: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
4: FM 107। दिल से देसी।
5: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
6: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती हैं। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
7: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
8: दोस्तों लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए, फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है, और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए, क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। वजारत दाखिला का कहना है, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
9: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
2: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
3: Qatar ka pehla desi radio station, FM 107. Dil se, desi.

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं तिलावत तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ प्रोग्राम तहफीमुल कुरान
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वाज़े सामीन किराम प्रोग्राम तहफीमुल कुरान का आज का ये हलका हमारी आज की गुफ्तगू एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो हकीकत में पूरी रूहानी जिंदगी का सेंट्रल इशू है इंसान अल्लाह को पहचानता हो उसकी नेमतें देखता हो उसकी कुदरत और रहमत को मानता हो फिर भी उससे मोहब्बत न करे ये कैसे मुमकिन है अल्लाह की तरफ से पुकार सुनाई दे अजान बुलंद हो कुरान नसीहत करे दिल को तौबा की दावत मिले लेकिन इंसान जवाब देने में मुसलसल ताखीर करता रहे ये कैसी महरूमी है इंसान गुनाह की तलखी बेचैनी और अंधेरा बार बार महसूस करे फिर भी इबादत और तौबा में पनाह तलाश न करे ये अपने दिल के साथ कैसा सलूक है इमाम इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह के नहायत गहरे कलिमात का मफहूम ये है कि बड़ी हैरत की बात है कि इंसान अल्लाह को पहचाने फिर उससे मोहब्बत न करे उसकी पुकार सुने फिर जवाब देने में देर करे अल्लाह के साथ मामले का फ़ायदा जानता हो मगर दूसरों के साथ दिल लगाए उसकी नाराज़ी की शिद्दत को जानता हो फिर भी अपने आप को उसके गज़ब के सामने पेश करे और गुनाह की तकलीफ चखने के बाद भी इबादत के ज़रिए उसकी पनाह तलाश न करे सामने कराम हकीकी मोहब्बत प्रायोरिटीज़ बदल देती है जिससे इंसान मोहब्बत करता है उसकी बात सुनना चाहता है उसके करीब रहना चाहता है

0: अगर हकीकत पसंदाना कलाम है कि अगर तुम्हें मालूम ही नहीं कि तुम किन अजीम नेमतों को चंद सस्ती ख्वाहिशात के बदले खो रहे हो तो यह मुसीबत है, और अगर तुम जानते हो फिर भी जानबूझकर यही सौदा कर रहे हो तो यह इससे भी बड़ी मुसीबत है। इल्म जिम्मेदारी पैदा करता है। हम जानते हैं कि नमाज फर्ज है, हम जानते हैं कि गीबत नेकियों को खाती है, हम जानते हैं कि नाजायज ताल्लुकात अल्लाह की नाराजगी का सबब है। फिर सवाल यह है कि यह नॉलेज हमारे बिहेवियर में क्यों मुंतकिल नहीं होती। इस गैप को खत्म करना ही हकीकी इस्लाह है। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुम अल्लाह मरदा, उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उनकी बीमारी को बढ़ा दिया। इस्लाह का पहला मरहला यही है कि इंसान अपनी बीमारी को पहचाने। जो शख्स मुसलसल कहता रहे मुझे कोई मसला नहीं, वो इलाज की तरफ नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो सच्चाई से कहे मेरे दिल में हसद है, मेरी निगाह कमज़ोर है, मैं नमाज में सुस्त हूँ, मेरा दिल दुनिया में बहुत उलझ गया है, वो की राह पर पहला कदम रख देता है। समय कराम, दिल को अगर हम अल्लाह की तरफ वापस लाना चाहते हैं तो सबसे पहले गुनाह के दरवाजे बंद करें। दुआ करने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि इंसान गुनाह के तमाम ज़राए को बंद कर दे, अपने सोशल मीडिया पर गलत अकाउंट्स को अनफॉलो कर दें, नाजायज ताल्लुक ख़त्म करें, बुरी मजलिस छोड़ें, हराम कमाई से निकलें। जो चीज़ बार बार गुनाह तक पहुंचाती है उसके साथ क्लियर बाउंड्री बनाएं। शैतान कहता है कि कल से बदलना, रमज़ान से तौबा करना, ज़रा उम्र गुजरने दो, लेकिन मोमिन जानता है कि तौबा का बेहतरीन वक्त अभी है। हर रोज़ कोई ऐसा नेक अमल हो जिसे सिर्फ अल्लाह जानता हो, तन्हाई में इस्तग़फ़ार हो, छुपा हो असका हो, दो रकात नफल, किसी के लिए खामोश दुआ, इसी तरह जिक्र और कुरान को अपने रोज़ाना की ग़िज़ा बनाइए। यानी ये नहीं कि एक लेक्चर सुन लिए, लेक्चर काफ़ी नहीं है, उसे रोज़ाना ग़िज़ा चाहिए। सुबह शाम के अज़कार, कुरान की चंद आयात, दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, ये आमाल काफ़ी अहम हैं, और इस तरह अल्लाह से हम इबादत की लज्जत मांगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह नमाज को मेरी आंखों की ठंडक बना, कुरान को मेरे दिल की बहार बना, जिक्र में मुझे सुकून अता फरमा। याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी महरूमी माल की कमी नहीं, असल महरूमी यह है कि इंसान अल्लाह को याद करे मगर दिल में लज्जत ना पाए, नमाज पढ़े मगर कुर्ब महसूस न करे। दूसरी तरफ सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि बंदा अपने रब को पहचान ले, उससे मोहब्बत करे, गुनाह से तौबा करे, इबादत में उसे वो दिलचस्पी मिले और अपने दिल को उस अजीम दिन के लिए पाक करे जब अहले ईमान अपने रब के दीदार की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुक लज़्ज़त अन-नज़र इला वजहिक वश्शौक इला लिक़ाइक मिन ग़ैर ज़र्रा मुदर्रा वला फितनतिन मुदल्ला आमीन या रब्बल आलमीन। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हम अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
0: सामने कराम, एक मरतबा आप सबको खुश आमदीद। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इससे बाबरकत हल्के में वक्फे से पहले हमने काफी सारे उलमा के अकवाल नकल किए हैं। प्रोग्राम के इस मरहले में सामने कराम हम अब जानने की कोशिश करेंगे कि दिल को दोबारा जिंदा कैसे किया जाए, सख्त दिल को नरम कैसे बनाया जाए। जो शख्स बार बार गुनाह में मुबतला हुआ हो वो कहाँ से आगाज करे, और क्या सिर्फ चंद प्रैक्टिकल स्टेप्स काफ़ी हैं, या दिल के इस्लाह के लिए सबसे पहले अल्लाह के सामने झुकना ज़रूरी है। सामने कराम, हम अक्सर ये समझते हैं कि अगर हम कुछ टेक्निक्स फॉलो कर लें, कुछ हैबिट्स बदल लें, कुछ लेक्चर सुन लें, चंद बुक्स पढ़ लें तो दिल लाजमन दुरुस्त हो जाएगा। ये सब असबाब अहम है, प्लानिंग ज़रूरी है, बैड हैबिट्स ये ज़रूर आपने इससे गुरेज करना है, लेकिन याद रखिए कि दरअसल दिल के इस्लाह का ये सफ़र अल्लाह के सामने आजिज़ी, तज़र्रु और दुआ का सफ़र है। दिलों को पैदा करने वाला भी अल्लाह है, दिलों को फेरने वाला भी अल्लाह है, दिलों को नरम करने वाला, मुर्दा दिलों को दोबारा ज़िंदगी अता करने वाला भी अल्लाह है। अब दिल के इस्लाह के लिए गुनाह छोड़ना तो ज़रूरी है, माहौल भी बदलना पड़ता है।

0: FM 107 पर हर गाना हिट,
1: हर गाना हिट,
0: हर दूसरा गाना सुपर हिट।
2: बोहिमिया, ये अकी सिंह।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।
1: दोस्तों, ट्रैफिक के रेगुलेशंस की पाबंदी करना हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है, खासतौर पर स्कूल जोन्स के आसपास। ड्राइवर्स को रोड मार्किंग्स जैसे लेन्स और स्टॉप लेन्स और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये रूल्स न सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए हैं, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए भी बुनियादी अहमियत रखते हैं। स्कूल्स के आसपास ट्रैफिक स्लो होना चाहिए और ड्राइवर्स को स्टूडेंट्स के क्रॉसिंग के वक्त रुकना चाहिए। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स और स्कूल साइंस की रेस्पेक्ट करना और स्पीड लिमिट का ख्याल रखना एक्सीडेंट्स और चोटों से बचाता है। हर एक शख्स का फर्ज है कि वो इन रूल्स की पाबंदी करे। पेरेंट्स, टीचर और लोकल कम्युनिटी सब मिलकर स्टूडेंट्स की सेफ्टी को बढ़ावा दे सकते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि अगर हम ट्रैफिक रेगुलेशंस फॉलो करें तो स्कूल के आसपास का माहौल ज्यादा सिक्योर और स्टूडेंट्स के लिए सेफ बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
2: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे कि हंसी किस तरह हमारी जिस्मानी सेहत, जहनी सुकून और खानदानी जिंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित होती है। जब हम खुश होते हैं और हंसते हैं तो जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है। अगर ये हंसी किसी बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन ये सेहतमंद तर्ज जिंदगी का एक मुस्बत हिस्सा जरूर बन सकती है। मुदाफती निज़ाम पर उसका जो असर है वो भी बहुत बेहतर है, और तहकीक से ये भी मालूम हुआ है कि मुस्बत जज्बात और खुश मिजाजी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बनाती है। इसलिए खुश रहने वाले अफराद बीमारी के दौरान भी खुद को निस्बतन बेहतर महसूस करते हैं। कुछ मरीज बताते हैं कि मजाहिया गुफ्तगु या हंसी के बाद उन्हें दर्द का एहसास कुछ देर के लिए कम महसूस होता है। घर में खुशगवार और माहौल बच्चों की ज़हनी नशोनुमा, वालदैन के सुकून और बुजुर्गों की खुशी में अहम किरदार अदा करता है। जब घर के फर्द एक दूसरे से मुस्करा कर बात करते हैं, साथ बैठते हैं, खुशी के लम्हात बांटते हैं तो रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। जिंदगी में मुश्किलात जरूर आती हैं, लेकिन अगर हम उम्मीद, शुक्रगुजारी और मुस्बत सोच के साथ जीना सीख लें तो खुश रहना आसान हो जाता है। रोजाना चंद लम्हे हंसने, मुस्कुराने और अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने की आदत अपनाइए। ये आपकी जहनी और जिस्मानी सेहत दोनों के लिए मुफीद साबित होगी। अल्लाह ताला हमें सेहतमंद, खुश और मुस्बत जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम बैक टू इको स्विच विद सफा ऑन FM 107, जहां हम बात करते हैं उन सिंपल आइडियाज की जो हमारी डेली लाइफ को ज्यादा सस्टेनेबल बना सकते हैं। भाई देखिए, आज का टॉपिक है यूजिंग रिफिलिंग स्टेशंस, यानी के एक ही कंटेनर को बार बार रिफिल करना इंस्टेड ऑफ हर बार नई बॉटल या पैकेजिंग खरीदना। देखिए, हम अक्सर सुपरमार्केट्स जाते हैं और शैम्पू, हैंड वॉश, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स या वाटर बॉटल्स खरीदते ही हैं, है कि नहीं? ये तो डेली लाइफ की चीजें, प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, बॉटल डस्टबिन में चली जाती है और हम फिर से क्या करते हैं, एक नई बोतल खरीद लाते हैं। अच्छा, इको स्विच हमें एक सिंपल सवाल पूछता है, अगर सिर्फ अंदर का प्रोडक्ट खत्म हुआ है तो भाई पूरी पूरी बॉटल क्यों दोबारा खरीदनी? अच्छा जरा सोचिए, दोहा में एक फैमिली है जहां हर महीने शैम्पू, डिश वॉशिंग लिक्विड, हैंड सोप और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स खत्म हो जाते हैं। ये तो नॉर्मल सी चीज है, हर बार नई प्लास्टिक बॉटल्स।

0: घर आती हैं और पुरानी बॉटल्स ये जा डस्टबिन के अंदर। साल के एंड तक अगर देखा जाए तो एक ही घर से डजन्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स कलेक्ट किए जा सकते हैं। अब हम इमेजिन करें कि अगर वही फैमिली एक स्ट्रॉन्ग रियूजेबल बॉटल रखे और सिर्फ प्रोडक्ट रिफिल करवाए, तो भाई प्रोडक्ट भी मिल गया, पैकेजिंग वेस्ट भी कम हो गया। ये है इको स्विच का सिंपल सा आइडिया, यानी कंज्यूम करें लेकिन अननेसेसरी वेस्ट क्रिएट ना करें। अच्छा भाई, अब आपको ना चलते चलते कुछ इंटरेस्टिंग सरप्राइजिंग से फैक्ट्स बता देती हूँ। देखिए, दुनिया भर में हर साल आप कह लें कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ टन्स प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है और सिंगल यूज पैकेजिंग इसी का बड़ा हिस्सा है। अच्छा, एक प्लास्टिक बॉटल या कंटेनर को बनाने में रॉ मटेरियल्स, एनर्जी और वाटर, जो पानी होता है ना, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर एक ही कंटेनर को मल्टीपल टाइम्स यूज किया जाए तो भाई हर रिफिल के साथ नई पैकेजिंग की जरूरत कम हो जाती है। अच्छा, रिसर्च के मुताबिक रीयूजेबल कंटेनर्स अगर प्रॉपरली मेंटेन किए जाएं तो डजन्स या हंड्रेड्स ऑफ सिंगल यूज कंटेनर्स रिप्लेस किए जा सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिफिल सिस्टम सिर्फ प्लास्टिक कम नहीं करते बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन इमिशन भी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अच्छा साथियों, कतर में रिफिल कल्चर अभी कुछ कंट्रीज की तरह वाइड स्प्रेड नहीं हुआ, ये मैं मानती हूँ, लेकिन सस्टेनेबिलिटी अवेयरनेस के साथ साथ ये कॉन्सेप्ट ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है। कुछ सुपरमार्केट्स इको कॉन्शियस स्टोर्स और क्लीनिंग प्रोडक्ट सप्लाईज रिफिल ऑप्शंस और रीयूजेबल सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं। कतर में कुछ लोग पानी रिफिल स्टेशन का भी यूज करते हैं स्पेशली रीयूजेबल बॉटल्स के लिए। साथ ही क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के लिए कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूलाज और रिफिल पैकेजिंग्स भी अवेलेबल होती हैं, जो कि पैकेजिंग वेस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। अच्छा, इको स्विच का मैसेज ये है कि हम सिर्फ ये देखें कि भाई हमारे एरिया में कौन सा रिफिल ऑप्शन अवेलेबल है और उन्हें डेली रूटीन का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है। साथियों, रिफिल स्टेशंस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पैकेजिंग वेस्ट रिड्यूस करते हैं जबकि बॉटल्स बार बार यूज होती हैं, तो भाई नए प्लास्टिक कंटेनर्स की डिमांड भी कम हो जाती है इससे। तो भाई इसका इम्पैक्ट सिर्फ वेस्ट तक लिमिटेड नहीं रहता। कम पैकेजिंग का मतलब होता है कम मैन्युफैक्चरिंग, कम ट्रांसपोर्टेशन और कम रिसोर्स का यूज, यानी एक छोटी सी रिफिल हैबिट एनवायरमेंट के लिए मल्टीपल बेनिफिट्स क्रिएट कर सकती है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक ऑफिस या फैमिली रेगुलर क्लीनिंग प्रोडक्ट बॉटल्स रिफिल कराना स्टार्ट करे तो महीने में कई प्लास्टिक बॉटल वेस्ट होने से बच सकती हैं। अच्छा चलिए, आपको एक रिलेटेबल एग्जाम्पल देती हूँ। आप जरा सोचिए कि आप रोज काम पर जाते हैं या बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जाते हैं तो एक वाटर बॉटल ले लेते हैं। एक दिन की बॉटल छोटी लगती है ना आपको, आप कहते हैं कि भाई एक ही तो बॉटल है, क्या ही फर्क पड़ेगा एक दिन में किसी बॉटल का एक। लेकिन अगर एक साल के अंदर आप उसे कैलकुलेट करें तो वो टर्न आउट टू बी हंड्रेड्स ऑफ बॉटल्स बन जाती है। अब अगर आप एक अच्छी क्वालिटी रीयूजेबल बॉटल यूज करें और उसे रिफिल करते रहें तो आप अपनी डेली हैबिट्स को इको फ्रेंडली बना सकते हैं। देखिए, कतर के वार्म क्लाइमेट में हाइड्रेशन जरूरी होती है, इसलिए रीयूजेबल वाटर बॉटल कैरी करना एक प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल हैबिट है। अच्छा, इसी के साथ आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दे देती हूँ जो आप बहुत आराम से फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि भाई घर में अच्छी क्वालिटी वाली रीयूजेबल कंटेनर रखें जो रिफिल के लिए सूटेबल हो। दूसरा, सुपरमार्केट में शॉपिंग करते वक्त रिफिल पैकेट्स या कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट्स को प्रेफर करें। तीसरा, पानी के लिए डिस्पोजेबल वाटर की जगह आप रीयूजेबल बॉटल्स कैरी करें। चौथा, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के लिए रिफिल ऑप्शंस एक्सप्लोर करें जहां ये चीज अवेलेबल हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑफिस या फैमिली के साथ रिफिल कल्चर प्रमोट करें ताकि ज्यादा लोग इस हैबिट को अडॉप्ट करें। साथियों, इको स्विच का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि रिफिल का मतलब ये नहीं है कि हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करें। रिफिल का मतलब है स्मार्ट कंजम्पशन। देखिए भाई, आज के जमाने में ना सस्टेनेबिलिटी का मतलब सिर्फ चीजें कम खरीदना नहीं है बल्कि उन्हें इंटेलिजेंटली यूज करना है। रिफिल हैबिट्स हमें सिखाती हैं कि हर प्रोडक्ट के साथ एक्स्ट्रा पैकेजिंग लेना जरूरी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई जो लोग रिफिल हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं ना, वो अक्सर अपनी शॉपिंग हैबिट्स को भी ज्यादा माइंडफुल बना लेते हैं। तो भाई कंक्लूजन ये है, यानी कि आखिर में इको स्विच का सिंपल मैसेज ये है कि हर बार नई बॉटल लेना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे सस्टेनेबल चॉइस यही होती है जो हम पहले से यूज की हुई चीज होती है उसे दोबारा से इस्तेमाल कर सके। तो भाई अगली बार जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदें तो एक छोटा सा इको स्विच जरूर ऑन कर लीजिएगा। क्या मैं इसे रिफिल कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग द होल कंटेनर? क्या मैं इसे रिफिल कर सकता हूँ? इसी नोट के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107, जहाँ हर छोटी सस्टेनेबल हैबिट एक बड़े पॉजिटिव चेंज की तरफ ले जाती है। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे मावश खान और आज हम बात करेंगे बुजुर्गों के एहतराम की अहमियत के बारे में। बुजुर्ग हमारे माशरे का कीमती हिस्सा होते हैं, उनके तजुर्बे और नसीहत हमारी जिंदगी के लिए रहनुमाई का जरिया बनती हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि बुजुर्गों की इज्जत करें और उनके साथ नरमी और अदब से पेश आएं। अक्सर हम अपनी बिजी जिंदगी में उनकी बातों

0: को नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन उनके अल्फाज में जिंदगी का गहरा तजुर्बा होता है उनकी खिदमत और इज्जत करना सिर्फ एक सोशल ड्यूटी नहीं बल्कि सवाब का जरिया भी है जब हम बुजुर्गों का एहतराम करते हैं तो हम अपने आने वाली नस्ल को भी यही तर्ज देते हैं कि अदब और इज्जत कितनी जरूरी है आज का अमल ये है कि किसी बुजुर्ग से मोहब्बत से बात करें उनका हाल पूछें और उनकी किसी बात को तवज्जो से सुनें ये था आज का मैसेज आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर मैं हूं आरजे मावश फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ
1: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi. One step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. Main hoon aapki host Nazia.
0: One Step to 2030.
1: दोस्तों आज हम बात करेंगे ह्यूमंस प्लस मशीन जिसे कहते हैं ह्यूमन ऑगमेंटेशन। आज हम सिर्फ स्मार्ट वॉच पहनते हैं लेकिन फ्यूचर में टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा स्मार्ट हो जाएगी, हमारी बॉडी का हिस्सा बन सकती है। ह्यूमन ऑगमेंटेशन का मतलब है टेक्नोलॉजी इंसान की एबिलिटीज को एनहांस करे, चाहे फिजिकल हो या फिर मेंटल। इसमें वेयरेबल डिवाइसेस भी शामिल है, जैसे स्मार्ट ग्लासेस जो आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन देते हैं, या फिर ऐसे सूट्स जो इंसान की स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। और भी एडवांस चीजें हैं जैसे ब्रेन इम्प्लांट्स, जैसे इंसान मशीन को सिर्फ सोच से कंट्रोल कर सकता है। मेडिकल फील्ड में ये टेक्नोलॉजी डिसेबल्ड लोगों की लाइफ चेंज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल लिम्स जो बिल्कुल रियल जैसे मूव करते हैं। फ्यूचर में हो सकता है इंसान ज्यादा फास्ट सोच सके, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मशीन्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए। लेकिन यहाँ एथिकल सवाल भी है, क्या इंसान और मशीन का फर्क खत्म हो जाएगा? क्या ये सेफ है? पता नहीं। ह्यूमन प्लस मशीन

0: पावरफुल कॉन्सेप्ट, ये लाइफ को आसान और बेहतर बना सकता है, लेकिन इसे रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना होगा। दोस्तों एक बात तो क्लियर है, 2030 यानी 2030 का फ्यूचर सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, बल्कि इंसान और टेक्नोलॉजी की पार्टनरशिप का है। चाहे फार्मिंग हो, एनवायरमेंट हो, जॉब्स हो या फिर ह्यूमन एबिलिटीज, हर जगह इनोवेशन हमें एक नई दुनिया की तरफ ले जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि फ्यूचर आएगा, किस तरह से आएगा, किस तरह से हमें उसको अडॉप्ट करना है, सवाल ये है कि हम उसके लिए कितना तैयार हैं, क्या हम उस तरह से तैयार हैं कि नहीं, ये चीज जानना और समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। वेल चलिए, ये सवाल मैं आपकी तरफ ही इसको थ्रो कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ, सोचिएगा बताइएगा कि आप क्या उस तरीके से तैयार हैं, क्या मेंटली फिजिकली आपने अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया है, इस लर्निंग का हिस्सा बन चुके हैं कि नहीं। फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए, देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: स्कैम अलर्ट। यार सस्ते में अगर कार लाइसेंस बन जाए, दुनिया के झंझटों से बच जाए, जहां 4,000-5,000 रियाल लगते हैं वहां पर अगर 1,500-2,000 में लर्निंग लाइसेंस के साथ साथ अपना ये सारा लाइसेंस बन जाए, है ना, पेपर भी हो जाए, टेस्ट भी हो जाए, ड्राइविंग क्लासेस भी हो जाए, तो इससे अच्छा क्या है। लेकिन कहीं ये स्कैम तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे मैं हूँ फजील इस्तकबाल, आप सभी का इस शो में जिसका नाम है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हम फ्रॉड नए स्कैम्स के बारे में बात करते रहते हैं। और ऐसा ही आजकल एक स्कैम छाया हुआ है और ये स्कैम है लाइसेंस को लेकर। दोस्तों हम सभी को कार तो देखिए नीड हो गई है आज की, और जब आप खास तौर पे ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पर दूर दूर जाने के लिए गल्फ कंट्री में भाई कार की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। आपको अपने बच्चे को कहीं छोड़ना है, आपको अपने लिए कहीं जरूरत पड़ रही है, आपको कहीं दूर जाना है, कहीं पास जाना है, बीच जाना है, आपको कार चाहिए, ऐसे में लाइसेंस की नीड तो मैंडेटरी है। लेकिन लाइसेंस कई जगह आप देखते होंगे 3500 कतरी रियाल, 4000 कतरी रियाल, 2500 कतरी रियाल, ये अलग अलग स्कूल अलग अलग ऑफर देते रहते हैं। लेकिन इसका फायदा जो है उठाते हुए आजकल स्कैमर्स जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पैसे छीन रहे हैं गलत तरीके से। वेल, ये स्कैम काम कैसे करता है, चलिए इसके बारे में करते हैं बात। सबसे पहले ये स्कैम काम करता है सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया पे हो सकता है आपके सामने एक ऐड आए, एक पोस्ट आए किसी सोशल मीडिया के चैनल से कि अब आपको पूरी जो 40 क्लासेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको 1500 या 2000 या 1000 कतरी रियाल में मिल जाएंगी, जहां पर आपको लाइसेंस के लिए सिर्फ 100 रियाल देना है, रजिस्ट्रेशन के लिए 100 रियाल है, और आपके जो पेपर होंगे या कहें जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ फ्री का है, और उसके अलावा जो एडिशनल फीस होती है वो 2000 रुपये है, जहाँ पर आपको क्लासेस देने हैं, फिर आपका टेस्ट होगा और 1500 से 2000 के अंदर अंदर आपका लाइसेंस बन जाएगा। लेकिन ये एक तरह का नया स्कैम है। इसमें चालाकी ये होती है कि जैसे हो सकता है कि वो ऐड इस तरह से आए कि कोई एक नया जो ड्राइविंग स्कूल है वो खुला है और उसमें आपको वाउचर मिलेगा, या हो सकता है उसमें कहा है कि आपको 50% डिस्काउंट है, 75% डिस्काउंट है, क्योंकि वो नया स्कूल है तो वो 2000 रियाल में ही आपको लाइसेंस दे रहा है। या फिर आपके अपने मुल्क में भी इस तरह के ऐड या इस तरह का फ्रॉड या आपके सामने पोस्ट आ सकते हैं, लेकिन ऐसे में भरोसा बिल्कुल ना करें। आपसे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए कहा जाता है, आप 100 कतरी रियाल देते हैं, फिर आपको एक एग्जाम के लिए कहा जाता है जिसमें कहा जाता है कि ये फाइनल आपका पेमेंट है विच इज़ अराउंड 2000 और 1500 कतरी रियाल, और फिर आप यहां पर फंस जाते हैं। आप पेमेंट करते हैं, आप उसके अलावा जो डिटेल्स हैं आपकी QID का, आपके अपने पर्सनल डिटेल्स, आपके डॉक्यूमेंट का डिटेल्स, वो सब प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होता। ऐसे में कई बार आपको ऑनलाइन एक फेक वेबसाइट भी दी जाती है जो कि पूरी तरह से फेक होती है, और उसमें आपको पेमेंट करने का ऑप्शन जो है वो पूरी तरह से अलग तरीके से दिया होता है। आप सारा फॉर्म भरते हैं लेकिन आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आपको जो पेमेंट करनी है वो या तो कैश या दूसरे किसी थर्ड पार्टी ऐप से करनी है जो कि रजिस्टर्ड नहीं होती है, जिसका जो तरीका होता है पेमेंट निकालने का वो थोड़ा अलग होता है। ऐसे में बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कैसे आप सतर्क रह सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, इसके लिए जो तरीका है वो है कि फेक वेबसाइट पे बिल्कुल भरोसा ना करें। कई बार ऐसा लिखकर आता है कि फला वेबसाइट .gov. फलाना, तो ऐसी चीजों पर भरोसा ना करें, जो ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर जाएं, जो स्कूल की या ड्राइविंग स्कूल की वेबसाइट है उसमें जाएं, व्हाट्सएप मैसेजेस जो फॉरवर्ड किए होते हैं उन पर भरोसा ना करें, अर्जेंट स्लॉट्स, VIP प्रोसेसिंग, इन सब बातों पे भरोसा ना करें। चीप लाइसेंस या कहें कि सस्ते में जो लाइसेंस मिलता है वो 1000-1200-1500 रियाल में नहीं मिलता है दोस्तों, उसके लिए थोड़ा खर्चा करना पड़ता है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है इस तरह की चीजों को अवॉइड करने का, वो है कि आप डायरेक्ट लोकेशन पे पहुंचे, तब आपको ज्यादा भरोसा हो पाएगा। 20,000 लोग DVLA लाइसेंस रिन्यूअल स्कैम में फंस चुके हैं, सेम इसी तरह जो कि 2024 में यूके में इस तरह का स्कैम हुआ था, 20,000 लोगों के साथ इस तरह का स्कैम हुआ था। रेड फ्लैग्स को समझना बहुत जरूरी है, जहां पर आपको रिसीट ना मिले, गवर्नमेंट का रेफरेंस दिया जाता है लेकिन वो होता नहीं है, फिजिकल एड्रेस नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, पेमेंट की डिमांड होती है और जल्दी से जल्दी होती है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा ख्याल रखें और इस तरह के स्कैम से बचे रहें। सुनते रहें FM 107, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक एक इसी तरह के स्कैम के बारे में बात करते हुए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, दिल से देसी।
0: स्कैम अलर्ट।

0: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर आरजे महविश के साथ। छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सस्टेन द फ्यूचर, जहां हम बात करते हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और हमारी जमीन को फ्यूचर जनरेशंस के लिए बेहतर बनाने के बारे में। मैं हूं आपकी आरजे महविश और टुडे वी आर डाइविंग इनटू ब्यूटीफुल टॉपिक
2: ऑफ द डे,
1: बायोडायवर्सिटी, प्रोटेक्टिंग नेचर्स बैलेंस। आज हम बात करेंगे कि हर एक स्पीशीज जरूरी क्यों है और हम इस प्लैनेट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया FM107 कतर या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें 666-22-107 पे। चलें शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बायोडायवर्सिटी, यानी जमीन पर जिंदगी की वो रंग बरंगी वैरायटी जो छोटे से कीड़े से लेकर बड़े पेड़ों तक और हर चीज के दरमियान होती है। बायोडायवर्सिटी इज द हार्ट बीट ऑफ आवर प्लैनेट। हर स्पीशीज का अपना रोल है। मिसाल के तौर पे मक्खी यानी कि बीज पॉलिनेशन करती हैं, जिससे हमें क्रॉप्स मिलती हैं। मैंग्रोव्स हमारी कोस्ट लाइंस को प्रोटेक्ट करते हैं और फंगी वेस्ट को ब्रेक करता है। अगर ये डायवर्सिटी खत्म हो जाए तो इकोसिस्टम्स कोलैप्स हो जाते हैं और ये हमारे पानी, खाना और हवा पर असर डालता है। अक्सर हम क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन या एनर्जी क्राइसिस की बात करते हैं, लेकिन एक और चीज जो शायद उतनी हेडलाइंस में नहीं आती वो यही है, बायोडायवर्सिटी का खत्म होना। ये इशू इतना सीरियस है कि साइंटिस्ट इसे साइलेंट क्राइसिस कहते हैं। बायोडायवर्सिटी का मतलब है कि हमारे प्लैनेट पर जितनी भी किस्म की लाइफ एग्जिस्ट करती है, प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फंगी, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सब इस सिस्टम का हिस्सा हैं। हर एक स्पीशी का अपना रोल है और अगर कोई एक लिंक टूट जाए तो पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बायोडायवर्सिटी सिर्फ जानवर और पौधों की वैरायटी का नाम नहीं है, ये असल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो इंसानों को जिंदा रखता है। हम जो रोटी, चावल, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, ये सब बायोडायवर्सिटी का नतीजा है। अगर क्रॉप्स की डायवर्सिटी खत्म हो जाए तो डिजीजेस या क्लाइमेट शॉक से हमारा फूड सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। आज की मॉडर्न दवाओं का 50% से ज्यादा हिस्सा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स से आता है। अगर ये स्पीशीज खत्म हो जाए तो हमारी दवाओं की दुनिया भी खत्म हो सकती है। क्लीन एयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, फर्टाइल सॉइल, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, ये सब बायोडायवर्सिटी प्रोवाइड करती है। बीज और बटरफ्लाइज अगर ना हो तो एग्रीकल्चर भी रुक जाए। जंगल, माउंटेन्स, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ इंसान के लिए सिर्फ रिसोर्सेस नहीं बल्कि एक कल्चरल आइडेंटिटी भी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंसान की एक्टिविटीज ने बायोडायवर्सिटी को खतरे में डाल दिया है।

कुछ मेजर थ्रेट्स ये हैं। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन। हर साल अगर हम देखें तो मिलियन ऑफ एकर्स जंगल कट किए जा रहे हैं, खास तौर पे अमेज़न और साउथ एशिया में। जंगल का मतलब है घर फॉर काउंटलेस स्पीशीज। जब जंगल कटा तो वो स्पीशीज भी गायब हो गए। फिर दूसरे नंबर पे पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन समंदर की लाइफ के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। व्हेल्स और टर्टल्स प्लास्टिक खाकर मर जाते हैं। वाटर और एयर पोल्यूशन ने काउंटलेस स्पीशीज को इनडेंजर कर दिया है। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो राइजिंग टेम्परेचर्स और अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स ने स्पीशीज के नेचुरल हैबिटेट्स को चेंज कर दिया है। पॉलर बियर और कोरल रीफ सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। हंटिंग, ओवरफिशिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड ने काउंटलेस स्पीशीज को खात्मे के करीब पहुंचा दिया है। सोचें, अगर बीज खत्म हो गई, फूल पॉलिनेट नहीं होंगे, क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे और फूड शॉर्टेज हो जाएगी। अगर फॉरेस्ट कट गए तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। अगर फिश ओवर हार्वेस्ट कर ली गई तो मैरीन फूड चेन कोलैप्स हो जाएगी। यानी कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस सिर्फ एनिमल्स का लॉस नहीं, ये डायरेक्टली इंसान के सर्वाइवल को इफेक्ट करता है। अब सवाल ये है, हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कैसे करें? सबसे पहले तो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और मैरीन रिजर्व्स क्रिएट करना बहुत जरूरी है, जहां इंसान की इंटरफेरेंस लिमिटेड हो और स्पीशीज अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकें। फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऐसी हो जो सॉइल को डिस्ट्रॉय ना करें और फिशिंग मेथड्स ऐसे जो ओशंस को एम्प्टी ना करें। प्लास्टिक बैन करना, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करना और क्लीन वाटर मैनेजमेंट बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा फर्क लेकर आता है। फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम करना और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा थ्रेट है। लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया जाए। अगर लोग समझ जाएं कि उनकी जिंदगी बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंड करती है तो वो ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। कुछ आपको अब मैं इंस्पायरिंग एग्जांपल्स भी देती हूँ। हम बात करेंगे कोस्टा रिका की। ये मुल्क बायोडाइवर्सिटी का ग्लोबल चैंपियन है। वहाँ के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग लॉज हैं। टूरिज्म भी इको फ्रेंडली है। पाकिस्तान की बात करें तो हंजा और गिलगित बल्तिस्तान में कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जहां मारखोर और स्नो लियोपर्ड प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। कतर और मिडिल ईस्ट की बात करें तो डेजर्ट इकोसिस्टम फ्रेजाइल होता जा रहा है, लेकिन अब इनिशिएटिव्स चल रहे हैं जैसे मैंग्रोव प्लांटेशन और डेजर्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन सिर्फ एक एनवायरमेंटल एजेंडा नहीं, ये हमारी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। अगर हम अभी एक्शन लें तो बैलेंस रिस्टोर हो सकता है, लेकिन अगर डिले हुआ तो हम अपनी ही सिविलाइजेशन को खतरे में डाल देंगे। इंसान और नेचर एक दूसरे से अलग नहीं, हमारा फ्यूचर इसी में है कि हम नेचर का बैलेंस प्रोटेक्ट करें। कतर में हमें बायोडाइवर्सिटी अल थकीरा के मैंग्रोव्स में दिखती है। ये कोस्टल फॉरेस्ट बर्ड्स, फिश और क्रैब्स के लिए एक सेफ हेवन है। ये इरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं और कार्बन स्टोर करके क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन ये बहुत फ्रजाइल है। प्लास्टिक का पोल्यूशन या ओवर डेवलपमेंट इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। एक और मिसाल है अरेबियन ओरिक्स, जो कभी ऑलमोस्ट इंस्टिंक्ट हो चुका था लेकिन कंजर्वेशन के जरिए वापस आया। दिस स्टोरीज शो एवरी स्मॉल एक्शन काउंट्स। बायोडाइवर्सिटी क्यों जरूरी है? ये बैलेंस के बारे में है, एक हेल्दी इकोसिस्टम क्लीन वाटर, फर्टाइल सॉइल और स्टेबल क्लाइमेट देता है। स्पीशीज का लॉस जैसे ओवरफिशिंग या फॉरेस्ट का कटना इस बैलेंस को खराब करता है। फ्यूचर जनरेशंस के लिए बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करना मतलब एक ऐसा प्लैनेट देना जो लाइफ को सस्टेन कर सके। अब हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? पहले अपने लोकल वाइल्ड लाइफ के बारे में जानिए।
بیچز یا ڈیزرٹس پر لٹرنگ سے بچیں جہاں اینیملز کو نقصان پہنچ سکتا ہے. کنزرویشن ایفرٹس کو سپورٹ کریں جیسے لوکل این جی اوز کے ساتھ والنٹیئر کر کے یا اویئرنیس اسپریڈ کر کے. اسمال اسٹیپس کین میک ا بگ ڈفرنس. یہاں ہم لیں گے ایک بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہمارے پاس ہوں گی ہماری آج کی خبریں گرین فلیش میں. سنتے رہیں FM 107 دل سے دیسی.

0: लिसनर्स वेलकम बैक। आप सुन रही हैं एफएम 107 सस्टेन द फ्यूचर। अब चलिए ग्रीन फ्लैश सेगमेंट में, जहां हम दुनिया भर से सस्टेनेबिलिटी के बारे में खबरें लेकर आते हैं। इस हफ्ते 3 इंस्पायरिंग स्टोरीज क्या है, चलिए जानते हैं।
1: ग्रीन फ्लैश।
0: पहली खबर साउथ अमेरिका से, जहां एक रेयर जैगुअर स्पीशीज को कंजर्वेशन प्रोग्राम ने इंस्टिंक्शन से बचाया। प्रोटेक्टेड एरियाज और एंटी पॉचिंग लॉज की वजह से उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। दूसरी खबर है ऑस्ट्रेलिया से, जहां कोरल रीव्स को सेव करने के लिए आर्टिफिशियल रीव्स बनाए जा रहे हैं, जो मैरीन लाइफ को सपोर्ट करते हैं। तीसरी खबर अफ्रीका से, जहां लोकल कम्युनिटीज ने इनडेंजर्ड राइनोस के लिए सेंचुरीज बनाए हैं और अब उनकी तादाद बढ़ रही है। दीज स्टोरीज प्रूव, जब हम एफर्ट डालते हैं तो नेचर रिकवर कर सकता है। अब बात करते हैं ग्रीन इनोवेशंस स्पॉटलाइट की।
1: ग्रीन इनोवेशन।
0: आज हम फोकस कर रहे हैं एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर, बायो मिमिक्री। ये एक ऐसा तरीका है जहां साइंटिस्ट नेचर से इंस्पिरेशन लेते हैं ताकि सस्टेनेबल सॉल्यूशंस बनाएं। मिसाल के तौर पे एक टीम ने शार्क स्किन से इंस्पायर्ड एक मटेरियल बनाया जो बैक्टीरिया को रेजिस्ट करता है बिना केमिकल्स के। ये हॉस्पिटल्स या पब्लिक स्पेसेस में यूज हो सकता है इंफेक्शंस कम करके। इजंट दैट अमेजिंग? नेचर की डिजाइन से फ्यूचर को शेप कर रहे हैं।

0: अट्रैक्ट करें। सपोर्ट कंजर्वेशन, लोकल वाइल्ड लाइफ इवेंट्स में शामिल हों या डोनेट करें। सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें क्योंकि ये हमारे एनिमल्स के लिए डेंजरस होते हैं। स्मॉल चेंजेस बड़ा इम्पैक्ट।
1: वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट।
0: अब वक्त आ गया है हमारे वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट का और आज हम जो आवाज सुनेंगे ये है इंडोनेशियन साइंटिस्ट और इनका नाम है डैनियल मोरडियर्सो। तो चलिए सुनते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या कहते हैं।
2: Mangrove is one of the important ecosystem which is undergoing high pressure because of deforestation for infrastructure development, shrimp farm development and things like that. Globally, the area of mangrove is decreasing. We have less than 15 million hectares globally and it's decreasing almost half in the past 30 years or so. So I think globally the negotiator need to look at this instead of country by country, but in global term is very important.
0: जो लिसनर्स अभी आपने सुनी इनकी आवाज और ये एक बहुत ही यंग एक्टिविस्ट हैं जो हमें डेफिनेटली इंस्पायर करते हैं और आप भी इसी तरह से इनसे इंस्पायर होके अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अब हमारा टेक अवे चैलेंज, इस हफ्ते हम आपको चैलेंज देते हैं।
1: वीकली चैलेंज,
0: गो वन वीक विदाउट सिंगल यूज प्लास्टिक, बॉटल्स, स्ट्रॉ या प्लास्टिक बैग्स अवॉइड करें, यूज रीयूजेबल आइटम्स इंस्टेड। अगले हफ्ते हमें बताएं कि आपने ये चैलेंज कैसे पूरा किया। व्हाट्सएप करें 666-22107 पर या सोशल मीडिया @FM107 कतर पे शेयर करें। लेट्स मेक इट फन एंड सस्टेनेबल। इसी के साथ लिसनर्स शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे ऑन सस्टेन द फ्यूचर। अगले हफ्ते हम बात करेंगे ग्रीन ट्रांसपोर्ट।

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर, माहिरीन की राय पर। लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक, इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
2: दोस्तों, ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 55 के क्लॉज नंबर 3 के तहत गाड़ी चलाते वक्त 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को आगे वाली पैसेंजर सीट पे बैठालने की इजाजत नहीं है। बच्चों को आगे वाली सीट पे बैठालने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बिठाने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
3: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
4: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसा शो जहां पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ, फजील के साथ संडे से थर्सडे, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
5: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। निहायत बुजुर्गो बरतर है वो जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है, जिसने मौत और जिंदगी को ईजाद किया ताकि तुम लोगों को आजमा कर देखे तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है, और वो जबरदस्त भी है और दरगुजर फरमाने वाला भी, जिसने तह बर तह 7 आसमान बनाए। तुम रहमान की तखलीक में किसी किस्म की बेरबती न पाओगे, फिर पलट कर देखो कहीं तुम्हें कोई खलल नजर आता है। बार बार निगाह दौड़ाओ, तुम्हारी निगाह थक कर नामुराद पलट आएगी। हमने तुम्हारे करीब के आसमान को अजीम शान चरागों से आरास्ता किया है और उन्हें शयातीन को मार भगाने का जरिया बना दिया है। इन शैतानों के लिए भड़कती हुई आग हमने मुहैया कर रखी है। जिन लोगों ने अपने रब से कुफर किया है उनके लिए जहन्नुम का आजाब है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। जब वो उसमें फेंके जाएंगे तो उसके धाड़ने की हौलनाक आवाज सुनेंगे और वो जोश खा रही होगी, शिद्दत गजब से फटी जाती होगी। हर बार जब कोई अम्बोह उसमें डाला जाएगा उसके कारिंदे उन लोगों से पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था? वो जवाब देंगे, हाँ खबरदार करने वाला हमारे पास आया था, मगर हमने उसे झुटला दिया और कहा अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया है, तुम बड़ी गुमराही में पड़े हुए हो। और वो कहेंगे, काश हम सुनते या समझते तो आज इस भड़कती हुई आग के सजावारों में न शामिल होते। इस तरह वो अपने कसूर का खुद एतराफ कर लेंगे। लानत है उन दोज़खियों पर। जो लोग बेदेखे अपने रब से डरते हैं यकीनन उनके लिए मग़फ़िरत है और बड़ा अज्र। तुम खाह चुपके से बात करो या ऊंची आवाज से, अल्लाह के लिए यकसां है, वो तो दिलों का हाल तक जानता है। क्या वही न जानेगा जिसने पैदा किया है, हालांकि वो बारीक बीन और बाखबर है।